0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: क्या नमक के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है? क्या नमक के प्रयोग से किसी ग्रह को बेहतर किया जा सकता है? क्या किसी का नमक खाने से आप मुश्किल में आ सकते हैं? क्या है नमक के प्रयोग के नियम और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: 12.5 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बाद भी यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम रास्ते पर गाड़ियों की कतार। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में शुरू हुई जोर शोर से तैयारी, यहां से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा यात्रियों का पहला जत्था, सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर। उत्तराखंड में शुरू हुई विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम, शाम की बारिश और हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना, आज से बढ़ेगा तापमान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेटों से हराया, किंग कोहली की शानदार शतकीय पारी, 58 गेंद में बनाया आईपीएल करियर का 9वां शतक। जीत की तलाश में पंजाब का आज मुंबई इंडियंस से मुकाबला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होगा मैच।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
6: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ये देखते हैं खास कार्यक्रम अच्छी बात, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

माँ हमको पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, फिर हमको वन का राजा बनाया। ये दृष्टि है राम जी की, कितनी विपरीत परिस्थिति। हम लोग होते अगर राम जी की जगह विचार करो कि हमको राजा बनना होता और सुबह तुमको अगर वन भेज दिया जाता तुम तो तुरंत कहते ऐसा कैसे हो सकता, हम तो राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया। माँ हम केस लड़ेंगे, लोग बुलाएंगे, पंचायत बैठा रहेंगे, माँ आज हम राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया कि हमको वहां भेज दिया। मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, राम से तुम्हें सीखना है तो यह बात जरूर सीखना, तीसरी कला जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए चले जाना। बुरा समय भी आए तब भी तुम घबराना मत, बुराई आवे घबराना मत, परेशान मत होना, झंझट आवे घबराना मत। याद रखना हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, और याद रखना दुख का झूला जितना पीछे जाएगा सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये दुख की रात गुजर जाए, राम के जीवन की भी गुजरी है 14 साल वनवास, लेकिन राम जी मुस्कुराए। एक बात और भारत के लोगों याद रखना, राम जी बन गए इसलिए वो बन गए, राम जी बन गए वो बन गए। अगर ना वो बन जाते ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। मेरे पागलो ये तुम्हें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए, तीसरी कला जीवन जीने की कला। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति भी आवे, बुरा समय भी आवे, संकट की घड़ियां भी आ जावे, तब घबराना नहीं, परेशान मत होना, आत्महत्या की ओर मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, मुस्कुराना। देखना याद रखना मुस्कुराते ही तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होने लगेगा। भगवान कृष्ण से सीखो मुस्कुराना। हमने तो भगवान कन्हैया से बहुत सीखा, वो तो अद्भुत है, मुस्कुराने की कला तो उनसे सीखो। उन्होंने वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा, द्वारका आए तब भी वो मुस्कुराए। द्वारका में द्वारका के राजा बने तब भी वो मुस्कुराए। 16,108 विवाह संपन्न किए तब भी मुस्कुराए। 1,61,080 पुत्र हुए तब भी मुस्कुराए। और सभी पुत्रों को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने मरवा डाला तब भी वो मुस्कुराए। और महाभारत के युद्ध में समर के मध्य में रथ लेकर के खड़े हैं अर्जुन को लेकर, फिर भी वो रथ के मध्य में मुस्कुराए। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। क्या कितनी भी विपरीत परिस्थिति रखे, कितनी भी उल्टा समय रहे, मेरे प्रियजनों जो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा कर जानता ना, जो बुरे समय में भी हंसना जानता ना, जिंदगी में उसके कभी दुख नहीं आता। हमारे गुरु जी कहते थे जीवन ऐसा जियो कि कभी मौत भी आए तो वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो, जीवन जीना ही मुस्कुराते हुए जियो। ये तुम लोग कई लोग ऐसे बैठे रहते जैसे 4 लठ खा कर आए हो, लुगाई से पीट कर आए हो। कई लोगों के तो दांतों पे चेहरों पे हंसी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी गधों को हंसते देखा है? बोलो जोर से, देखा तुमने? मुंबई में अगर हंसते हो गधे तो पता नहीं, हमारे यहां बुंदेलखंड में नहीं हंसते ना, नको बाबा। अच्छा तुम अगर कोई आदमी हंसे ना समझ जाना चार परे वाला, क्योंकि हंसना इंसानों के भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। और अगर कोई तुम्हें गधा हंसते हुए मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है। हाँ, क्योंकि उसके इंसानों के ही भाग्य में हंसना है। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक समझा रहे राम जी से तीसरी कला जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ हमारी कैसी हो ये राम जी से सीखो। वो विपरीत पर राम कभी विचार करना, राम से तुम कभी विचार करना। दो भाई धर्मपत्नी वो भी हरण हो गई,
उसको भी हरण करके ले गया। राम जी के जीवन में संकटों की क्या कमी। राजा बनना था, सुबह 14 साल का वनवास मिल गया, वन में गए, पत्नी का हरण हो गया, तब भी नहीं बात मनी। कैसे समाधान, समस्या का समाधान निकाला। लंका गए, लेकिन लंका गए उन दोनों का हरण हो गया। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, सरकार यहाँ कहाँ से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहाँ कहाँ हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पैंच देख के सोचने लगे, ये दाव पैंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले, इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले, कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले, सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी, ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले, हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले, एक बात बताएं बेटा। बोले, बताओ बेटा, क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा, बोले वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं, हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक, और आप कहां से? तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज, हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए, लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया, उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज, उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले, तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ, राम जी कहाँ हैं? मकरध्वज बोले, हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले, बाप के साथ कर सकते हो? उसके साथ नहीं कर सकते, क्या बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले, नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले, बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पैंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले, महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा, बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं, यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल है। कैसे बचें? पांच दीपक जल रहे, पांचों दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले, पर जाएं कैसे? मकरध्वज बोले, सूक्ष्म रूप में जाओ, और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं, हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले, चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल, लाल लाल पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए, और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा, सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले, देखो लाल लाल लाल आ गए, लखन लाल लाल लाल आ गए। लखन लाल बोले, क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले, यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है।

और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलो, समस्या कितनी विकराल, पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं, उस समस्या में भी समाधान निकला, उस समाधान के रूप में हनुमान निकला, और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भए, पांचों मुखों से एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। यही राम जी से मेरे पागलो सीखने योग्य बात है। मेरे मुंबई के लोगों, विपरीत परिस्थितियों में भी राम जी की इसी कथा से हमें सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किल की घड़ियां आ जाएं, हमें घबराना नहीं है, हनुमान जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर मुस्कुराना है। एक दिन ऐसा आएगा संकट के बादल टल जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, और चाहते हो अगर समस्या का हल तो हनुमान जी और राम जी के चरणों में चल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग करते क्या हो ये और पूछ लो, पूछो क्या करते हैं, जोर से पूछो, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग भगवान के पास, महाराज समस्या विकट है, समस्या विकट है। लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी समस्या बहुत विकट है, लेकिन हम तुम्हें उत्तर देना चाहेंगे राम कथा के ऊपर, राम जी से सीखने योग्य। मेरे पागलो, राम जी के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के सामने खड़े होकर जाकर कह दो राम जी हमारे निकट है। और अगर आप कह दोगे राम जी निकट हैं, तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका

तो श्री राम जैसा भाई हो, तो श्री राम जैसा मित्र हो, तो श्री राम जैसा स्वामी हो, तो श्री राम जैसा और भगवान भी हो, तो प्रभु राम जैसा। आहा, राम जैसा कौन होगा? कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। मेरे पागलो, राम जी केवल एक पत्नी व्रतधारी नहीं है, राम जी केवल भाई भ्रातत्व प्रेम के प्रणोता नहीं है, राम जी केवल जीवन जीने की कला भर नहीं सिखाते, राम जी राष्ट्र भक्ति भी सिखाते हैं। ये राम जी का चौथा गुण है सीखने योग्य। राम जी से चौथी बात क्या सीखना चाहिए? आहा, आतताई रावण का वध हो गया, लंका का रावण मारा गया। लंका का राजा जब रावण मारा गया, आहा, जय जयकार प्रभु श्री राम की हो गई। विभीषण जी महाराज लंका के राजा नियुक्त किए गए। लक्ष्मण जी ने वैभव को देखकर, स्वर्णमयी लंका को देखकर, विभीषण जी के भाव को समझकर प्रभु श्री राम से कहा, हे दशरथ नंदन राम, कुछ दिन यहीं लंका में राज्य करो, यहीं पर विराजमान रहो। लेकिन कितनी अद्भुत राष्ट्र भक्ति है राम जी की। राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोले।

0: मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण भाई, तुमने ठीक कहा, लंका सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका होते हुए भी हमको प्रिय नहीं है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से कम नहीं है। अयोध्या नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। यह राम जी की राष्ट्रभक्ति है कि विदेशी चकाचौंध को देखकर अपने भारत के मान को प्रभु श्री राम ने झुकने नहीं दिया। और कुछ विरोधी लोग विदेशों में जाकर भारत की मूर्खतापूर्ण बुराई करते हैं और विदेशों की सड़कों की महिमा गाते ठटरी के भरे। इस उनको सीखना चाहिए प्रभु श्री राम के इस श्लोक से, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते, लक्ष्मण हमारी जन्मभूमि स्वर्ग ही है। यह राम की राष्ट्रभक्ति। मेरे प्रिय जनों, जो राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित होता, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए काम आता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो
1: सीताराम।
0: यह राम जी की राष्ट्रभक्ति है। तो चौथी कला राम जी से राष्ट्रभक्ति की सीखनी चाहिए। राम जी से पांचवी सीख क्या सीखनी चाहिए? आहाहा, मर्यादा मय श्री राम। कौन से राम? जोर से बोलो, मर्यादा मय प्रभु श्री राम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत में एक विरोध उठा, एक चौपाई के ऊपर।

0: क्या नमक के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है? क्या नमक के प्रयोग से किसी ग्रह को बेहतर किया जा सकता है? क्या किसी का नमक खाने से आप मुश्किल में आ सकते हैं? क्या है नमक के प्रयोग के नियम और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Good news today, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बता

0: classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wait.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
1: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
1: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
1: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
1: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.
8: देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है.
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो

0: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: 12.5 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बाद भी यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, रास्ते पर गाड़ियों की कतारें। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में शुरू हुई जोर शोर से तैयारियां, यहां से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा यात्रियों का पहला जत्था, सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर। उत्तराखंड में शुरू हुई विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, शाम की बारिश और हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना, आज से बढ़ेगा तापमान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। किंग कोहली की शानदार शतकीय पारी, 58 गेंद में बनाया आईपीएल करियर का 9वां शतक। जीत की तलाश में पंजाब का आज मुंबई इंडियंस से मुकाबला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होगा मैच।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: कान में आलिया के देसी अंदाज ने जीत लिया फैंस का दिल, साड़ी गाउन में बहुत खूबसूरत नजर आई। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार में नजर आई आलिया, डिजाइनर तरुण तहिलियानी की क्रिएशन। नथ बिंदी ने पूरा लुक बनाया खास, पैरों में पहनी पर्ल पायल ने लुक को दिया देसी रॉयल्टी टच। रेड कार्पेट पर भरी आलिया, एक और खूबसूरत लुक उनका निकलकर सामने आया, ब्लू गाउन में पहने नजर आई एक्ट्रेस। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में हुई शामिल, मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डैनियल ने डिजाइन किया कॉस्ट्यूम। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। डीजल ने एक काली जैकेट पहनी थी जिसके पीछे रेस कार की डिजाइन के साथ फास्ट फॉरएवर लिखा था। ये FNF सीरीज की अगली सीक्वल है जो 2028 में आने वाली है। रेड कार्पेट पर विन डीजल के साथ जॉर्डाना ब्रूस्टर और मिशेल भी नजर आई। ये दोनों एक्ट्रेस 2001 से इस फ्रेंचाइजी फिल्म के साथ हिस्सा है। रेड कार्पेट पर फिल्म स्टार पॉल वॉकर का प्रतिनिधित्व उनकी इकलौती बेटी ने किया। फास्ट एंड फ्यूरियस हॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक है, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर। रिलीज से पहले ही चर्चा में दृश्यम 3 9 दिन पहले कमाल है कमा चुकी है अब 7.50 करोड़ से ज्यादा। दशहरा पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे इमरान हाशमी, गनमास्टर G9 होगी रिलीज। लगभग 14 साल बाद शेखर टुनाइट नाम के एक टॉक शो से शेखर सुमन कर रहे हैं वापसी। धुरंधर फेम राकेश बंदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म। देश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, उत्तर प्रदेश राजस्थान झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज आंधी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास भी मौसम प्रणाली सक्रिय। अलवर में अचानक बदल गया मौसम, आया आंधी तूफान, बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित। चुनाव में अचानक मौसम के बदलने पर तेज हवाओं के साथ तेज आंधी, जड़ों से उखड़ गए पेड़। महाराष्ट्र के सतारा में अचानक छाए काले बादल, तेज आंधी, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश, उत्तम नगर में बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश की बौछार से लोगों को मिली राहत, भीषण गर्मी से निजात। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बारिश की फुहार, तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। राजधानी के कई इलाकों में हुई बारिश, ओखला इलाके में तेज आंधी के साथ राहत वाली बरसात। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बदल गया मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कर्नाटक के हुबली में राहत वाली बारिश, मौसम हुआ सुहाना। हुबली में बारिश के साथ साथ चली तेज हवाएं, तापमान में गिरावट। गोरखपुर में आज शाम 5 बजे अचानक मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी के साथ आसमान में छाए काले बादल। रात वाली बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली। नागपुर में गर्मी का येलो अलर्ट, अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया पंसेरी गांव का दौरा। डोडा दौरे पर आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महराज मलिक का नर्सरी और मदर ब्लॉक विकास के साथ सेब के बाग का उद्घाटन। मलिक ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, इलाके के विकास में सहायता होगा ये सेब। ग्वालियर पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई खुशी, लोगों के चोरी हुए फोन वापस किए। ग्वालियर पुलिस के 13 तुझको अर्पण पहल के तहत लौटाए गए बरामद मोबाइल। झांसी डीएम के अनोखी पहल, शिक्षक बनकर खुद क्लास में बच्चों को पढ़ाया पाठ। डीएम की क्लास में खुश नजर आए बच्चे, बोर्ड पर हल किए गए कई सवाल। डीएम के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तस्वीर और दिशा बदलने का किया जा रहा है प्रयास। जिला स्तर पर अधिकारियों को भी एक एक स्कूल गोद लेने के लिए जताया गया प्रेरित। सतना में अनोखा आयोजन, बुजुर्ग ने जीते जी करवाई अपनी तीरवीं, बांटे थे शुभ शोक संदेश। रामलोटन कुशवा नाम के इस बुजुर्ग ने बताया कि मृत्यु के बाद नहीं होगा उनका अंतिम संस्कार, अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सतना को दान करने का किया संकल्प। दिल्ली में एनटीएमसी का बड़ा फैसला, अपने विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के एक तिहाई कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। उत्तराखंड में ईंधन बचत अभियान के तहत धामी सरकार के बड़े फैसले, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से लेकर वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने तक कई प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी के काफिले में भी 50% कटौती, जिन अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है उन्हें एक दिन में एक सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की होगी अनुमति। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश, मुख्यमंत्री फ्लीट में न्यूनतम वाहनों की होगी इस्तेमाल। औरंगाबाद में भी दिखा ईंधन बचाओ अभियान का असर, आवास से साइकिल चलाकर 2 किलोमीटर दूर सिविल कोर्ट पहुंचे जिला जज राजीव रंजन कुमार दाने। पंद्रह मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला पड़ाव होगा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा। एनसीआर में टूट, दुग्ध की कीमतें 56 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 58 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, 72 रुपए प्रति लीटर मिलेगा फुल क्रीम दूध। सरका दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
9: How they looked after game one.
10: I mean, they were frustrated.
8: The Daily.
11: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
8: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits.

0: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यात्रा की। कैसी भी यात्रा हो, छोटी हो, बड़ी हो, काम की हो, मनोरंजन की हो, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहे, सफलता वाली रहे, क्या करें उपाय, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं यात्राओं की। सबसे पहले जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि जो चर राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां मानी जाती हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। नवम भाव से लंबी यात्रा और द्वादश भाव सामान्यतः विदेश का भाव माना जाता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है तो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर लगी रहती हैं। शनि, राहु और केतु का प्रभाव होता है तो एक बार में ही आदमी लंबी यात्रा पर काफी दूर चला जाता है। यात्राओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि कब हमारी यात्रा अच्छी होती है, सुखद होती है और कब यात्रा में हमें दिक्कत होती है, कब यात्रा में हमें समस्या होती है। देखिए,

0: यात्रा के समय अगर चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा अनुकूल हो, तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के समय शुक्र की स्थिति अगर ठीक है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा से जीवन में आनंद मिलता है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले, यात्रा की शुरुआत में ईश्वर का दर्शन हो, पूजन हो, तब भी यात्रा अच्छी हो जाती है। आपकी यात्रा के समय अगर चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अनुकूल ना हो, तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशा शूल होता है, जिस दिशा का, उस दिशा में यात्रा करने से यात्रा में समस्या होती है। जैसे बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो उपाय करके यात्रा कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती उतर रही हो, ढैया उतर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी यात्रा करने में समस्या पैदा होती है। और अगर ऐसी स्थिति में आप लंबी यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल नहीं होती है। यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर, बड़ी यात्रा पर, अगर आप अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। अपने साथ यात्रा में मांसाहारी या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। ऐसा करने से यात्रा पर राहु का प्रभाव आएगा और यात्रा में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिशाशूल वाले दिन जिस दिशा का दिशाशूल है उस दिशा में यात्रा ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करने के बाद यात्रा करिएगा ताकि दिशाशूल की दिक्कत ना हो। यात्रा आरंभ करने के पहले दही जरूर खा लीजिएगा। थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करेंगे, शुक्र के प्रभाव से यात्रा आनंददायक हो जाएगी। यात्रा कहीं भी करने जा रहे हों, लंबी या छोटी, उसके पहले पूजा के स्थान पर कुछ धन, थोड़ा सा पैसा रख दीजिएगा और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से यात्रा में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आप दुर्घटनाओं से और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहते हैं। तो आज हमने जाना यात्रा को सुखद और लाभकारी कैसे बना सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो एक नीम का पौधा, जमीन है तो जमीन में, या गमला है तो गमले में एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा। नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
3: 12.5 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बाद भी यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम रास्ते पर गाड़ियों की कतारें। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में शुरू हुई जोर से तैयारियां, यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा यात्रियों का पहला जत्था, सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर। उत्तराखंड में शुरू हुई विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम, शाम की बारिश और हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना, आज से बढ़ेगा तापमान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता को नाइट राइडर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। किंग कोहली की शानदार शतकीय पारी, 58 गेंद में बनाया आईपीएल करियर का 9वां शतक। जीत की तलाश में पंजाब का आज मुंबई इंडियंस से मुकाबला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होगा मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं नमक के बारे में। आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां आती हैं तो नमक के चमत्कारी प्रयोग करके उन परेशानियों का अंत कैसे किया जा सकता है। हम नॉर्मल और आम जीवन में अक्सर नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नमक चमत्कारी नमक कैसे बन सकता है, आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है, तमाम हल और तमाम सॉल्यूशंस पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
1: धन स्थान पर सफेद रंग के दो हाथी, पत्थर के हों, मिट्टी के बने हों, सफेद रंग के होने चाहिए। दो हाथी आमने सामने रखिएगा। ऐसा करने से नियमित रूप से धन आपके पास आता रहेगा। हाथी को घर में रखना हाथी की मूर्ति या हाथी का चित्र शुभता और धन दोनों आपके जीवन में बढ़ा देगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी, नमक के बारे में आपको बताएंगे नमक का चमत्कारी प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है पंडित जी से कि नमक का ज्योतिष में महत्व क्या है और क्यों इतना खास माना जाता है नमक को।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नमक हमारे जीवन में तो मूल्यवान है ही, ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है नमक का? नमक को एक विशेष तरीके का रसायन या केमिकल कहा जा सकता है। नमक कई प्रकार का होता है, इसमें समुद्री नमक सी सॉल्ट और पहाड़ी नमक रॉक साल्ट ये प्रमुख है। पहाड़ी नमक को, रॉक साल्ट को हम सेंधा नमक कहते हैं और व्रत में इसका खूब प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, सी सॉल्ट का भी और रॉक साल्ट का भी। ज्योतिष में नमक का संबंध माना जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। जल से पैदा होता है, जल तत्व की भूमिका है, चंद्रमा इसका स्वामी है और नमकीन स्वाद सॉल्टी टेस्ट का मालिक भी चंद्रमा होता है, इसीलिए ज्यादातर नमक के पीछे चंद्रमा की भूमिका होती है और कुछ मात्रा में शुक्र भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा, ज्यादातर कुंडली का चंद्रमा इससे सीधा प्रभावित होता है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेडिकल कारणों से तो रखनी ही चाहिए, सामान्य जीवन में

0: कैसे करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझ करके चलना चाहिए।
1: चलिए, बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से जानने हैं और आप सबके सवाल भी आगे जाके इस सेगमेंट में हम लेंगे, लेकिन बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की। सबसे पहले पहली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं, मेष, वृष और मिथुन। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए, नमक के बारे में आपको तमाम जानकारी हम बता रहे हैं। तो दैनिक जीवन में हम नमक का प्रयोग तो करते ही हैं। दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में आपको सावधानियां क्या बरतनी है, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन पंडित जी आपको बताएंगे कि किस तरह से सावधानियां बरतें और क्या बातों का ख्याल रखें।
0: देखिए, दैनिक जीवन में हम सब नमक का प्रयोग अवश्य करते हैं अपने भोजन में। नमक के प्रयोग में डेली लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए? नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए, मेटल के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में ना रखें। नमक को कभी बर्बाद ना करें, जमीन पर ना गिराएं। जो लोग नमक बर्बाद करते हैं, नमक का नुकसान करते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है और उनको मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं। बहुत प्राचीन समय से ये मान्यता है कि नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। हर व्यक्ति का नमकीन भोजन या नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मजबूरी में आकर, दबाव में या प्रेशर में आकर हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति खराब संस्कारों का है या आपके प्रति अपने मन में अच्छे भाव नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में उसका नमक ग्रहण करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
1: चलिए बाकी प्रश्न पंडित जी से जानते हैं, उससे पहले आगे बढ़ते हुए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए बाकी प्रश्न भी पंडित जी से जानते हैं, लेकिन अब लेते हैं आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इस सेगमेंट में आगे बढ़ूं पहले प्रश्न की तरफ, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका इस शो में आप भेज सकते हैं अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है आपके पास?
0: जी, आज का पहला प्रश्न लवली वर्मा ने हमें लिखा है। लवली वर्मा हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1995। जन्म का समय दोपहर में 2:25। जन्म स्थान है आगरा। लवली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? लवली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय आरंभ हो चुका है और साल 2027 के आरंभिक समय में आपका विवाह होना चाहिए। आगरा या आगरा के निकट आपका विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की। कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है वो भी जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी, अगला प्रश्न स्वाति पांडे ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1998। जन्म का समय सुबह के 6:00। जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि मैं अभी मैनेजमेंट के सेक्टर में नौकरी कर रही हूं, क्या मुझे आईटी के सेक्टर में स्विच करना चाहिए? क्या मुझे थोड़ी पढ़ाई करके आईटी में जाने पर ज्यादा लाभ होगा? मेरे भविष्य की क्या स्थिति है? स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट का सेक्टर बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें इसी को अपग्रेड करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड में आईटी आदि के क्षेत्रों में आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको करियर में सफलता मिले, जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
1: चलिए, नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पंडित जी से पूछ लेते हैं। सवाल यह है पंडित जी आपसे कि नमक का ज्योतिष के अनुसार प्रयोग कैसे किया जाए, यानी आमतौर पर जैसे प्रयोग करते हैं उससे अलग कैसे होता है ये?
0: सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग कैसे करें ये तो आपने समझ लिया, अब ज्योतिष के हिसाब से नमक का प्रयोग कैसे करें वो भी जान लीजिए। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पक्की तौर पर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का, सी सॉल्ट का प्रयोग मत करिएगा, वरना ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग करें। मंगल कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ऐसी स्थिति में समुद्री नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा। घर में जहां नमक रखते हैं, जिस डब्बे में, कांच के पात्र में, उसमें 2 लौंग 3 लौंग डालकर हमेशा रखिए। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। बाजार से सस्ता वाला नमक 1 पैकेट 2 पैकेट खरीद लाइए। जब भी घर में पोंछा लगता है उस पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालिए और उस पानी का पोंछा लगवाइए अपने घर में या लगाइए। हल्के नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में खुशियां रहेंगी और घर की तनाव चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। रोज पोंछा लगे 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उस पानी का पोंछा लगाना अच्छा होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपके लिए हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: देखिए, नमक के प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया है, लेकिन नमक के ही कुछ और प्रयोग यानी चमत्कारी प्रयोग क्या है वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि नमक के प्रयोग से आपको विशेष लाभ कैसे हो सकता है, नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता हो, हमेशा मन में तनाव और चिंता बनी रहती हो, तो नहाने के पानी में एक चुटकी दो चुटकी नमक मिलाकर उस जल से स्नान करें। अगर कमरे में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, कमरे में आपको नींद नहीं आती है, तो पत्थर वाले नमक का एक टुकड़ा कमरे के कोने में, किसी भी कोने में रख दीजिए, कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो, नजर दोष का चक्कर हो, तो सर से 3 बार नमक वार करके बहते पानी में बहाएं या बेसिन का टैप खोलिए, टोटी खोलिए, जब पानी बहने लगे तो वो सर से नमक उतार कर उस पानी में गिरा दीजिए, नजर उतर जाएगी। लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहा हो तो कांच की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक उसके सिरहाने किसी टेबल पर रख दीजिए, हफ्ते हफ्ते भर में पुराने नमक को बहाते रहिए और नया नमक उसमें रख दीजिए, शीघ्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर शुक्र की वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो, अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से लाभ होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से अमावस्या के दिन अगर आप चावल और नमक, थोड़ा सा नमक और चावल, अगर ये अमावस्या के दिन आप दान करें तो पितरों की जो कृपा है वो आपको मिलेगी। और अगर कुंडली में कोई अज्ञात बाधा है तो वो अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का हाल भी आपके साथ पंडित जी साझा करेंगे। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी है, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आपका सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूं कि आपकी कोई भी परेशानी है उसका निवारण आप चाहते हैं, कोई दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन से दर्शक का है?
0: अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 2003, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। कुणाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी कर लिया है, आगे मुझे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे लॉ करना चाहिए, क्या करने पे मुझे सफलता ज्यादा मिलेगी? कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाइए। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये क्षेत्र आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपको कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका भविष्य अच्छा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दर्शकों का अंतिम सवाल ले लेते हैं और कौन सा है अगला प्रश्न पंडित जी, वो भी जान लेते हैं आपसे।
0: जी, अंतिम प्रश्न संध्या शर्मा जी ने हमें लिखा है और संध्या जी हमें मेल लिखती हैं जयपुर, राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1980, जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे, जन्म का स्थान है भरतपुर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग सेक्टर में नौकरी करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, जिस विद्यालय में मैं काम करती हूं काफी समय से लटका हुआ है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा प्रमोशन हो, मेरी उन्नति हो। संध्या जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी प्रमोशन होने में वक्त लगेगा। 2027 के लास्ट में, जून 2027 के बाद आपके प्रमोशन की स्थिति दिख रही है। लगभग 1 साल का समय अभी बाकी है। नौकरी बदलने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका प्रमोशन होगा, यहीं पर आपकी उन्नति होगी और बढ़िया करियर है आपका, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रमोशन अच्छा हो, आप करियर में बेहतर उन्नति कर सकें, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर ये अपने बड़े बुजुर्गों को हमने कहते हुए सुना है कि किसी के भी घर का नमक आपको नहीं खाना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को कई बार आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सच है, ऐसा होता है?
0: देखिए, नमक जो है, किसी भी घर का जो नमक है वो उस घर की तरंगों के बारे में आपको जानकारी देता है। जो लोग वाइब्रेशन पकड़ना जानते हैं, वाइब्रेशन समझते हैं, वो आपके घर का थोड़ा सा नमक देख करके बता सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। दो चीज़ें आपके घर के वाइब्रेशन के बारे में बताती हैं, एक है नमक और एक है चावल। पहले ज़माने में लोग चेक करने के लिए थोड़ा सा घर से चावल मांग के चेक करते थे या नमक मांग के चेक करते थे कि घर के वाइब्रेशन कैसे हैं। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत कामों में लिप्त रहता है, आपके प्रति गलत सोच रखता है अपने मन में, और आप उसके घर का नमकीन खाना खाते हैं या नमक किसी चीज़ में पड़ा हो वो चीज़ ग्रहण करते हैं, यानी सॉल्टी फूड अगर आप खाते हैं, उसके घर का नमक खा लेते हैं, तो आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं निगेटिव एनर्जी की वजह से, और मेंटली भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है अगर आप लगातार उसके घर का नमक खाना शुरू कर दें और वो आपके प्रति मन में बुरा भाव रखे, या वो आदमी निगेटिव हो तो आप उसका खाना खाने के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे गड़बड़ होते जाएंगे। देखिए, इसीलिए खुशियों के मौके पे आप किसी को मना ना करें। एक परंपरा चली ना कि मीठा कराओ मुंह, नमक मत खाओ। मुंह मीठा कराया जाता है क्योंकि मिठाई के अंदर या चीनी के अंदर वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। मिठाई आप किसी की भी खा सकते हैं, मीठी चीज आप किसी के घर भी खा सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के घर का नमकीन खाना खाना है या किसी के घर का नमक खाना है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, आपके प्रति कैसी सोच रखता है, तभी उसके घर का नमकीन खाना या नमक खाना बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी, आपको बताएंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 14 मई को, सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, अब आपका हैप्पी बर्थडे, आपका गुड दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी आपको बताएंगे।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 14 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो जाएगा और धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी, जैसा कि आपको बताते हैं जिज्ञासा के बारे में, तो आज की शो की जिज्ञासा क्या है वो भी आपको जानकारी देते हैं।
0: देखिए आज की जिज्ञासा है कि क्या केवल पूजा के स्थान पर बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए? देखिए ये जरूरी नहीं है कि केवल पूजा के स्थान पर बैठ कर ही पूजा की जाए, लेकिन एक जगह अगर आप फिक्स कर लें और वहां पर पूजा करें तो ज्यादा उत्तम होगा। बार बार जगह बदल करके अगर आप पूजा करेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना कठिन होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आज की गुडलक राशि का वक्त हो चला है आपको बताने का, तो पंडित जी आपको बताएंगे कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों का ये समय अगला 1-1.5 महीना कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है सिंह। इस समय दुर्घटना और चोट चपेट से सावधान रहें। स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना करें।
1: चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां पंडित जी ने आपके साथ साझा की है। अब बारी आ जाती है महा उपाय पर आने की। आज का खास उपाय जो पंडित जी अक्सर आपको बताते हैं, तो आज का खास उपाय पंडित जी क्या है वो भी जान लेते हैं।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के हेल्पर, सहायक, मेट, सर्वेंट आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? शनिवार के दिन घर में नॉनवेज और अल्कोहल का प्रयोग ना करें। शनिवार के दिन अपने सहायकों को, मेड्स को, सर्वेंट आदि को मिठाई दें और शनिवार को रात में लगभग 9 बजे के बाद मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सेवकों और सहायकों से होने वाली समस्या दूर हो जाएगी।
1: तो पंडित जी उपाय बताने के लिए और आज का महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
3: You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae,
7: exclusively on TuneIn.
8: This is Classic Hip Hop,
9: exclusively on TuneIn.
2: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
10: Achhi khabar, sachi khabar.
11: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in to How To

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: केवल ईंधन बचत का ही नहीं बल्कि आज के दौर में बढ़ती महंगाई में बेतहाशा खर्च पर भी अंकुश लगाने की जरूरत पड़ रही है, और यही अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की। ऐसे में गुड न्यूज टुडे भी आपको खासकर विदेशी ट्रिप की बजाय स्वदेश में घूमने सैर सपाटा करने के विकल्प दे रहा है। तो चलिए आज देखते हैं उत्तराखंड में कौन से डेस्टिनेशन है फिलहाल आपको इंतजार कर रहे हैं।
10: हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और अपार हरियाली वाला उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल इन दिनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहां धार्मिक पर्यटन हो या रोमांच का कभी ना भूलने वाला खुशनुमा एहसास, ये सभी मिलकर राज्य की पर्यटन को गति दे रहे हैं। ऐसे में चमोली जिले का माणा, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, स्की रिजॉर्ट औली और देवताल जैसे कई और पर्यटन स्थल आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकते हैं।
11: जो देश से विदेश घूमना चाहते हैं, जो अब विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है, ऐसे में हर कोई अब अपनी जो विदेशी यात्रा है, विदेश में घूमने का कार्यक्रम है, उसे कैंसिल करेंगे, लेकिन वो अब उत्तराखंड की अलग अलग वादियों में आ सकते हैं। खासकर चमोली जनपद की अगर हम बात करें, अगर चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब,

0: फूलों की घाटी सहित तमाम अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं।
1: फिलहाल तो धर्म अध्यात्म का दर्शन करने वाले लंबे और कठिन ट्रैक पर जाने वाले ट्रैकर्स, शांत वादियों में समय बिताने वाले लोग इन तमाम टूरिस्ट प्लेस पर नजर भी आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही से ये सभी जगह इस वक्त गुलजार हैं, जिनके जरिए राज्य की उन ऑफ बीट जगहों पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद जगी है।
2: जो हमारे चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आप माणा पास, माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी उस वहाँ पे हुई थी, और वो ऐसा भी उस ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे पर्यटक को पर्यटकों के लिए एक नई चीज मिले।
1: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। यही वजह है कि इस बात का एहसास पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों को भी बखूबी है। गढ़वाल की तरह ही हलचल कुमाऊं क्षेत्र में भी नजर आ रही है। यहाँ की शांत हरी भरी वादियाँ और सुकून भरे वातावरण के बीच झील किनारे आस्था विश्वास की ये जीती जागती तस्वीर खुद में निराली है। मैदानी इलाकों में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उससे कुछ समय के लिए सही राहत पाने के लिए पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में इन दिनों खूब हो रही है। मई के महीने में इन हिल स्टेशंस पर लोग उस हल्की ठंड का एहसास लेने ही आ रहे हैं। यही नहीं, बैजनाथ मंदिर में तो दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का रोमांच भी है।
3: बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए।
1: दरअसल पिछले एक सप्ताह से रोजाना शाम को यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार बना दे रही है। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ही पर्यटक इन पहाड़ी अंचलों में पहुँच रहे हैं। जाहिर है ये खुशनुमा मौसम यहाँ पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, वहीं लोकल व्यवसाय को भी बूस्ट करने में मदद दे रहा है। तो अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान, सुकून के कुछ पलों को प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के ये तमाम पर्यटन स्थल आपके खिदमत के लिए तैयार हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वही माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और न ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
6: यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, उनकी गाली तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
5: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज। गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद।
5: चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक, सितंबर तक जारी रहेगा बैन। चीनी की घरेलू कीमतें काबू करने के लिए फैसला, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़े हैं चीनी के दाम।
4: साढ़े 12 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, केदारनाथ में बढ़ रहे हैं श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में रास्ते पर गाड़ियों की कतारें।
5: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में शुरू हुई जोरों शोरों से तैयारियां, यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा यात्रियों का पहला जत्था, सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर।
4: उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा।
5: देश में 48 घंटों में मॉनसून की एंट्री की संभावना, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेगी हवाएं, दिल्ली में आज से बढ़ेगा तापमान।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: उम्मीदों पर पैर की खुशखबरी की शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
5: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देखिए शुभ समाचार की शुरुआत कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों के शानदार लुक के साथ होगी। जैसे जैसे कान फिल्म फेस्टिवल परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे सेलिब्रिटीज के ग्लैमर अंदाज देखने को मिल रहे हैं। फेस्टिवल के दूसरे दिन आलिया के अवतार ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ईस्ट मीट वेस्ट की लुक लिए आलिया बहुत खूबसूरत नजर आई, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आई, कैसा रहा उनका लुक आगे आपको दिखाएंगे।
5: तो 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा आरंभ होने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। जम्मू के भगवती नगर से यात्री निवास की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना होगा, वहां पर बारीकी से हर तैयारी को परखा जा रहा है और कमियों को दूर किया जा रहा है। कैसे हो रही है तैयारी आगे आपको बताएंगे।
4: जी हां गीतिका, देखिए उत्तराखंड में हर साल कई किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से एक यात्रा होती है, जैसे लोग जगदीशिला रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ये यात्रा अब बागेश्वर के भ्रामरी मंदिर पहुंच चुकी है, जब ये यात्रा यहां पहुंची तो कैसे रहे रंग तमाम आपको दिखाएंगे।
5: तो महाराष्ट्र के बीड जिले में अक्सर सूखे के लिए जाना जाता है जिसको, लेकिन एक किसान ने अपनी मेहनत और सरकारी योजनाओं के सही इस्तेमाल से बंजर जमीन पर पूरा का पूरा नंदन वन खिला दिया है। किसान लक्ष्मण ने अपनी पथरीली जमीन पर आम की खेती कर आमिया की ऐसी बगिया महकाई है कि अब हर साल वो इससे लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो इन आमों की दीदार भी आपको आगे करवाएंगे।
4: यहाँ देखिए साथ ही साथ आईपीएल के मैदान में भी आपको लिए चलेंगे। आज प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से पंजाब किंग्स धर्मशाला में मुंबई इंडियंस से भिड़ने जा रही है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर यहां पर आई, तो कैसी है दोनों टीमों की रणनीति बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
5: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक 12.5 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम की यात्रा की, जिसमें सबसे ज्यादा 5.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 3.25 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
4: उत्तराखंड के बागेश्वर में बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद कोट ब्राह्मणी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। गढ़वाल के विशुन पर्वत से यात्रा शुरू होती है। यात्रा 13 जिलों के प्रमुख धामों से होकर गुजरती है।
5: हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वादियों से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गोविंद सागर झील और ऊंची पहाड़ियों का नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। बिलासपुर में नौकायन का रोमांच पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। झील पर एडवेंचर का अलग ही अनुभव मिलता है।
4: झांसी में डीएम की अनोखी पहल देखने को मिली, जहां पर डीएम खुद शिक्षक बनकर छात्रों को पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। डीएम की क्लास में बच्चे खुश नजर आए। डीएम ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए। डीएम के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तस्वीर और दिशा बदलने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
5: गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी को 481 से ज्यादा पक्षी निवास यहां पे करते हैं, जिसमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी यहाँ शामिल है।
4: यूनिट्री रोबोटिक्स ने दुनिया का पहला ट्रांसफॉर्मेबल ह्यूमनॉइड सूट GD01 लॉन्च कर दिया है। ये इंसान को बैठाकर 2 पैरों और 4 पैरों वाले मोड में बदल सकता है। डेमो वीडियो में कंपनी के सीईओ खुद GD01 को ऑपरेट करते हुए नजर आए। ये मैका तेजी से दौड़ता है और मुश्किल रास्तों पर आसानी से चलता है।
5: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से पंजाब किंग्स धर्मशाला में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर यहां आई हैं। आईपीएल 2026 में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हैं। इस मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से मात दी थी।
4: आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों में टीम के जसप्रीत बुमराह टॉप पर कायम है। वो 879 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुके हैं।
5: अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल समयघर में रिलीज के लिए तैयार है। बुधवार को मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ाते हुए अक्षय कुमार का लेटेस्ट लुक शेयर किया। अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पहला लुक पोस्ट किया। इस तस्वीर में अक्षय कुमार काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं।

0: देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का जादू बरकरार है। दूसरी बार रेड कार्पेट पर उतरी आलिया भट्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल में बिल्कुल नजर आई, और आलिया ने इस बार लाइट ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत गाउन पहना। जाहिर सी बात है, आलिया के रॉयल अवतार की जमकर तारीफ हो रही है। सितारों की इस महफिल में आलिया के एलिगेंट लुक और ग्रेसफुल स्टाइल ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और देखिए, उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, और इस दौरान उनके मेकअप की भी खूब चर्चा हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाना किस प्रकार से आलिया का जो लुक था बहुत ही स्टाइलिश था, और लगातार ये दूसरे दिन की ये तस्वीरें आपको दिखाना जब थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में आलिया भट्ट नजर आई। नाक में नथनी पहनी हुई थी और शानदार लाइट ब्लू कलर के ड्रेस में आलिया नजर आई, और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, कान में आलिया के अलावा एक और देसी गर्ल छाई हुई है। उर्वशी रौटेला का क्रिस्टल लुक भी फैशन वर्ल्ड की हाईलाइट बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अब तक का ये सबसे महंगा आउटफिट है। तो देखिए, कान के आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। कान फेस्टिवल में तमाम नामचीन सितारे आपको पता है शामिल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। ऐसे में अलग अलग देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए भी तमाम सितारे आपको नजर आते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आलिया भट्ट आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ उर्वशी रौटेला भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल देसी लुक में ये नजर आई, और ये वीडियोस जो है अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
1: तो दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कान हर सितारे के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इस इवेंट में भारत से कई सितारे पहुंचेंगे। फिलहाल आलिया और उर्वशी ने अभी तक यहां शिरकत की है, जिसमें लॉरेल पेरिस की तरफ से कान पहुंची। आलिया भट्ट के अब तक के चार लुक सामने आ चुके हैं, जिनमें वो दो में रेड कार्पेट पर नजर आ रही है। तीसरे लुक में आलिया डिजाइनर तरुण तहिलियानी की आईवी साड़ी में दिखाई दी। वे फ्रेंच रिवेरा में भारत पवेलियन पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिक के साथ 97वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका पीच गाउन लुक रहा, और इसके बाद आलिया ने रेड कार्पेट पर आइस ब्लू रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहनकर यहां शिरकत की, जिसमें उनके बेहद सरल लुक ने उनके फैंस का दिल जीता।
2: माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी काउ, कैन में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की डीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से सभी को हैरान कर दिया। आलिया ने डिजाइनर तरुण तहिलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी पहनी, जिसमें विक्टोरियन कॉन्सेप्ट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। इसी के साथ नथ बिंदी ने पूरा लुक खास बना दिया। कैन में हर कोई एक्स्ट्रा ग्लैम दिखाने की होड़ में रहता है, वहीं आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी वाला टच जोड़ दिया। आलिया के लुक में सब कुछ इतना बैलेंस था कि नजर हटाना मुश्किल हो गया। वहीं रेड कार्पेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया है। अ वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डैनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें स्लीक साटन, हनीकॉम लेस और सेंटली लेस की कई लेयर्स हैं। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डैनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और देखिए आलिया के अलावा एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला भी कान फिल्म फेस्टिवल में रंग जमाती हुई नजर आई। हाल ही में उर्वशी ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक की। उन्होंने अपने लुक और आउटफिट से फैंस के वो सब जो हैं वो कायल बन गए। अब उनके आउटफिट और लुक की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। बताया जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अब तक ये सबसे महंगे आउटफिट पहनकर उर्वशी उतरी हैं। और देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग जो है एक्ट्रेस को करीब $155 मिलियन के करीब यानी 1491 करोड़ के पार पड़ा है। और इसे जो है कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें उर्वशी का, ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोलीपोली कोचर ने तैयार किया है। और इस हाउस को उनकी कल्पना शैली या क्रिस्टल के नाम और रेड कार्पेट पर फैशन प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। और इस ड्रेस को डिज़ाइन करने का कारण हीरे जैसा लुक देना था। और एक्ट्रेस की इस ड्रेस में कई क्रिस्टल लगे हुए हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़ती है तो वो ह्यूर जैसे बिल्कुल चमकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक क्राउन भी है बाकायदा, जो एक्ट्रेस को और ज़्यादा रॉयल लुक देता है।
1: तो वहीं कान फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन हॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। डेमी मूर और जिलियन एंडरसन जैसी हस्तियों ने फोटोग्राफर्स के सामने पोज दिए। तो वहीं मैक्सिकन स्टार डिएगो लूना और गिल गाजिया बर्नाल चीनी अभिनेता हैं और यांचाओ और चांगशी भी लाइमलाइट बटोरते यहां नजर आए। इस साल कान में शिरकत करने वाले सितारों में स्कारलेट जोहानसन, एडम ड्राइवर, रेनेट रेन्सवे, सेबेस्टियन स्टैन, रामी मालिक, पेनेलोप क्रूज और जेवियर बादम जैसी हस्तियां शामिल हैं। देखिए किस तरह से स्टार्स जो हैं अपने जलवे बिखेरते हुए आपको रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। और इस बार ये इवेंट और ज्यादा खास रहा क्योंकि मैक्सिकन स्टार्स भी यहां पहुंचे थे। तो देखिए कहां कहां से स्टार्स जो हैं इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो रेड कार्पेट पर आप देखिए किस तरह से सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है।
0: देखिए बुधवार रात कान फिल्म फेस्टिवल का आकर्षण तब और ज्यादा बढ़ गया जब विन डीजल की फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस की मिडनाइट स्क्रीनिंग हुई। और इस दौरान डीजल ने काले रंग की जैकेट पहनी थी और जिसके पीछे फास्ट फॉरएवर जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला सीक्वल होने जा रहा है उसका एक डिजाइन बना हुआ था। ये फिल्म साल 2028 में रिलीज होने जा रही है। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड द फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट का जलवा छाया रहा है। इस दौरान फैंस के बीच विन डीजल की जबरदस्त दीवानगी भी देखने को मिली। जबरदस्त क्रेज है उनका। इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड $7 अरब से ज्यादा की कमाई अब तक कर चुकी है। और ऐसे में तमाम जब स्टार कास्ट वहां पर पहुंची तो कितना जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनकी देखने को मिली। पेपराजी किस प्रकार से तमाम तस्वीरें लेते हुए नजर आए ये आप देखिए।
1: तो इस बार मौसम जो है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा बना हुआ है। पूरे देश में मौसम का अलग सा ही रूप देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो तेज हवाएं कहीं चल रही हैं। तो देश के किसी इलाके में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम साफ रहेगा और पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

0: उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल शाम हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
1: आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है राजस्थान, MP, इन जगहों में टेम्परेचर ज्यादा ही रहेंगे आने वाले 7 दिन। और एनीवे मई का महीना है, इस समय जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होते ही है और कोई हम कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ऑलमोस्ट काफी हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन रहेगी।
0: दिल्ली NCR में कल शाम हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी और हफ्ते के अंत तक इसके 40 से 42 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है।
1: हम ऐसा एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और फिर जो टेम्परेचर है जहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और बाय 17 मई 18 मई जे भी 40 क्रॉस कर जाएंगे, 42 तक होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा हमारा भी NCR दिल्ली के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है।
0: देश के कई राज्यों में जहां एक ओर गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री 16 मई को हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस साल अलनीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मॉनसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है तो कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मॉनसून की दस्तक सुना रही हैं। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे धार्मिक यात्रा महोत्सव में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है, यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो, क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
7: with artists like James Bay,
8: come on, let it go.
6: Nora Jones,
9: my heart is drained.
6: Daniel Caesar,
10: we both know how,
6: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
11: Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद।
13: निर्यात पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक, सितंबर तक जारी रहेगा बैन। चीनी की घरेलू कीमतें काबू करने के लिए लिया गया फैसला, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़े हैं चीनी के दाम।
2: साढ़े 12 लाख के पार पहुंची चार धाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, केदारनाथ में बढ़ रही है भारी संख्या में भीड़, बद्रीनाथ धाम रास्ते पर गाड़ियों की कतारें।
13: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में शुरू हुई जोरों शोरों से तैयारी, यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा यात्रियों का पहला जत्था, सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर।
2: उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा।
13: राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली में आज से बढ़ेगा तापमान।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और देश में यात्राओं का महाउत्सव इस वक्त चल रहा है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। 20 दिन में बद्री केदार में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में विश्व शांति और जगत कल्याण के लिए देव डोली यात्रा भी निकाली गई। इसमें उत्तराखंडी संस्कृति के रंग देखने को मिले। इन सबके बीच अब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू में यात्री विश्राम गृह की मरम्मत की जा रही है। यहीं से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना होता है। तो देखिए किस तरह से पूरे देश में इस वक्त धार्मिक यात्रा का महोत्सव एक लिहाज से चल रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जहां कई लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं अब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो रवाना हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से इस वक्त चारों धाम की यात्रा और उस पर अमरनाथ यात्रा की जो है वो शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है।
1: तो देखिए जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह जो है जबरदस्त होता जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन का सबसे जोर व्यवस्थाओं पर बना हुआ है ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो।

0: आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी यात्रा आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़े ही उत्साह के साथ चल रही है। मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है, हल्की बारिश से पहाड़ों की ठंडक बरकरार है। इन सब के बावजूद भक्तों में उत्साह भरपूर है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहां करीब 3.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज रहा है।
1: हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। बीते
0: बद्रीनाथ धाम का दिव्य भव्य और आध्यात्मिक नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। शायद इसीलिए बद्रीनाथ धाम की सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। मानो आस्था का मेला लगा हुआ है। यातायात प्रबंधन, मेडिकल सुविधा, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था को लेकर हर श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहा है।
1: पार्किंग की व्यवस्था बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही थी वो भी अब सुलझा दी गई है। वहीं घस्तोली मार्ग पर पार्किंग बनाने से माना तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब यात्रा और बेहतर चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी और उत्साह देखने को मिलेगा।
0: गर्मी बढ़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन भी आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी में है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश नए रिकॉर्ड की ओर इशारा कर रहा है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। उत्तराखंड के चार धामों में सबसे अधिक यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। हर रोज 25,000 के आसपास भक्त बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त मत्था टेक चुके हैं। भक्तों की भीड़ की वजह से दोपहर तक भक्तों को बाबा केदार के स्पर्श तो दोपहर के बाद श्रृंगार दर्शन करवाए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 13 मई को 32,427 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 5,23,582 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 13 मई को 21,260 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह अभी तक बद्रीनाथ धाम में 3,24,081 श्रद्धालु बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 13 मई को 13,315 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई और अब तक यमुनोत्री धाम में 2,07,390 श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 13 मई को 13,403 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। अभी तक 2,05,425 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। अगर चारों धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो अब तक 12,60,478 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं।

0: चार धाम यात्रियों के लिए हालांकि मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह इतना है कि मौसम का असर चार धाम यात्रा पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री शामिल होंगे। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: लेकिन नासिक के सिंहस्थ कुंभ मेले में आध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कुंभ मेले के आधिकारिक लोगों का अनावरण कर दिया। लोगो जारी होते ही ये मुंबई की कई बड़ी इमारतों पर प्रदर्शित किया गया। नासिक का त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेले का लोगो वहां की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक का प्रतीकों को शामिल किया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे। सरकार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 13 अखाड़ों के साथ समन्वय कर रही है।

0: ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई के ये कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थल बुधवार को नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले 2027 की पहचान से खुद को समेटे नजर आए। आमची मुंबई की इन इमारतों पर दरअसल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो प्रदर्शित किया गया, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। सिंहस्त का ये लोगो बता रहा है कि इस बार कुंभ मेले में नासिक में अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर दिखेगी। चयनित लोगो में भगवान शिव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिरों के प्रतीकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 13 प्रमुख अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। एक भव्य त्रिशूल दर्शाया गया है, जो नासिक के प्रसिद्ध और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह में पवित्र गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में बेहद खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये लोगो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार को समाहित करता है।
1: नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगो का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
0: सरकार इस बार सिंहस्त कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों के अनावरण से पहले हुई कुंभ मेला समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साधु संतों और अखाड़ों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। छोटे संस्थानों को भी प्रति संस्था 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अखाड़ों के बिजली बिल सरकार वहन करेगी। बिलों का भुगतान कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा और सरकारी कामों के लिए अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। बैठक में लगभग 665 करोड़ रुपए की त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना भी रखी गई है, जिसमें AI आधारित भीड़ नियंत्रण और 5 मिनट में इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा शामिल है। कुंभ मेला समीक्षा बैठक में पधारे साधु संतों के सुझावों का स्वागत किया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। नासिक के पवित्र कुंड, रामकाल पथ, मंदिरों और गुफाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही गोदावरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसके अलावा साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक खाका तैयार किया गया है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। सिंहस्त कुंभ के मुख्य शाही स्नान के सभी कार्यक्रम साल 2027 में ही आयोजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा आरंभ होनी है, लेकिन अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। जम्मू के भगवती नगर से यात्री निवास की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना होगा। वहां हर बारीकी से हर तैयारी को परखा जा रहा है और कमियों को दूर किया जा रहा है।

0: बाबा बर्फानी के भव्य और दिव्य अमरनाथ यात्रा, जहां आस्था बर्फीली वादियों से होकर शिव भक्ति के दिव्य स्वर में गुंज उठती है और इस श्रद्धा के शिखर तक जाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। कश्मीर घाटी में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सभी व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई से शुरू होनी है, जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। प्रशासन यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा के लिए रंगाई पुताई, टेंट और सफाई का काम तेजी से करा रहा है। सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: और चलिए बाबा, आपको आईपीएल के मैदान लिए चलते हैं। कल आईपीएल में बेंगलुरु ने केकेआर को 6 विकेट से मात दी, तो आज पंजाब किंग्स धर्मशाला में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। यहां पंजाब प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर यहां आई है। मौजूदा आईपीएल सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से मात दी थी।
2: तो देखिए, विराट कोहली ने बीती शाम कोलकाता के खिलाफ नाबाद 105 रन बनाकर अपना 9वां आईपीएल शतक पूरा कर लिया। ये उनके टी20 करियर का 10वां शतक है। देखिए, केकेआर के खिलाफ मैच जीता और शतक जमाकर विराट आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी अब बन चुके हैं। लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद कल रायपुर के मैदान पर उतरे थे वो, और उनके अंदाज ने देखते ही मैच का मौसम पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ये शतक बताता है कि विराट स्टाइल क्या है। विराट स्माइल की तरह लंबा चलेगा और ये पारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। 9वां शतक जमाया और मैच भी अपने नाम दिया।

0: हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियाँ और अपार हरियाली वाला उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल इन दिनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन हो या रोमांच का कभी ना भूलने वाला खुशनुमा एहसास, ये सभी मिलकर राज्य की पर्यटन को गति दे रहे हैं। ऐसे में चमोली जिले का माणा, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, स्की रिजॉर्ट औली और देवताल जैसे कई और पर्यटन स्थल आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकते हैं।
1: जो देश से विदेश घूमना चाहते हैं, जो अब विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है, ऐसे में हर कोई अब अपनी जो विदेशी यात्रा है, विदेश में घूमने का कार्यक्रम है, उसे कैंसिल करेंगे। लेकिन वो आप उत्तराखंड की अलग अलग वादियों में आ सकते हैं। खासकर चमोली जनपद की अगर हम बात करें, अगर चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित तमाम अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं।
0: फिलहाल तो धर्म अध्यात्म का दर्शन करने वाले, लंबे और कठिन ट्रैक पर जाने वाले ट्रैकर्स, शांत वादियों में समय बिताने वाले लोग इन तमाम टूरिस्ट प्लेस पर नजर भी आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही से ये सभी जगह इस वक्त गुलजार हैं, जिनके जरिए राज्य की उन ऑफ बीट जगहों पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद जगी है।
2: जो हमारे चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आपके माणा पास, माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी उस वहाँ पे हुई थी, और वो ऐसा भी उस ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे पर्यटक को पर्यटकों के लिए एक नई चीज मिले।
0: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। यही वजह है कि इस बात का एहसास पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों को भी बखूबी है। गढ़वाल की तरह ही हलचल कुमाऊं क्षेत्र में भी नजर आ रही है। यहाँ की शांत हरी भरी वादियाँ और सुकून भरे वातावरण के बीच झील किनारे आस्था विश्वास की ये जीती जागती तस्वीर खुद में निराली है। मैदानी इलाकों में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे कुछ समय के लिए सही राहत पाने के लिए पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में इन दिनों खूब हो रही है। मई के महीने में इन हिल स्टेशंस पर लोग उस हल्की ठंड का एहसास लेने ही आ रहे हैं। यही नहीं, बैजनाथ मंदिर में तो दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का रोमांच भी है।
3: बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए।
0: दरअसल पिछले एक सप्ताह से रोजाना शाम को यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार बना दे रही है। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ही पर्यटक इन पहाड़ी अंचलों में पहुँच रहे हैं। जाहिर है ये खुशनुमा मौसम यहाँ पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, वहीं लोकल व्यवसाय को भी बूस्ट करने में मदद दे रहा है। तो अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान, सुकून के कुछ पलों को प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के ये तमाम पर्यटन स्थल आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मंस्ता स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने कुदकुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए डल्लास ईरानी की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: सुनो
6: हाँ?
5: अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार?
6: मैं तो हार पसंद करूंगी।
5: अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो।
6: लेकिन मेरी एक शर्त है।
5: कौन सी शर्त?
6: हार सोने की होनी चाहिए।
7: धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।
8: आज मेरा 1 किलो वेट घट गया।
9: नाखून काटे होंगे तने।
10: बहस करने से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मार कर रिश्ते मजबूत करें।

0: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
0: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक, सितंबर तक जारी रहेगा बैन, चीनी की घरेलू कीमतें काबू करने के लिए फैसला लिया गया, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है चीनी के दाम। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परेड की सलामी ली, जवानों को किया सम्मानित। साढ़े 12 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौती के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, केदारनाथ में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम पर रास्तों में गाड़ियों की लंबी कतार है। उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा। सत्रह राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली में आज से बढ़ेगा तापमान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यात्रा की। कैसी भी यात्रा हो, छोटी हो, बड़ी हो, काम की हो, मनोरंजन की हो, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहे, सफलता वाली रहे, क्या करें उपाय, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं यात्राओं की। सबसे पहले जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, जो चर राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां मानी जाती हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। नवम भाव से लंबी यात्रा और द्वादश भाव सामान्यतः विदेश का भाव माना जाता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है तो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर लगी रहती हैं।
शनि राहु और केतु का प्रभाव होता है तो एक बार में ही आदमी लंबी यात्रा पर काफी दूर चला जाता है। यात्राओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम बढ़ा रहेगा, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब हमारी यात्रा अच्छी होती है, सुखद होती है, और कब यात्रा में हमें दिक्कत होती है, कब यात्रा में हमें समस्या होती है। देखिए, यात्रा के समय अगर चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा अनुकूल हो, तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के समय शुक्र की स्थिति अगर ठीक है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा से जीवन में आनंद मिलता है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले, यात्रा की शुरुआत में ईश्वर का दर्शन हो, पूजन हो, तब भी यात्रा अच्छी हो जाती है। आपकी यात्रा के समय अगर चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अनुकूल ना हो, तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशाशूल होता है, जिस दिशा का, उस दिशा में यात्रा करने से यात्रा में समस्या होती है। जैसे बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है, अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो उपाय करके यात्रा कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती उतर रही हो, ढैया उतर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी यात्रा करने में समस्या पैदा होती है, और अगर ऐसी स्थिति में आप लंबी यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल
नहीं होती है। यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर, बड़ी यात्रा पर, अगर आप अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। अपने साथ यात्रा में मांसाहारी या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। ऐसा करने से यात्रा पर राहु का प्रभाव आएगा और यात्रा में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिशाशूल वाले दिन जिस दिशा का दिशाशूल है उस दिशा में यात्रा ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करने के बाद यात्रा करिएगा ताकि दिशाशूल की दिक्कत ना हो। यात्रा आरंभ करने के पहले दही जरूर खा लीजिएगा। थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करेंगे, शुक्र के प्रभाव से यात्रा आनंददायक हो जाएगी। यात्रा कहीं भी करने जा रहे हो, लंबी या छोटी, उसके पहले पूजा के स्थान पर कुछ धन, थोड़ा सा पैसा रख दीजिएगा और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से यात्रा में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आप दुर्घटनाओं से और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहते हैं।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का लकी टिप क्या है और क्या है सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता के योग हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने जाना यात्रा को सुखद और लाभकारी कैसे बना सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो एक नीम का पौधा, जमीन है तो जमीन में या गमला है तो गमले में एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा। नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: Good news today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.

0: माँ हमको पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, फिर हमको वन का राजा बनाया। ये दृष्टि है राम जी की, कितनी विपरीत परिस्थिति। हम लोग होते अगर राम जी की जगह विचार करो कि हमको राजा बनना होता और सुबह तुमको अगर वन भेज दिया जाता तुम तो तुरंत कहते ऐसा कैसे हो सकता, हम तो राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया। वाह हम केस लड़ेंगे, लोग बुलाएंगे, पंचायत बैठाएंगे, माँ आज हम राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया कि हमको वहां भेज दिया। मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों, मेरे भारत के लोगों, राम से तुम्हें सीखना है तो यह बात जरूर सीखना, तीसरी कला जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए चले जाना। बुरा समय भी आए तब भी तुम घबराना मत, बुराई आवे घबराना मत, परेशान मत होना, झंझट आवे घबराना मत। याद रखना हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, और याद रखना दुख का झूला जितना पीछे जाएगा सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये दुख की रात गुजर जाएगी, राम के जीवन की भी गुजरी है 14 साल वनवास, लेकिन राम जी मुस्कुराए। एक बात और भारत के लोगों याद रखना, राम जी बन गए इसलिए वो बन गए, राम जी बन गए वो बन गए। अगर ना वो बन जाते ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। मेरे पागलों ये तुम्हें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए, तीसरी कला जीवन जीने की कला। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति भी आवे, बुरा समय भी आवे, संकट की घड़ियां भी आ जावे, तब घबराना नहीं, परेशान मत होना, आत्महत्या की ओर मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, मुस्कुराना। देखना याद रखना मुस्कुराते ही तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होने लगेगा। भगवान कृष्ण से सीखो मुस्कुराना। हमने तो भगवान कन्हैया से बहुत सीखा, वो तो अद्भुत है, मुस्कुराने की कला तो उनसे सीखो। उन्होंने वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा, द्वारका आए तब भी वो मुस्कुराए। द्वारका में द्वारका के राजा बने तब भी वो मुस्कुराए। 16,108 विवाह संपन्न किए तब भी मुस्कुराए। 1,61,080 पुत्र हुए तब भी मुस्कुराए। और सभी पुत्रों को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने मरवा डाला तब भी वो मुस्कुराए। और महाभारत के युद्ध में समर के मध्य में रथ लेकर के खड़े हैं अर्जुन को लेकर, फिर भी वो रथ के मध्य में मुस्कुराए। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। क्या कितनी भी विपरीत परिस्थिति रखे, कितनी भी उल्टा समय रहे, मेरे प्रियजनों जो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराकर जानता ना, जो बुरे समय में भी हंसना जानता ना, जिंदगी में उसके कभी दुख नहीं आता। हमारे गुरुजी कहते थे जीवन ऐसा जियो कि कभी मौत भी आए तो वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो, जीवन जीना ही मुस्कुराते हुए जियो। ये तुम लोग कई लोग ऐसे बैठे रहते जैसे 4 लठ खाकर आए हो, लुगाई से पीट कर आए हो। कई लोगों के तो दांतों पे चेहरों पे हंसी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी गधों को हंसते देखा है? बोलो जोर से, देखा तुमने? मुंबई में अगर हंसते हो गधे तो पता नहीं, हमारे यहां बुंदेलखंड में नहीं हंसते ना, नको बाबा। अच्छा तुम अगर कोई आदमी हंसे ना, समझ जाना चार परे वाला, क्योंकि हंसना इंसानों के भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। और अगर कोई तुम्हें गधा हंसते हुए मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है। हाँ, क्योंकि उसके इंसानों के ही भाग्य में हंसना है। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक समझा रहे राम जी से तीसरी कला जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ हमारी कैसी हो ये राम जी से सीखो। वो विपरीत पर राम कभी विचार करना, राम से तुम कभी विचार करना। दो भाई धर्म पत्नी, वो भी हरण हो गई, उसको भी हरण करके ले गया। राम जी के जीवन में संकटों की क्या कमी। राजा बनना था, सुबह 14 साल का वनवास मिल गया, वन में गए, पत्नी का हरण हो गया, तब भी नहीं बात मनी। कैसे समाधान, समस्या का समाधान निकाला, लंका गए, लेकिन लंका गए उन दोनों का हरण हो गया। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए, पाताल लोक में, तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, सरकार यहाँ कहाँ से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहाँ कहाँ हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पैंच देख के सोचने लगे, ये दाव पैंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले, इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले, कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले, सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी, ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले, हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले, एक बात बताएं बेटा। बोले, बताओ बेटा, क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा, बोले वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं हनुमान जी, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक, और आप कहां से? तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई, महाराज हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए, लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया, उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में, महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले, तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ, राम जी कहाँ हैं? मकरध्वज बोले, हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले, बाप के साथ कर सकते हो? उसके साथ नहीं कर सकते, क्या बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले, नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले, बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पैंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले, महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं, यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल, कैसे बचें? पांच दीपक जल रहे, पांचों दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, बलना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले, पर जाएं कैसे? मकरध्वज बोले, सूक्ष्म रूप में जाओ, और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं, हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले, चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल, लाल लाल पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए, और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा, सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले, देखो लाल लाल लाल आ गए, लखन लाल लाल लाल आ गए। लखन लाल बोले, क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले, यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय जय कर।
1: पिसू।
0: और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए, मेरे पागलो समस्या कितनी विकराल, पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं, उस समस्या में भी समाधान निकला, उस समाधान के रूप में हनुमान निकला, और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भए, पांचों मुखों से एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। यही राम जी से मेरे पागलो सीखने योग्य बात है, मेरे मुंबई के लोगों विपरीत परिस्थितियों में भी राम जी की इसी कथा से हमें सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किल की घड़ियां आ जाएं, हमें घबराना नहीं है, हनुमान जी का नाम लेकर राम जी का नाम लेकर मुस्कुराना है। एक दिन ऐसा आएगा संकट के बादल टल जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, और चाहते हो अगर समस्या का हल तो हनुमान जी और राम जी के चरणों में चल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो
2: सीताराम।
0: लेकिन तुम लोग करते क्या हो ये और पूछ लो, पूछो क्या करते हैं, जोर से पूछो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग भगवान के पास जाओ, महाराज समस्या विकट है, समस्या विकट है, लोग हमारे पास भी आते गुरुजी समस्या बहुत विकट है, लेकिन हम तुम्हें उत्तर देना चाहेंगे राम कथा के ऊपर, राम जी से सीखने योग्य। मेरे पागलो राम जी के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के सामने खड़े होकर जाकर कह दो राम जी हमारे निकट है। और अगर आप कह दोगे राम जी निकट है तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका, इसीलिए

तो श्री राम जैसा भाई हो, तो श्री राम जैसा मित्र हो, तो श्री राम जैसा स्वामी हो, तो श्री राम जैसा और भगवान भी हो, तो प्रभु राम जैसा। आहा, राम जैसा कौन होगा? कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम। मेरे पागलो, राम जी केवल एक पत्नी व्रतधारी नहीं है, राम जी केवल भाई भ्रातत्व प्रेम के प्रणोता नहीं है, राम जी केवल जीवन जीने की कला भर नहीं सिखाते, राम जी राष्ट्र भक्ति भी सिखाते हैं। ये राम जी का चौथा गुण है सीखने योग्य। राम जी से चौथी बात क्या सीखना चाहिए? आहा, आतताई रावण का वध हो गया, लंका का रावण मारा गया। लंका का राजा जब रावण मारा गया, आहा, जय जयकार प्रभु श्री राम की हो गई। विभीषण जी महाराज लंका के राजा नियुक्त किए गए। लक्ष्मण जी ने वैभव को देखकर, स्वर्णमयी लंका को देखकर, विभीषण जी के भाव को समझकर प्रभु श्री राम से कहा, हे दशरथ नंदन राम, कुछ दिन यहीं लंका में राज्य करो, यहीं पर विराजमान रहो। लेकिन कितनी अद्भुत राष्ट्र भक्ति है राम जी की। राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोले,

0: मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण भाई, तुमने ठीक कहा, लंका सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका होते हुए भी हमको प्रिय नहीं है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से कम नहीं है। अयोध्या नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। यह राम जी की राष्ट्रभक्ति है कि विदेशी चकाचौंध को देखकर अपने भारत के मान को प्रभु श्री राम ने झुकने नहीं दिया। और कुछ विरोधी लोग विदेशों में जाकर भारत की मूर्खतापूर्ण बुराई करते हैं और विदेशों की सड़कों की महिमा गाते ठटरी के भरे, इस उनको सीखना चाहिए प्रभु श्री राम के इस श्लोक से। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते, लक्ष्मण हमारी जन्मभूमि स्वर्ग ही है। यह राम की राष्ट्रभक्ति। मेरे प्रिय जनों, जो राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित होता, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए काम आता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो
1: सीताराम।
0: यह राम जी की राष्ट्रभक्ति है। तो चौथी कला राम जी से राष्ट्रभक्ति की सीखनी चाहिए। राम जी से पांचवी सीख क्या सीखनी चाहिए? आहाहा, मर्यादा मय श्री राम। कौन से राम? जोर से बोलो, मर्यादा मय प्रभु श्री राम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत में एक विरोध उठा, एक चौपाई के ऊपर ढो

0: लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी तो नारी विरोधी है। नहीं नहीं नहीं, यत्र नारियस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे पागलो, ना तो तुलसीदास जी नारी विरोधी है, ना तुलसीदास के प्रभु श्री राम नारी विरोधी है। इनसे बड़ा मर्यादित कोई नहीं। इसके कुछ क्रम देखिए, मर्यादा में श्री राम के कुछ चरित्र सुनिएगा। एक चरित्र पहला, लंका में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रात के समय चांद की चांदनी में शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हुए थे, उसी समय पीछे से एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी। उस स्त्री की छाया को देखकर राम सिसक करके खड़े हो गए, सहम गए और स्त्री की छाया से बचने लगे, कहीं ये छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए। पीछे से आहट देखा, कोई आया है। हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम ने पूछा, मां कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है और कहां से आई हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी हुई वह स्त्री जोर जोर से फवक फवक कर रोने लगी। राम जी ने कहा, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम, अपना परिचय तो दीजिए, किस काम से रो रही हो, क्या कारण है रोने का? वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, राम मैं अभागनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। ओ, तो तुम रो क्यों रही, क्या बात है? अच्छा अच्छा, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए रो रही? बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो राम जी ने पूछा, पर आप आई क्यों हो इतनी रात को अंधेरे में, यहाँ क्या करने आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे पति में और राम में क्या फर्क था। जो विश्व विजेता, मेरा पति विश्व विजेता, जिसके सामने देवता भी ना टिक पाए, जिसके सामने योद्धा भी ना टिक पाए, वह हार गया, उसकी वीर गति हो गई, वो वीर कौन है जिसने मेरे बलवान पति का वध कर डाला? जरा देखूं तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से मेरा पति हार गया।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: महाराष्ट्र का बीड जिला अक्सर सूखे के लिए जाना जाता है, लेकिन एक किसान ने अपनी मेहनत और सरकारी योजनाओं के सही इस्तेमाल की बदौलत बंजर जमीन पर पूरा का पूरा नंदनवन खिला दिया है। किसान लक्ष्मण ने अपनी पथरीली जमीन पर आम की खेती करके ऐसी अमिया की ऐसी बगिया बहाई है जो अब हर साल लाखों रुपए कमा कर दे रही है।
7: पथरीली जमीन जिस पर पानी की कमी, लेकिन फिर भी बीड के इस किसान ने अपने खेतों में सजा दी आमों की दुनिया। किसान ने अपनी पथरीली और बंजर जमीन पर आमों की बकियां महका दी है। अंबाजो गाई तालुका के पठान मांडवा गांव के एक किसान लक्ष्मण जोगदंड ने अपनी बंजर जमीन को अपनी कड़ी मेहनत, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं

0: लक्ष्मण जोगदंड ने अपनी पथरीली जमीन पर आमों की खेती इस तरह से की है कि अब वो सालाना 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं।
1: लगड़ गोटे की जमीन है, इसमें लगाया और 5 साल इसमें मेहनत सिर्फ पानी दे वाला है। 5 साल के बाद साल में 1-1.5 लाख का उत्पन्न चालू हो गया।
0: लक्ष्मण जोगदंड के पास 8 एकड़ जमीन है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के चलते वहां पारंपरिक फसलें उगाना बेहद मुश्किल था। लगभग 10 साल पहले उन्होंने अंबाजो गाय कृषि विभाग के जरिए फल बगान योजना में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी जमीन के 1 एकड़ हिस्से पर आम के 50 पौधे लगाए, जिनमें से 40 अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और उन पर फल आ रहे हैं। यही नहीं, आम के पौधों की सिंचाई के लिए उन्होंने मनरेगा योजना के तहत अपने खेत में कुआं खुदवाया और आज यही कुआं उनके पूरे बागान के लिए जीवन रेखा का काम कर रहा है।
1: यह मेरे पास 40 प्रकार के आम है। हपूस है, रत्ना है, केसर है, बादाम है, आचार का आम है, दसरी है। ये 40 प्रकार के वैरायटी, वेग अलग अलग प्रकार के वैरायटी है।
0: जोगदंड के आम के बाग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही तरह के आम नहीं उगते, बल्कि उनके पास लगभग 40 अलग अलग किस्मों के पेड़ हैं, जिनमें हापूस, रत्ना, केसर, दशहरी और खास तौर पर अचार बनाने वाले आम शामिल हैं। सूखा प्रभावित बीड जिले के दूसरे किसानों के लिए लक्ष्मण की सफलता की कहानी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर सरकारी योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और खेती के आधुनिक और जैविक तरीकों को अपनाया जाए तो खेती को सचमुच एक मुनाफे वाला काम बनाया जा सकता है और पथरीली जमीन पर भी बाग महकाया जा सकता है। बीड से रोहितास हतागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब आपको दिखाते हैं हौसले और हिम्मत की ऐसी मिसाल जिसने अपने दृढ़ विश्वास के चलते समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है। कद में छोटी लेकिन हिम्मत में सबसे बड़ी रीता रानी प्रसाद, जो आज बड़े बड़ों के लिए एक मिसाल है।
3: किसी के शरीर की ऊंचाई से उसके व्यक्तित्व का कद मापना मुमकिन नहीं है। इसका सटीक उदाहरण है बिहार के गया की एक स्कूल टीचर रीता रानी प्रसाद। रीता का कद भले ही 3 फीट है, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते वो बड़े बड़ों को ज्ञान बांटती है। घर में ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत करके अब रीता 2010 से एक सरकारी स्कूल में सम्मानित टीचर है। हालांकि यहां तक का उनका सफर आसान नहीं था। अपने कद के कारण उन्हें समाज के कई ताने सहने पड़े।
4: हमारा हाइट देख के कि कुछ नहीं कर पाए, ये लोग कहते भी थे कि हम लोग तो कुछ किए भी नहीं है तो ये क्या कर पाएगी। तो उसी चीज का मुझे आन लगता था, आन हमें आज भी लगता है, कोई कुछ बोल देता है तो मैं चुप, कुछ बोलती नहीं, पीछे मुड़ के चली जाती हूँ। उसी आन में मैं आज करके दिखा दिए। खुद मोहल्ला का लोग कहता था क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्या पढ़ाएगी, क्या लिखाएगी, क्या टीचर बनेगी, क्या नौकरी करेगी, लेकिन मैं आज सरकारी नौकरी लेके दिखा दिए।
3: लेकिन दिल में जज्बा हो और मन में कुछ कर गुजरने का हौसला तो कोई भी कठिनाई पार करना मुश्किल नहीं। ये रीता ने करके दिखाया। उन्हें बिहार सरकार के द्वारा बिहार गौरव और योद्धा का अवार्ड मिल चुका है और आज वो क्लासरूम में बेंच पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हैं, जिसमें उन्हें कोई हिचक नहीं।
4: कि बोर्ड हमारा ऊंचा पे है, 3 फीट पे 4 फीट पे, तो हम उस बोर्ड के नीचे बेंच लगा लेते हैं और हम किसी को नहीं देखते, अपने पढ़ाई के धुन में पढ़ाते रहते हैं बच्चे लोग को। अब बच्चे भी हमारे मगन होके पढ़ते हैं।
3: पास करके 2 वर्ष की टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद रीता ने कई सालों तक एनजीओ से जुड़कर 15 सालों तक दिव्यांग स्कूल में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाया और अब न सिर्फ एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है बल्कि

0: समाज की सारी संकीर्णताओं को जोड़ते हुए इंसान को खुद पर भरोसा करने और आत्मविश्वास की सीख भी दे रही है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।
1: हर साल कई किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से होती है उत्तराखंड में एक यात्रा, जिसे लोग जगदीशिला रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ये यात्रा अब बागेश्वर के भ्रामरी मंदिर पहुंच चुकी है। इस यात्रा का समापन 25 मई को गंगा दशहरा के दिन टिहरी में मौजूद विश्वोन पर्वत पर होगा।

0: भक्ति और आस्था की डोली विश्वनाथ जगदीश शिला डोली। हर साल की तरह इस साल की डोली यात्रा में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा है। डोली यात्रा जिस राह से भी गुजर रही है, श्रद्धालु स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं। भजन कीर्तन, जयकारों, नाद और धार्मिक उल्लास से वातावरण दैवीय हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 27 सालों से चली आ रही विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा इस साल भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली है। जगदीश शिला रथ यात्रा राज्य की एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है, जिसमें बाबा विश्वनाथ और मां जगदीश शिला की डोली रथ पर सवार होकर विभिन्न शक्तिपीठों और देवालयों की परिक्रमा करती है। टिहरी गढ़वाल से होती हुई ये डोली यात्रा अब कुमाऊं मंडल के ग्वालदम पहुंची, जहां के लोगों ने डोली और डोली लेकर आ रहे यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया।
1: बहुत अच्छी खुशी होती कि लगातार पिछले 14-15 सालों से ये यात्रा कुमाऊं मंडल के हर उन मंदिरों में जारी है, जिन मंदिरों को आज हम सब लोग मानस खंड में देख रहे हैं। तो ये चिन्हित करने का काम हमारी बाबा जगदीश शिला डोली यात्रा के माध्यम से लगातार पिछले 14-15 सालों से आदरणीय श्री मंत्री प्रसाद नेतानी जी ने भी करी है। तो एक अच्छी खुशी है कि कुमाऊं के हर उस शक्तिपीठ को चरण स्पर्श करके ये यात्रा आगे बढ़ती है।
0: इसके उपरांत यात्रा कोट भ्रामरी मंदिर पहुंची, जहां देवी के दरबार में पूजा अर्चना की गई और जगदीश शिला डोली का रात्रि विश्राम किया गया।
2: ये पहली हमारी उत्तराखंड की शक्ति है डोली के रूप में, जो विश्व के लिए साल भर में एक बार जो है विश्व की शांति के लिए उत्तराखंड के सारे देवालयों में भ्रमण करती है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है और जो लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारी शक्तिपीठ है, जैसे यहाँ माँ कोट भ्रामरी जो शक्तिपीठ है, ऐसे शक्तिपीठों को धाम का रूप मिले, ये इस यात्रा का उद्देश्य है।
0: बाबा विश्वनाथ माँ जगदीश शिला उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिन्हें पहाड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये भगवान शिव यानी विश्वनाथ और शक्ति यानी माँ जगदीश शिला के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक हैं। उनकी डोली में शिव और शक्ति की मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित रहती हैं, जिन्हें टिहरी जिले के हिंदो पट्टी में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। चार धाम समेत कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद 25 मई को गंगा दशहरा पर डोली यात्रा का समापन विशौन पर्वत में बाबा विश्वनाथ धाम में होगा, जिसे स्वामी राम तीर्थ और गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक एकता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि दूर दराज के गांवों को पहचान दिलाने और धार्मिक पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers.
1: The hits are on.
0: And hip-hop beats.
2: I'm in the game. I shoot at joy with this G23.
0: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। क्षेत्र और वैश्विक घटनाक्रम है चर्चा का मुख्य केंद्र। मानवता सबसे पहले सम्मेलन की थी। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज आई सामने। गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने होमुर स्ट्रेट किया पार। 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने लगाई रोक। सितंबर तक जारी रहेगा बैन। चीनी की घरेलू कीमतें काबू करने के लिए लिया गया ये फैसला। वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं चीनी के दाम। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परेड के लिए सलामी, जवानों को किया सम्मानित। साढ़े 12 लाख के पार पहुंची चारधाम यात्रियों की संख्या, मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, केदारनाथ में उमड़ रहे श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है ये परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है इसमें परिक्रमा।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, भारत मंडपम में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, चीनी राजदूत कर रहा प्रतिनिधित्व, ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची भी मौजूद। एमईए के अनुसार चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम, सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात, योद्धा को लेकर करेंगे चर्चा। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत की मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित, पीएम मोदी ने साल 2025 में दिया था इस पर जोर। चारधाम यात्रा में उबड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिनों में 15,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला, बुधवार को 80,400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 32,400 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,250 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,24,000 से अधिक भक्तों ने किया बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। तिरुचिल्लापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चुथरई कार उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान कर निकाली गई रथ यात्रा, भक्तों ने लगाए गोविंदा गोविंदा के नारे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पुरुषों ने खींचा रथ। 17 मई तक चलेगा चतराई कार उत्सव, कई राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा में सादे लिबास में तैनात किए गए जवान। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। भांग, ड्राई फ्रूट और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया दिव्य श्रृंगार, राजा स्वरूप में भक्तों के किए दर्शन। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया विशेष अभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज आई सामने, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने होमुर स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल। अमित शाह हुए इसमें शामिल, परेड के लिए उन्होंने सलामी, जवानों को किया गया सम्मानित। रायपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भव्य हुआ स्वागत। जालौर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पंसेरी गांव का किया सैर, स्थानीय लोगों से की बातचीत। मानसा की बेटी सुपनीत कौर ने पंजाब बोर्ड में किया कमाल, 500 में से 500 अंक प्राप्त कर राज्य में किया टॉप। लुधियाना की दिव्यांशी ने 12वीं में पूरे राज्य में प्राप्त किए 3 स्थान, स्कूल और घर पर खुशी के लिए है। गोंडा के आदित्य ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं में प्राप्त किए 96%, कॉलेज और घर में खुशी का माहौल। कोयम्बटूर के सेवानिवृत्त शिक्षक की अच्छी पहल, नेत्रहीन वृद्धाश्रम के लिए दान की 1.5 करोड़ रुपए की जमीन। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने की इसमें शिरकत। झांसी डीएम की अनोखी पहल, शिक्षक बनकर खुद क्लास में बच्चों को पढ़ाया पाठ। डीएम के क्लास में खुश नजर आए बच्चे, बोर्ड पर हल किए गए सवाल, पूछे सवाल। डीएम के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तस्वीर और दिशा बदलने का किया जा रहा है प्रयास, जिला स्तर पर अधिकारियों को भी एक एक स्कूल गोद लेने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। रामलोटन कुशवाहा नाम के इस बुजुर्ग ने बताया कि मृत्यु के बाद नहीं होगा उनका अंतिम संस्कार, अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सतना को दान करने का लिया है संकल्प। सतना में अनोखा आयोजन, बुजुर्ग ने जीते जी करवाई अपनी 13वीं, बांटे थे शुभ शोक संदेश। दिल्ली में एनडीएमसी का बड़ा फैसला, अपने विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1/3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम की दी अनुमति। उत्तराखंड में ईंधन बचत अभियान के तहत धामी सरकार के बड़े फैसले, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से लेकर वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तक कई प्रस्तावों को मंजूरी। सीएम धामी के काफिले में भी 50% कटौती, जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है उन्हें एक दिन में एक सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की होगी अनुमति। पीएम मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश, सीएम फ्लीट में न्यूनतम वाहनों का होगा इस्तेमाल, हफ्ते में एक दिन बिना वाहन के काम करेंगे सीएम सैनी। औरंगाबाद में भी देखा ईंधन बचाओ अभियान का असर, आवास से साइकिल चलाकर 2 किलोमीटर दूर सिविल कोर्ट पहुंचे जिला जज राजीव रंजन कुमार दानी। 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला पड़ाव होगा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा भी इसमें शामिल। केंद्र सरकार ने बढ़ाया आईपीएस प्रवीण सूद का कार्यकाल, सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 1 साल का दिया गया है सेवा विस्तार। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की बढ़ोतरी, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, नई दरें आज से लागू। एनसीआर में टोंड दूध की कीमतें 56 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 58 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, 72 रुपए प्रति लीटर मिलेगा फुल क्रीम दूध। वर्का दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू। कान में आलिया भट्ट के देसी अंदाज ने जीत लिया फैंस का दिल, साड़ी गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आई एक्ट्रेस। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार में नजर आई आलिया भट्ट, डिजाइनर तरुण तेहलानी की क्रिएशन में आई नजर। नथबिंदी ने पूरा लुक बनाया खास, पैरों में पहनी पर्ल पायल ने लुक को दिया देसी रॉयल्टी टच। रेड कार्पेट पर भी आलिया का एक और खूबसूरत लुक आया सामने, ब्लू गाउन में नजर आई एक्ट्रेस लगी बेहद खूबसूरत। अ वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में हुई शामिल, मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किए उनके कॉस्ट्यूम। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट आई नजर, ओरिजिनल फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की आधी रात की स्क्रीनिंग के लिए रेड कार्पेट पर स्टार विन डीजल समेत सभी स्टार्स पहुंचे। विन डीजल ने काली जैकेट पहनी थी जिसके पीछे रेस कार के डिजाइनर के साथ फास्ट फॉरएवर लिखा हुआ था, ये FNF सीरीज की अगली सीक्वल है जो साल 2028 में आने वाली है। रेड कार्पेट पर डीजल के साथ जॉर्डाना ब्रूस्टर और मिशेल रॉड्रिगेज भी आई नजर, ये दोनों एक्ट्रेस साल 2001 से इस फ्रेंचाइजी फिल्म का हिस्सा हैं। रेड कार्पेट पर फिल्म स्टार पॉल वॉकर का प्रतिनिधित्व उनकी इकलौती बेटी मीडो ने किया। मीडो ने फास्ट एक्स में कैमियो रोल भी किया था। वॉकर के साथ 2013 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। फास्ट एंड द फ्यूरियस हॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक है, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना होगा जरूरी। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम है चर्चा का मुख्य केंद्र, मानवता सबसे पहले सम्मेलन की थी। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने होमुर स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। चीनी के निर्यात पे तत्काल प्रभाव से सरकार ने सितंबर तक लगाई रोक, चीनी के घरेलू कीमतों में को काबू करने के लिए लिया गया फैसला, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं चीनी के दाम। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, परेड के लिए सलामी, जवानों को किया सम्मानित। उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही है ये परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम की, क्योंकि आजकल मौसम की अजब ही कहानी देखने को मिल रही है। देखिए, मौसम इतना अजीबोगरीब है, कभी गर्मी है तो कहीं बारिश है। ये मौसम की मेहरबानी ही है कि मानसून के जल्द दस्तक देने की भी अब खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत के मौसम पर अगर नजर डालें तो यूपी बिहार समेत कई राज्यों में कल और इससे पहले तेज आंधी और बारिश की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम लगातार जो है वो यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों तेज धूप खिल रही थी, लेकिन बीच बीच में बारिश और आंधी के कारण मौसम सुहाना भी होता नजर आया, थोड़ी सी ठिठुरन भी हुई। हालांकि मौसम के जानकारों के अनुसार आज से फिर दिल्ली एनसीआर में जो पारा है वो चढ़ सकता है, यानी गर्मी हो सकती है और गर्मी की तपिश दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती है। इससे पहले राजस्थान और गुजरात में गर्मी के रंग लोग देख ही चुके हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान में 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं मौसम विभाग ने 15 मई तक के लिए गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जबकि गुजरात के जामनगर में चिड़ियाघर में परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए खास तौर के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चिड़ियाघर में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए, अपने स्पेशल शो में हम आपको आगे ये भी बताने जा रहे हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून कब आने वाला है, क्योंकि उसका सभी को इंतजार है। देखिए, पूरे देश में मौसम का अलग सा रूप देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो देश के किसी इलाके में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम साफ रहेगा और पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

0: उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल शाम हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
1: आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है राजस्थान, MP, इन जगहों में टेम्परेचर ज्यादा ही रहेंगे आने वाले 7 दिन। और एनीवे मई का महीना है, इस समय जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होते ही हैं और कोई हम कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ऑलमोस्ट काफी हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन रहेगी।
0: दिल्ली NCR में कल शाम हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी और हफ्ते के अंत तक इसके 40 से 42 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है।
1: हम ऐसा एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और फिर जो टेम्परेचर है जहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और बाय 17 मई 18 मई जे भी 40 क्रॉस कर जाएंगे, 42 तक होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा हमारा भी NCR दिल्ली के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है।
0: देश के कई राज्यों में जहां एक ओर गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री 16 मई को हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस साल अलनीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मॉनसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है तो कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मॉनसून की दस्तक सुना रही हैं। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
2: देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून तय समय से पहले ही दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम लगातार सक्रिय हो रहा है जिससे दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर भारत में भी आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर राजस्थान और गुजरात में लू का असर अभी भी जारी है।

0: गरजते बादल, चमकती बिजली और तेज हवाएं। मॉनसून अब ज्यादा दूर नहीं, अब बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, आने वाले मॉनसून की आहट भी दे रहे हैं। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आसमान में घिरते बादल, तेज हवाएं, गरजती बिजली की तस्वीरें कई राज्यों से आ चुकी हैं। बारिश इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार मॉनसून सामान्य समय से पहले दस्तक दे सकता है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत तक मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत सिस्टम ने पूरे देश के मौसम को सक्रिय कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि परिस्थितियां इतनी अनुकूल बन चुकी हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून तय समय से पहले आगे बढ़ सकता है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं। अगले कुछ दिनों में वहां मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।
1: अभी साउथ वेस्ट मॉनसून की स्थिति है, जो कंडीशंस फेवरेबल हुआ है, जो हमारा साउथ बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, अंडमान और निकोबार आइलैंड में 16 मई को, लगभग 16 मई को टच करने का संभावना रहेगा, जिसका नॉर्मल डेट है 18 मई।
0: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बना लो प्रेशर एरिया अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 14 से 17 मई के बीच तेज बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
1: हमारा जो फोरकास्ट है अगले 7 दिन के लिए 13 से लेकर 19 मई तक, मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसमें हमारे जो दो सिनोप्टिक वेदर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, एक ऊपरी पवन के साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो एमपी साउथ दक्षिण पश्चिम एमपी के ऊपर था, अभी भी वो स्थित है, उसका विस्तृत जो 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक। अभी एक फ्रेश WD उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है 15 मई को।
0: कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। रायल सीमा और दक्षिणी राज्यों के कई हिस्सों में बादलों की तेज गतिविधि देखने को मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी बढ़ गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और उत्तर बंगाल के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में 64 से 115 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकती है। ओडिशा में अगले 6 दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। राज्य के करीब 20 जिलों में बिजली गिरने, तेज हवा चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड और बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। कई इलाकों में अचानक तेज हवा और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश राहत लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिम राजस्थान और गुजरात में 17 मई तक लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। IMD ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
2: मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जिस तरह से संभावनाएं बन रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि इस बार मानसून भी समय से पहले दस्तक दे सकता है। अगर मानसून ने समय से पहले दस्तक दिया और इसी तरह से मौसम में बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रही तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वालों को और उत्तर भारत के लोगों को इस बार शायद गर्मी का सामना कम करना पड़े या फिर लगातार गर्मी का प्रकोप ना झेलना पड़े।
3: बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है, जिसका असर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और तटीय इलाकों में साफ

0: उत्तर श्रीलंका के पास बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ बना चक्रवात समुद्र तल से करीब 6.25 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 दिनों में ये और सक्रिय हो सकता है, जिससे कई हिस्सों में बादलों की गतिविधियां तेज होंगी और बरसात का दायरा बढ़ेगा। दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार और तटीय इलाकों में इसका असर पहले ही नजर आने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई मौसमी तंत्र एक साथ सक्रिय हैं। पश्चिम राजस्थान के आसपास चक्रवाती हवा का प्रभाव है, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर भी वातावरण में हलचल बनी हुई है। इन परिस्थितियों की वजह से कई राज्यों में तेज हवा, बिजली चमकने और बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यही सिस्टम आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के तापमान को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगह पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। हालांकि देश के पश्चिमी भागों की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है।
1: जुहू बीच है, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, अपना मजा मस्ती हर कोई अपने परिवार संग यहाँ पे कर रहा है। लगभग 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का पारा इस समय मुंबई में गर्मी में है। बावजूद इसके थोड़ा सा ठंडापन है, कैसी लग रही है गर्मी? आपका चेहरा तो बिल्कुल एकदम ऐसे सूख गया है।
2: हाँ सर, मैं पहली बार इधर मुंबई आया हूँ इधर बीच पे देखने के लिए कि इधर बहुत से लोग बहुत थे, बहुत मजा एंजॉय करते हैं। तो मैं पहली बार आया मगर इधर तो बहुत हरियाली दिख रही है और बहुत मजा लूट रहे थे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं मुंद्रा कच्छ से मनोज जोगी, मुंद्रा कच्छ से।
1: गर्मी कैसी है?
2: गर्मी तो है मगर समझ लो गर्मी तो लग रही है मगर ठंडक का भी एंजॉय ले रहे हैं ना।
0: राजस्थान, गुजरात और विदर्भ के कई इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं।
3: जो पवन का दिशा है पश्चिम से, उत्तर पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है राज्य में। अभी जो अधिकतम तापमान है अगले 48 घंटा तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल रहेगी, ग्रेजुअल फॉल रहेगी। और कुछ इक्का दुक्का जो आइसोलेटेड प्लेसेस में जो तापमान है, अधिकतम तापमान है 41-45 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने का संभावना रहेगा अगले 2 दिन। और हीटवेव का वार्निंग दिया गया है डे वन डे टू में 13 और 14 मई को। इसमें गुजरात रीजन में येलो वार्निंग दिया गया है। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बनसकांठा, पाटन और बड़ौदा के लिए दिया गया है।
0: कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। तेज गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कुछ क्षेत्रों में हालात गंभीर हीट वेव तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है।
4: गर्मी इसके दर बढ़ती जा रही है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो राजस्थान के वेस्ट, साउथ वेस्ट एरियाज में और ईस्ट एरिया में अभी हर जगह पे 45-48 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे गर्म शहर अभी बाड़मेर है, जहाँ पे 48.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। उसके साथ में ही राजस्थान के 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर 45 पार रहा है और मिनिमम टेम्परेचर चूरू में दर्ज किया गया है जो कि 21.3 डिग्री सेल्सियस है।
0: राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले सकता है। अनुमान के मुताबिक इन इलाकों में कहीं कहीं बादल छाने, गरज चमक होने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी वातावरण बदला बदला नजर आ सकता है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही जारी रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay,
1: and that'll be me.
0: Nora Jones,
2: with a diamond implied, you don't let her
0: and Daniel Caesar.
3: Have a baby with me.
0: Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
11: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको हैरान भी कर देंगे।
12: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
13: यहाँ पे
1: छोटे छोटे बच्चों को देखा है, उनकी गाली तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
12: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: सास बहु और बेटियां में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
16: पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना जरूरी। एलपीजी को लेकर देशभर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट की अपार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से सरकार से सितंबर तक लगाई रोक, चीनी की घरेलू कीमतें काबू में करने के लिए लिया फैसला, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़े चीनी के दाम। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह, परेड के लिए सलामी, जवानों को किया सम्मानित। उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, 27 सालों से चली आ रही परंपरा, शक्तिपीठों और देवालयों की होती है परिक्रमा। चीन दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा।
15: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
16: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
17: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 में 25 अच्छी खबरों के साथ।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
16: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। भारत मंडपम में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत के मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में दिया था जोर। चीन दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का बच्चों ने किया शानदार स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहला पड़ाव होगा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा भी शामिल। केंद्र सरकार ने बढ़ाया आईपीएस प्रवीण सूद का कार्यकाल। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 1 साल का दिया गया है सेवा विस्तार।
17: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 25 दिन में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। बुधवार को 80,400 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 32,400 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई कार उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान कर निकाली गई रथ यात्रा। भक्तों ने लगाया गोविंदा गोविंदा के नारे।
16: एलपीजी को लेकर देशभर के लिए गुड न्यूज। गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार। 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जवानों को सम्मानित किया। कोयम्बटूर के सेवानिवृत्त शिक्षक की अच्छी पहल। नेत्रहीन वृद्धाश्रम के लिए दान की 1.5 करोड़ की जमीन। जालौर में सीएम भजन लाल शर्मा ने पंसेरी गांव का की उसकी सैर। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की।
17: देश में 25 मई से मॉनसून की एंट्री की संभावना। आईएमडी के मुताबिक महीने के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। हालांकि 15 और 16 मई तक तापमान फिर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा तापमान। कर्नाटक के हावेरी में डॉग को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल की गई। डॉग स्क्वाड के लिए लगाए गए कूलर्स।
16: वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की अपनी तस्वीर। रिलीज से पहले ही चर्चा में दृश्यम 3। 9 दिन में इन्होंने पहले ही दिन कमाल किया है। लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई। दशहरा पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे इमरान हाशमी। गन मास्टर G9 होगी रिलीज। इमरान के साथ मुख्य भूमिका में जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना।
18: बारूद वाला हूं। चलेगा गलती से फैमिली।
16: लगभग 14 साल बाद शेखर टुनाइट नाम के इस नए टॉक शो से शेखर सुमन कर रहे हैं वापसी। ट्रेलर आया सामने।

धुरंधर फेम राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जवानी है तो इश्क होना है के स्टेप्स। फिल्म के गाने वाओ पर बनाइए वायरल वीडियो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। मौसम की चुनौतियों के बावजूद पूरे उत्साह के साथ चल रही है चारधाम यात्रा, 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान के दर्शन।
1: देश में एलपीजी की किल्लत नहीं होगी, एलपीजी लेकर भारत आ रहे एक जहाज ने किया हॉर्मुज स्ट्रेट पार, कल भारत पहुंचने की उम्मीद है।
2: गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सेरेमनी में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, रेस्क्यू में बेहतरीन काम करने वाले जवानों का सम्मान किया।
1: कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक की सबसे महंगी आउटफिट में दिखी उर्वशी रौतेला, दुनिया के किसी सितारे ने नहीं पहनी इतनी महंगी ड्रेस, क्रिस्टल से सजी ड्रेस की कीमत बताई जा रही 1500 करोड़।
2: अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल का जारी किया फर्स्ट लुक, अगले महीने रिलीज हो सकती है ये फिल्म।

0: और चलिए फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार स्टार्स की तस्वीरें आ रही हैं। बॉलीवुड सितारों का जलवा बरकरार है, कोई अपनी सिंप्लिसिटी से सुर्खियों में है तो कोई मिलियन डॉलर आउटफिट्स की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन कान के रेड कार्पेट पर जादू हर किसी का चल रहा है। अब तक कान के रेड कार्पेट पर भारत की ओर से आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। आलिया भट्ट के अब तक 3 रॉयल लुक सामने आ चुके हैं और तीनों ही लुक में आलिया ने खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं।
1: तो पहले लुक में आलिया ने फ्रेंच रिवेरा से प्रेरित खूबसूरत हेडबैंड हैंड पेंटेड गाउन पहना। उनके गाउन में पेस्टल ग्रीन, सॉफ्ट ब्लू, लेवेंडर, येलो रंगों का बेहद खूबसूरत मेल देखने को मिला। दूसरे लुक में दूसरी बार रेड कार्पेट पर उतरी आलिया भट्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल में नजर आई। तो आलिया ने इस बार लाइट ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहना।
0: वहीं देखिए तीसरे लुक की बात करें तो आलिया डिजाइनर तरुण तहलियानी की आइवरी साड़ी में दिखाई दी। ये फ्रेंच रिवेरा में भारत पेविलियन पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गवारीकर के साथ 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया।
1: तो दूसरी ओर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही उर्वशी रौतेला के मिलियन डॉलर लुक और आउटफिट की खूब चर्चा हो रही है। उर्वशी रौतेला का क्रिस्टल लुक फैशन वर्ल्ड की लाइमलाइट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ड्रेस की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए है। यहां तक कि कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अब तक का ये सबसे महंगा आउटफिट बताया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला का सबसे महंगे आउटफिट की आखिर खासियत क्या है। ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट और लुक इसे माना जा रहा है।
2: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की हुई। फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में सबसे पहले 2022 में शिरकत की थी और तब से अब तक वो 5 बार कान में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हर बार अपने लुक्स और आउटफिट से वो किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कान के महामंच पर उर्वशी रौतेला का अब तक का सफर कैसा रहा।
2: बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला ने 2022 में कान फिल्म फेस्टिवल में अपने सफर की शुरुआत की। तब बॉलीवुड में उन्होंने 9 साल का सफर तय कर लिया था और अपनी अदाकारी से ज्यादा अपनी खूबसूरती को लेकर मशहूर हो चुकी थी। अपने पहले ही साल में उर्वशी ने रेड कार्पेट पर बेहद ड्रामेटिक लुक्स चुने। वे लेबनानी डिजाइनर टोनी वार्ड कुट्योर के एक प्राचीन सफेद रंग के वन शोल्डर ट्यूल रफल बॉल गाउन में रेड कार्पेट पर उतरे। इसके साथ उन्होंने बोल्ड रेड लिपस्टिक और हाई बन हेयर स्टाइल कैरी किया था। इस साल कान में उनके दो लुक्स की और चर्चा हुई। दूसरे लुक में उन्होंने डिजाइनर अली करोई का डिजाइन किया हुआ एक चमचमाता गोल्डन हाई स्लिट गाउन पहना, जिसमें एक बड़ा ड्रामेटिक शोल्डर धनुष आकार का बना था। तीसरे लुक में उर्वशी ने एक हॉट पिंक कलर का पैंट सूट भी कैरी किया, जिसमें वो बिना किसी ज्वेलरी के बेहद मिनिमलिस्ट लुक में दिखी। कान 2023 में उर्वशी ने पिंक कलर का हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी ने रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड और पिंक कुट्योर गाउन में नजर आई। इसे ट्यूनिशाई के डिजाइनर सुहैर अल गब्सी ने तैयार किया था। इसके साथ उन्होंने सर पर एक हेवी स्टडेड हेडबैंड कैरी किया था। उर्वशी ने इस साल भी अपने ज्वेलरी क्रेडेंशियल्स को बरकरार रखा और डांसिंग फिश नेकलेस व तोते की आकृति वाला फंकी क्लच कैरी किया। कान में लगातार चौथी बार शिरकत करते हुए उर्वशी ने अपनी बोल्ड रंग बिरंगी ड्रेसेस और कैमरे के सामने पोज देने के स्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोरी। इस साल उर्वशी ने लक्जरी और जटिल कुट्योर डिजाइन्स पर फोकस किया। लेबनान के मशहूर डिजाइनर नाजा सादे के कस्टम ब्लैक टफेटा कुट्योर गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी उर्वशी। इसके अलावा अलग अलग दिन उर्वशी ने रंग बिरंगे फ्लोरल कुट्योर ड्रेसेस भी पहने, जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए आपको दिखाते हैं आलिया का कान में जलवा।

0: तो कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने जबरदस्त लुक के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आलिया ने कान में अपने तीसरे अपीयरेंस में देसी लुक लिया जिसने सारी लाइमलाइट लूट ली। दरअसल आलिया भट्ट कान के दूसरे दिन ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। उन्होंने ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी थी जिसे काफी मॉडर्न तरीके से ड्रेप किया गया था। साथ ही आलिया ने अपने लुक को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए नोज पिन और झुमके पेयर किए। साथ ही उन्होंने इसे और भी शाही टच देने के लिए हथफूल भी पहने। बिंदी लगाई आलिया के खूबसूरत लुक उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।
1: देखिए, जैसे जैसे कान फिल्म फेस्टिवल परवान चढ़ रहा है वैसे वैसे सेलिब्रिटीज के ग्लैमरस लुक भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल के दूसरे दिन आलिया के अवतार ने सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट मीट वेस्ट की लुक लिए आलिया बेहद खूबसूरत अंदाज में भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हुई देखी गई।

0: माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी काउ, कैन में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की स्टीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से सभी को हैरान कर दिया। आलिया ने डिजाइनर तरुण तहिलयानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी पहनी, जिसमें विक्टोरियन कॉन्सेप्ट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। इसी के साथ नथ बिंदी ने पूरा लुक खास बना दिया। कैन में हर कोई एक्स्ट्रा ग्लैम दिखाने की होड़ में रहता है, वहीं आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी वाला टच जोड़ दिया। आलिया के लुक में सब कुछ इतना बैलेंस था कि नजर हटाना मुश्किल हो गया। वहीं रेड कारपेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया है। अ वुमन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डेनियल फ्रेंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें स्लीक साटन, हनीकॉम लेस और सेंटली लेस की कई लेयर्स हैं। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रेंकल ने डिजाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो कान फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन हॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। डेमी मूर और जिलियन एंडरसन जैसी हस्तियों ने फोटोग्राफर्स के सामने पोज दिए। तो साथ ही मैक्सिकन स्टार डियागो लूना और गिल गार्सिया बर्नाल चीनी अभिनेता हैं। यान चाओ और हे चांगशी भी लाइमलाइट बटोरते नजर आए। इस साल कान में शिरकत करने वाले सितारों में स्कारलेट जोहानसन, एडम ड्राइवर, रेनेट रेन्सवे, सेबेस्टियन स्टैन, रामी मालिक, पेनेलोप क्रूज और जेवियर बादम जैसी हस्तियां शामिल हैं।
2: तो बुधवार रात कान फिल्म फेस्टिवल का आकर्षण तब और बढ़ गया जब विन डीजल की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की मिडनाइट स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान डीजल ने काले रंग की जैकेट पहनी थी, जिसके पीछे फास्ट फॉर एवर, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला सीक्वल है, उसका डिजाइन बना हुआ था। ये फिल्म साल 2028 में रिलीज होगी। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट का जलवा दिखा। इस दौरान फैंस के बीच में विन डीजल की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड $7 अरब से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।
1: तो कान फिल्म फेस्टिवल के बाद अब बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। बात अक्षय कुमार की, जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल का एक पोस्टर जारी करके फैंस की बेसब्री और ज्यादा बढ़ा दी है। इन दिनों अक्षय की भूत बंगला थिएटर्स में धमाल मचा रही है और अब अक्षय ने अपनी नई फिल्म के रिलीज का ऐलान कर दिया है। हालांकि रिलीज डेट का खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन चर्चा है कि ये फिल्म अगले महीने बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
3: नहीं, सोलो परफॉर्मेंस हो रहा है,
4: कोरस वाले हैं ना हम लोग, कोरस में गा रहे हैं ना हम लोग मिलके।
5: तू सोलो गा, सबकी आवाज में गा।
3: समझे कि नहीं?
6: हाँ हाँ समझे समझे, चल चल शुरू करते हैं सब साथ में।
3: सीखो, हम जैसे पुराने चावलों से सीखो। ए
7: रेडी, 1 2 वेलकम 3।
0: चेहरे पर स्वैग, आंखों पर चश्मा, अलबेला अंदाज और जंगल में रेड कार्पेट पर चलते अक्षय कुमार। इस पोस्टर के साथ ही अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल की शानदार झलक दर्शकों के सामने पेश कर दी।
8: अक्षय की वेलकम टू द जंगल का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं और अब इस पोस्टर ने दर्शकों की बेताबी को और भी बढ़ा दिया है।

0: अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला लुक पोस्ट किया है। इस तस्वीर में अक्षय बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। ब्लू शर्ट पर डार्क सूट के साथ आंखों पर काला चश्मा लगाए अक्षय का ये लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। तस्वीर का बैकग्राउंड घना जंगल है। रेड कार्पेट पर अक्षय की चाल में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस पोस्टर के साथ ही एक्टर ने लिखा है, अगला वेलकम टू द जंगल, यानी भूत मंगला के बाद अक्षय की वेलकम टू द जंगल बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। हालांकि अक्षय ने फिल्म के बारे में दूसरी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। फिल्म की रिलीज डेट का भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जून के महीने में ये फिल्म दर्शकों के सामने होगी। कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर अहमद खान है। फिल्म की शूटिंग 2023 में शुरू हुई थी और अब ये फिल्म थिएटर्स में धमाल मचाने के लिए तैयार है। वेलकम और वेलकम बैक के बाद ये इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स की एक बड़ी स्टार कास्ट है। इसमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद बारसी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े और लारा दत्ता जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में इस फिल्म के टीजर में ये सभी एक्टर्स बड़े ही मजेदार अंदाज में दिखे थे। टीजर देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। थिएटर्स के बाद ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज की जाएगी।
1: गा रहे ना हम लोग मिलके?
2: तू सोलो गा, सबकी आवाज में गा।
1: समझे कि नहीं?
3: हाँ समझे समझे, चल चल शुरू करते हैं सब साथ में।
1: सीखो हम जैसे पुराने चावलों से सीखो।
0: अक्षय कुमार की वेलकम और वेलकम बैक दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि वेलकम टू द जंगल के रिलीज होने का, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी का डोज शहरी रिहायशी इलाकों से निकलकर जंगल के बीच मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
4: और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। पूरे देश में मौसम का अलग सा रूप देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो देश के किसी इलाके में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम साफ रहेगा और पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

0: उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल शाम हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
1: आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है राजस्थान, MP, इन जगहों में टेम्परेचर्स ज़्यादा ही रहेंगे आने वाले 7 दिन। और एनीवे मई का महीना है, समय जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा होते ही हैं और कोई हम कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ऑलमोस्ट काफ़ी हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन रहेगी।
0: दिल्ली NCR में कल शाम हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी और हफ्ते के अंत तक इसके 40 से 42 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है।
1: हम ऐसा एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और फिर जो टेम्परेचर है जहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और बाय 17 में 18 में जे भी 40 क्रॉस कर जाएंगे, 42 तक होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा हमारा भी NCR दिल्ली के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है।
0: देश के कई राज्यों में जहां एक ओर गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री 16 मई को हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस साल अलनीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मॉनसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है तो कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मॉनसून की दस्तक सुना रही हैं। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देश में धार्मिक यात्रा महोत्सव के रंग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहु और बेटियां में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
5: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, HomeServe delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
10: पर कसते तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मोहर। पारादुर में अब तक 6 बार चुने गए हैं विधायक। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना जरूरी। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज। गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार। 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कला अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परेड के लिए सलामी, जवानों को किया सम्मानित। भीषण गर्मी के बीच गुजरात के वड़ताल धाम में तरबूज उत्सव का आयोजन। धाम में विराजमान सभी देवताओं को लगाया गया 2,500 किलो तरबूज का भोग।
3: चीनी दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बच्चों ने किया शानदार स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। इस वक्त देश में यात्राओं का महा उत्सव चल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 20 दिन में बद्री केदार में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में विश्व शांति और जगत कल्याण के लिए देव डोली यात्रा भी निकाली गई। इसमें उत्तराखंडी संस्कृति के रंग देखने को मिले। इन सबके बीच अब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू में यात्री विश्राम गृह की मरम्मत की जा रही है। यहीं से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना होता है।
1: जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बनता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन का सबसे ज्यादा जोर व्यवस्थाओं को बनाए रखने पर है, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

0: आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी यात्रा आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़े ही उत्साह के साथ चल रही है। मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है, हल्की बारिश से पहाड़ों की ठंडक बरकरार है। इन सब के बावजूद भक्तों में उत्साह भरपूर है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहां करीब 3.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज रहा है।
1: हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। बीते
0: बद्रीनाथ धाम का दिव्य भव्य और आध्यात्मिक नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। शायद इसीलिए बद्रीनाथ धाम की सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। मानो आस्था का मेला लगा हुआ है। यातायात प्रबंधन, मेडिकल सुविधा, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था को लेकर हर श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहा है।
1: पार्किंग की व्यवस्था बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही थी वो भी अब सुलझा दी गई है। वहीं घस्तोली मार्ग पे पार्किंग बनाने से माना तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब यात्रा और बेहतर चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी और उत्साह देखने को मिलेगा।
0: गर्मी बढ़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन भी आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी में है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश नए रिकॉर्ड की ओर इशारा कर रहा है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। उत्तराखंड के चार धामों में सबसे अधिक यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। हर रोज 25,000 के आसपास भक्त बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त मत्था टेक चुके हैं। भक्तों की भीड़ की वजह से दोपहर तक भक्तों को बाबा केदार के स्पर्श तो दोपहर के बाद श्रृंगार दर्शन करवाए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 13 मई को 32,427 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 5,23,582 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 13 मई को 21,260 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह अभी तक बद्रीनाथ धाम में 3,24,081 श्रद्धालु बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 13 मई को 13,315 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई और अब तक यमुनोत्री धाम में 2,07,390 श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 13 मई को 13,403 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। अभी तक 2,05,425 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। अगर चारों धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो अब तक 12,60,478 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं।

0: चारधाम यात्रियों के लिए हालांकि मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह इतना है कि मौसम का असर चारधाम यात्रा पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री शामिल होंगे। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात नासिक के कुंभ मेले की। जी हां, नासिक के सिंहस्थ कुंभ मेले में अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर दिखेगी। सीएम फडणवीस ने घोषित किया जाएगा। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेले का लोगो वहां की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे। सरकार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 13 अखाड़ों के साथ समन्वय कर रही है।

0: ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई के ये कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थल बुधवार को नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले 2027 की पहचान से खुद को समेटे नजर आए। आमची मुंबई की इन इमारतों पर दरअसल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो प्रदर्शित किया गया, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। सिंहस्त का ये लोगो बता रहा है कि इस बार कुंभ मेले में नासिक में अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर दिखेगी। चयनित लोगो में भगवान शिव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिरों के प्रतीकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 13 प्रमुख अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। एक भव्य त्रिशूल दर्शाया गया है, जो नासिक के प्रसिद्ध और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह में पवित्र गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में बेहद खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये लोगो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार को समाहित करता है।
1: नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगो का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
0: सरकार इस बार सिंहस्त कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों के अनावरण से पहले हुई कुंभ मेला समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साधु संतों और अखाड़ों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। छोटे संस्थानों को भी प्रति संस्था 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अखाड़ों के बिजली बिल सरकार वहन करेगी। बिलों का भुगतान कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा और सरकारी कामों के लिए अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। बैठक में लगभग 665 करोड़ रुपए की त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना भी रखी गई है, जिसमें AI आधारित भीड़ नियंत्रण और 5 मिनट में इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा शामिल है। कुंभ मेला समीक्षा बैठक में पधारे साधु संतों के सुझावों का स्वागत किया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। नासिक के पवित्र कुंड, रामकाल पथ, मंदिरों और गुफाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही गोदावरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसके अलावा साधु संतों और

0: बाबा बर्फानी के भव्य और दिव्य अमरनाथ यात्रा, जहां आस्था बर्फीली वादियों से होकर शिव भक्ति के दिव्य स्वर में गुंज उठती है और इस श्रद्धा के शिखर तक जाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। कश्मीर घाटी में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सभी व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई से शुरू होनी है, जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। प्रशासन यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा के लिए रंगाई पुताई, टेंट और सफाई का काम तेजी से करा रहा है। सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई जाएगी, इसलिए यहां पर हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इस यात्री निवास में 1600 से ज्यादा यात्रियों के रहने की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे हर तरह से तैयार किया जा रहा है।
1: यहाँ पे जो अमरनाथ यात्री निवास है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर रहता है, बैंक का काउंटर रहता है, एक मेडिकल काउंटर रहता है, लंगर हाल रहते हैं, बाहर भी जो हमारे सामने अपोजिट है वहाँ पे भी लंगर का रहता है, पीछे पार्किंग की प्लेस है, पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे 1600 लोगों के लिए जो है रहने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे उनको किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे, काफ़ी मंदिरों पे भी इसका टाइम काम चल रहा है, काफ़ी धर्मशाला वगैरह हैं उस पर काम चल रहा है, इसी तरह अमरनाथ यात्री निवास पे भी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, क्योंकि यात्रा का जो फ्लैग ऑफ है वो 1st week of July से यहीं पे होगा।
0: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े,
1: किसी चीज़ की अव्यवस्था ना हो, किसी यात्रु को किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, क्योंकि सभी प्रदेशों से लोग यहाँ पे यात्रा के रूप में यहाँ पे आएंगे, तो उनकी चिंता करते हुए युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है कि किसी तरह की किसी भी चीज़ की यात्रुओं को कोई कमी ना हो।
0: करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह ऐसा है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और ये केवल आंकड़े नहीं, ये प्रमाण है आस्था के विश्वास का। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल भारी संख्या में लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहु और बेटिया में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटिया में।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé,

0: much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: गृह मंत्री अमित शाह आज NDRF के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुए। गाजियाबाद में NDRF के समारोह में अमित शाह ने परेड की सलामी ली और फिर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए एक पौधा भी लगाया। इस सेरेमनी में NDRF के जवानों ने रेस्क्यू के आधुनिक तरीकों का प्रदर्शन किया। इस दौरान जवानों ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाकर अपनी जांबाजी का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान रेस्क्यू में बेहतरीन काम करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया गया। और चलिए आपको दिखाते हैं हौसले और हिम्मत की ऐसी मिसाल जिसने अपने दृढ़ विश्वास के चलते समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है। कद में छोटी लेकिन हिम्मत में सबसे बड़ी रीता रानी प्रसाद, जो आज बड़े बड़ों के लिए एक मिसाल बन गई है।
2: किसी के शरीर की ऊंचाई से उसके व्यक्तित्व का कद मापना मुमकिन नहीं है। इसका सटीक उदाहरण है बिहार के गया की एक स्कूल टीचर रीता रानी प्रसाद। रीता का कद भले ही 3 फीट है, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते वो बड़े बड़ों को ज्ञान बांटती है। घर में ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत करके अब रीता 2010 से एक सरकारी स्कूल में सम्मानित टीचर है। हालांकि यहां तक का उनका सफर आसान नहीं था। अपने कद के कारण उन्हें समाज के कई ताने सहने पड़े।
3: हमारा हाइट देख के कि कुछ नहीं कर पाए, ये लोग कहते भी थे कि हम लोग तो कुछ किए भी नहीं है तो ये क्या कर पाएगी। तो उसी चीज का मुझे आन लगता था, आन हमें आज भी लगता है, आन हमें आज भी लगता। कोई कुछ बोल देता है तो मैं चुप, कुछ बोलती नहीं, पीछे मुड़ के चली जाती हूँ। उसी आन में मैं आज करके दिखा दिए। खुद मोहल्ला का लोग कहता था क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्या पढ़ाएगी, क्या लिखाएगी, क्या टीचर बनेगी, क्या नौकरी करेगी, लेकिन मैं आज सरकारी नौकरी लेके दिखा दिए।
2: लेकिन दिल में जज्बा हो और मन में कुछ कर गुजरने का हौसला तो कोई भी कठिनाई पार करना मुश्किल नहीं। ये रीता ने करके दिखाया। उन्हें बिहार सरकार के द्वारा बिहार गौरव और योद्धा का अवार्ड मिल चुका है और आज वो क्लासरूम में बेंच पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हैं, जिसमें उन्हें कोई हिचक नहीं।
3: कि बोर्ड हमारा ऊंचा पे है, 3 फीट पे 4 फीट पे, तो हम उस बोर्ड के नीचे बेंच लगा लेते हैं और हम किसी को नहीं देखते, अपने पढ़ाई के धुन में पढ़ाते रहते हैं बच्चे लोग को। अब बच्चे भी हमारे मगन होके पढ़ते हैं।
2: पास करके 2 वर्ष की टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद रीता ने कई सालों तक NGO से जुड़कर 15 सालों तक दिव्यांग स्कूल में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाया और अब न सिर्फ एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, बल्कि समाज की सारी संकीर्णताओं को जोड़ते हुए इंसान को खुद पर भरोसा करने और आत्मविश्वास की सीख भी दे रही है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।
1: तो लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
4: और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए GNT।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Sage University, transforming your passion into profession.
6: होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मुहर। पारादुर से अब तक 6 बार चुने गए हैं विधायक। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना जरूरी। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। मुजफ्फरपुर के बाजार में छाई शाही लीची की बहार, 400 रुपए सैकड़ा है दाम। शुरुआती सीजन में भी बढ़ गई लीची की भारी डिमांड। भीषण गर्मी के बीच गुजरात के वड़ताल धाम में तरबूज उत्सव का आयोजन, धाम में विराजमान सभी देवताओं को लगाया गया भोग। चीन के दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना जरूरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू, भारत मंडपम में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, चीनी दूतावास कर रहा है प्रतिनिधित्व। ईरान के विदेश मंत्री आराकची भी मौजूद। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत के मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित, प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में दिया था जोर। अमरनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 25 दिन में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में 25वें दिन लगा भक्तों का मेला, बुधवार को 80,800 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 32,400 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 5,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ में भी 21,250 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, अब तक 3,24,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथरई कार उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने दर्शन किए। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान करके निकाली गई भव्य यात्रा। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पुरुषों ने खींचा रथ। 17 मई तक चलेगा चित्रई कार उत्सव, कई राज्यों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, यात्रा में सादे लिबास में तैनात किए गए जवान। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए।

भांग ड्राई फ्रूट्स और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया श्रृंगार, राजा स्वरूप में भक्तों के दर्शन। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दुग्ध दही की शक्कर शहद फलों से रस बनाकर पंचामृत अर्पित किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। केरला में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तरबूज उत्सव का आयोजन हुआ, भगवान को अर्पित किए गए तरबूज। भगवान को 2500 किलो तरबूज का लगाया गया भोग, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मां कामाख्या के दरबार पहुंचे हेमंत बिस्व शर्मा, विधान के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। चीन दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों को लेकर होंगी चर्चा। मुजफ्फरपुर के बाजार में पहुंची शाही लीची, 400 रुपए सैकड़ा बिक रहा है शाही लीची। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज निकल कर आई, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जवानों को सम्मानित किया। रायपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भव्य स्वागत हुआ। जालौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंसेरी गांव का सैर किया और साथ ही साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। मानसा की बेटी सुपनीत कौर ने पंजाब बोर्ड में कमाल किया, 500 में से 500 अंक प्राप्त किए। लुधियाना की दिव्यांशी ने 12वीं में पूरे राज्य में प्राप्त किए 3 स्थान, नाथ स्कूल और घर में खुशी की लहर। गोंडा के आदित्य ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं में प्राप्त किया 96%, कॉलेज और घर में खुशी की लहर। कोयम्बटूर के सेवानिवृत्त शिक्षक की अच्छी पहल, नेत्रहीन वृद्धाश्रम के लिए दान की 1.5 करोड़ की जमीन। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। झांसी डीएम की अनोखी पहल, शिक्षक बनकर खुद क्लास में बच्चों को पढ़ाया। डीएम की क्लास में खुश नजर आए बच्चे, बोर्ड पर हल किए गए कई सवाल। डीएम के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तस्वीर और दिशा बदलने के लिए किया जा रहा है प्रयास। रामलोटन कुशवाहा नाम के इस बुजुर्ग ने बताया कि मृत्यु के बाद नहीं होगा उनका अंतिम संस्कार, अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सतना को दान करने का संकल्प। सतना में अनोखा आयोजन, बुजुर्ग ने जीते जी करवाया अपना 13वीं पांटे शोक संदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया पंसेरी गांव का दौरा, ग्राम विकास चौपाल और ग्रामीणों से बातचीत। घोड़ा दौरे पर आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महराज मलिक, नर्सरी और मदर ब्लॉक विकास के साथ सेब के बाग का उद्घाटन किया।
मलिक ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, इलाके के विकास को लेकर चर्चा की। ग्वालियर पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी, लोगों के खोए हुए फोन वापस किए। ग्वालियर पुलिस के 13 तुष्कारपूर्ण पहल के तहत लौटाए गए कई मोबाइल फोन्स। पीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मुहर। पारादुर से अब तक 6 बार चुने गए हैं विधायक। 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला पड़ाव होगा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा। केंद्र सरकार ने बढ़ाया आईपीएस प्रवीण सूद का कार्यकाल। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 1 साल का दिया गया है सेवा विस्तार। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। अमेरिका दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू। दिल्ली में एनडीएमसी का बड़ा फैसला, अपने विभागों में ग्रुप बी और सी के 1/3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम देना होगा। उत्तराखंड में ईंधन बचत अभियान के तहत धामी सरकार के बड़े फैसले, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से लेकर वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ावा देना मकसद। मुख्यमंत्री धामी के काफिले में भी 50% की हुई कटौती। जिन अधिकारियों के पास 1 से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है उनके लिए 1 दिन में 1 सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की ही अनुमति होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए, मुख्यमंत्री फ्लीट में न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल होगा। औरंगाबाद में भी दिखा ईंधन बचाओ अभियान का असर, आवास से साइकिल चलाकर 2 किलोमीटर दूर सिविल कोर्ट पहुंचे जिला जज। कान में आलिया भट्ट के देसी अंदाज ने जीत लिया फैंस का दिल। साड़ी गांव में बहुत खूबसूरत नजर आई। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार में नजर आई आलिया भट्ट। नथ बिंदी ने पूरा किया लुक का खास पहचान, पैरों में बैनी और पायल।

0: रेड कार्पेट पर भी आलिया एक और खूबसूरत लुक उनका नजर आया, ब्लू गाउन में नजर आई। वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल हुई मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डेनियल फ्रेंकल ने डिजाइन किया कॉस्ट्यूम। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। ओरिजिनल फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस की आधी रात की स्क्रीनिंग के लिए रेड कार्पेट पर स्टार विन डीजल समेत तमाम स्टार्स पहुंचे। डीजल ने एक काली जैकेट पहनी थी जिसके पीछे रेस कार के डिजाइन के साथ फास्ट फॉरएवर लिखा था। रेड कार्पेट पर डीजल के साथ जॉर्डाना ब्रूस्टर और मिशेल रोड्रिगेज भी नजर आए। रेड कार्पेट पर फिल्म स्टार पॉल वॉकर का प्रतिनिधित्व करने उनकी इकलौती बेटी पहुंची। इन द फ्यूरियस हॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म में वापस आऊंगा का 19 मई को ट्रेलर होगा रिलीज। फिल्म में दिलजीत दोसांझ का अहम रोल। तीसरी बार खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे करण वाही। कहा शो ने कुत्तों का डर खत्म किया। सलमान खान के किनारा करने के बाद वरुण धवन भी नो एंट्री 2 से किया उन्होंने किनारा। शाहरुख खान की किंग के सेट की से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, अलग अंदाज में नजर आए। सेलिब्रिटी चैट शो डबल डेट होस्ट करेंगी नेहा धूपिया। शो का ट्रेलर रिलीज।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहु और बेटियां में आज देखिए रिश्तों को मनाने में जुटेगा परिवार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
3: Saturday nights will never be the same.
4: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
5: The Tailgate Block Party.
3: The Tailgate Block Party.
4: 6 hours non-stop. Non-stop.
5: The best DJs from around the world.
3: The Tailgate Block Party.
4: Saturday night.
3: 8 p.m. Eastern.
5: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
4: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और न ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
2: यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
1: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: वी डी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मुहर। बरादुर से अब तक 6 बार चुने गए विधायक। गुरुग्राम सहित बाढ़ संभावित 13 जिलों में की गई बाढ़ मॉक ड्रिल, एनडीएमए एनडीआरएफ की टीमों ने किया राहत बचाव का लाइव डेमो। मुजफ्फरपुर के बाजार में छाई शाही लीची की बहार, 400 रुपए सैकड़ा है दाम, शुरुआती सीजन में ही बढ़ गई भारी डिमांड। भीषण गर्मी के बीच गुजरात के वड़ताल धाम में तरबूज उत्सव का आयोजन, धाम में विराजमान सभी देवताओं को लगाया गया भोग। कान में आलिया भट्ट का चौथा लुक आया सामने, डिजाइनर तरन ताहनियानी के डिजाइन किए फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में बिखेरा जलवा। चीन दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: romantic moments ke saath saath stylish footwear and trendy fashion bhi audience ko attract karta hai. Kuch aisa hi keh rahi hain aaj humse hamari Reet. वैसे रीत हम तो मिस कर रहे हैं आपका और राघव का रोमांस भी. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर, क्योंकि कहानी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो रहा है कहानी में, फटाफट लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स.
1: तुम्हारा मेरा मिलना लिखा तो होगा कहीं नसीबों का सितारा.
2: राघव का सरप्राइज
1: होगा कहीं न जाने क्यों हम नशी.
2: रीत की नाराजगी
1: को ये यकीन कि तुम संग हो तो बिगड़ी बातें सारी बन जाएंगी.
2: ऐसा ही होता है प्यार में कभी कभी.
1: सारी बन जाएंगी तुमसे बेहतर तुमसे प्यारा यारा कोई नहीं.
2: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में राघव ने पति नंबर वन का खिताब जीत ही लिया है. भाई रीत नाराज है, ऐसे में रीत की नाराजगी को दूर करने के लिए आज राघव ने अपनी रीत को प्यार भरा सरप्राइज दिया है. तभी तो देखिए कैसे गुब्बारों में छिपकर वो रीत के सामने आते हैं और तो और माफी वाला दिल भी उसे थमाते हैं, लेकिन रीत उसकी नाराजगी तो अब भी जारी है. ऐसे में राघव ने दिया एक और सरप्राइज. रीत की क्रेविंग को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गए हैं उसके लिए प्यारा सा केक. प्यार जताकर दिया है फूलों का गुलदस्ता

लेकिन रीत उसके तो नखरे मारने पड़ेंगे, वो तो गुलदस्ता भी फेंक देती है और मुंह फुला लेती है। ऐसे में राघव देते हैं उसे अप, जिसे देखकर रीत एक पल के लिए खुश तो होती है लेकिन अब भी राघव को अपनी नाराजगी जता रही है। बस फिर क्या, रीत की नाराजगी को दूर करने के लिए राघव ने ढूंढ लिया है एक और नायाब तरीका, और वो ये है कि वो अपनी रीत के लिए बन गए हैं जोकर।

भाई यहाँ टशन है तो नर्मदा और केतन उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार है। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों मियाँ बीवी भी एक दूसरे को छेड़ रहे हैं और प्यार की धुन पर नाच रहे हैं।

0: अब दोनों बेटे अपने अपने जोड़ीदार के साथ नाच रहे हैं तो भला ऐसे में महादेव पीछे कैसे हटते। वो भी पहुंच गए अपने पूरे परिवार को लेकर ताल से ताल मिलाने और खुशियां मनाने।
1: ओ

0: वही यहाँ महादेव और विद्या का पूरा परिवार झूम नाच रहा है क्योंकि शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि यश नशे की हालत में अपने घर के बजाय महादेव के घर में एंट्री कर लेते हैं और गिरने ही वाले होते हैं कि महादेव जाकर उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन यश को अपने घर की दहलीज पर देखकर धीरज का गुस्सा भड़क जाता है।
1: भैया

0: हट।
1: नीरो, नीरो, सत्या, मालो इसको।
0: नहीं नहीं नीरो।
2: अब नशे की हालत में बहन का प्यार यश को खींच लाया है या फिर यश स्टेशन दिखाने आया है, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो रज्जी और नर्मदा दोनों पूरी कोशिश कर रही हैं मोगरा का खुलासा करने में। देखना होगा उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं।
3: सिकंदर भैया, हमें आपसे एक बात करनी है प्लीज। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो अब हमारे आशु दादा की जिंदगी बचा सकता है और वो है आप। तो बताइए ना, आप मोगरा का सच हमारी फैमिली के सामने बताएंगे ना।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कॉमेडी सिचुएशन के साथ साथ क्वर्की फुटवेयर और हाई फैशन, ओ माय गॉड, ये तो है एक ऑल टाइम हिट कॉम्बिनेशन। वैसे देखिए ऑल टाइम हिट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सूरज और ईशा की जोड़ी का भी, लेकिन उनकी कहानी में फिलहाल आया है एक ऐसा ड्रामा जो हम सबको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी में भी हो जाए जल्दी से सब कुछ ठीक। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस कहानी की ओर।
2: ईशा बनी बच्चों की रक्षक।

0: पकड़ा गया बदमाश। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज कामयाब हो गया है बच्चा तस्करी करने वाले ग्रोह को पकड़ने में, और इसमें ये कामयाबी ईशा की वजह से मिली है। असल में ईशा को पता चल गया था कि वैन के अंदर वो बच्चे हैं। ऐसे में ईशा पहुंच जाती है उन बच्चों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वैन में उसे पूरन भैया और मोनिका नजर आ जाते हैं जो बच्चे के साथ मौजूद है। ऐसे में ईशा दोनों को वहाँ से रफा दफा कर खुद वैन के अंदर बैठ जाती है ताकि सूरज को ये पता ना चल सके मोनिका और पूरन ने खुशबू भाभी के बच्चे के साथ अपने बच्चे की अदला बदली कर दी थी। बस फिर क्या, इस बात से अनजान सूरज पहुँच जाता है बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खुलता है तो वहाँ ईशा बच्चों के साथ बैठी दिखाई देती है जो बच्चों को संभाल रही है। बस फिर क्या, सूरज फटाफट बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और साथ ही उस वैन के ड्राइवर से सच जानने की कोशिश भी करता है।
1: किसके बोलने पे बच्चा सप्लाई कर रहा था? चुपचाप बता दे वरना जिंदगी पर। जी
2: मैं तो ड्राइवर आदमी साथ माल की डिलीवरी करता हूँ, डिलीवरी के पैसे मिल जाते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं
1: मिलता। ऐसे नहीं बोलेगा आकाश, इसे ले जाओ और पुलिस की भाषा में पूछो सब कुछ हो लेगा।
3: लेके जाओ इसे।
4: शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने एक बच्चों की तस्करी करने वाले ग्रोह को पकड़ लिया है और कई मासूमों की जान बचा ली है।
1: माफ कीजिए, इस ग्रोह को पकड़ने वाला और बच्चों को बचाने वाला मैं नहीं बल्कि मेरी सेक्रेटरी ईशा जी है। जी हाँ, इन्होंने पता किया था कि एंटिक फर्नीचर बेचने की आड़ में बच्चों की तस्करी की जा रही है और हम अपने इंदौर शहर से वादा करते हैं कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड को भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे और इस शहर का हर एक बच्चा सेफ हो।
5: सूरज पहले से ही बहुत सारा इंतजाम किया था कि कुछ भी हो ये जो गिरोह है मतलब तस्करी करने वाली गिरोह, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है। और मौका ऐसा आ जाता है कि बच्चों को लेकर जाने वाले रहते हैं, अनीशा जी वहाँ पे पहुँच जाती है समय पे, बच्चों को बचा लेती है एंड सूरज आकाश के साथ मतलब कि एक आईएएस और आईपीएस दोनों एक साथ मिलके वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो किसी को नहीं पता, वो खुद कहीं ना कहीं इसमें शामिल आकाश भी है। ये बहुत जल्द रिवील्ड होगा सभी ऑडियंस को एंड सूरज को ये बात नहीं पता। सूरज इन सारी बातों से बिल्कुल मतलब कि दूर दूर तक कोई नाता नहीं है सूरज का। सूरज को बस इतना पता है कि ईशा जी की वजह से आज मतलब कि हमने एक गिरोह को पकड़ा है, अब बहुत जल्द इसका जो मास्टरमाइंड है उसे भी पकड़ लेंगे। तो अब मास्टरमाइंड जब पकड़ने के लिए सूरज अगला प्रयास करेगा सो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई नई गुत्थी निकलेगी जो कि शायद से आकाश तक पहुँचा दे सूरज को।
0: अब सूरज और आकाश ने मिलकर बच्चों को बचा तो लिया है लेकिन पूरी मीडिया के सामने सूरज ने ईशा की तारीफ की है। इस बात पर ईशा बेहद खुश है। खैर वो तो वहाँ से चली जाती है लेकिन सूरज वो अब भी जांच में लगा हुआ है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ऐसे में वो उस ड्राइवर की जिम्मेदारी आकाश को ही दे देता है और अब आकाश वहाँ से निकल गया है उस ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए।
5: बिल्कुल, सूरज को मतलब कि ये आए दिनों रिपोर्ट मिल रहे थे और ऊपर से ऑर्डर्स भी आ रहे थे। सूरज जैसे कि कलेक्टर है शहर का तो बहुत सारे मंत्री कॉल भी कर रहे थे कि आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो कृपया ध्यान दे, ऐसे कॉल्स भी आए हैं, हमारे शो में दिखाए भी गए हैं। तो सूरज उसी दिन से लग गया था मतलब कि ये गुत्थी पर्सनली लेवल पे सॉल्व करने के लिए।
0: फिलहाल तो सूरज कई बातों से अनजान है, अब देखना होगा कि ये गुत्थी सॉल्व करते करते सूरज के सामने और कितने सच आएंगे और क्या इस बार कभी खुलासा हो जाएगा कि ईशा आकाश के साथ नकली रिश्ता निभा रही है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: आज तो फुटवेयर के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, लेकिन जब बात करें हम ट्रेडिशनल आउटफिट्स की तो हैंडक्राफ्टेड मोजरीज और एम्बेलिश्ड जूतीज इनका तो कोई मैच ही नहीं है। ये तो है एक ऑल टाइम हिट कॉम्बिनेशन। वैसे ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
0: बेटी की सगाई पर झूम कर नाचा बलदेव, यशवर्धन और आध्या की सगाई पर शिवाय ने आकर लगाया ब्रेक,

सभी के सामने शिवाय और आद्या हुए एक। कलर्स के सीरियल दो दुनिया एक दिल में आज यशवर्धन खुशी से पागल हो गया है। भाई उसकी शादी आद्या से होने वाली है, ऐसे में होने वाले दूल्हे राजा का नाचना गाना तो बनता है। जरा देखिए कैसे वो झूम झूम कर सभी के सामने नाच रहा है। आद्या का हाथ थाम कर आद्या को भी सभी के सामने नचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आद्या वो तो बेबस और लाचार है क्योंकि अपने पापा के आगे उसकी एक जो नहीं चल रही। ऐसे में यशवर्धन नाचते नाचते न सिर्फ आद्या को लाता है बल्कि बलदेव का हाथ भी थाम लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बलदेव भी यशवर्धन के साथ सभी के सामने झूमने और नाचने लगता है।

अब यशवर्धन हो, पद्मा हो या बाकी घर वाले, सभी ने नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर तो की है। और फिर बारी आई है सगाई की, जहां पर यशवर्धन आध्या की उंगली में अंगूठी पहनाने ही वाला होता है कि तभी हो जाती है बाइक पर सवार होकर शिवाय की एंट्री, जो बांध कर लाया है उन सभी बदमाशों को जिसे बलदेव ने भेजा था शिवाय को मारने के लिए। और जरा देखिए कैसे आते ही वो दिखा रहा है सभी को अपना टशन भी।

वह शिवाई को देखकर कोई और खुश हो ना हो, लेकिन आध्या बहुत खुश है। और बलदेव वो तो हैरान है कि जिन बदमाशों को उन्होंने मारने के लिए भेजा था वो बदमाश हार गए हैं और शिवाय जीता जागता सभी के सामने खड़ा है। खैर शिवाय आ तो गया है, लेकिन उसके आते ही आध्या ने सभी के सामने किसी की परवाह ना करते हुए शिवाय को अपने गले से लगा लिया।

0: शिवाय पहचानती थी कि तुम आओगे।
1: लोग कर लो बात। पद्मा जी, आप ही ने कहा था ना कि सिर्फ आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, तो लो हमने सब अपनी आंखों से देख भी लिया और हमारी आंखें खुल भी गई। अगर आध्या का चक्कर कहीं और चल ही रहा था तो ये सगाई का नाटक किया ही क्यों?
2: भाई, यहाँ यशवर्धन के पापा ने सभी के सामने बलदेव पर अपना गुस्सा तो दिखाया ही, लेकिन शिवाय ने उसकी परवाह ना करते हुए सभी के सामने आध्या को अपने प्यार की निशानी यानी कि अंगूठी पहना दी। ये देखकर सभी हैरान हो रहे हैं और बलदेव उनका गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने हाथ में तलवार थाम ली शिवाय को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी एक ना चली।

0: TY. TY, हाथ छोड़ TY.
1: बलदेव छोड़ो.
2: बलदेव जी छोड़िए. बलदेव जी
1: TY छोड़ो. बलदेव छोड़ो.
2: छोड़ो प्लीज.
1: छोड़ो बलदेव. तुम्हें हमारी कसम बलदेव.
3: अब बलदेव को तो उनके परिवार ने रोक लिया, लेकिन शिवाय को कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि शिवाय ने बलदेव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जिसके चलते बलदेव जाएगा सलाखों के पीछे. और क्या वही लाएगा कहानी में नया ट्विस्ट?
1: शिवाय प्लीज केस वापस दे.
4: लेकिन हम ये केस वापस नहीं दे सकते.
3: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
5: रूही तो कह रही हैं कि जब बात करें फुटवेयर की तो ट्रेडिशनल एथनिक स्टाइल्स के साथ उन्हें अच्छे लगते हैं फ्लैट सिंपल एथनिक फुटवेयर. इनफैक्ट हील्स भी अगर हो तो वो कह रही हैं कि उनमें एथनिक टच हो. वाओ, वोकल फॉर लोकल. तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको रूही के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी कहानी में आज. पहले उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस कहानी में हो सब कुछ सुंदर, इस कहानी के नाम की तरह. लेकर चलते हैं हम सबको मन सुंदर के सेट पर.
3: ढोल नगाड़ों के साथ रूही की ससुराल में वापसी. भड़का दादी का गुस्सा. नाहर के लिए रूही की नई जंग. दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्द ही रूही वापस अपने ससुराल में एंट्री करने वाली है. और देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ पूरे हक से वो घर में एंट्री भी कर रही है अपना टशन दिखाते हुए. लेकिन तभी वहाँ दादी पहुँच जाती है. ना सिर्फ ढोल नगाड़ों पर ब्रेक लगाती है बल्कि वो तो रूही पर भी अपनी नाराजगी जताती है.
2: मैं यहाँ तमाशा करने रही, तमाशे को रोक के आई और अपने पूरे हक को अपने हक से वापस
3: भाई. रूही तो मुक्ति और नकली नाहर का भांडा फोड़ने के लिए घर में वापसी कर रही है जो जल्द ही सीरियल की कहानी में दिखाया जाएगा. फिलहाल तो रूही की परीक्षा शुरू हो गई है क्योंकि उसके नाहर की आंखें खतरे में जो है. असल में भीख मांगने की टोली नाहर की देखरेख

0: नवेली दुकानों है मैं सीधा आ उसके हाथ में घुसा दे। ये क्या कर रहा है? सारा कोई भी काम ठीक से नहीं होता तुझसे।
1: मैं हिंदी पिक्चर का विलन हूँ, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने पहले कभी नहीं किया।
0: अब क्या ये काम मैं सिखाऊं तुझे?
2: मैं सिखाता हूँ।
3: भाई इस टोली के एक आदमी ने तो मना कर दिया, लेकिन तभी भीख मांगने की टोली का बॉस आ गया जो इनको आंखें फोड़ना सिखाएगा। जरा देखिए कैसे वो भी पहुंच गया है सलाइयां गरम कर नाहर की आंखें फोड़ने के लिए, कि तभी दो भिखारियों की एंट्री हो गई जो लेकर आए हैं कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो अपने साथ लेकर आए हैं नई भिखारन को जो आई है घूंघट में, और इस घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि रूही है जिसे बॉस अपनी टोली में शामिल करने से मना कर देता है। लेकिन रूही इस टोली के बॉस के आगे गिड़गिड़ाती है और शामिल होने की गुजारिश करती है।
4: अबे इसकी शक्ल देखने लायक नहीं है, इसे भीख कौन देगा? चल दबा कर यहाँ से।
5: देखिए हम भीख मांगने में एक नंबर, और आप हमने हमें देखिए हम शामिल कर लीजिए, और हमारे हमारे भीख मांगने का तरीका तो हमने तो दिखाया ही है।
0: जी बॉस
6: यही करता
4: है सर, जरा हम भी तो देखे कैसे भीख मांगती है।
3: भाई रूही की इस एक्टिंग ने तो बॉस का दिल जीत लिया, लेकिन अब रूही की अगली परीक्षा शुरू हो गई है क्योंकि इस बॉस ने रूही को नाहर की आंखें फोड़ने का जिम्मा जो दे दिया है। ऐसे में रूही ने बहाना किया और सलाइयां गरम करने पहुंच गई ताकि मौके का फायदा उठाया जा सके, और देखिए कैसे सलाइयां गरम करते हुए उसने कुछ ऐसा किया कि पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया, और इस धुएं का फायदा उठाकर उसने नाहर की आंखों में पट्टी बांध दी जिसमें दोनों आंखों की तरफ खून भी लगा हुआ है, और बॉस को बता दिया कि उसने इसकी आंखें फोड़ दी हैं। ऐसे में ये देखकर भीख मांगने की टोली का बॉस खुश हो गया और रूही को उसने अपनी टोली में शामिल भी कर लिया। रूही को तो लगता है कि उसने पहली जंग जीत ली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो भिखारन इस टोली में जुड़ी हुई है पहले से, उसने रूही की चोरी पकड़ ली और हाथ में लगे खून को सभी के सामने दिखा दिया। लेकिन रूही ने यहाँ पर भी बहाना बना दिया कि आंख फोड़ते वक्त उस आदमी का खून उसके हाथों में लग गया। अब देखना होगा कि रूही कैसे इन सभी को चखमा देकर अपने नाहर को वापस अपने घर लेकर जाएगी और कहानी में नया ट्विस्ट लाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: आज तो फुटवेयर के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें और शेयर कर रहे हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से जुड़ी है इनसे, जी हाँ इनसे, जिससे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने खास मुलाकात। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, करते हैं इनके साथ इंटरेस्टिंग डे आउट।
8: का अनोखा टशन

0: टीवी पर हाल ही में ये नया सीरियल शुरू हुआ है जहां पर पुलकित निभा रहे हैं युग का किरदार जो है एकदम बिंदास, जेन ज़ी वाली सोच रखता है और हर सिचुएशन को अच्छे से टैकल करता है। तो कुछ ऐसा है युग का किरदार। धीरे धीरे आप युग को तो जानेंगे ही, लेकिन आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे पुलकित से मुलाकात, जानेंगे उनके बारे में ढेर सारी बातें, क्या है उनका दिनचर्या, कैसे वो अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उनके साथ करेंगे सेट की सैर, देखेंगे कैसे वो पुलकित से युग के किरदार में ढलते हैं, मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से जिनके साथ उनका रियल जैसा रिश्ता जुड़ रहा है क्योंकि सीरियल अभी शुरू ही हुआ है। इसके अलावा पुलकित के बारे में कई और चीजें हम जानने वाले हैं, तो ये सब कुछ जानने के लिए शुरू करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की, सीधा चल के पुलकित के पास। तो भाई हम आपको बता दें कि पुलकित जैन अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं और मजे की बात तो ये है कि वो सेट पर ही एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि शूटिंग के टाइट स्केड्यूल के चलते उन्हें जिम जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एक्सरसाइज भी तो जरूरी है, वो भी डेली। इसीलिए सेट पर जल्दी पहुंचकर सबसे पहले वो अपना वर्कआउट सेशन करते हैं, वो भी इस गार्डन में जो कि है सेट का गार्डन, जहां पर वो वॉकिंग, रनिंग और बाकी की सारी एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो फिट रहे।
1: Hi, good morning. I'm Pulkit Jain and I'm playing the character Yug Sarpotdar in the serial 30 Ke Paar Jab Mila Pyar only on Dangal TV. And ye aap jaise dekh sakte hain, ye hai hamara ghar. Ye mera ghar dikhaya hai yahan pe, itna bada bangla. Aajkal Bombay mein kiske paas hota hai, but hamare paas hai. And ye hai iske samne itna bada garden. Ye bhi milna bahut mushkil hota hai Bombay ke gharon mein, but hamare ghar mein hai ye garden. तो क्या है ना कि जब शूट चालू हुआ था उसके बाद से आई गॉट वेरी लेस टाइम टू गो टू द जिम एंड डू माई वर्कआउट। तो यहाँ पे जितना भी हो पाता है ताकि मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट भी ना हूँ क्योंकि इसके बाद शूट करना होता है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मेरे मैदान में थोड़ा बहुत कार्डियो, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग। सो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा

0: तो मैं ना, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था, लाइक यू नो सिंस फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड रनिंग, फिर उसके बाद फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, डांस. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरे को बहुत शौक पड़ा कि मैं अपने आप को बहुत फिट रखूं एंड हेल्दी रखूं एंड मूवमेंट भी रखूं साथ में, जस्ट नॉट बल्किंग बट ऑल्सो यू नो कीपिंग माई फिजीक टोन्ड एंड ऑल्सो कीपिंग द मूवमेंट पॉसिबल. सो इसलिए मुझे इंटरेस्ट हुआ कैलिस्थेनिक्स में. सो आई स्टार्टेड कैलिस्थेनिक्स अराउंड 9-10 स्टैंडर्ड से ही. फिर उसके बाद जैसे ही उम्र बढ़ती गई, यू नो कॉलेज इन सब का प्रेशर बढ़ता रहा, तो ये सब कम होता रहा एंड अभी शूट के कारण वो भी नहीं हो पाता. बट आई ट्राई डूइंग इट इन बिटवीन, कभी भी यहाँ पे या फिर कभी जिम में, टू जस्ट टू कीप माई सेल्फ यू नो बींग एबल टू मूव प्रॉपरली, बिकॉज आई ऑल्सो डांस एंड जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट, क्योंकि कौन नहीं फिट रहना चाहेगा, राइट?
1: बाकी एक्सरसाइज के बाद अब बारी डंबल्स की, जो वो अपने साथ कैरी करते हैं.
0: तो आफ्टर द कार्डियो, आफ्टर लिटिल बिट ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज, अब हम बढ़ते हैं डंबल की तरफ. दो छोटे छोटे डंबल है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत बाइसेप्स पंप हो जाती है. सो लेट्स गो.

0: पैसे आज पुलकित करवा रहे हैं अपने सेट की सैर। कैसा है उनका ये सेट वाला घर, कैसा है उनका कमरा और इसमें क्या क्या खास चीजें हैं।
1: तो ये रहा हमारा छोटा सा वर्कआउट सेशन एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रूविंग। तो अब टाइम हो गया है हमारा सेट पे जाने का, सो लेट्स कम। तो ये रहा मेरा घर, यहाँ का घर, सेट का घर। तो आइए चलते मेरे घर। ये है हमारे शो का पोस्टर, ये हूँ मैं, 11 मई मंडे से सैटरडे 9:30 PM, डोंट फॉरगेट टू वॉच। ये हमारा हॉल है, वैसे कल लॉन्च पार्टी था यहाँ पे, सो उसका सेटअप लगा हुआ है अभी तक, बट यस मोर ओवर दिस इज माय हॉल। एंड ये हमारी माता अम्बा बाई। सो एज द शो इज बेस्ड फ्रॉम कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर, विच इज़ वेरी फेमस ऑल्सो। तो हम वहाँ पे गए थे हमारे शूट के बीच में, जस्ट टू गेट द ब्लेसिंग्स फॉर द शो। सो यस आइए हम चलते हैं अपने मेकअप रूम में। ये एक अलग सेट बना है, ये हॉस्पिटल का सेट बना है। एक्सीडेंट ऐसे कुछ। ये मेरा रूम दिखाया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं मेरे कुछ फोटोज हैं। आइए क्लोजअप देखिए इसका, ये यहाँ पे। एंड मुझे गिटार का भी बहुत शौक है, सो यहाँ पे गिटार भी रख दिया। फोटोज ही फोटोज हैं। फिलहाल तो ये रूम बना हुआ नहीं है, वैसे इतना गंदा नहीं रहता मेरा रूम, बट अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है। वैसे मुझे OCD है। ये देखिए युक, मुझे ना थोड़ा बहुत इन रियल लाइफ OCD है, सो मुझे वैसे भी बिखरा हुआ पसंद नहीं है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये मैंने अपने घर पे ही शूट किया था अपने खुद के कैमरे से। तो यस मुझे थोड़ा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी शौक है, तो वो मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए। ये फोटो, ये भी मेरे घर का फोटो है, ये भी मैंने खुद ने क्लिक किया है फोन में। दिस इज ऑफ 2024, दिस इज ऑफ 2025, एंड वो जो है वो भी 2024 का है। सो आई थिंक हु लुक बेटर, मी और

0: ये था मेरा रूम, अब चलते हमारे मेकअप रूम में।
1: तो अब बारी मेकअप रूम में जाने की, क्योंकि झटपट से रेडी होना है और युग के किरदार में ढलना है। और सेट पर पहुंचते ही युग को मिल गए उनके व्योम भैया।
0: तो है ये है हमारा मेकअप रूम, ये हमारे व्योम भैया। यस, ये मेरे बड़े कजिन ब्रदर बने शो में, और इनका रोल काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको देख के पता चलेगा। ये है हमारा नाश्ता, ये जो आ गया है यहाँ पे, दिस इज पाव एंड सम भुर्जी। वैसे तो मैं लेके आता हूँ अपने प्रोटीन बार्स और ये सब, बट आज थोड़ा सा भूख लग गया है तो मुझे लग रहा है कि एक बाइट तो खा ही सकता हूँ।
1: तो भाई झटपट से नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद अब किरदार में ढलना है और स्क्रिप्ट भी तो पढ़नी है।

0: पानी पीते रहना बहुत जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है बॉम्बे में तो इतना पसीना बह जाता है कि ये थर्स्ट आपको अपने आप लगने लग जाता है। सो आप वैसे भी बहुत पानी पीते हैं, एंड ऑफ कोर्स वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। द मोर यू ड्रिंक द मोर यू पी एंड द मोर यू एक्सक्रीट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। हाँ जी, तो ये हमें मिल गई है आज की स्क्रिप्ट, आज की नहीं बेसिकली एक सीन की स्क्रिप्ट। सो ऐसे हमें काफ़ी स्क्रिप्ट्स मिलते रहते हैं दिन भर में, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बीच में बहुत सारे सीन्स लगते हैं मेरे बाकी अदर कास्ट के। बस अभी हमें ये प्रिपेयर करना है, उसके बाद रेडी होके जाना है नीचे।
1: तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया और स्क्रिप्ट भी पढ़ ली है, अब बारी मेकअप करने की। वैसे पुलकित भी अपना स्किन प्रेप करते हैं, वैसे तो इनका मेकअप हल्का फुल्का ही होता है लेकिन फिर भी स्किन प्रिपरेशन करना जरूरी है।
0: तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने मेकअप के साथ। सो आज के जमाने में द जनरेशन हैज बिकम वेरी स्मार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, यू नो, अब फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ देयर स्किन इक्वली। एंड आई थिंक कि यस, अ गाय बीइंग अ मैन शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शुड टेक केयर ऑफ हाउ यू लुक, शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ हाउ वेल यू अर्न एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट यस यार, अपना स्किन, अपने हेयर, अपने फिजीक को मेंटेन रखना, अच्छा रखना, इससे आपको जो लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट इज द रीजन व्हाई यू नो अ मैन शुड एक्चुअली फोकस इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज हाई, सो यू फील गुड, यू फील गुड, यू वर्क गुड, यू वर्क गुड, यू अर्न गुड, एज सिंपल एज दैट। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पहली बात तो मैं फेस वॉश करता हूँ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे, एंड विद अ गुड यू नो फेस वॉश क्लेंजर, एंड देन उसके बाद आई अप्लाई अ क्रीम। I wear mask most of the time whenever I'm traveling or anything of that sort. So yes, dekhiye ab kaise hota hai hamara makeup. Let's go.

0: तो देखा आपने कैसे झटपट से हो गया पुलकित का मेकअप, और अब वो आउटफिट पहनकर पुलकित से युग के किरदार में ढल जाएंगे।
1: जी, तो हो गया मेरा मेकअप लुक तैयार। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद सनस्क्रीन, फिर उसके बाद लगा था प्राइमर, फिर अंडर आई के लिए वो कुछ ऑरेंज कलर का लगाते हैं ताकि यू नो इट डजंट कम आउट और पॉप आउट यू नो द ब्लैकनेस। और ब्लैकनेस के ऊपर हम जब वाइट करते हैं, मतलब जो हम ये लगाते हैं हमारा बेस का कलर, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इट कम्स आउट टू बी लिटिल ऑड, यू नो इट लुक्स डिफरेंट। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा रेड रेड कुछ लगाते हैं, फिर उसके बाद दे डू द बेस, एंड फिर बेस के बाद होता है हमारा सेटलिंग। पाउडर से करते हैं वो लोग, फिर थोड़ा बहुत पफ करके वाटर डाल के सेटल कर देते हैं मेकअप को और हो जाते हैं हम तैयार। तो अब हम थोड़ा टाइम निकाल के हमारा स्क्रिप्ट लर्न कर लेते हैं, क्योंकि यू नो बचपन में मैं रट्टा मारने में थोड़ा कमज़ोर था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब आदत हो गई है स्क्रिप्ट लर्न करने की। तो वो हम थोड़ा बहुत बीच में कर लेते हैं जब तक हमारा कॉस्ट्यूम आता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हम रेडी होके कैसे दिखते हैं।
0: तो भाई शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, ऐसे में पुलकित कर रहे हैं अपने सीन की रिहर्सल, अपने डायलॉग्स को रिहर्स कर रहे हैं, वो भी हमारे कैमरे के सामने।
1: ब्रो, लड़की को छेड़ने वाले गुंडे वुंडे बहुत 90s वाला ड्रामा, कुछ नया सोच कर आओ। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर लिल बिट इन डेप्थ, सो युग इज वेरी फ्री माइंडेड, वेरी यू नो आज़ाद, वेरी टेंशन फ्री, एंड उसे सब चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है, उसे लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। वो घर का छोटा बेटा है और थोड़ा सा पैम्पर्ड भी है, और अब उसे थोड़ा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है आगे जाके इस एपिसोड में। यू नो ही इज़ वेरी जेन ज़ी, ही इज़ वेरी मॉडर्न, यू नो गुड विद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो इसमें एक लाइन है, लड़की को छेड़ना ना, लड़की को छेड़ने वाले गुंडे वुंडे बहुत 90s वाला ड्रामा है, कुछ नया सोच कर।
2: लाइट्स कैमरा एक्शन।
1: सो हमारा लाइन है कि ब्रो गुंडे को छेड़ने वेड़ने एंड ऑल इज सो 90s, कुछ नया सोच कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे हीरोइन को छेड़ने कुछ गुंडे आ रहे, और बीइंग योग बीइंग अ जेन ज़ी यू नो ही इज लाइक क्रिपिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि यार गुंडे वुंडे इट्स सो फन, इट्स सो 90s।
0: अब बारी झटपट से चेंज कर पूरी तरह से युग बनने की, और देखिए कैसे झटपट से हो गया इनका मेकअप। पुलकित से ये युग बन गए, और इन्होंने मिलवाया अपने व्योम भैया से, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग पहले ही दिन से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है।
1: तो अब हमारा कॉस्ट्यूम आ गया है, दिस इज माय कॉस्ट्यूम, और हम मिलते हैं थोड़ा सा रेडी होके। तो ये है मेरा लुक आज का, आज हम थोड़ा रेसलिंग दिखा रहे हैं, सो दिस इज द रीजन व्हाई युग इज ड्रेस्ड लाइक दिस। एंड ये है हमारे व्योम भैया, इनका हो गया शॉट, आपने मिला था, आप मिले थे इनसे, इनका शॉट हो गया फर्स्ट शॉट, कैसा है आपका एक्सपीरियंस?
3: बड़ा ही मज़ेदार और गर्म भी, बहुत धूप है भाई और इस धूप में अब मेरे छोटे ने आज पूरी जान लगानी है आज पूरी इसने। अरे पुलकित बड़ा ही खूबसूरत है, इतना हैंडसम, खूबसूरत, टॉल, इतना सॉफ्ट स्पोकन लड़का, मैंने तो मुझे लगा नहीं लंबे टाइम से मैं कहीं मिला हूँ किसी को ऐसे, इस साक्षात चॉकलेट है ये सामने बहुत ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट है यार।
1: थैंक यू। एंड व्योम भैया इज एक्चुअली लाइक माई गाइड यहाँ पे, एंड यू नो ही इज़ वेरी समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही नॉलेज है इन्हें फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में।
3: मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलकित इतना प्यारा है कि एवरीबॉडी इज गिविंग गाइडेंस टू हिम, सब गाइड ही बन गए इसके।
1: दैट्स ऑल्सो ट्रू, पीपल इन द सेट दे आर सो गुड, कुछ ना कुछ अपना सब कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं मेरे को। सो यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
3: थैंक यू भाई।

0: से आज होने वाला है युग का दंगल वाला सीन, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब भी शूटिंग में थोड़ा समय है।
1: अभी हमारे सेट पे आज कम लोग आए, कम आर्टिस्ट आए, सो व्योम भैया वाज वन, आई एम द सेकंड वन, एंड तीसरे हम आर्टिस्ट से मिलने चलते हैं। चलो लेट्स गो। ये है मेरे अखाड़ा का सीन, यहाँ पे होगी कुश्ती, यहाँ पे होगी पिटाई। अब मेरी या सामने वाले की, वो देखने के लिए वॉच 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ दंगल टीवी पर।
0: ऐसे में युग पहुंच गए हैं अपनी तन्वी से मिलने के लिए, यानी कि शो की हीरोइन गिरिजा। तो आइए देखते हैं कैसा हो गया है पुलकित और गिरिजा का बॉन्ड।
1: ये है तन्वी का रूम, लेट्स गो मीट हमारी शो की लीड तन्वी उर्फ गिरिजा प्रभु।
2: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
2: अच्छी बॉन्डिंग है अब तक, बहुत अच्छा चल रहा है और टच छोड़ आगे भी अच्छा ही होगा। मजा आता है उसके साथ सीन करने में, बहुत सिंसियर है काम को लेके और उतना ही शरारती भी है, बट मजा आता है। मतलब जब काम करते हो तब काम के साथ सीरियसनेस रहनी चाहिए, और जैसे ही कट हो जाता है फिर उसकी शरारती शुरू हो जाती है और वो बहुत फूडी है, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ कोई है जो फूडी है और जिसे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। मेरे पास
1: कुछ लेके आई हो मेरे लिए?
2: मेरे पास जो है वो ये नहीं खाते,
1: नॉनवेज।
2: हाँ लेकिन मेरे पास चने हैं जो डाइट के लिए अच्छे होते, तो वो दे सकती हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स है वो दे सकती हूँ?
1: दे सकती हूँ, नहीं देना पड़ेगा।
2: यस
1: yes. ये जो मैं दूसरों का खाना वैसे खाता नहीं हूँ, बट ठीक है।
2: थोड़े से
1: अरे वाह क्या बात है, हम चख के देखते हैं क्या नहीं।
2: जो हर शो में मसाला लगता है तो मैं लेके घूमती हूँ मसाला।
1: क्या बात है, वेरी टेस्टी।

0: हो जाइए तैयार तन्वी और युग की ये अनोखी लव स्टोरी देखने के लिए। वैसे पुलकित से जानते हैं कि कैसे एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और देखते हैं क्या है उनका सफरनामा।
1: So talking about the journey of Pulkit Jain, I come from Bangalore and I'm a Marwadi Jain. You know my roots are from Rajasthan. मेरे parents Marwadi हैं, मैं भी Marwadi हूँ. But मेरा brought up जो है वो बैंगलोर में हुआ था. मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ बैंगलोर में हुआ था. सो इस वजह से मेरा कोई नाता नहीं था इस इंडस्ट्री से और ना ही कभी सोच था कि यू नो कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडियस गाय, नॉट वेरी स्टूडियस बट आई वाज एन एवरेज से गुड काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, तो मेरा हमेशा से सपना कुछ और था. फिर हर यू नो क्लास के साथ मेरा प्रोफेशन, मेरा सपना चेंज होता रहा. बट फाइनली आई लैंडेड इन टू एक्टिंग and you know I've been acting since 2021. So 2021 mein main shift hua tha Bombay October ke aas paas. So yes, it's been almost 4 years that I'm in Bombay and I've done ads and maine modeling ki thodi bahut, acting. This is my first show as a lead and my parents are really happy and really proud because you know coming from a Marwadi family, we all can relate that बिजनेस इज सच अ कोर थिंग, या तो बिजनेस या तो जॉब, क्योंकि कोई हटके बहुत कम लोग हम यू नो बिलीव करते हैं सोचने में. हमें सिर्फ पैसा पैसा पैसा चाहिए होता है. बट मैंने अपना पैशन चेज किया. माई पेरेंट्स वेर रियली सपोर्टिव एंड थोड़े बहुत वो थे कि कर लेगा तू, मैंने कहा कर लूँगा पापा, एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं. तो यस, दिल पे पत्थर रख के उन्होंने भेजा मुझे बॉम्बे अपने से दूर. सो आई एम दी एल्डेस्ट चाइल्ड, आई हैव टू अदर सिबलिंग्स, आई हैव अ यंगर सिस्टर हु इज 3 years यंगर टू मी एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर हु इज 15 years यंगर टू मी. सो यस, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई फैमिली एंड स्पेशली मॉम्स होती हैं इमोशनल. सो यस, बहुत दिल पे पत्थर रख के मुझे बाहर भेजा, मेहनत करने के लिए बोला. And yes, I guess thori bahut rang la rahi hai meri mehnat. And this is just the start. Picture abhi baki hai mere dost.

0: तो भाई अब हो गई है बारी शूटिंग पर सीन शूट करने की, जिसके लिए झटपट से युग को जाना है। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। उम्मीद है तन्वी और युग की जोड़ी लोगों के दिल में जगह बनाए।
1: तो जैसे आपने देखा, ये है हमारा यूजुअल डे। वी कम ऑन द सेट, हम थोड़े बहुत कसरत करते हैं, थोड़ी बहुत फिजिक पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेकअप चालू होता है, फिर हम कॉस्ट्यूम बदलते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्रिप्ट लर्न करते हैं, फिर हम अपने सीन में चले जाते हैं। तो यस, मेहनत तो काफ़ी है, हमारे शो को प्यार देते रहें। वॉच 30 के पार जब मिला प्यार ऑन दंगल टीवी एट 9:30 PM मंडे टू सैटरडे। एंड डेट सारा प्यार देते रहिए एंड हम मेहनत करते रहेंगे आपको खुश रखने के लिए। आप बस अपने घर पे चिल करें, 9:30 को हमारा शो देखें।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: सिंपल फैशन के साथ साथ कंफर्टेबल फुटवेयर, यही ऑप्शन अडॉप्ट करेंगी हमारी राध्या। लेकिन राध्या, आपकी कहानी में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है सिंपल, क्योंकि यहाँ तो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए फिर पता कर कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है राध्या और प्रथम की जिंदगी में आज। क्या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा? लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट तक।
1: फिर उलझे प्रथम और राध्या के रिश्ते। शुरू हुई राध्या की परीक्षा। बड़ा रजनी का डर। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या और प्रथम के रिश्ते फिर से उलझने वाले हैं। फिर से दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने वाली है। इसी बात का आज फिल्माया गया है प्रोमो शूट भी, जहां पर प्रथम राध्या पर शक कर रहा है और राध्या अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। खैर, ये तो आने वाली कहानी है। फिलहाल तो आज राध्या बेहद दुखी है, क्योंकि उसे हार जो मिली है, और देखिए कैसे हताश होकर वो जमीन पर बैठ भी गई है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि कोई गाड़ी आकर उसे टक्कर मार सकती है। खैर, राध्या तो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है और वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन प्रथम उसी सड़क पर अपनी कार में था जो राध्या को पहचान न सका। वहीं दूसरी ओर रजनी डरी हुई है कि कहीं निहारिका के वापस आने से उसके बेटे बहू के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। इसीलिए देखिए कैसे वो अपने घर के मंदिर में पहुंच गई है महादेव के आगे हाथ जोड़ने। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते शिव और पार्वती की तस्वीर गिर जाती है। ऐसे में रजनी उस तस्वीर को उठाकर साफ करने लगती है, लेकिन पार्वती के चेहरे से दाग साफ नहीं होता। इसी बात को लेकर रजनी और भी परेशान हो जाती है और उसे अंदेशा हो जाता है कि जरूर प्रथम और राध्या के रिश्ते की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में देखिए कैसे वो महादेव के आगे हाथ जोड़कर मनोकामना कर रही है कि उसके बेटे और बहू के रिश्ते में सब ठीक रहे। इसी बीच प्रथम भी बुलबुल से टकरा जाता है और बुलबुल के हाथ में जो फोन होता है वो जमीन पर गिर जाता है।
2: ये बड़ी दादी का फोन है, मुझे खेलने के लिए दिया था। ये बड़ी दादी का पुराना फोन है, पर देखो ना, इसमें कुछ भी हो रहा है।
3: बुलबुल
2: आई मम्मा।
1: भाई गिरने से अचानक फोन शुरू तो हो जाता है, लेकिन शुरू होते ही प्रथम के सामने राध्या का ऐसा वीडियो आता है जिसे देखकर प्रथम गुस्सा होने लगता है। यानी अब फिर से प्रथम और राध्या के बीच नफरतें शुरू होंगी। देखना होगा कहीं ये प्लान भी निहारिका का तो नहीं है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: अभीरा, आज तो फुटवेयर के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। लेकिन क्या आपकी कहानी से आ रही है हमारे कोई गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट? वैसे आपकी कहानी में ना, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर भी होता है ढेर सारा स्टाइल। तो क्या आपको भी देनी है हमें कोई फुटवेयर टिप? चलिए लेकर चलते हैं आपको अभीरा और अरमान के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में।
1: दादी सा का बर्थडे सेलिब्रेशन, खुशी से झूमा पूरा परिवार। क्या अरमान अभीरा को मिलेगा एक दूसरे का प्यार? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज सभी घर वाले परेशान हैं, क्योंकि किसी को दादी सा नजर जो नहीं आ रही, और सभी ने हाथों में तोहफा भी ले लिया है दादी सा को देने के लिए, क्योंकि दादी सा का जन्मदिन है। ऐसे में मुक्ति और मायरा पहुंच जाती हैं सभी को ये बताने कि दादी सा कहाँ है। बस फिर क्या, सभी पहुंच जाते हैं दादी सा के पास और देखिए कैसे दादी सा की तरह सभी योगा करने लगते हैं, क्योंकि वो दादी सा का बर्थडे दादी सा की तरह ही सेलिब्रेट जो करना चाहते हैं।
4: ये सब क्या हो रहा है? आपके
3: बर्थडे मनाने की कोशिश हो रही है।
4: हैप्पी बर्थडे
5: थैंक यू थैंक यू थैंक यू
6: थैंक यू सो मच।
7: दादी आंटी आप इतने मुश्किल मुश्किल योगा पोजेस कैसे कर लेती हो?
8: चुटकी बजा के, क्योंकि हमारी दादी सा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
9: जिंदगी मुश्किल थी जब हमारा परिवार अधूरा था लड़की, पर किस्मत ने हमारी बच्चियों को घर वापस भेज के हमें सबसे बेहतरीन तोहफा दे दिया। अब हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए मनोज, नो गिफ्ट।
10: पर हमें तो पार्टी चाहिए दादी सा।
9: कब हमारा बर्थडे आता था चला जाता था हमें पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब सब साथ हैं तो ये बर्थडे हम चुपचाप जाने नहीं देंगे। ये पार्टी तो हम जरूर करेंगे।
7: सेलिब्रेशन शुरू होगी।
1: भाई कावेरी तो वाकई बहुत खुश है क्योंकि उनके बर्थडे के मौके पर पूरा परिवार फिर से एकजुट हो गया है। लेकिन अब बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है, ऐसे में सभी पार्टी की डिमांड करने लगते हैं और दादी सा हामी भी भर देती है। लेकिन सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू हो जाता है और देखिए कैसे सभी लोग मिलकर दादी सा के लिए झूम झूम कर नाचने गाने लगते हैं। ये देख दादी सा भी खुश हो जाती है और वो भी पूरे परिवार के साथ ताल से ताल मिलाती है।

अब विद्या कोशिश तो कर रही है बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने की, लेकिन अरमान की हिचकिचाहट ऐसी कि वो अपनी माँ से ही दूर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विहान भी परेशान है क्योंकि दिशा इस खास मौके पर घर पर जो नहीं है। फिलहाल तो विहान ने दिशा को बता दिया है कि आज पार्टी होने वाली है। वहीं पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट तो कर ही रहा है, लेकिन ये सेलिब्रेशन डबल तब होता है जब दादी सा अपनी टॉफी का पिटारा खोलकर सभी को टॉफी बांटती है और विद्या से उनका सामना होता है।

0: खैर धीरे धीरे सारे रिश्ते सुलझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक रिश्ता ऐसा है जिसे मुक्ति मायरा और दादी फिर से एक करना चाहती हैं, और वो है अरमान और अभीरा का। ऐसे में दोनों बेटियां बहाना करती हैं कि उनका सामान गार्डन में गिर गया है, जिसके चलते अरमान अभीरा जाते तो हैं, लेकिन उन्हें मिलता है एक तोहफा। देखना होगा क्या ये तोहफा इन्हें करीब लाएगा।
1: ये चाबी, इस गाड़ी को एक चांस देके देखो, क्या पता रिश्ते को भी सेकंड चांस मिल जाए।
2: ये लव कहानी बड़ी से बड़ी लव स्टोरीज बिगड़े को बना देती।
3: नो वे।
1: पर तुम भी तो चाह रही थी ना।
3: ये आइडिया कैंसिल अरमान।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो फुटवेयर के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए मन्नत को एक हॉट एंड हैपनिंग पार्टी आउटफिट में, और उसके साथ वो पहने ग्लास स्लिपर्स। ओ माय गॉड, कितनी ग्लैमरस लगेंगी हमारी मन्नत। वैसे मन्नत, हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही ग्लैमरस हो आपकी ये कहानी और आपके चेहरे पर हमेशा रहे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये नई सिचुएशन लेकर आ रही है इनके माथे पर शिकन। लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के सेट पर।
0: धैर्य के लिए झूमे दुआ बंटी और रोनी। रंग लाई मन्नत की कोशिशें। धैर्य को मिला उसका परिवार। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो गए हैं। इस बात को लेकर धैर्य परेशान था और सोच रहा था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन रोनी दुआ और बंटी तीनों ने मिलकर धैर्य को खुश करने की कोशिश की। कि इसी बीच घर में हो गई मन्नत और विक्रांत की एंट्री, वो भी हाथ थामे हुए। बस फिर क्या, ये देख कर धैर्य वहाँ से जाने तो लगता है, लेकिन मन्नत तुरंत जाकर धैर्य को रोक लेती है और देखिए कितने प्यार से गुनगुनाते हुए वो धैर्य को अपने परिवार में शामिल करती है।

0: तो हम लोग धैर्य को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे और मैं मिलकर उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ वो बहुत अपसेट है। उसे पता है कि अब दुआ शायद उसके साथ नहीं रहेगी, हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। उसे ऐसा लग रहा है कि मन्नत अब विक्रांत के साथ आ जाएगी, दुआ भी उसके साथ हो जाएगी और हम लोग वापस फिर से सलूजा हाउस में आ जाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत इनसिक्योर है, बहुत ही अपसेट है, तो उसको बस चीयर अप करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो बस वही सीन था, अच्छे क्यूट मोमेंट्स थे, गाना गा रहे थे हम लोग, उतने में विक्रांत और मन्नत भी वहाँ पे आ जाते हैं। मन्नत भी धैर्य के साथ और हमारे साथ थोड़ा बहुत नाच गा रही है।
1: भाई मन्नत और पूरे परिवार की कोशिशें रंग लाई और देखिए कैसे धैर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि धैर्य का दिल तो दुआ में ही धड़कता है और अब तो धैर्य को अपना परिवार मिल गया है। लेकिन ऐसे में दुआ बेहद दुखी है और उसके दुख को देखते हुए विक्रांत आकर दुआ को दिलासा देता है और तो और उससे वादा भी करता है कि वो जबरदस्ती दुआ का पापा नहीं बनेगा।
0: तो विक्रांत दुआ को ये प्रॉमिस देता है कि वो फोर्सफुली उसका पापा नहीं बनना चाहेगा और उसे ये मतलब ये वादा करता है उससे कि वो जिसके साथ रहना चाहे, जिसको अपना बाबा कहना चाहे, वो उसके साथ रह सकती है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत टाइम के बाद एक अच्छा हंसता पॉजिटिव क्यूट मोमेंट्स वाला सीन हमने किया बहुत टाइम के बाद।
1: फिलहाल तो दुआ विक्रांत के इस वादे से खुश है, लेकिन मन्नत उसे अब भी डर लग रहा है कि कहीं दुआ के चलते विक्रांत का दिल ना दुखे। लेकिन विक्रांत अपने आप को संभाल लेगा, यही वादा वो मन्नत से भी करता है। अब देखना होगा कि कैसे विक्रांत दुआ का दिल जीतेगा और कैसे दुआ विक्रांत को अपने पापा का दर्जा देगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: जगदात्री और शिवाई की इस कहानी में एक्शन और स्टाइल दोनों का बैलेंस नजर आता है। अगर बात करें हम फुटवेयर की तो ये तो डेफिनेटली ऑप्ट करेंगे फॉर कंफर्टेबल फुटवेयर। इनफैक्ट जगदात्री तो पहनती होंगी अपनी साड़ी के नीचे भी स्नीकर्स। जी हाँ, अब इतनी भागदौड़ जो करनी पड़ती है उन्हें। लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर और दिखाते हैं आपको इस कहानी का क्विक अपडेट।
3: बॉस, क्या हुआ है आपको? आप प्लीज मुझसे नाराज मत रहो, मुझसे बात करो प्लीज। मैं आपकी मरम पट्टी कर देता हूँ, पर प्लीज मुझसे बात करो।
4: मुझे परेशान मत करो शिवाय, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ।
3: बॉस ऐसा मत करो, मुझे चिंता है तुम्हारी।
4: शिवाय, मेरे रास्ते से हटो तुम, जाने दो मुझे।

जी हाँ, जी टीवी के सीरियल जगधात्री में शुरू हो चुका है शिवाय और जगधात्री का खट्टा मीठा रिश्ता, जहाँ पर जगधात्री शिवाय से नाराज है और ऐसे में अपनी बॉस जगधात्री को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शिवाय। भाई असल में जगधात्री तो अपना बैग पैक कर रही है घर से जाने के लिए, और ऐसे में शिवाय देखिए कैसे उन्हें कभी रोक रहे हैं तो कभी उन्हें मना रहे हैं। असल में गुंजन के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम जगधात्री पर आ गया है, और ऐसे में शिवाय ने भी जगधात्री को कुछ बातें सुनाई थी जिस बात से जगधात्री शिवाय से नाराज है। तभी तो देखिए कैसे जगधात्री के पैर में चोट लगी है, लेकिन खुद ही वो अपनी मरहम पट्टी कर रही है। ऐसे में शिवाय आते हैं लेकिन वो उन्हें दूर कर देती है। भाई इतना ही नहीं, जगधात्री खड़े होकर चलने की कोशिश करती है और गिरने वाली होती है कि शिवाय उन्हें संभाल लेते हैं, फिर भी वो शिवाय का सहारा नहीं लेती क्योंकि वो तो उससे नाराज है ना, ऐसे कैसे वो शिवाय का सहारा ले लेगी। लेकिन फिर भी शिवाय हार नहीं मान रहे,

ऐसे में अब जगधात्री अपना बैग पैक कर रही है और शिवाय उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं उसे मनाने के लिए। लेकिन इन दोनों में बहस जब छिड़ जाती है जब जगधात्री शिवाय को खरी खोटी सुना देती है और अपनी नाराजगी जताती है।

0: समझे वो मुझ पे सब आप
1: नो
0: तुमने भी मुझे गलत समझा या नहीं मैं का गुस्सा होगा तुम पर तुम्हें जैसे मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए तो वो फिर उसी में मुझ पर सारे इल्जाम डालती क्या कहते तुम कि गुंजन मेरी वजह से तुम्हें सच में ऐसा लगता है शिवाय कि मैं कभी ऐसा होने देती अगर मेरे हाथ में होता ना तो गुंजन को मैं खरोच तक नहीं आने देती
1: आपकी प्लीज सेवा मुझे फेल तो आपकी बात
0: तुम्हें कर तो मिलता है शादी से लिया तुम भी ऐसा तब तक मैं कि साफ रखूँ उसके चर मैं ही टुकड़े पहले तुम मर गई शादी से लिया आज आज तुम्हें लगने लगा कि साफ इसके चर नहीं
2: जगधात्री ने बैग पैक कर लिए हैं और वो घर से बाहर जा रही है ऐसे में शिवाय दरवाजे के आगे खड़े हो गए हैं और जगधात्री को जाने नहीं दे रहे लेकिन जगधात्री तो अपनी जिद पर अड़ी है
1: मुझसे देख मैं अपनी गलती सुधारने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा ना मैं करूँगा प्लीज तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या इसे छोड़ के तुम जो भी करो मैं प्लीज तुम कर छोड़ के
0: मेरे रास्ते से हटो मैंने कहा ना हटो
2: तो भाई जगधात्री कमरे से बाहर भी चली जाती है और शिवाय को इस कमरे में बंद कर देती है वो तो शुक्र है कोई घर वाला आकर ये कमरा खोलता है और फिर शिवाय जगधात्री के पीछे भागता है
1: दरवाजा खोलो जगधात्री अरे कोई है हेलो कोई है
2: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे शिवाय जगधात्री को मनाता है क्योंकि जगधात्री को तो अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत साबित करना है मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट
3: टीवी की दुनिया में किस शो ने मारी है बाजी कौन बना है ऑडियंस का फेवरेट कौन है आज ऊपर और कौन है आज नीचे आइए दिखाते हैं आपको टीआरपी की ये रेस जी हाँ लेकर चलते हैं आपको हमारे इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो है हमारा टीआरपी मीटर
4: आ गया है टीवी सीरियल्स का रिपोर्ट कार्ड ऐसे में किस सीरियल ने ऊपर छलांग मारी और कौन नीचे लुढ़का आज आपको बताएगा सास बहू और बेटियां
0: करिश्मा सिंह शिखा
4: पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी नंबर वन पर है जी टीवी का सीरियल वसुधा भाई चंद्रकांत वसुधा और देव की अनोखी कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है
5: चाहोगी
4: दूसरे नंबर पर है सी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां तो वहीं उसी के साथ दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन कायम रखी है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन टू ने
6: रजिस्टर हुआ
0: ये हमारा पुश्तैनी हार है
4: तो टीआरपी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जी टीवी का ही सीरियल तुमसे तुम तक भाई आर्यवर्धन और अनु की शादी की तैयारियां या फिर उनके बीच की गलत फहमियां दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है
6: अनु के साथ
4: प्राइज और पिछले हफ्ते की तरह ही अनुपमा ने भी अपनी सीट को कायम रखा है भाई चौथे नंबर पर अब भी बरकरार है और उसी के साथ चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है कलर्स टीवी के लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट ने
7: क्या बात कर रहे हो
4: अब बात करते हैं पांचवें नंबर की भाई इस बार नागिन 7 टीआरपी की लिस्ट में ऊपर आ गया है और इसी के साथ साथ चौथे नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है उड़ने की आशा और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं साथ ही साथ जगधात्री और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी अपने लिए पांचवें नंबर का ही स्लॉट पकड़ा है
8: खुद की शादी तो हुई
4: अब बारी पोजीशन 6 की वही छठे नंबर पर है लक्ष्मी निवास। और इन दिनों लक्ष्मी निवास में चल रहे वीर राधिका के ट्रैक ने दर्शकों को अपनी ओर खींच ही लिया। वही जहां वीर माही से शादी नहीं करना चाहता है, तो वहीं वीर और राधिका में बढ़ रही है नजदीकियां। अब बात करते हैं सातवें नंबर की, जहां अपनी जगह बनाई है दो सीरियल्स ने। जी हां, स्टार प्लस के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, तो वहीं दूसरी ओर है कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी ने।
5: किया ही क्यों?
6: जी वो मैं।
4: अब बात करते हैं आठवें नंबर की, चार चार सीरियल्स है, जिसमें सबसे पहले नाम है सीरियल मन्नत का, उसके बाद सहर होने को है, महादेव एंड सन्स और मंगल लक्ष्मी, यानी कि आठवें नंबर की पोजीशन पूरे के पूरे कलर्स टीवी ने ली है।
0: खिला आवाज इसीलिए उठाई।
7: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अपराजिता जी को रसम के लिए बुलाई।
4: अब बात करते हैं नवे नंबर की, जिस पर है स्टार प्लस का हाल ही में आया हुआ सीरियल ओ हम नवा तुम तीना साथ मेरा में, और इसमें रक्षित और अपराजिता की कहानी को दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ नौवे नंबर पर है एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी। अब बात करते हैं टेंथ पोजीशन की, जिस पर आपको नजर आएंगे टू जूलियट जड्डी, और दसवें नंबर पर इस हफ्ते अपनी पोजीशन बनाई है जाने अनजाने हम मिले ने भी। तो भाई देखा आपने किस तरीके से हर हफ्ते टीआरपी का ये चार्ट काफी उतार चढ़ाव देखता है, लेकिन एक बात कॉमन होती है, वो है दर्शकों का एंटरटेनमेंट। और हम यही चाहेंगे कि भाई सभी सीरियल्स आपको यूं ही एंटरटेन करते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: बिटिया को सताया जा रहा है।
3: किसी ने पहने क्रिस्टल फुटवेयर, वाओ सो रॉकिंग, तो दूसरी तरफ किसने पहने नियॉन स्नीकर्स, ओ माय गॉड, हो गया ना शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए हमारे इस अगले सेगमेंट में, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
4: है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस नए प्रोमो की। क्या फिर एक बार जेठ हलाल फंस जाएगा डुप्लीकेट चाबी के राज में?
9: सोसाइटी ऑफिस में चोरी हो गई है,
10: पुलिस को बुला।
11: जिसने भी डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला है उसके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ना इस ताले पर, पुलिस उस चोर को पकड़ ले।
10: बुला, बुला, पुलिस को बुला।

खबरें आ रही थी कि शाहिद कपूर और वरुण धवन दोनों ही नो एंट्री 2 में नजर आएंगे और इनके साथ होंगे अर्जुन कपूर, लेकिन अब शाहिद कपूर की टीम से ये स्टेटमेंट आया है कि शाहिद कपूर नो एंट्री 2 का पार्ट नहीं है।

देख लीजिए, आप सबकी प्यारी मीता चाची यानी कि शिवानी चक्रवर्ती जो इन दिनों आगरा गई है, ऐसे में उन्होंने ताजमहल से शेयर किया है ये वीडियो।

0: हेलन मैम, इंटरनेट पे आपका नाम सर्च करने पे जो पहला पेज खुलता है उसमें लिखा है हेलन इज अ बॉलीवुड डांसर एंड एक्ट्रेस। इंटरनेट पे आपकी ये पहचान मुझे कुछ अधूरी लगती है। मुझे लगता है एक्ट्रेस और डांसर के साथ एक शब्द और जोड़ देना चाहिए।
1: नजर डालते हैं इंडियन आइडल के इस प्रोमो पर, जहां इस हफ्ते खास मेहमान बनकर आने वाली है हेलन।
0: इंस्पिरेशन है हेलन, और जिनके 3 मिनट के डांस से 3 घंटे के फिल्म की तकदीर बदल जाए वो है हेलन।
2: Indian Idol, thank you so much. All the beautiful dancers and singers and the musicians. Thank you. Thank you very much. I hope you're listening to me, Ashadi. Your contribution to my songs. You are my voice. Thank you. I love you.
3: आपकी फिल्म के टीजर से कोई आपसे मिलने आया?
4: कोई मिलने आया?
1: देख लीजिए लेफ्ट शेफ का ये प्रोमो, जहां कृष्णा और भारती के बीच फिर एक बार छिड़ी जंग, लेकिन कॉमेडी वाली, जहां उनका साथ देते हुए नजर आए वरुण धवन, पूजा और मृणाल।
5: अभी वरुण से भी रिजेक्ट होना है।
6: I hate you, Krishna.
7: मैं भी आपकी तरह मुंह बना लेता हूँ।
4: वायरल हो जाओगे। मैं आके सिखाता हूँ। पहले पूरा स्माइल कीजिए, अभी एक को गिरा दीजिए। ये हो गया, ताली दे दो।
8: आज मेरे करण का कुछ कुछ है।
9: ये कुछ कुछ क्या है?
8: तेजा, करण ने अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और चैनल के पास गिरवी रखा।
1: इसी के साथ साथ करण और तेजस्वी का भी दिखा स्वैगर। ऐसे में
10: मजाक में पहनाई थी माला, अब बन गई गले का फंदा।
11: करण भाई, भगवान आपको हिम्मत दे।
12: हाँ?
13: और अच्छा लॉयर भी।
9: कौन लोग आए मेरी शादी में?
6: बाबा।
1: लाफ्टर शेफ की बात करते हुए, बीती शाम सास बहू और बेटियां सेट पर पहुंचा, जहां हमारे कैमरे में कैद हुए भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, निया शर्मा, तेजस्वी प्रकाश, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर चुरैल, एल्विश यादव, जन्नत जुबैर, करण कुंद्रा, सुदेश लहरी और हरपाल सिंह सोकी।
14: हे मने माया माया।
1: देख लीजिए पुष्पा इम्पॉसिबल का ये प्रोमो, जहां पुष्पा की लालो से हुई मुलाकात, जो लेकर आएगा कहानी में ट्विस्ट।
15: बच्चों के घर से निकला तो आपने अपने घर में सहारा दिया।
16: जब कोई राह न दिखे तब श्री कृष्ण मिले।

वही इन दिनों वरुण धवन, पूजा अमृणाल ठाकुर साथ ही साथ रमेश तौरानी प्रमोट कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। ऐसे में बीती शाम इस फिल्म की टीम हमारे कैमरे में कैद हुई

दूसरी ओर चल रहा है पति पत्नी और वो दो का प्रमोशन, जहाँ आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह साथ साथ नजर आए, जो खा रहे हैं ये चाट और हो रही है यहाँ पर मस्ती।

नहीं, मुनावर फारूकी के घर नन्नी मेहमान आई है। जी हाँ, महज़बीन और मुनावर फारूकी मम्मी पापा बने हैं और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है बरीरा मुनावर फारूकी।

0: देख लीजिए उड़ने की आशा के ये बिहाइंड द सीन नज़ारे, जहां सेट पर किस तरीके से शूटिंग हो रही है। साथ ही आ गया है नया प्रोमो।
1: मेरी सास हमेशा से अपने बेटे यानी मेरे पति तेजस,
0: क्या साइली की कहानी रोशनी को कोर्ट में जीत दिलाई गई।
1: और जब तेजस मुझसे शादी करना चाहता था, उसे डर था कि काकू हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसी ने मुझसे कहा था कि मैं काकू से कहूं कि मैं दुबई से हूं और मेरे पापा का वहां एक बहुत बड़ा बिजनेस है।
2: कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है।
1: दुबई रिटर्न हूं सोच के काकू ने मुझे बहुत प्यार से रखा, घर का एक काम करने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं दुबई से नहीं, उन्होंने मुझसे घर के नौकर से भी बदतर बर्ताव किया।

नौरा फतेही भाई इंडिया को फिर एक बार प्राउड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इस बार परफॉर्म करने वाली है द फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में, जो कनाडा में होने वाली है।

की शाम हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज की स्क्रीनिंग जहाँ नजर आए नकुल मेहता, सुम्बुल तौकीर, जैसी लीवर, अनुप्रिया गोयनका, रोज सरदाना, जॉनी लिवर जो अपने परिवार संग नजर आए।

साथ ही साथ तारा सुतारिया, अदिति राव हायद्री, इन दोनों कलाकारों ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल से अपने आउटफिट और अपने ग्लैमरस अंदाज को शेयर किया है।

0: तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। याद रखिए, परफेक्ट फुटवेयर सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी कंप्लीट करता है। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। कहां? सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: When it comes to protecting your home, experience matters. Sheriff Goslin Roofing has been installing quality roofs for 120 years, delivering dependable craftsmanship and durable roofing systems designed to last. From inspections and repairs to complete roof replacements, our team is committed to doing the job right the first time. Learn more at sheriffgoslin.com and follow Sheriff Goslin Roofing on Facebook. Sheriff Goslin, protecting what matters most.
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
4: भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
5: यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, छोटे बच्चे डर गए
4: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रीशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। छोटी सी उम्र में प्रीशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। गुरुग्राम सहित बाढ़ संभावित 13 जिलों में की गई बाढ़ मॉक ड्रिल, एनडीएमए एनडीआरएफ की टीमों ने किया राहत बचाव का लाइव डेमो। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मुहर। पारादूर से अब तक 6 बार चुने जा चुके हैं विधायक। मुजफ्फरपुर के बाजार में छाई शाही लीची की बहार, 400 रुपए सैकड़ा है दाम। शुरुआती सीजन में ही बढ़ गई लीची की भारी मांग, जून महीने में कम हो सकते हैं इसके दाम। भीषण गर्मी के बीच गुजरात के वड़ताल धाम में तरबूज उत्सव का आयोजन, धाम में विराजमान सभी देवताओं को लगाया गया 2,500 किलो तरबूज का भोग। कांस में आलिया भट्ट का 5वां लुक आया सामने, डिजाइनर तरुण तेहलानी के डिजाइनर के ड्रेस में बिखेरा अपना जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
9: पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना होगा जरूरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, भारत मंडपम में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, चीनी राजदूत कर रहा प्रतिनिधित्व, ईरान के विदेश मंत्री अराक्षी भी मौजूद। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत के मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में दिया था इस पर जोर। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 25 दिनों में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला, बुधवार को 80,400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 32,400 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,250 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ, अब तक 3,24,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथराई कार उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान कर निकाली गई रथ यात्रा, भक्तों ने लगाए गोविंदा गोविंदा के नारे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पुरुषों ने खींचा रथ। 17 मई तक चलेगा चिथराई कार उत्सव, कई राज्यों से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा में सादे लिबास में तैनात किए गए हैं जवान। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। भांग ड्राई फ्रूट और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया श्रृंगार, राजा स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई विशेष पूजा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। खेड़ा में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तरबूज उत्सव का आयोजन, भगवान को अर्पित किए गए तरबूज। भगवान को 250 किलो तरबूज का लगाया गया विशेष भोग, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल। सीएम बनने के बाद मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे हिमंत बिस्व शर्मा, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। चीन दौरे पे बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, मिडिल ईस्ट संकट और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। मुजफ्फरपुर के बाजार में पहुंची शाही लीची, 400 रुपए सैकड़ा बिक रहा शाही लीची। कोची में मशहूर ज्वेलरी चेन जॉय लुकास ने किया प्राइड 2026 का आयोजन, दो दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम, ज्वेलरी डिजाइन एक्सेलेंस का सेलिब्रेशन। जॉय लुकास की प्राइड 2026 में दुनिया भर से 200 से अधिक सप्लायर पार्टनर्स शामिल, नए प्रोजेक्ट्स डिजाइन क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर मंथन। जयपुर की प्रीशा शर्मा ने रचा इतिहास, अद्भुत यादाश्त संस्कारों और प्रतिभा के दम पर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम कराया दर्ज।
10: अब सुना
9: 24 महीने की उम्र में प्रीशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के मंत्र श्लोक याद हैं। प्रीशा को हाल ही में सुपर टैलेंटेड किट की खिताब से भी किया गया था सम्मानित। गिरिहीट के अवि गोयल ने सीबीएसई 12वीं में कॉमर्स में 99% अंक हासिल कर बने स्टेट टॉप पर परिवार में खुशी की लहर। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज आई सामने। गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने हुमर स्ट्रेट किया पार, 15 मई तक भारत पहुंचने की उम्मीद। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह हुए इसमें शामिल। अमित शाह ने परेड के लिए सलामी, जवानों को किया सम्मानित। रायपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भव्य हुआ स्वागत। जालौर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पंसेरी गांव का किया सैर, स्थानीय लोगों से की बातचीत। कुपवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शौर्य गाथा परिसर का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा हुए इसमें शामिल। दूल्हे ने आईसीयू में भर्ती दुल्हन की मांग भरी, गोरखपुर में बारात लेकर पहुंचा। अस्पताल में पंडित ने पढ़े मंत्र, शादी के दिन बेहोश हो गई थी दुल्हन। पीएम मोदी की अपील के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने घटाया काफिला, लोगों से की वाहन प्रयोग करने की अपील। गुरुग्राम में आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया उन्हें जागरूक।

0: मानसा की बेटी सुपनीत कौर ने पंजाब बोर्ड में किया कमाल, 500 में से 500 अंक प्राप्त करके राज्य में किया टॉप। लुधियाना की दिव्यांशी ने 12वीं में पूरे राज्य में प्राप्त किए 3 स्थान, स्कूल और घर पर खुशी के लहर। गोंडा के आदित्य ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं में प्राप्त किए 96% नंबर, कॉलेज और घर में खुशी के लहर। कोयम्बटूर के सेवानिवृत्त शिक्षक की अच्छी पहल, नेत्रहीन वृद्धाश्रम के लिए दान की 1.5 करोड़ रुपए की जमीन। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की इसमें शिरकत। झांसी डीएम की अनोखी पहल, शिक्षक बनकर खुद क्लास में बच्चों को पढ़ाया पाठ। डीएम की क्लास में खुश नजर आए बच्चे, बोर्ड पर हल्के सवाल, पूछे सवाल। डीएम के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तस्वीर और दिशा बदलने का किया जा रहा है प्रयास, जिला स्तर पर अधिकारियों को भी एक एक स्कूल गोद लेने के लिए किया जा रहा है उन्हें प्रेरित। रामलोटन कुशवाहा नाम के इस बुजुर्ग ने बताया कि मृत्यु के बाद नहीं होगा उनका अंतिम संस्कार, अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सतना को दान करने का लिया है संकल्प। सतना में अनोखा आयोजन, बुजुर्ग ने जीते जी करवाई अपनी तेहरवी, बांटे थे शुभ शोक संदेश। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मुहर, पारादूर से अब तक 6 बार चुने गए हैं विधायक। 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला पड़ाव होगा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा भी शामिल। केंद्र सरकार ने बढ़ाया आईपीएस प्रवीण सूद का कार्यकाल, सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 1 साल का दिया गया है सेवा विस्तार। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की बढ़ोतरी, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर का हुआ इजाफा, नई दरें आज से लागू। वर्का दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: Good news today is really good. In this case, there is no more news and no more news.
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सुरनकंद। यह है सुरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग। क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: जम्मू कश्मीर के तंगधार में शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। गुरुग्राम सहित बाढ़ संभावित 13 जिलों में की गई बाढ़ मॉक ड्रिल, एनडीएमए एनडीआरएफ की टीमों ने किया राहत बचाव का लाइव डेमो। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रीशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम, छोटी सी उम्र में प्रीशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। डीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में सतीशन के नाम पर लगी मोहर, पारादुर से अब तक 6 बार चुने गए हैं विधायक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अपने पति के मंगल कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत है वट सावित्री का व्रत। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागने वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान करती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अखंड सुहाग का वर मांगा जाता है। तो ऐसे में इस पुण्यकारी तिथि पर आपको कैसे करनी है पूजा, आराधना और प्रार्थना, आइए जानते हैं।

0: एक वृक्ष जो पूजनीय है, जो है सबसे खास। एक वृक्ष जिसमें है त्रिदेवों की शक्ति का वास। बरगद के पूजन से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। वट सावित्री व्रत से दूर होंगे सारे संकट और विकार। पंचांग की तिथि कहती है कि ज्येष्ठ मास की अमावस को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। अखंड सुहाग के साथ साथ पति की लंबी उम्र के लिए सनातन धर्म शास्त्रों में और भी कई व्रतों का वर्णन मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस पर मनाया जाने वाला ये व्रत विशेष महत्व रखता है।
1: देखिए, बट सावित्री व्रत मूल रूप से हम जो हमारे यहाँ सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए बट सावित्री व्रत करती हैं, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है और यह 3 दिन का व्रत होता है। यह त्रयोदशी से चालू होके और अमावस्या के दिन यह व्रत समाप्त हो जाता है।
0: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इसका ना सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है, क्योंकि इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरह पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। यूं तो हर पेड़ पौधे को उपयोगी मानकर उसकी रक्षा करने की सनातनी परंपरा रही है, लेकिन वट वृक्ष या बरगद की पूजा का खास महत्व बताया गया है।
1: देखिए, वट वृक्ष की पूजा का विधान यह है कि वट वृक्ष बहुत दिनों तक इस धरती पर जीवित रहने वाला वृक्ष है और वह जहाँ तक हम लोग दीर्घायु की कामना करते हैं, इसलिए उससे बड़ा दीर्घायु कोई वृक्ष नहीं है, इसीलिए उसकी हम पूजा करते हैं। क्योंकि सत्यवान और सावित्री की कथा से बट सावित्री व्रत आया है, तो सावित्री ने भी उसी वृक्ष का पूजन किया था जिससे उनके पति को दीर्घायु प्राप्त हुआ था, इसलिए हम उस बट वृक्ष की पूजन करते हैं।
0: तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और इस दिन क्यों वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसे पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी माना जाता है। यह प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसीलिए सनातन के इच्छित लोग इसकी पूजा करते हैं। यह बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। वट वृक्ष पर हर वक्त माता लक्ष्मी का निवास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है।
1: देखिए, मूल रूप से इस तिथियों पे तो भगवान नारायण का ही पूजन करते हैं, क्योंकि नारायण के पूजन का विधान यह है, क्योंकि इस सृष्टि के पालन करता भगवान नारायण ही है। किसको जन्म देना है, किसका पालन करना है, उसकी आयु क्या होगी, वह अल्पायु होगा, उसके कर्मों का फल क्या है, यह सारा कार्य भगवान नारायण के पास है, इसलिए इस तिथि पे भगवान नारायण की ही विशेष रूप से पूजा की जाती है।
0: तो देखा आपने कितनी महिमा है बरगद की। यही नहीं, प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को तुलसीदास जी ने तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष की पूजा से लाभ। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। धर्म ग्रंथ के जानकार और विद्वान बताते हैं कि बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वटवृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में वटवृक्ष चार तरह के बताए गए हैं। वटवृक्ष के प्रकार अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गया वट और सिद्ध वट। इनमें चार वटवृक्षों का महत्व अधिक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव जैसे योगी भी वटवृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। ज्योतिष के जानकार दावा कर रहे हैं कि इस साल वट सावित्री व्रत पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी दिन शनि देव की उपासना का पर्व शनि जयंती भी मनाई जाएगी। तो इस तिथि पर आपको कैसे करनी है बरगद के पेड़ की पूजा? अगर सुहागिन महिला पहली बार इस व्रत को कर रही है तो उनको कैसे करनी है पूजा उपासना, पूजा के लिए कैसे करनी है तैयारी, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ।
2: चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। देखिए, मान्यता है कि ये एक ऐसा व्रत है जिसे करने के बाद उसका फल जीवन भर मिलता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण भी मिलता है। मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत को करके यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाया था, तभी से वट वृक्ष को चिरंजीवी माना जाता है।

0: वट सावित्री करने से दूर होते हैं यमराज। बरगद की 108 परिक्रमा से बनेंगे सारे काज। सफल वैवाहिक जीवन का मिलेगा वरदान। अक्षय सुहाग का ये व्रत करेगा कल्याण। माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान यमराज के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। साथ ही बरगद के वृक्ष पर सूत के धागा लपेटकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और बरगद की 11 या 108 परिक्रमा करती हैं। आप बरगद की 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से उनके मन में जो भी अभिष्ट कामना होती है वह परमेश्वर अवश्य पूर्ण करते हैं। वट सावित्री व्रत की महिमा। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 16 मई को किया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं भी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए जिन व्रत और संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है।
1: देखिए, वट सावित्री की तिथियों पे मूल रूप से भगवान नारायण के मंत्रों का जप करना बहुत ही कल्याणकारी है। जैसे ओम विष्णवे नमः और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र हैं, जिसको कि जिस मंत्र को जप के ध्रुव जी साक्षात भगवान नारायण को प्राप्त कर लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के गायत्री हैं, जो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इन तीनों मंत्रों में से उस सौभाग्यवती महिला को या जनमानस को जो आसानी और सुलभता से मंत्र का जप कर सके, उन मंत्र का प्रयोग जरूर करें। पूजन में घी का दीपक जला के ही मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को अत्यंत फल की प्राप्ति होगी।
0: यह प्रतापी व्रत से कई कथाएं जुड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि को भगवान कृष्ण ने बरगद के पत्ते पर ही दर्शन दिया था। ऐसी मान्यता है, इसीलिए बरगद के वृक्ष की पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को ईश्वर माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा उपासना से कई तरह की समस्याओं का अंत भी संभव है। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत जो इतना पुण्यकारी है, उसकी पूजन विधि क्या होगी।
1: इस व्रत को करने का विधान यह है कि जो सौभाग्यवती महिला इस व्रत को करना चाहती है, वह सूर्योदय के समय स्नान आदि करके सुंदर वस्त्रों को धारण करके समस्त अपने 16 श्रृंगार से युक्त हो जाएं, और 16 श्रृंगार से युक्त होने के बाद वह वट वृक्ष के नीचे जाके रोली, अक्षत, कुमकुम आदि से उस वृक्ष का विधिवत खोडसोपचार पूजन कर, उसके बाद एक कच्चा सूत लेके उस कच्चे सूत में हल्दी या कुमकुम लगा के उस वृक्ष के चारों तरफ 108 परिक्रमा करते हैं, जिससे कि और बार बार परिक्रमा में उस वृक्ष से अपने पति के दीर्घायु की कामना करते हैं।
0: वट सावित्री व्रत का पूजा विधान। प्रातः काल स्नान कर निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें या मानसिक रूप से इनकी पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने, वट वृक्ष की कोम्पल खाकर उपवास समाप्त करें। तो देखा आपने, माताएं बहनें विधि विधान से इस व्रत का पालन करें, जिससे उनका अखंड होगा सुहाग। आगे हम आपको सावित्री और सत्यवान की वो कथा भी बताएंगे। मान्यता है कि कथा सुनने से आपके जीवन के संकटों का भी नाश होता है।
2: आपने वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और महिमा तो जान ली, लेकिन कहते हैं कि ये व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक इस व्रत पर सावित्री और सत्यवान की कथा ना सुन ली जाए। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं सती सावित्री की वो कहानी, जिसने यमराज को भी सत्यवान के प्राण लौटाने पर मजबूर कर दिया था।

0: सनातनी परंपराओं का वाहक है वट वृक्ष, जिसके जड़, तनों और पत्तियों से देवस्थान की मान्यता है। सुहागिनों का ये व्रत कभी नहीं होगा निष्फल। वट सावित्री व्रत की कथा, श्रवण से मिलेगा पुण्य फल। वट सावित्री के व्रत में जितना महत्व पूजन विधान का बताया जाता है, उतना ही महत्व इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का भी बताया जाता है।
1: सावित्री को पता चला कि हमारे पति जो हैं वह अल्पायु हैं, तो उन्होंने पुराणों में जब देखा तो उनको वट सावित्री का, वट वृक्ष के पूजन का विधान मिला, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी से प्रारंभ कर और अमावस्या के दिन एक कच्चे सूत को उस वृक्ष में लपेटने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। जब उनके पति का प्राणांत हुआ तो वह उसी वृक्ष के पूजन करके और यमराज से अपने पति का प्राण लेकर आई, इसीलिए वट सावित्री व्रत से सावित्री और सत्यवान की कथा जुड़ी हुई है।
0: इस कथा में सावित्री और यमराज का संवाद बताता है कि स्त्री अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसके सामने छोटी होती है। सावित्री की कथा कहती है कि मद्रदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्प आयु है, एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से सत्यवान के लिए प्राणदान का वरदान मांग लिया।
1: देखिए, इस तिथि पे सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि इस तिथि के दिन विशेष रूप से जिस महिला को यह पता हो कि हमारे पति की जो आयु है वह अल्पायु है, हमारे पति के आय आदि में वृद्धि कम है, व्यापार आदि में समस्याएं हैं, वह इस व्रत को, 3 दिनों का यह व्रत है और 3 दिनों तक जरूर करें और इस व्रत के प्रारंभ से ही वह वट वृक्ष की पूजन प्रारंभ करें। मूल रूप से धूप दीप नैवेद्य से उस वृक्ष का पूजन कर और नित्य ही 3 दिवस तक उस वृक्ष में धागा को लेकर परिक्रमा करें और आखिरी दिन अमावस्या के दिन इस व्रत का समापन करें।
0: तो आप भी विधि विधान से कीजिए वट सावित्री का व्रत, आपको मिलेगा अखंड सौभाग्यवती होने का फल।
2: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे और सच्चे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: क्लोज योर आईज, फोकस, लिसन टू वर्क गेटिंग डन विद monday.com। रिलैक्स एज AI डज द मैनुअल वर्क व्हाइल योर टीम्स are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice, you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes, go to monday.com, start for free, and finally, breathe.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: नासिक के सिंहस्थ कुंभ मेले में आध्यात्म की भव्य दिव्य तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, सीएम फडणवीस ने कुंभ मेले के आधिकारिक लोगों का अनावरण कर दिया है। लोगो जारी होते ही ये मुंबई की कई बड़ी इमारतों पर प्रदर्शित किया गया। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेले का लोगो वहां की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे। सरकार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 13 अखाड़ों के साथ समन्वय कर रही है।

ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई के ये कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थल बुधवार को

0: पर दरअसल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो प्रदर्शित किया गया, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। सिंहस्थ का ये लोगो बता रहा है कि इस बार कुंभ मेले में नासिक में अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर दिखेगी। चयनित लोगो में भगवान शिव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिरों के प्रतीकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 13 प्रमुख अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। एक भव्य त्रिशूल दर्शाया गया है, जो नासिक के प्रसिद्ध और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह में पवित्र गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में बेहद खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये लोगो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार को समाहित करता है।
1: नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगो का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
0: सरकार इस बार सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों के अनावरण से पहले हुई कुंभ मेला समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साधु संतों और अखाड़ों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। छोटे संस्थानों को भी प्रति संस्था 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अखाड़ों के बिजली बिल सरकार वहन करेगी। बिलों का भुगतान कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा और सरकारी कामों के लिए अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। बैठक में लगभग 665 करोड़ रुपए की त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना भी रखी गई है, जिसमें AI आधारित भीड़ नियंत्रण और 5 मिनट में इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा शामिल है। कुंभ मेला समीक्षा बैठक में पधारे साधु संतों के सुझावों का स्वागत किया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। नासिक के पवित्र कुंड, रामकाल पथ, मंदिरों और गुफाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही गोदावरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसके अलावा साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक खाका तैयार किया गया है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। सिंहस्थ कुंभ के मुख्य शाही स्नान के सभी कार्यक्रम साल 2027 में ही आयोजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पूरे देश में मौसम का अलग सा रूप देखने को मिल रहा है। मौसम ने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि कहीं बारिश हो रही है, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो देश के किसी इलाके में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में कल शाम तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम साफ रहेगा और पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

0: उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल शाम हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
1: आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है राजस्थान, MP इन जगहों में

0: टेम्परेचर्स ज्यादा ही रहेंगे आने वाले 7 दिन, और एनीवे मई का महीना इस समय जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होते ही है, और कोई हम कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ऑलमोस्ट काफी हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन रहेगी।
1: दिल्ली एनसीआर में कल शाम हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी और हफ्ते के अंत तक इसके 40 से 42 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है।
0: हम ऐसा एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और फिर जो टेम्परेचर है जहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाय 17 मई 18 मई जे भी 40 क्रॉस कर जाएंगे, 42 तक होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा हमारा भी एनसीआर दिल्ली के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है।
1: देश के कई राज्यों में जहां एक ओर गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री 16 मई को हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस साल अलनीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मॉनसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है, तो कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मॉनसून की दस्तक सुना रही हैं। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music.
6: You and I stargazing.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: जम्मू कश्मीर के तंगधार में एनएलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य का था कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान।

संभावित 13 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। एनडीएमए एनडीआरएफ की टीमों ने किया राहत बचाव का लाइव डेमो। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रशस्त शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। मुजफ्फरपुर के बाजार में छाई शाही लीची की बहार, शुरुआती सीजन में लीची की भारी मांग, ग्राहकों को भाता है स्पेशल स्वाद और सुगंध। सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई ताना सुतारिया।

स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारे देश में इसी बात को कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, और इसी से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि ज्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। इसी धारणा की वजह से कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं, अनुशासन बहुत जरूरी कर देते हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा सख्ती कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों के मामले में। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, बार बार की छोटी छोटी डांट फटकार भी बच्चे को एक बड़ा मानसिक आघात दे सकती है। यूएस की एक रिपोर्ट कहती है कि बात बात पर डांटने से बच्चे फाइट या फिर फ्लाइंग मोड में चले जाते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, बच्चों को फाइट या फ्लाइंग मोड से कैसे बचाएं, रोज रोज की डांट फटकार बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे बीमार बनाती, ये जानकारी एक रिसर्च से सामने आई है। और ये रिसर्च हुई है अमेरिका में, लेकिन भारत में बैठे माता पिता भी खुद को इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं या कर सकते हैं, क्योंकि बात खास है, बात बच्चों से जुड़ी है। नटखट बचपन को कैसे संभाला जाए, हालांकि पेरेंटिंग आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए भी, लेकिन यूएस में बच्चों पर चौंकाने वाली जो रिसर्च हुई आज उसकी डिटेल आपको बताएंगे। क्या डांट फटकार बच्चों को बना रहे बीमार, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने फैमिली काउंसलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, स्पेशल एजुकेटर जुड़ेंगे।

0: तो माता पिता बच्चों को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं और इसी बीच कभी तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जाते समय बच्चों को डांट भी देते हैं। लेकिन रोजाना की डांट बच्चे की मानसिक सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, ये खुलासा एक रिसर्च ने किया है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है। अब इसमें यह कहा गया है कि बच्चों को डांट बीमार बना रही है। रोज डांटने से बच्चों के मस्तिष्क पर असर पड़ता है, डांट से मस्तिष्क की बनावट बदलती है, अनुशासन वाली डांट बीमार कर सकती है, माता पिता के चिल्लाने से बच्चों पर गंभीर असर होता है और डांट से बच्चे का शरीर फ्लाइट या फ्लाइंग मोड में चला जाता है। अब ये मोड क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि फटकार से तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ता है, यानी कि तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स कॉर्टिसोल सराब बढ़ा देते हैं। डांट से भावना नहीं समझ पाते हैं बच्चे और साथ ही साथ बच्चे फटकार से डर और तनाव भी महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इसके अलावा बच्चों की रोग प्रतिरोग और सीखने की जो क्षमता है उस पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों के साथ संवाद बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि माता पिता अपनी आवाज थोड़ा धीमी करें, बच्चों को बताएं कि आपका काम खराब था, आप नहीं, ताकि बच्चे इस डांट को सहजता से ले और इससे कुछ सीखे। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार से बच्चे अक्सर या तो फ्लाइंग मोड में चले जाते हैं या फिर फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें पीड़ित बच्चे में लड़ो या फिर भागो की प्रवृत्ति पैदा होती है। अक्सर ऐसे बच्चे अलग थलग पड़ जाते हैं, बाकी बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाएं वो शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स वो दबाने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों में जरूरत से ज्यादा चिंता, टेंशन, घबराहट के तमाम लक्षण दिखने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार से बच्चे कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन अक्सर देखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में उनकी कमी आती है, पढ़ाई या फिर खेल में उनका ध्यान नहीं लगता है। ऐसे बच्चे काम से बचने लगते हैं, बहाने तलाशते हैं और ऐसा अक्सर आसपास देखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब फ्लाइट या फिर फ्लाइंग मोड जैसी स्थिति पैदा होती है तब नटखट बचपन को हम संभालें कैसे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की शरारत को प्यार से सुधारें, शरारती बच्चे के साथ संयम बरतें, पहले खुद को शांत करें, बच्चे की गलती का कारण समझने की कोशिश करें, बच्चे को प्यार से उसकी गलती समझाएं, उसका एहसास करवाएं और बच्चे के साथ समय जरूर बिताएं। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को उसकी गलती खुद से सीखने दें, उसको पता चले कि वो कहाँ गलत है और कैसे उसको ठीक कर सकता है, इसका मौका जरूर बच्चे को देना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट एंड फैमिली काउंसलर हैं, डॉक्टर नितिन कुमार सेठी हैं, चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस के, डॉक्टर ज्योति कपूर सीनियर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं और केशव अग्रवाल जी एजुकेटर और काउंसलर हैं। सबसे पहले ज्योति कपूर जी आपसे शुरुआत करूंगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है, लेकिन ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के सामने तो वो है पेरेंटिंग। अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये स्पेशली अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, अब ये चर्चा हम आज कर तो रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारी आवाजें इधर उधर से आने लग जाएंगी, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो खूब मार पिटाई के साथ बड़े हुए, हम तो एकदम ठीक है, हमारा तो करियर सक्सेसफुल है, हम तो बिल्कुल सही है, हमें तो कभी डिप्रेशन टेंशन हुई नहीं। लेकिन ये आज के बच्चों में बहुत ज्यादा है, क्या इसका कारण आप देखती हैं? निशा जी मुस्कुरा रही हैं आज। निशा जी आपको इस पर बात करनी है आगे। डॉक्टर कपूर पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
1: थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस, बिकॉज देखिए बच्चों की परवरिश से लेकर आई थिंक कई सालों से बातें चलती चली आ रही हैं। हम कल जेन जी की भी बात कर रहे थे और मैं बोल रही थी कि एक्चुअल में हर जेनरेशन के अपने स्ट्रेसेस हैं, अपने तनाव हैं। और एक साफ बात हम बोलते हैं सबके लिए कि कोई तनाव उम्र से रिलेटेड नहीं होता, हर उम्र में तनाव होता है। स्ट्रेस रिएक्शन जो है वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसमें एक्टिवेटेड होता है। अब आपके नर्वस सिस्टम के तीन काम है, वो आपके बॉडी को चला रहा है, वो सोच समझ महसूस रहा है और आपको डिफेंड करना है किसी भी खतरे से। तो एक इन इननेट इन बिल्ट स्ट्रेस मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है. जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो अनप्लेजेंट होती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो एक्टिवेट होता है और तनाव के रसायन बनाता है. और जब तनाव के रसायन बनते हैं तो जाहिर सी बात है हम फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस तनाव से जूझने के लिए, जिसको आप फ्लाइट और फाइट बोलते हैं, लड़ने और भागने के लिए. अब एक बच्चे के लिए तनाव के क्या कारण होते हैं? कोई उसे डांटता है, कोई तेज आवाज में बात करता है, कोई उसको देख के घृणा से या अपने चेहरे के ऐसे हाव भाव बनाता है कि आप खराब हो या आपने कुछ बहुत गलत काम किया है. तो नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवली उसको भांपता है और ये महसूस करता है कि कुछ खराब है, कुछ मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे मार पड़ सकती है, मुझे छोड़ सकते हैं, मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. तो वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है और स्ट्रेस केमिकल बढ़ता है. और जब स्ट्रेस केमिकल बढ़ता है तो आपका फोकस सिर्फ थ्रेट पे जाता है. उस समय सपोज आपके सामने शेर आ गया तो आपको उस समय भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, मौसम नहीं दिखाई देगा, उस समय आपको उस शेर से डर बचना है या भागना है. तो ऐसी स्थिति में आपकी सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो नैरो डाउन हो जाती हैं, आपकी लर्निंग इम्पैक्ट होती है, आप चीजों को पॉजिटिवली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते हैं. तो जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं या डांटते हैं और इस तरह का एग्रेसिव एक तरीका अपनाते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि बच्चा उनकी बात समझ जाएगा, लेकिन बच्चा इमिडिएटली डिफेंस मोड में चला गया है. अब वो अपने को बचाने के बारे में सोच रहा है, वो क्यों डांट उसको पड़ी, क्या उसने गलत किया था, किस तरीके से उसे चीज हैंडल करना चाहिए था, वो उसे समझ ही नहीं आएगा. और फ्रेंकली स्पीकिंग ये बच्चों के साथ ही नहीं है, ऑल्दो बच्चों का समय जो बचपन का समय क्रिटिकल पीरियड बोलते
0: जी
1: हैं, जो शुरू के 5 साल होते हैं और उसके बाद इसकी फाइन ट्यूनिंग होती है एडोलेसेंस में हमारी इमोशनल रेगुलेशन की, क्रिटिकल पीरियड्स हैं. पर अगर हम बड़ों की भी बात करें, अगर सपोज दो लोग बात करें और सडनली एक इंसान चिल्लाने लग जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनना बंद कर देता है. उस
0: बिल्कुल
1: टाइम उसका सिर्फ फेक रिस्पॉन्स होता है कि मैं इस चिल्लाने से दूर कैसे हूँ, चिल्ला के दूर हूँ कि उसको चुप करा लूँ या चुप करके वहां से निकल जाऊं. तो अगेन फ्लाइट ऑफ फाइट. सो पेरेंटिंग का पहला नियम है कि आपको कम्युनिकेशन सीखना है, और वो कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब हम पहले एज पेरेंट्स अपने इमोशंस को
0: बिल्कुल
1: रेगुलेट करेंगे और फिर बच्चों की उसमें सहायता करेंगे.
0: डॉक्टर नितिन कुमार सेठी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप न्यूरोसाइंसेस से जुड़े हुए हैं. सर, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो गए, या फिर आजकल के पेरेंट्स ज्यादा सेंसिटिव है कि वो ज्यादा सीखना और समझना चाह रहे हैं बच्चों को? हमारे समय में तो ऐसा नहीं हुआ था.
2: आपने आई मीन राइट क्वेश्चन पूछा. आई थिंक इट्स बोथ पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन. और जैसे आपके प्रीवियस गेस्ट ने बताया, ब्रेन डेवलपमेंट जब होती है, व्हेन पीडियाट्रिक ब्रेन जब डेवलप करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेन में जब वायरिंग होती है आपकी, इट अकर्स एट अ वेरी अर्ली एज. सो जो जो आपकी सेइंग होती है, आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मेक अस व्हाट वी आर लेटर ऑन. इफ यू हैव अ गुड नर्चरिंग चाइल्डहुड, आपकी चाइल्डहुड नर्चरिंग हो, पेरेंट्स वर लविंग, यू फाउंड लव ऑल अराउंड, बाय एंड लार्ज आपकी ब्रेन डेवलपमेंट विल बी बेटर. नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, द वे लेटर इन लाइफ यू विल हैंडल स्ट्रेस, द वे लेटर इन लाइफ यू विल हैंडल प्रॉब्लम्स व्हिच कम योर वे. सो देखिए, एक बार जब ब्रेन हार्डवायर हो जाता है, सो लाइक यू से यू कैन नॉट चेंज समबडीज पर्सनैलिटी. वंस योर पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड, इट्स वेरी हार्ड टू चेंज समबडीज पर्सनैलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप एट अ यंग एज. So pediatric age is the age where brain development occurs. Neuronal development ho rahi hai, interconnections ho rahe hain aapke nerve cells se for different cells. So children who are raised in a loving, caring environment, highly likely they'll develop into more balanced, mature individuals. Yes, ye aapka kehna thi ki later in life experiences can also change us. So if you have a very traumatic, like for example, are married हुए and you have a very traumatic marriage, divorce हो गया, unpleasant marriage, that also changes you. You become depressed, you become up the different, your relationship later on in life might change. But the bigger point is जो आप बता रहे हैं कि भैया parents are already parents, we cannot change ourselves. A lot of us have become the way we are. Yes, we can try to become better parents. आपका एकदम सवाल ठीक है कि parents can also change how they react to the children, how they handle their children.
0: Huh.
2: But very important point to remember is that the developing brain is a brain which is at that time being molded. So if you mold it, aapne mali, jo mali us pode ko aap nourish kar rahe hain, and you nurture and nourish that brain, you'll have a healthy brain and a healthy mind. It's not just the mind, it's also the healthy brain. You'll have good thoughts, good good personality. So it's, you're right, it's both parents as well as the developing child.
0: Circumstances also, bilkul. Dr. Nisha Khanna, ab zara hame vistar se bataiye कि क्या डांटने से बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे असर होता है? फ्लाइट और फ्लाइंग मोड को हम किस तरीके से समझें? डॉक्टर साहब, ऑडियो म्यूट है शायद आपका.
3: ओके
0: जी.
3: फ्लाइट और फाइट मोड की हम बात करें, FEAR, फेयर एक शब्द है, डर. डर को अगर हम एक्रोनियम बनाएं, FEAR, फॉल्स इक्वेशंस अपेयरिंग रियल. एक होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे. फ्लाइट, फाइट, और हम एक पॉज मोड भी बोलते हैं. फाइट मोड में होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, ये हो गया हमारा फ्लाइट मोड. फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये हो गया हमारा फाइट मोड. यानी कि जैसे बोलते हैं प्रॉब्लम का हमने सामना करना है. जब हम बच्चों की इस प्रॉब्लम की बात करते हैं या बच्चों को हम डांटते हैं या स्कोल्ड करते हैं, तो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है. ब्रेन का अमाइडाला पार्ट होता है जो कि एक सेंसर की तरह, स्मोक डिटेक्टर की तरह काम करता है. इस स्मोक डिटेक्टर की वजह से अगर बच्चों को डांटा जाता है तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर पोर्शन को लेकर हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं, तो वो बेसिकली सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं. जिसकी वजह से अगर आप उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, या वो तो बिल्कुल नम आउट हो जाते हैं, उन चीजों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, या वो रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं. जब हम फाइट मोड दे आते हैं तो हम रिस्पॉन्स की बजाय रिएक्शन देते हैं, और जब हम फ्लाइट मोड में चले जाते हैं तो मोस्टली नम या शट डाउन हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इन दोनों चीजों में और दोनों स्टेजेस में ही जाते हैं. और एक थर्ड स्टेज जो फेयर में होती है वो होती है जैसे मैंने बोला फॉल्स इक्वेशंस अपीयरिंग रियल, जिसमें झूठी बातें हमें सच्ची लगती हैं. ये फाइट या फ्लाइट मोड से ट्रांजिशन का पीरियड होता है, जिसे हम फ्रीज मोड भी कहते हैं. जैसा कि अगर शेर सामने आया, तो एक है शेर के सामने आने पर आप फाइट मोड में चले गए तो आप शेर का सामना करने लग पड़ते हैं, या आप सिचुएशन में आपको आपकी बॉडी को डर महसूस हुआ और आप भागने की क्रिया करते हैं. और एक सिचुएशन फ्रीज मोड की होती है, जब आप वहीं तन खड़े हो जाते हैं कि क्या करना है, जो कि फ्रीज और फाइट मोड के मिडल का एक स्टेज है. रही बात जब बच्चों को डांटा जाता है, जैसा कि हम मानते हैं कि बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं करता है, उससे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर्ट होता है. बच्चों को बहुत सारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल इलनेसेस भी हो जाती हैं. देखिए, बच्चों को हम जब कुछ भी बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है. पेरेंट्स खुद रोल मॉडल्स होते हैं. अगर पेरेंट्स में आपस में भी फाइट हो रही है, उसका भी बच्चे पर असर पड़ रहा है. अगर आप बच्चे को स्कूल कर रहे हैं, उसका असर भी बच्चे पर पड़ रहा है. अगर आप बच्चे को पर फिजिकल वायलेंस भी कर रहे हैं, उसका भी बच्चे, और सबसे ज्यादा असर उनके इमोशंस पर पड़ता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर पड़ता है. और जब हम बच्चों को उन बातों को बोलते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो चार चीजों से बनता है. एक है हम बच्चे को क्या बोलते हैं, या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, बच्चा अपने आप को अपने बारे में क्या बोलता है. सेकेंड, बच्चे को उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स या कोई भी जो उसके सराउंडिंग्स में, उसे क्या कहते हैं. और चौथी चीज, बच्चे या उसके सराउंडिंग्स के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. इन चारों चीजों, ये चारों जो चीजें हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम, यानी कि हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को बनाने का भी काम करती है. जो जब भी हम किसी कंफ्लिक्ट की स्थिति में जाते हैं, किसी भी एडवर्सिटी में जाते हैं, तो हमारा बिलीव सिस्टम जनरेट एक्टिवेट हो जाता है. जिसके बदले में अगर आपने सोच लिया कि अब आप किसी चीज को नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स ने डांट कर बोल दिया तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया मुझसे कुछ अच्छा नहीं होता. और ये रिपीटेडली पैटर्न में हुआ तो बच्चे के दिमाग में बन गया मैं ये काम नहीं कर सकता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल लॉक डाउन हो जाएगा. और अगर हम हाइपर एक्टिव की बात करें, हो सकता है अगर आपने बच्चे को बोल दिया ये काम अब कर सकते हो, और अगर उसने दिमाग में ये बैठ गया मैं ये काम कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली जब भी वो किसी एडवर्सिटी में जाएगा और उसने सोचा कि मेरी मम्मी या पापा ने बोला है मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा.
0: बिल्कुल,
3: क्योंकि पॉजिटिवली उसका रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट उसके मूड पर भी इम्पैक्ट होगा और वही उसके एक्शन में भी आएगा।
0: केशव अग्रवाल जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी यहाँ पर, जो स्टडी है वो ये बताती है कि पेरेंट्स अगर डांटते हैं तो उसका असर बच्चों पर नेगेटिव होता है, फ्लाइट और फाइट मोड, इसको लेकर निशा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन यही रिजल्ट कई बार आपको स्कूल्स में भी नजर आता है, हालांकि आजकल स्कूलों में ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को इतनी डांट फटकार पड़ती, रादर टीचर्स आजकल बच्चों की मानसिकता को समझते हैं, उस तरीके से उसको काउंसिल करते हैं। स्कूल का एटमोसफेयर इसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होता है?
4: देखिए, बच्चा 3 साल के बाद आधे से ज्यादा जो समय है वो स्कूल में बिताता है। अगर आप देखें धीरे धीरे 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो आधा समय वो स्कूल में बिताता है। वो स्कूल में टीचर से भी सीखता है और दूसरे बच्चों से भी सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक क्लास में जब 30 बच्चों के बीच बैठता है तो हर बच्चे को ऑब्जर्व करता है, हर बच्चा अपने घर से कुछ सीख के आता है, तो बच्चा काफी कुछ सीखता है। आपने एक और बात कही थी कि हमारे टाइम ऐसा नहीं था, आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप कह गए। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि आपके मेरे टाइम मोबाइल इतना सक्रिय नहीं था। आज मानिए मोबाइल ने पेरेंटिंग बहुत मुश्किल कर दी है। आप देखिए, एक बच्चा 10 घंटे तक मोबाइल देख सकता है लेकिन 10 मिनट पढ़ने में उसको मुश्किल आती है। अब एज ए पेरेंट या एज ए टीचर हम उसे डांटते क्यों हैं जब वो इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए फॉलो नहीं करता, जो हम चाहते हैं वो नहीं कर रहा? तो मैं एक टीचर को कहूंगा कि सबसे पहले काम रहना। अब काम का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब करेक्ट द बिहेवियर, नॉट द चाइल्ड। आप उसको लेबल मत करिए, आप उसके बिहेवियर को करेक्ट करिए। ए, अज्यूम मत करिए, देयर मे बी प्रॉब्लम विद ए चाइल्ड, ही इज स्ट्रेस्ड आउट, कोई रीजन है, तो आप उसको ask बिफोर assuming। देन यू हैव L, लिसन ब्रीफली, जो आज की डेट में खत्म हो गया। हम पेशेंस नहीं रहे, हम सुनना नहीं चाहते, हम कम्युनिकेशन को मोनोलॉग, हमारी बात सुनो, हमारी तरफ चलो, ये जो चीजें आती हैं इससे बच्चे में शेयरिंग खत्म होती है। आज की डेट में आपको पता है इंडिया सेकेंड या ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है, वी डोंट डिस्कस थिंग्स विच शुड बी डिस्कस्ड विद अ चाइल्ड। उसको फियर आ जाता है कि मैं ये बात कह दूंगा तो मेरे माँ बाप रिएक्ट करेंगे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता दूंगा तो बच्चे को पता लगता है एकदम। हम उसको काउंसल या सही गलत नहीं बता के हम डर पैदा करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? एम्बेरसमेंट, एक सोसाइटी का एम्बेरसमेंट आ जाता है। वो क्या बोलेंगे, इसका बच्चा ऐसा है? बच्चे को हम कंपेयर करने लग जाते हैं, शर्मा जी की बेटी ने इतने नंबर लिए तुमने नहीं लिए। वो बात उसके मन में दिमाग में घर कर जाती है। हर बच्चा अलग है, सदा हम उसका ऐब देखते हैं, हुनर तो नहीं देखते। और काम में जो एम है, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझा पाते, उसको कॉन्सिक्वेंसेस मीनिंगफुली समझाने की जरूरत है। पानी गिरा दिया या कोई सामान तोड़ दिया, हम चीख पड़ते हैं, उसको समझाने की जरूरत है कि पानी गिरा है तो अब तुम्हें साफ करना है। और जब हम एक्सेस प्यार दे देते हैं तो भी बच्चा बिगड़ जाता है, वो फिर आगे वही एक्सपेक्ट करता है। और अगर शुरू से आपने फियर या उसको रिजेक्शन या कंपैरिजन में डाल दिया तो दिक्कत। अब टीचर्स के लिए मुश्किल क्या है, क्लास में 30 से 35 बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। टीचर की भी लाइफ, सुबह तैयार होती है, आती है, घर में क्या मूड है नहीं है, और उस दिन बच्चे, अब बच्चे तो समझते नहीं है, वो तो करेंगे ही। अब टीचर के अंदर कितना पेशेंस जो है आज की डेट में वो बड़ा मैटर करता है। इम्पार्टिंग एजुकेशन शुड बी थ्रू एग्जाम्पल्स। किताब लेके आप क्या उसको पढ़ा रहे हैं? आप उसको मोटिवेशनल स्टोरीज, कहानी, और बच्चे को लेबल ना करें। अगर कुछ उसे बताना है, उदाहरण देके बताएं। बच्चे जब आपको सुनने लगेंगे और आप उन्हें सुनने लगेंगे, बात करने लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आज हम भी मोबाइल पे रहते हैं, बच्चे तो मोबाइल वर्ल्ड में जा ही गए। अब मेरे पास रोज केस आते हैं, सर ये मोबाइल नहीं छोड़ता। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। मैं पेरेंट से ये बोलता हूँ कि बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है? सर 6:30 उठता है, 7:30 जाता है। आता कितने बजे की बात करूं? 2:30 बजे। मैंने कहा जो बच्चा स्कूल में 8 घंटे बगैर मोबाइल रह सकता है तो घर में आते ही बैग रखने के पहले मोबाइल क्यों ढूंढता है? आपने उसे मोबाइल की आदत दी अपनी सहूलियत के लिए, और अब आप उसी चीज को, वो बच्चा 8 घंटा स्कूल में विदाउट मोबाइल रहा है ना,
0: ठीक है,
4: अब ना आप उसको कोई और चीज में डाल रहे हैं, ना डिस्ट्रैक्ट, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस इतनी आ गई। एज ए रिजल्ट फिजिकल एक्टिविटी गेमिंग पे रह गई, हम ग्राउंड में खेलते थे, बच्चे मोबाइल में खेलते हैं.
0: बिल्कुल.
4: तो एज ए रिजल्ट फिर जिस दिन रिजल्ट आता है, पीटीएम होता है, तो उनका आउटबर्स बच्चे पे आ जाता है. उस टीचर ने क्या किया, उस ट्यूशन टीचर ने क्या किया. बच्चा जब ये चीखा चिल्ली देखता है तो वो एकदम से वो डर जाता है. तो आज आप समझिए ये मोबाइल.
0: तो सर इसका सीधे तौर पर मतलब ये है ना कि हम सीधे तौर पर ये है कि पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी है. हालांकि एक चीज और जिसको हम मिस कर रहे हैं, अगर ज्योति कपूर जी आप बता पाए डॉक्टर कपूर, कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती है. हालांकि मोबाइल वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट पर सीधे तौर पर असर डालता है. आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से वीक होता है, आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सी चीजें. लेकिन डॉक्टर कपूर, ज्वाइंट फैमिलीज में ज्यादा ईजी था बच्चों को समझना, क्या आप इससे अग्री करेंगी? ऑडियो म्यूट है डॉक्टर साहब आपका भी.
1: ओके थैंक यू. आई थिंक टेक्नोलॉजी से ये बड़ा प्रॉब्लम आया है, हम ज्यादा बोलते हैं या हम म्यूट हो जाते हैं. एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि कोई भी सिचुएशन को हम एक फैक्टर पे से डिफाइन नहीं कर सकते. हमने जेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में सुना है, हमें सुना है कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले लोग जो पहले वाले बच्चे जो बड़े हो रहे थे वो आज बिल्कुल परफेक्ट पर्सनैलिटी और परफेक्ट ह्यूमन बींग्स बन के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप, जैसे हमने फ्लाइट ऑफ फाइट की बात करी है या हमने स्ट्रेस की बात की है, तो स्ट्रेस हमारा एक इननेट मैकेनिज्म है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, वो हमेशा होता है. अब अगर आपके एनवायरमेंट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ माता पिता और बच्चा रह रहे हैं तो उनके पास दो एग्जाम्पल हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के और वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. जॉइंट फैमिली सेटअप में पॉसिबल है कि आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के और सारे रोल मॉडल्स हैं जो आपको बेहतर तरीके से तनाव सहने की और उससे मैनेज करने की क्षमता दिखाते या समझाते हैं. तो आपकी अपब्रिंगिंग में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉजिटिव आता है. और उसके ऑपोजिट ये है कि अगर जॉइंट फैमिली में तनाव ज्यादा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, जो कि हम आमतौर पर देखते भी हैं कि बहुत सारे यू नो फैक्शंस बन जाते हैं, पावर स्ट्रगल्स शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे इसका उल्टा असर भी पड़ता है. बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ आज ही हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि आज तनाव ज्यादा है और तनाव सहने की क्षमता कम है. और क्षमता कम इसलिए है कि ओवर स्टिमुलेशन है, ओवर एक्सपोजर है, इतना सब इतनी तेजी से हो रहा है कि किसी के पास समय नहीं है उसे बैठ के समझने का, सुनने का, उससे सीखने का. अब माता पिता की बात करें तो वो ओवरवेल्म्ड है क्योंकि उनको काम भी करना है, वर्किंग आवर्स का कोई अता पता नहीं है, और जो हमारी आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है आज लाइफ से, वो बहुत बड़ी हो गई है. पहले किसी को स्कूटर मिल जाए तो बहुत अच्छा था, एक चार पहिया कार मिल जाए तो अच्छा था, आज हमको बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, आज हमको मर्सिडीज भी चाहिए. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. और दूसरा, जो बच्चा है उसकी जो शारीरिक पर ग्रोथ है या जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो तो अपने नेचुरल पेस पे चल रही है, लेकिन जो स्टिमुलेशन मिल रहा है वो अननेचुरल पेस पे हो रहा है. तो जब हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जस्ट टू फिनिश इन अ मिनट, कि इमोशनल रेगुलेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है जिसको डेवलप होने में 25 साल भी लग जाते हैं. अब वो बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 साल की उम्र में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा. तो ये को रेगुलेशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम एक दूसरे से सीखते हैं रेगुलेट करना, तो अगर आपका माहौल अच्छा होगा तो आपकी को रेगुलेशन अच्छी होगी, और अगर नहीं होगा तो फिर को रेगुलेशन. ठीक
0: है डॉक्टर नितिन कुमार सेठी, अभी एक मोबाइल की बात हो रही थी, हम यहाँ पर डॉक्टर कपूर ये बता रहे हैं कि बच्चा अपने हिसाब से उसका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप होगा, लेकिन एक और चीज अगर आप समझा पाए, क्या मोबाइल के आने से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर, तो ठीक है हम उस नेगेटिव असर को लेकर बात करेंगे, बच्चों की जो ग्रोथ है, माइंड मेंटल ग्रोथ है, वो बहुत फास्ट नहीं हो गई? 3 साल के बच्चे को आजकल सब कुछ पता है, ये किस हद तक सही है?
2: देखिए, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड व्हाइल हम लोग मोबाइल के बारे में बात करते रहते हैं, द फर्स्ट आईफोन केम आउट इन 2005, एंड देखिए आईफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर हियर टू स्टे. सो मेरी फीलिंग ये है कि देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ द मोबाइल फोन व्हिच इज आल्सो हेल्पफुल, एंड इट्स एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग इज बैड. आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट, इट्स एक्चुअली अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसे कहते हैं टफ लव, कि भाई अगर आप बच्चे तो डाइट नहीं करेंगे, री डाइट नहीं करेंगे, द चाइल्ड विल ग्रो अप विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी करेक्शन, देन द बिहेवियर ऑल्सो हैज टू बी करेक्टेड, बट इट हैज टू बी करेक्टेड इन द राइट वे. सेम वे एक्सट्रीम्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन और एनी सॉर्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इज ऑल्सो बैड. इट्स एक्चुअली व्हाट इज नीडेड इज बैलेंस. यू हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच टू योर चाइल्ड. While आप बोलते हैं कि वी शुड बी वेरी जेंटल, यू नो, बी केयरफुल ऑन हाउ वी एड्रेस द चाइल्ड बिकॉज इट्स अ टेंडर एज, इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड लेटर ऑन, इंक्रीज द स्ट्रेस हार्मोन्स. एट द सेम टाइम अगर आप चाइल्ड तो उस एज में नहीं करेक्ट करेंगे एंड द चाइल्ड कंप्लीटली गोज अप विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी करेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलरली अ बैड बिहेवियर और अनहेल्दी बिहेवियर, also not right. So same thing applies to mobile phones. I think mobile phones are helpful to the brain also in many ways. They are here to stay. Aapke one of the guests said rightly thi aajkal there's a lot of in Australia and many countries they are saying to be banned mobile phones in
0: schools. Bahut si countries mein aur Bharat mein kuch aise rajya hain jahan par ban ki baat ho rahi
2: hai. Exactly. Till the age of 16 ban it. But see, the reason for banning them is more for that is social media website like WhatsApp, Instagram. But there are so many advantages of mobile phone. आप भूल जाते हैं जब COVID था and whole education went on mobile phones.
0: लेकिन वही बात है डॉक्टर नितिन की उसको बैलेंस करने की जरूरत है. मुझे एक ब्रेक लेना है, आप रहिए हमारे साथ, डॉक्टर निशा भी हमारे साथ मौजूद है. कारण तो समझ लिए, लेकिन क्या टिप्स आप देंगी डॉक्टर निशा सही पेरेंटिंग के, और हमारे तमाम गेस्ट जो हैं उनको इसको लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं.

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: बच्चों को फ्लाइट और फ्लाइंग मोड से बचाएं। और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी को लेकर हो रही थी कि फ्लाइट और फ्लाइंग मोड होता क्या है, क्यों, कैसे डांट जो है वो बच्चों के ब्रेन पर असर डालती है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पर असर डालती है। लेकिन डॉक्टर निशा, आपके पास आते हुए, अब कारण हमने समझ लिया, कमी कहां पर है, क्या पेरेंटिंग में कमी है या कहीं कि जनरेशन बहुत फास्ट है जिसको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती थी। और आज तक एक बहुत अच्छी बात यहां पर यह भी हुई डॉक्टर निशा, हम और आप कई बार मेंटल हेल्थ की बात करते हैं लेकिन यहां पर बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात भी अब शुरू हो चुकी है।
6: देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, जब भी कोई दो लोगों में आपसी मतभेद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं या उसके कुछ तरीके होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, या जहां हम डिसएग्रीमेंट में होते हैं उसे रिजॉल्व करने का। सबसे पहली चीज, जब अगर बच्चा को भी आप डांट रहे हैं तो बेसिकली बच्चा नम आउट हो रहा है, वो भी टेंशन फील कर रहा है, वो भी स्ट्रेस फील कर रहा है। तो सबसे पहली चीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं कि आप बच्चे को बोलिए मैं थोड़ी देर बाद इस टॉपिक पर तुम्हें बात करूंगी, या उस पर्टिकुलर मौके पर आप उससे बात मत करिए, उस पर्टिकुलर मौके पर उससे ब्रेक लीजिए, खुद को शांत करिए और फिर उस टॉपिक पर बच्चे से बात करिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है जब कुछ गलत हो जाता है तो माँ बाप सिर्फ बात नहीं करते, सिर्फ डांटते नहीं है, बात करना भी बंद कर देते हैं, जिसे कि हम हमारी भाषा में स्टोन वॉलिंग कहते हैं। वो बाकी सब कुछ करेंगे पर बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चे को सजा देंगे। तो ये भी एक तरीका है, ये तरीका गलत है कि आप बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं। आप बच्चे से नाराज है, उससे बात करना बंद मत करिए। आप बच्चे से नाराज हैं और अगर उसने गलत जवाब भी दिया है तो आप उसे ये बोल सकते हैं आपका बिहेवियर गलत है, आप गलत नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी चीज क्रिटिसिज्म पर बोलते हैं कि हम बच्चे को क्रिटिसाइज इस तरीके से करें कि बच्चा अपनी गलती समझे, हमें प्रॉब्लम पर फोकस करना है, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से या तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इंस्पाइट तुम ऐसे ही हो, तुम हर बार ऐसे ही करते हो, की बजाय अगर हम बच्चे को ये बोले कि आपके बिहेवियर की वजह से मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, अगर आप ज्यादा गंद डालते हो घर में तो शायद मेरे लिए एज ए मदर काम बढ़ जाता है, या आप अगर टाइम पर खाना नहीं खाते हो तो मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है और मैं भी काम करके थक कर आती हूँ। ये उनके एग्जांपल्स हैं। तीसरी चीज, अप्रिशिएट करिए बच्चे को, छोटी छोटी बातों पर अप्रिसिएशन देना सीखिए, उससे बच्चे के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट भी बनेगा और अगर बच्चा आपसे किसी बात पर डिफर भी कर रहा है तो आप उसे भी ये बात बोलिए, हो सकता है मेरी सोच और तुम्हारी सोच में यहाँ डिफरेंस है, देखिए बच्चे का दिमाग तो इतना डेवलप नहीं हुआ है और वो शायद आपके एंगल से बहुत सारी चीजें ना भी समझ पाए, बट अगर आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जिसमें आप बच्चे की इमोशंस की बात करेंगे, वो अपने दिल की बात अगर आपसे करेगा, तो धीरे धीरे उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उससे वाई का सवाल पूछिए, आपने ये काम क्यों किया और क्यों नहीं किया, आपको ये चीज पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, इंस्पाइट ऑफ डांटने के अगर आप क्यों पर जोर देंगे तो बच्चे को भी रिफ्लेक्शन का मौका मिलेगा कि उसे कोई चीज क्यों नहीं करनी है, उसे अगर नहाना है तो नहाकर क्यों नहीं जाना है, वो अगर अभी खाना नहीं खाना चाहता या पर्टिकुलर फूड या पर्टिकुलर तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहता या पढ़ना नहीं चाहता तो क्यों नहीं चाहता। रही बात मोबाइल फोन को भी हम बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो जो डूम स्क्रोलिंग होती है उससे ब्रेन पर असर पड़ता है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है और हमारी जो जितना भी सोशल मीडिया और ये एल्गोरिदम्स है एक के बाद एक रील आती है उसका भी दिमाग पर असर पड़ता है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ पेरेंट्स खुद रोल मॉडल है बच्चों के लिए, बच्चे कहने से कम और देखने से ज्यादा सीखते हैं, तो अगर आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करेंगे बच्चे उसे देख रहे हैं, अगर वर्बली भी देख रहे हैं, अगर आप उनके सामने नहीं करते वो बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न या बच्चे में बहुत सारी चीजें बचपन से आती हैं। और ये भी हम मानते हैं कि अगर बच्चे में अगर हैप्पीनेस का क्वोशंट है उसमें भी हमारा 50% हिस्सा सेट पॉइंट जेनेटिक्स होता है, तो एक बच्चा किसी भी सेटबैक से बाहर निकलता है वो उसे जेनेटिकली मिलता है। तो अगर आप खुश रहेंगे, आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीखेंगे, आप अपना रेजिलियंस लेवल बढ़ाएंगे, अगर आप सुबह उठकर वॉक करने जाते हैं, आपका डिसिप्लिन रूटीन है, तो काफी चांसेस है कि बच्चा उन चीजों को फॉलो करे। और उसमें आप पेरेंट्स होने के नाते आई पर जोर ना दे, मम्मी या पापा ना बने, वी एज ए टीम बने, हम चाहे डिसीजन कोई भी एक पेरेंट ले पर बोला ये जाना चाहिए मैं पापा से बात करके बताऊंगी, मैं मम्मा से बात करके बताऊंगा, वो वी मैसेज आना चाहिए ना कि ट्राइंगुलेशन का जिसमें मम्मी या पापा की साइड ले बच्चा। तो वहां मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को टीम में काम करना बहुत जरूरी है,
7: बिल्कुल,
6: चाहे वो डिसीजन एक भी पेरेंट का हो।
7: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर केशव अग्रवाल, इसी में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या पेरेंटिंग में बदलाव की जरूरत है?
8: देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है आज के डेट में बच्चों में, जो अभी मैं दो मिनट मोबाइल का लूंगा, अग्रेशन बढ़ गया है और पेरेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब बच्चा जवाब दे जाता है डेफिएंट हो जाता है, इवन टीचर्स के लिए बड़ी मुश्किल है, वो बोल देते हैं पीटीएम में इसका कुछ नहीं होगा, ये जो शब्द होते हैं ना बच्चे के अंदर घर कर जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड, हम उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो बच्चा उसको आज की डेट में जो ये जेन अल्फा जेन जी है बड़ा अलग तरीके से लेता है। दे डोंट वॉन्ट टू बी कंपेयर्ड, दे डोंट वॉन्ट टू बी रिजेक्टेड, दे डोंट वॉन्ट टू बी, यू नो, जो टोका टोकी। अब हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बच्चे ने कुछ ऑर्डर किया और हम कहते हैं नहीं नहीं ये मत लो इसमें बड़ा ये है, तो उसको लगता है हर चीज में हमें टोका जा रहा है, हर चीज में हमें ये। एज ए टीचर बच्चा जब स्कूल ना जाना चाहे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या तो वो फियर या कंपेरिजन। और एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बताता हूँ, आज सारे स्कूल बड़ी बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन जब हम एक कंपटीशन में भेजते हैं तो हम टॉप 5 टॉप बच्चे को भेजते हैं, दूसरा बच्चा हमेशा देखते रह जाता है, उसको लगता है मेरा नंबर तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम जीतने के लिए बच्चों को भेजते हैं। मेरा मानना है इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है जिसमें आप हर बच्चे को मौका दें, चाहे वो जीत के आए चाहे हार के आए, और बच्चे को हल्की सी मोटिवेशन मिल जाती है तो उसका टोटल 360 डिग्री बिहेवियर चेंज हो जाता है।
7: सर ये सोच तो स्कूल लेवल पर चेंज होती है, ये सोच आज की तारीख में, देखिए आज आप सब लोग जो यहाँ इस पैनल पर बैठे हैं, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ तक आ गए, हम पेरेंटिंग टिप्स तक आ गए, लेकिन स्कूल की सोच को आज भी नहीं बदल पाए हम। स्कूल केवल उन्हीं बच्चों को सीनियर विंग में एडमिशन देता है जिसको लगता है कि ये मेरे स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ये भी एक धारणा है स्कूलों में।
8: और टीचर्स को बच्चे के लिए रीजन रोज, जैसे मैम ने कहा हैप्पी, ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए वो लर्निंग के लिए खुश होके आए, वो स्कूल जाना चाहे। आज सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, तो आज की डेट में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, टीचर्स के पास पेशेंस नहीं है, स्कूल में बच्चे इतने हैं, बच्चा अपने आप को लॉस्ट फील करता है, उससे हम एक्सपेक्टेशंस पहले ही बना लेते हैं बिगर उसका एप्टीट्यूड देखे, क्या वो कर सकता है, वो गाना या म्यूजिक में है हम उसे इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं। बच्चा एक स्टेज में आके ऐसे फील होता है कि घुटा, ही फील्स कि आई एम सो इन ए वेरी टॉक्सिक एनवायरमेंट, भागना चाहता है. आज की डेट में अभी डेटा रिलीज हुआ, सबसे ज्यादा सुइसाइड्स का रेट बढ़ गया है. हमें एक पॉज लेने की जरूरत है, हमको उस बच्चे से बात करने की जरूरत है. आपने एक और पॉइंट का, न्यूक्लियर फैमिली, आज बच्चे को सिबलिंग नहीं होता, बच्चा किससे बात करे, उसको अपने उम्र का चाहिए, खेलने को किसके साथ जाए, शेयरिंग नहीं है. तो बच्चे की आप मानसिक स्थिति समझिए कि ही सो मच लॉस्ट कि हम सब उसको फुटबॉल की तरह बोल मारते हैं, पेरेंट भी, टीचर्स भी, तो अल्टीमेटली उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब खत्म हो जाता है. तो आप डिसिप्लिन करने के चक्कर में उसको डिसइल्यूजन्ड कर देते हैं एंड एज ए रिजल्ट यू लूज योर चाइल्ड. उसकी जो पोटेंशियल अंदर क्रिएटिविटी है वो बचपन में ही खत्म हो जाती है, जहां उभरना चाहिए, और हम अपनी चीजें उस पे थोप रहे हैं. तो पेरेंट्स का रोल आज के डेट में टाइम निकालना बहुत जरूरी है. अगर आज समय नहीं निकालेंगे तो कल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर लौट के लाना बड़ा मुश्किल है. आप काउंसलर्स के पास ले जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन की दवाई लेंगे, और ये स्टोरी चलती रहेगी, और घर में आज एक माहौल तनाव का रहता है खुशी के बजाय. जी
7: जी बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर कपूर, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप?
9: सी डेफिनेटली, लाइक जैसे सबने बोला है, हमारे को एक चीज याद रखनी है, बच्चे सीखते हैं हमको देख के, सो वी आर देयर रोल मॉडल्स. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम चाहते हैं बच्चे में देखना, पहले वो हम खुद करें. अगर हम चाहते हैं कि वो कम मोबाइल देखे तो पहले हम खुद उसको कंट्रोल करें. अगर हम वो चाहते हैं कि वो इमोशनली रेगुलेट हो तो पहले हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करें. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, जो हम न्यूरो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, जो अभी पहले भी डिस्कस करने लगे थे, कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है. हमारे न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं डेली, अपने एक्सपीरियंस से वो जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इसके चलते हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है. यही कारण है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ, वो एक फिक्स्ड चीज नहीं रहता है. तो जहां पे तनाव ज्यादा होगा, नैगिंग होगी, स्कोल्डिंग होगी, वहां पे आप हमेशा एक थ्रेटन्ड मोड में रहोगे. यू विल ऑलवेज फील कि कोई भी मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, और मुझे डिफेंस मोड में रहता है, तो वो सर्वाइवल मोड में रहता है. तो उस चीज को बदलने की जरूरत है. हमको एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है. अगर रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो उसके बाद हम चीजों को अच्छे ढंग से समझ के मॉड्यूलेट कर सकते हैं. अदरवाइज हम एज पेरेंट्स भी परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं. आज की डेट में सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड रेट आजकल 15 से 25 साल की उम्र में हो रहे हैं. ये सबसे बड़ी आई थिंक फोकस करने की चीज है आज की डेट.
7: मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है. जी बिल्कुल डॉक्टर कपूर, आपने एक बात सही कही. लेकिन हम एक और चीज, एक और बड़ी बात है, जब हम बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, डॉक्टर नितिन सेठी आपसे है, इसमें डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली गट हेल्थ की अगर हम बात करें?
10: राइट, आई थिंक काफी डेटा ही आ रहा है कि इनिशियल डाइट प्लेज अ रोल इन ब्रेन डेवलपमेंट. ब्रेन डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया, न्यूरोलॉजिकली द ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ योर लाइफ. सो वही फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं. That is the time when diet plays a role, healthy diet, balanced diet. Jaise aapke dusre speakers bol rahe hain, I think the word is, you know, you nourish the brain. You aap jitna brain to bacche ke brain ko develop karayenge with good thoughts, good ideas, expose the child to a healthy, balanced environment, I think the child will grow up to be better. And in that way, jo aap bata rahe hain, fight and flight, it is all in the way of nurturing the brain in the right way. I don't think so ki agar aap bacche to daantte hain, it has to be a constructive criticism. Theek hai, jise aapne kisi ko re-diet kiya, agar koi bachcha koi maladaptive behavior kar raha hai, and how do you re-diet the behavior to a more proper behavior. Same way, diet has a big role. A healthy, nourishing diet in that formative age will ensure that the brain will develop better. Aapke neuronal connections better hote hain. You have healthy relationships with your peers, other children, with your elders. And these are the children who later on will have the skill sets to manage life, because life is going to become challenging later on. So how does the child later on manage stress? How does the child manage difficulties, adversities? Ye sab traits childhood mein develop hote hain. So aapke kai speakers ne bada acha bataya, bhi anxiety later life mein ho rahi hai, depression ho rahi hai. That's because children are being not been raised in a adaptive environment. They have been raised in a maladaptive environment. That's why they are not able to deal with the stress. Life is stressful, and as they grow, life will become more stressful. So it is a matter of that tender age mein teachers ka role hai, parents ka bahut bada role hai, as all your speakers have said. But in the end, it's something which is like aap ensure kar rahe hain ki aapka jo bachcha develop kar raha hai will grow up to be a mature, balanced individual with good thoughts, good personality. So that is the most important thing.
7: तो सबसे जरूरी इसमें यही है जो हमारे तमाम पैनलिस्ट बता रहे हैं कि अच्छी पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है. जी निशा जी, लास्ट 30 सेकेंड जी अपनी बात रख दीजिए. ऑडियो म्यूट है निशा जी शायद आपका.
6: पांच पॉइंट्स होते हैं पेरेंटिंग में जो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स ध्यान दें. फिजिकल ग्रोथ, जिसकी तरफ मोस्टली पेरेंट्स ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, डाइट का ध्यान रखें बच्चों की. सेकंड, इमोशनल ग्रोथ, जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के इमोशंस के बारे में बात करें, उनकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करें. तीसरा, सोशल ग्रोथ के बारे में बात करें. बच्चे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, बाहर कम्युनिटी में जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से भी बाहर वो जरूर जाएं. थर्ड थिंग की अगर हम बात करते हैं वो वहां पर आती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जिस पर हमेशा पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि बच्चों का मार्क्स क्या आए हैं और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है. कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी अगर हम ध्यान दें कुछ चीजें, और पेरेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है वो रिजेक्शन फेस करना भी बच्चों को सिखाएं. ऐसा नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे पेरेंटिंग में ऐसा भी आता है आप डांट भी देते हैं और बच्चों को स्टोन वॉलिंग बिल्कुल मत दे कि उनसे बात करना बिल्कुल छोड़ दे. ये बिहेवियर वो बच्चे बड़े होकर अपने पार्टनर्स के साथ भी करते हैं. तो ये एक चीज
7: आपने बहुत अच्छी बात कही जो पॉइंट मिस हो गया था, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग. लेकिन वही बात होती है, वो भी घर से शुरू होती है. सबसे बड़ा रोल मॉडल एक माता और पिता ही होते हैं और अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए. रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ.

0: कम से कम लोगों को खबर।
1: हर साल कई किलोमीटर की दूरी तय कर विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से होती है उत्तराखंड में एक यात्रा, जिसे लोग जगदीशिला रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। और ये यात्रा अब बागेश्वर के भ्रामरी मंदिर पहुंच चुकी है और इस यात्रा का समापन 25 मई को गंगा दशहरा के दिन टिहरी में मौजूद विशौन पर्वत पर होगा।

0: भक्ति और आस्था की डोली विश्वनाथ जगदीश शिला डोली। हर साल की तरह इस साल की डोली यात्रा में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा है। डोली यात्रा जिस राह से भी गुजर रही है, श्रद्धालु स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं। भजन कीर्तन, जयकारों, नाद और धार्मिक उल्लास से वातावरण दैवीय हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 27 सालों से चली आ रही विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा इस साल भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली है। जगदीश शिला रथ यात्रा राज्य की एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है, जिसमें बाबा विश्वनाथ और मां जगदीश शिला की डोली रथ पर सवार होकर विभिन्न शक्तिपीठों और देवालयों की परिक्रमा करती है। टिहरी गढ़वाल से होती हुई ये डोली यात्रा अब कुमाऊं मंडल के ग्वालदम पहुंची, जहां के लोगों ने डोली और डोली लेकर आ रहे यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया।
1: बहुत अच्छी खुशी होती कि लगातार पिछले 14-15 सालों से ये यात्रा कुमाऊं मंडल के हर उन मंदिरों में जारी है, जिन मंदिरों को आज हम सब लोग मानस खंड में देख रहे हैं। तो ये चिन्हित करने का काम हमारी बाबा जगदीशिला डोली यात्रा के माध्यम से लगातार पिछले 14-15 सालों से आदरणीय श्री मंत्री प्रसाद नेतानी जी ने भी करी है। तो एक अच्छी खुशी है कि कुमाऊं के हर उस शक्तिपीठ को चरण स्पर्श करके ये यात्रा आगे बढ़ती है।
0: इसके उपरांत यात्रा कोट भ्रामरी मंदिर पहुंची, जहां देवी के दरबार में पूजा अर्चना की गई और जगदीश शिला डोली का रात्रि विश्राम किया गया।
2: ये पहली हमारी उत्तराखंड की शक्ति है डोली के रूप में, जो विश्व के लिए साल भर में एक बार जो है विश्व की शांति के लिए उत्तराखंड के सारे देवालयों में भ्रमण करती है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है और जो लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारी शक्तिपीठ है, जैसे यहाँ माँ कोट भ्रामरी जो शक्तिपीठ है, ऐसे शक्तिपीठों को धाम का रूप मिले, ये इस यात्रा का उद्देश्य है।
0: बाबा विश्वनाथ माँ जगदीश शिला उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिन्हें पहाड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये भगवान शिव यानी विश्वनाथ और शक्ति यानी माँ जगदीश शिला के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक हैं। उनकी डोली में शिव और शक्ति की मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित रहती हैं, जिन्हें टिहरी जिले के हिंदो पट्टी में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। चार धाम समेत कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद 25 मई को गंगा दशहरा पर डोली यात्रा का समापन विशौन पर्वत में बाबा विश्वनाथ धाम में होगा, जिसे स्वामी राम तीर्थ और गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक एकता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि दूर दराज के गांवों को पहचान दिलाने और धार्मिक पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
2: with artists like James Bay,
3: so come on, let it go.
1: Nora Jones,
4: my heart is drained.
1: Daniel Caesar,
5: we both know how,
1: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़।
9: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात आज सबसे पहले आलिया की करेंगे, जो जहां होती हैं छा जाती हैं। अब तक कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया को 5 लुक्स में देखा जा चुका है और उनके सभी लुक्स ग्लैमरस नजर आ रहे हैं। तो कैसे फ्रेंच रिवेरा पर चल रहा है आलिया का राज, आपको आगे दिखाएंगे।
10: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है तो इस बीच उर्वशी की बात कैसे ना हो, भाई 5वीं बार वो आ चुकी है इस फेस्टिवल में और बेहद बोल्ड और हाई ड्रामा फैशन स्टेटमेंट इस बार भी उन्होंने दिया है। उनकी ड्रेस 1500 करोड़ की बताई जा रही है। क्या है पूरी खबर, ये आगे आपको बताएंगे।
9: नमस्कार, मैं श्रीगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात झारखंड की उस बेटी की भी करेंगे जिसने पेरिस फैशन वीक में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया। कोयला खदान को थीम बनाकर इस लड़की ने फैशन का ऐसा ताना बाना बुना है कि देखने वाले दंग रह गए। इस लड़की से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और साथ ही में आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात दिल्ली के एक ऐसे टीचर से हम कराएंगे जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और उन्हें स्लम एरिया में बच्चे स्ट्रीट टीचर के नाम से जानते हैं। इस टीचर से भी आगे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां।
9: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग हुई वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया नाम। छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। मुजफ्फरपुर के बाजार में छाई शाही लीची की बहार, शुरुआती सीजन में लीची की भारी मांग, ग्राहकों को भाता है स्पेशल स्वाद और सुगंध। कान से सामने आया आलिया भट्ट का पांचवां लुक। डिजाइनर तरुण पहलियानी की ड्रेस में बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत कान फिल्म फेस्टिवल के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड के सितारे जो इस रैंप पर जलवा बिखेर रहे हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में किस तरह से डंका बजा रहा है भारत का, आप समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे मुझे लग रहा है। सबसे पहले शगुप्ता आपसे शुरू करते हुए, आपको किसका लुक सबसे अच्छा लग रहा है
9: अभी तक? वैसे हालांकि हमने बहुत कम लुक देखे हैं श्वेता, आई एम श्योर कि जिसका वेट है वो तो नहीं आए, लेकिन नहीं आलिया का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल लुक्स मुझे नजर आए हैं, वेरी सटल, वेरी पॉइज्ड, और जो मेकअप है एज यूजुअल जो वो करती हैं कि नॉट ओवर द बोर्ड जाने वाली इनकी आदत जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है।
11: बिल्कुल, मैं यही अभी कहने वाली थी जो शगुफ्ता ने कहा ना कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट करती नहीं है और शायद यही उनकी बहुत बड़ी मजबूती है, उन्हें पता है कि वो बहुत ही इनोसेंट फेस है उनका, उसी हिसाब से उन्होंने
10: सामने पांचवा भी आ चुका है, उसमें बेस्ट कौन सा आप कहेंगे?
11: आप जो अभी इंडियन लुक उनका आया ना जिसमें उन्होंने कॉर्सेट पहना था तो थोड़ा गाउन का लुक था और इंडियन साड़ी का लुक, साथ में उन्होंने नथ कैरी
10: की, आपको
3: मैं हम सब आलिया की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, उर्वशी की तस्वीरें भी आपको नजर आ रही है, अगर आप लोगों ने देखा एक पंजाबी एक्ट्रेस है रूपी गिल,
9: हाँ देखिए
3: वो गई हैं पूरे पंजाबी अटायर में, वाइट उन्होंने ड्रेस पहनी है, सलवार कुर्ता उन्होंने पहना है और उनकी जो स्लीव्स हैं उस पर लिखा हुआ है पंजाबी में जरदोजी में चढ़दी कला, और वो वाइट सिल्क के साथ जरदोजी का वर्क है, और जो उन्होंने नेकलेस पहना है वो शाही नेकलेस पहना है, कलगी वाला नेकलेस उन्होंने पहना है, सलवार पे पूरा जरदोजी वर्क है, वो मुझे बहुत ही सिंपल और बेस्ट, और उन्होंने एक्चुअली पंजाब रिप्रेजेंट किया है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा
10: भाई। लेकिन बात हो रही है उर्वशी की, उर्वशी हर बार की तरह इस बार भी एकदम बोल्ड स्टेटमेंट देती नजर आ रही है।
3: आपको उर्वशी का लुक कैसा लगा?
10: शब्द नहीं है, मैं स्पीचलेस हूं।
9: मैंने कल क्या कहा था? हमने कल कही थी ना कल बात ओवर द बोर्ड जाने की आदत, मतलब इट्स वेरी ओवर, यू कैन गो अ लिटिल।
3: मैं ये सोच रही हूं कि 1500 करोड़
10: एग्जैक्टली
9: और आई डोंट नो,
10: और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस लुक को भी देखें, अगर आप दिखा पाए इनके लुक को, सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, डायमंड स्टडेड, ये स्टडेड, वो स्टडेड, बट एक खूबसूरती जो होती है वो
9: मिसिंग है,
10: वो कहीं ना कहीं कुछ एक मिसिंग है। तो चलिए हम आलिया की तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं जिनकी चर्चा अभी तक जितने भी यहाँ स्टार्स आए हैं उसमें भाई आलिया की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, हालांकि तारा सुतारिया आ चुकी है, उनको भी हमने देखा, लेकिन अभी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने के पहले कि हम उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और ज्यादा, मतलब कान के लायक आपको, मतलब विंटेज लुक था उनका, जो हेयर भी, हेयर स्टाइल भी आपने देखा उनका, वो कुछ खास नहीं,
9: नहीं। श्वेता पता क्या है, ये चीजें हम जो तारा सुतारिया को जिस लुक में हमने देखा है ये चीजें ऑलरेडी हमने देखी हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर,
3: क्योंकि ये स्टेज दूसरी, एक कान की स्टेज है ना जहाँ पे, और इसीलिए देखिए आलिया इसीलिए सारी लाइमलाइट लूट ले रही है, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल लुक है। अब आप दोनों को कंपेयर करो, कहाँ तो 1500 करोड़ और कहाँ, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो इनकी ड्रेसेस के प्राइसेस क्या है, लेकिन फिर भी लुक बहुत मैटर करता है, जितना सिंपल उतना ग्रेसफुल,
11: इतना बड़ी थिन लाइन होती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि आलिया का लुक बहुत सटल था बट बहुत ग्लैमरस था, एट द सेम टाइम तारा सुतारिया विंटेज लुक में नजर आई, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी भाई, रौतेला थोड़ी ओवरबोल्ड
10: हमेशा की
9: तारा सुतारिया लुक्स वेरी रेपिटेटिव इन हर
10: स्टाइल। लेकिन देखिए जैसे जैसे कान फिल्म फेस्टिवल परवान चढ़ रहा है वैसे वैसे सेलिब्रिटीज के ग्लैमरस लुक भी लोगों के दिल जीत रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल के दूसरे दिन आलिया के अवतार ने सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। ईस्ट मीट वेस्ट के लुक में आलिया बेहद खूबसूरत अंदाज में भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती नजर आई।
14: माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी काल, कैन में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की स्टीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से सभी को हैरान कर दिया। आलिया ने डिजाइनर तरुण तहिलयानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी पहनी जिसमें विक्टोरियन कॉन्सर्ट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। इसी के साथ नथ बिंदी ने पूरा लुक खास बना दिया। कैन में हर कोई एक्स्ट्रा ग्लैम दिखाने की होड़ में रहता है, वहीं आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी वाला टच जोड़ दिया। आलिया के लुक में सब कुछ इतना बैलेंस था कि नजर हटाना मुश्किल हो गया। वहीं रेड कारपेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया है। अ वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डैनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें स्लीक साटन, हनीकॉम लेस और सेंटली लेस की कई लेयर्स हैं। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डैनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है, अल्ला रे आलिया, अल्ला रे आलिया, क्योंकि हर जगह छाई हुई है. पहले दिन की बात कर लो, दूसरे दिन की बात कर लो, हर जगह आलिया की खूबसूरती, उनकी पिक्चर्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, यही नजर आ रहा है.
1: अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम हर बार जब भी हम कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल की बात करते हैं, हम लोग ऐश्वर्या को, हालांकि मैं अभी भी मिस कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग कि उनका एक वो आनी चाहिए, आ रही नहीं आ रही, दैट आई डोंट नो. आपको लग रहा है कि उन्होंने ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो. इवन आई एम वेटिंग फॉर ऐश्वर्या.
2: एग्जैक्टली, इवन यू आर वेटिंग. एग्जैक्टली. और कान अगर सोचते हैं तो ऐश्वर्या जरूर याद आती है रैंप पर, और वो आती है तो अलग ही ऑरा रहता है. क्या बात है. लेकिन हम चूंकि आलिया की लगातार बात कर रहे हैं, तो शगुफ्ता मुझे ये लगता है कि अभी तक पांच चुके इनके आ चुके हैं, अलग अलग लुक्स आ चुके हैं. ये जो लुक ईस्ट और वेस्ट वाला था वो अमेजिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए इन्होंने जो पहनी हुई ना, तरुण तेलियानी की एक तो ये ड्रेस है जिसमें चंदेरी धोती इन्होंने पहनी हुई है नीचे, और कॉर्सेट एक पहना है, आइवरी कॉर्सेट उसे कह रहे हैं. ये देखिए ये लुक आप देख सकते हैं. तो ये जो आप कान में देसी अंदाज देख रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि उनके अंदर का जो देसी गर्ल लुक है वो इसमें साफ नजर आ रहा है. आइवरी कलर की चंदेरी धोती एंड उसके साथ ये कॉर्सेट, और साथ ही साथ आप नीचे पाजेब भी देखेंगी पैरों में, उन्होंने पायल पहनी हुई है और नोज रिंग है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी बड़ी तारीफ हो रही है.
3: एक और बात यहाँ पे कहूंगी कि आलिया के लुक के अलावा अगर एक और चीज है ना जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है कि हाउ शी कैरीज हर सेल्फ. इतना कॉन्फिडेंस और इतना पॉइस के साथ वो अपने आप को कैरी करती है कि वो कुछ भी पहने, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने गाउन पहना है, कॉर्सेट के साथ साड़ी कैरी की है, वो बहुत एलिगेंट लग रही है.
2: और आपने ये भी देखा होगा कि इस बार भी हेयर स्टाइलिंग में कुछ ज्यादा उन्होंने नहीं किया,
0: एक्सपेरिमेंट नहीं
2: उसको
0: किया,
2: एज इट इज बहुत ही फ्री फ्लोइंग उन्होंने छोड़ा है.
0: मैं कह रही हूँ, वही कह रही हूँ, वो जो अपने उर्वशी है थोड़ा सा सीख लेंगे, यू नीड टू लर्न अ लिटिल. बट फिर भी देखिए शानदार एंट्री की है आलिया ने, जिसने एक यादगार मोमेंट क्रिएट कर दिया. फिलहाल तो आलिया भट्ट के कान फेस्ट में शामिल होते हुए तीन लुक्स हमने सामने आए हैं, वही तस्वीरें आपको दिखाते हैं.

0: फ्रेंच रिवेरा की खूबसूरती इस बार और भी जादुई लगने लगी, क्योंकि जैसे ही आलिया भट्ट ने कैन 2026 में कदम रखा, उन्होंने सिर्फ एंट्री नहीं की बल्कि एक यादगार मोमेंट क्रिएट कर दिया। आलिया ने अपने अंदाज से साबित कर दिया कि सादगी और रॉयल एलिगेंस का मेल कितना असरदार हो सकता है। रेड कार्पेट पर उनका लुक बेहद रोमांटिक और ड्रीमी वाइब से भरा नजर आया। एक्ट्रेस ने डिजाइनर तमारा राल्फ के शानदार आउटफिट में रेड कार्पेट पर एंट्री ली, जिसमें स्कल्प्टेड कॉर्सेटेड सिलहूट, डीप प्लंजिंग नेकलाइन, लंबी फ्लोइंग ट्रेन और पीछे लहराता शिफॉन स्कार्फ उनके पूरे लुक को किसी परी कथा जैसा बना रहा था। दिलचस्प बात ये रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कैन की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पेस्टल पेंटिंग जीवंत होकर सड़कों पर उतर आई हो। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया था। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उसकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर उतार दिया गया हो। ये कैन फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल 2025 में उन्होंने जब अपना डेब्यू किया तो इस दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। और इस बार भी कैन पहुंचने से पहले ही उनका एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आलिया को फ्रेंच रिवेरा पहुंचते समय स्प्रिंग 2026 कलेक्शन के शार्प टेलर्ड ब्लेजर और फिटेड क्रॉप ट्राउजर में देखा गया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे एयरपोर्ट फैशन हो या हाउ द कल्चर, आलिया भट्ट हर बार स्पॉटलाइट अपने नाम करना बखूबी जानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भैया आज तो हर तरफ एक ही चर्चा है, अब उर्वशी की बात भी कर लेते हैं।
2: बट मैं फिर भी एक लाइन कहूंगी, ईस्ट और वेस्ट, आलिया इज
1: बेस्ट, दैट इज ट्रू। अभी तक का बेस्ट,
3: अभी तक तो कम से कम। लेकिन अगर बात करें अब उर्वशी की, जरा चर्चा कर लें,
2: करनी पड़ेगी।
3: हाँ, क्योंकि उनसे जब भी पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फिफ्थ टाइम टू कान। तो खैर, फिफ्थ टाइम वो आई है कान में, लेकिन वही बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट। एंड ठीक है, स्टेटमेंट, कॉन्फिडेंस, सब अच्छी बात है, लेकिन जो उनका ओवरऑल जो उनका लुक है, अपीलिंग लग रहा है आपको?
2: नहीं, कहीं से नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल, बट डायमंड स्टडेड लुक, और मैं वही, अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट,
1: मुझे तो उनके पालों का चांदी
2: पसंद नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन वो कहीं से भी ग्रेसफुल नहीं है,
4: शगुफ्ता, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। एक बात बताती हूँ, वो नहीं अच्छी लग रही, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर आदमी का ना अपना एक पर्सोना होता है, और उर्वशी रौतेला का ना पर्सोना ऐसा है कि नोटिस मी, आई एम द बेस्ट, और उस पर्सोना के साथ रेजोनेट कर रहा है जो उन्होंने पहना है, क्योंकि वो ऐसी है।
3: पिछले बार वो पैरट या कुछ लेके आई थी, कुछ ऐसा उन्होंने किया था। इस बार तो सर पे चांद लेके आई है,
4: तो मतलब यही है कि मुझे नोटिस करो, मैं बेस्ट हूँ, और जो मैंने कैरी किया है वो किसी ने नहीं किया है। वो कहते हैं ना, हेडलाइंस बने, मैं आऊँ तो हेडलाइंस बने, चाहे कुछ भी बात हो,
2: और हेडलाइन क्या हो, आई एम द वन एंड आई हैव अराइव्ड,
4: आई हैव अराइव्ड, और फिल्म हिट हुई है मेरे वजह से। तो उस तरह का पर्सोना है, और हम क्यों बात कर रहे हैं,
3: बिल्कुल 1500 करोड़ बताया जा रहा है। एग्जैक्टली, वो बताया जा रहा है कि अब तक के कान में जितने भी ड्रेसेस आप लोगों ने देखे हैं, उसमें सबसे महंगी ड्रेस मैडम ने पहनी है।
1: नहीं, लेकिन इनके डिजाइनर कौन है, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को पता है किसने डिजाइन किया।
3: ये जो बताया जा रहा है, वियतनामी फैशन डिजाइनर है, अच्छा। उन्होंने ये ड्रेस डिजाइन किया है, okay. लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अभी बहुत चर्चा होगी, आगे भी चर्चा होगी,
2: लेकिन वी कैन डू अ सेपरेट एपिसोड ऑन दिस चर्चा।
3: एग्जैक्टली,
4: है ना, एक चीज है, एक लाइन में बोलूंगी ना, यू कैन हेट हर, यू कैन लाइक हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर।
3: चलिए ठीक है, तो उनको हम इग्नोर कर नहीं सकते, चल के देखिए और क्या कुछ इस क्या कुछ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको लेकर के है।
5: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी, तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की हुई। फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो जैसा कि हमने बताया कि उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में सबसे पहले 2022 में शिरकत की थी और तब से लेकर अब तक वो 5 बार कान में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं।
2: बिल्कुल, हर बार अपने लुक और आउटफिट से वो किसी ना किसी वजह से सुर्खियां बटोरती रही। चलिए आपको दिखाते हैं कान के महामंच पर उर्वशी रौतेला का अब तक का सफर कैसा रहा।
5: बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला ने 2022 में कान फिल्म फेस्टिवल में अपने सफर की शुरुआत की। तब बॉलीवुड में उन्होंने 9 साल का सफर तय कर लिया था और अपनी अदाकारी से ज्यादा अपनी खूबसूरती को लेकर मशहूर हो चुकी थी। अपने पहले ही साल में उर्वशी ने रेड कार्पेट पर बेहद ड्रामेटिक लुक्स चुने। वे लेबनानी डिजाइनर टोनी वार्ड कुट्योर के एक प्राचीन सफेद रंग के वन शोल्डर ट्यू रफल बॉल गाउन में रेड कार्पेट पर उतरे। इसके साथ उन्होंने बोल्ड रेड लिपस्टिक और हाई बन हेयर स्टाइल कैरी किया था। इस साल कान में उनके 2 लुक्स की और चर्चा हुई। दूसरे लुक में उन्होंने डिजाइनर अली करोई का डिजाइन किया हुआ एक चमचमाता गोल्डन हाई स्लिट गाउन पहना, जिसमें एक बड़ा ड्रामेटिक शोल्डर धनुष आकार का बना था। तीसरे लुक में उर्वशी ने एक हॉट पिंक कलर का पैंट सूट भी कैरी किया, जिसमें वो बिना किसी ज्वेलरी के बेहद मिनिमलिस्ट लुक में दिखी। कान 2023 में उर्वशी ने पिंक कलर का हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी ने रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड और पिंक कुट्योर गाउन में नजर आई। इसे ट्यूनिशाई के डिजाइनर सुहैर अल गब्सी ने तैयार किया था। इसके साथ उन्होंने सर पर एक हैवी स्टडेड हेडबैंड कैरी किया था। उर्वशी ने इस साल भी अपने ज्वेलरी क्रेडेंशियल्स को बरकरार रखा और डांसिंग फिश नेकलेस व तोते की आकृति वाला फंकी क्लच कैरी किया। कान में लगातार 4थी बार शिरकत करते हुए उर्वशी ने अपनी बोल्ड रंग बिरंगी ड्रेसेस और कैमरे के सामने पोज देने के स्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोरी। इस साल उर्वशी ने लग्जरी और जटिल कुट्योर डिजाइन्स पर फोकस किया। लेबनान के मशहूर डिजाइनर नाजा सादी के कस्टम ब्लैक टफेटा कुट्योर गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी उर्वशी। इसके अलावा अलग अलग दिन उर्वशी ने रंग बिरंगे फ्लोरल कुट्योर ड्रेसेस भी पहने जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए ये तो थी बात कान फिल्म फेस्टिवल की जिसमें देसी विदेशी सेलेब्स की चकाचौंध नजर आ रही है, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की एक और बेटी से जो है तो एकदम सामान्य लेकिन काम इतना शानदार किया पेरिस फैशन वीक जैसे इंटरनेशनल इवेंट में उनके काम को काफी सराहना मिली है।
4: दरअसल इस बेटी ने एक फैशन डिजाइनर के तौर पर कोल माइंस की थीम पर ड्रेसेस को पेरिस फैशन वीक में शोकेस किया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं झारखंड की हुनरमंद फैशन डिजाइनर कंचन सिंह से जो फैशन के अपने पैशन को खुलकर जी रही हैं।
6: कुछ समय पहले हुए पेरिस फैशन वीक की ये तस्वीर बेहद खास है। वो इसलिए कि इस ग्लोबल इवेंट में इस खास थीम ने दुनिया की फैशन इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। पेरिस फैशन वीक में इस खास थीम को इंट्रोड्यूस किया झारखंड के भूली की रहने वाली युवा फैशन डिजाइनर कंचन सिंह ने। इनकी ड्रेसेस की थीम थी काली धरती, जिसके मायने झारखंड की कोयला खदानों से जुड़े लोगों की हालत को बयान करती है। दरअसल कंचन का फैशन को लेकर पैशन का सफर स्कूल टाइम से ही शौकिया शुरू हुआ जो अब जुनून में बदल गया है।
7: जब मैं क्लास 9th में थी मेरी मम्मी ने बस एक सिलाई मशीन घर पे ले आई, सिलाई की मशीन, और मैंने बस कुछ सोचा समझा नहीं और मुझे सीखना था, जानना था कि मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ उठाई, काटना चालू किया और ड्रेसेस बनाना चालू किया। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है और मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे जाके फैशन डिजाइनिंग ही करनी है।
6: कंचन देशभर के 20 डिजाइनर्स में अकेली डिजाइनर रही जिनको झारखंड से अपने परिधानों के साथ पेरिस फैशन वीक में जलवा बिखेरने का अवसर मिला।
7: जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी मास्टर्स के, तो उसमें हमारे कॉलेज में ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी विदेश से, पेरिस से, कि आप अगर चाहे तो पेरिस फैशन वीक में जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने काम किया है या फिर जो भी आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उधर भेज सकते हैं। तो फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, मैं और मेरी बहुत सारे क्लास के दोस्त थे, सबने बनाया, सबने डॉक्यूमेंट भेजा पेरिस, और वहाँ से पेरिस से ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए। उन 20 बच्चों में से एक मैं थी।
6: मुंबई की एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही कंचन समेत कई और स्टूडेंट्स को जब पेरिस फैशन वीक जैसे बड़े मंच पर अपने कौशल और हुनर को दिखाने का ऑफर आया तो उसमें जाने के लिए वो प्रभावशाली थीम भी मांगी गई जो समाज को शिक्षित कर पाए, उन्हें जागरूक बनाए। गोलमाइन जैसी थीम पर पेरिस फैशन वीक में हौसलों और उम्मीदों से भरी कंचन की बनाई ड्रेसेस की प्रभावशाली छाप उनके माता पिता को गर्व से भर दे रही है।
8: उसका एक रुझान था अंदर से कि हम कोयलांचल का रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड का नाम हमको आगे रोशन बढ़ाना है, करना है, इसलिए अपना रुचि से बनाई होगी।
6: जाहिर है गंभीर और संवेदनशील थीम को ग्लैमर और चमक दमक के साथ शोकेस करना कोई इजी टास्क नहीं था। यही वजह भी रही कि समाज को एक गहरा संदेश देने के लिए कंचन ने इस थीम बेस्ड ड्रेस को बनाने में करीबन 2 महीने का समय लिया।
7: इस डिज़ाइन को तैयार करने में मुझे तकरीबन 2 महीने लगे और इस डिज़ाइन में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो PUC लेदर वायर स्ट्रिप्स है और उसके अलावा एल्युमिनियम वायर भी है, और मैंने पूरे जो ड्रेस है वो वीविंग करके एक तकनीक होती है उससे बनाई है, अलग अलग तरीके की वीविंग किया हुआ है उसमें।
6: कंचन को ये पूर्ण विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र का विकास जरूरी है बशर्ते वहाँ के लोगों को अपने घर आंगन को छोड़ने और दर दर भटकने को मजबूर ना होना पड़े। शायद यही वजह रही कि पेरिस फैशन वीक के लिए उन्होंने अपनी ड्रेसेस की थीम काली धरती रखी। फिलहाल तो अपने हुनर, हौसले और क्रिएटिव आइडिया के बूते कंचन नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इस सपने के साथ कि झारखंड के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की समृद्ध कला और संस्कृति को भी वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भागीदारी दें।
0: इसके लिए वो इन राज्यों के युवा कलाकारों और डिजाइनर्स को साथ लेकर अपने आगे के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं।
7: मैं इस सफलता को अभी कुछ इस प्रकार देखती हूँ कि ये सफलता मेरे लिए एक पहली सीढ़ी है। अभी मैंने शुरुआत ही किया है, अभी आगे जाके मुझे धनबाद झारखंड के नाम को बहुत आगे पहुँचाना है और बहुत सारे और भी काम करने हैं।
0: झारखंड के धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: शाहरुख खान एक फिल्म ला रहे हैं किंग, और इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ शाहरुख खान अपनी फिल्म को पूरी तरह से परफेक्ट भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने इस वक्त धुरंधर ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की जबरदस्त मिसाल पेश की है।
2: देखिए, ऐसे में एहतियातन शाहरुख उन प्लान्स पर काम कर रहे हैं ताकि दर्शकों को धुरंधर जैसा सिनेमाई एक्सपीरियंस मिले। साथ ही शाहरुख की जवान और पठान ने भी बॉक्स ऑफिस पर जो करिश्मा दिखाया था उसे किंग ना सिर्फ बीट करे बल्कि शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म भी ये बन जाए।
0: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने कमाई का जो बेंचमार्क सेट किया है उसने कई फिल्मकारों को चुनौती दे दी है। शायद यही वजह है कि अब फिल्में धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखकर बनाई जा रही हैं। इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है शाहरुख खान की फिल्म किंग।
9: एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है।
0: किंग की शूटिंग पूरी हो चुकी है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर का हाइप देखकर किंग में बदलाव किया जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए और कुछ अहम सीन्स में सुधार के लिए कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है ताकि दर्शकों को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव मिल पाए।
9: सो देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम।
0: फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार फिल्म के एक बड़े और हाई ऑक्टेन एक्शन क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग इसी महीने मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और मुंबई में एक बड़ा शेड्यूल रखा गया। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपना काम खत्म कर मुंबई वापस लौट चुकी हैं। इस रीशूट का असर फिल्म की रिलीज डेट पर ना पड़े इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन का काम शूटिंग के साथ साथ चल रहा है। सितंबर में पूरी तरह शूटिंग रैप अप होने के बाद टीम फिल्म के फाइनल कट पर काम करेगी ताकि इसे 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सके।
9: बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है।
0: किंग के एक्टर प्रोड्यूसर शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिल्म को पूरी तरह परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि जवान और पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जो करिश्मा दिखाया था उसे किंग न सिर्फ बीट कर पाए बल्कि शाहरुख खान के करियर की सबसे कामयाब फिल्म भी साबित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे तूफान से टकराकर भी बच गया शख्स।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
11: जाए। At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at wgu.edu.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य में साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रीशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। छोटी सी उम्र में प्रीशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलानिया की ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
4: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना भमोरा में भीषण तूफान के दौरान एक बारात घर की टीन शेड हवा में उड़ गई। आपको बता दें कि जिसके साथ एक शख्स भी लगभग 50 फीट की ऊंचाई तक उछल गया। यह घटना पिछले 2 दिनों से लगातार आ रही तेज आंधी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई। दरअसल हुआ ये कि टीन शेड के नीचे 3 लोग तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक पूरी छत हवा में उड़ गई और एक शख्स कई फीट ऊपर से उड़कर सीधे खेत में जा गिरा। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी तबीयत अब ठीक है।
3: तो चलिए अब आपको वो तस्वीर जरा डिटेल में दिखाते हैं जो इस वक्त वायरल हो रही है। जब शुरू में ये तस्वीर सामने आई थी तो लोगों ने समझा कि ये AI से बनाई हो सकती है, लेकिन जब तस्वीर की हकीकत लोगों को पता चली तो उनके होश ही उड़ गए। हुआ ये कि जब तूफान आया तो उस वक्त 3 लोग बारात घर के ऊपर बने टीन शेड के नीचे खड़े हुए थे। वो लोग खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान इतना भीषण था कि टीन शेड के नीचे खड़े रहकर उनके बचने की हर कोशिश नाकाम रही। चक्रवात ने पूरी की पूरी छत उखाड़ दी और अपने साथ एक व्यक्ति को भी आसमान की ओर खींच लिया। काफी ऊंचाई से खेत में गिरने की वजह से शख्स पूरी तरीके से जख्मी हो गया, वो घायल हो गया। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उस शख्स को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है।
5: सर हम दोनों बल्कि 3 लड़के थे, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वो नहीं रुक पाए, फिर वो जो है उनका हाथ ऐसे करके उन्होंने पकड़ रखा था, हमने तो ऐसे ही पकड़ डाल, हम ऊपर गए, हम तो 10 फीट से नीचे गिर गए, वो उसके साथ ही चलेगा उसके साथ।
6: उनके चोट आई है?
5: हाँ, उनके चोट आई है हाथ में।
6: आपके भी आई चोट?
5: हमारे तो वैसे चोट नहीं आई है, लेकिन शरीर में दर्द है पूरे।
6: इस वक्त कल तूफान आया था, इसके नीचे ये लोग खड़े हुए थे और टीन शेड के अंदर टीन शेड उड़ा तो ये लोग उड़ने के बाद टीन शेड के साथ में मक्का खेत में जाके गिरे।
7: कल कितने बजे की घटना है?
6: 11:30-12 बजे के लगभग।
7: किसको चोट लगी है?
6: नन्हे को।
7: तूफान ज्यादा तेज था?
6: तूफान तो पहली बार देखा हमने तो इतना तूफान।
8: आपको खबर दिखाते हैं कि ऐसे टीचर की जो जिनके लिए शिक्षा मायने रखती है, ज्ञान मायने रखता है, ये नहीं कि बच्चों के लिए हम स्पेशल बिल्डिंग बनाएं या फिर नए नए बेंच पे बिठाकर बच्चों को पढ़ाएं, उनका लक्ष्य एक ही है कि बच्चे पढ़ते चले जाएं।
9: मुझे लगता है इससे बड़ा कार्य आप नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी सुविधा ये चीज कर रहे हैं और गरीब बच्चे पढ़ा रहे हैं,
8: गरीब बच्चे
9: जो गलियों में घूमते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको शिक्षा देना, उनको एडुकेट करना, आई थिंक इससे बड़ा कर्म तो नहीं हो सकता कोई भी।
4: मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर आप सबसे प्यारा कोई तोहफा देना चाहते हैं तो उसे शिक्षित कर दीजिए। आप जैसे ही शिक्षित कर देंगे वो अपने आप एनेबल हो जाएगा, इतना अपने मजबूत हो जाएगा, पैरों पे खड़ा हो पाएगा कि फिर जीवन में उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
9: हाउ ब्यूटीफुल।
3: बहुत बहुत बहुत खूबसूरत पहल है और मुझे लगता है हम सबको प्रेरित भी करता है, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में हमेशा कहते हो हमारे पास कहाँ समय होता है दूसरों के लिए, बट जब हम इस तरीके की मुहिम देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए।
8: लेकिन ये जो शिक्षक हैं इनका खुद का जीवन भी ऐसा ही रहा है और इसीलिए स्ट्रगल करते हुए ये शिक्षक बने और इसीलिए इन्होंने कहा कि जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ करूंगा, और शायद इसीलिए ये पहल इन्होंने की है।

0: गर्मी का मौसम है, आम लोग धूप से राहत पाने के लिए पार्कों में आराम करने आते हैं, लेकिन यहाँ नज़ारा अलग ही है।
1: 2, 3, 4, 5, 6
0: दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास इस पार्क में पाठशाला चल रही है। पार्क में पढ़ने वाले ये वो बच्चे हैं जिनका न कोई घर है न ठिकाना। फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ भीख मांगकर गुजारा करने वाले ये बच्चे अब पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। ABCD से होती हुई इनकी पढ़ाई की यात्रा 1, 2, 3, 4 से भी आगे बढ़ रही है। बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाली ये नन्ही बच्चियाँ अब कविता सुनाने में भी प्रांगत हो गयी है।
2: नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो पचाते वाले चोर ले गए, खके पिखे मोटे होके चोर बैठे लेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में।
0: पार्क में इस पाठशाला की शुरुआत अनोखे तरीके से हुई, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
3: सड़क से गुजरते हुए एक सरकारी स्कूल के टीचर के पास एक बच्ची आती है और कहती है, अंकल पापा भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दिला दीजिए। और टीचर समझ जाता है कि यह बच्ची स्कूल नहीं जाती और इसी सिग्नल पर वो भीख मांगती है। उसने उस बच्ची को खाने के लिए दिलाया, लेकिन इस शर्त पर कि वो बच्ची को किताबें भी दिलाएगा और उस बच्ची को उन किताबों को पढ़ना होगा। उस बच्ची ने पढ़ने के लिए हामी भर दी और उस छोटी बच्ची की हामी ने उस टीचर के लिए एक नया मिशन खड़ा कर दिया। आज वो टीचर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है जो बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते हैं। इनमें से 12 बच्चों का एडमिशन उस सरकारी स्कूल में करवा चुका है। ये यात्रा अभी भी जारी है।
0: पेशे से टीचर कृष्ण कुमार ने करीब 8 महीने पहले पार्क में पाठशाला का आगाज तो कर दिया, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए आए इसके लिए इनके परिवार को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये बच्चे भीख मांगकर अपना और अपने परिवारों का गुजारा जो करते थे।
4: आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें फिर आप राशन दो। ठीक है, मेरे को ये शर्त आपकी मंजूर है। वहाँ से मैंने उनको राशन देना शुरू किया और फिर वो खुद बच्चों को छोड़ने मेरे पास आते थे फुटपाथ।
3: कितनी फैमिली को राशन दिया आपने?
4: वहाँ पे 4 फैमिलियाँ थी, 4 फैमिली के 12 बच्चे थे वो, और उनको हमने मंथली है वो 2.5 से 3 हज़ार रुपए का एक फैमिली को राशन दिया हमने।
0: पार्क की ये पाठशाला जो शेख सराय से शुरू हुई थी और अब नेहरू प्लेस में भी चल निकली है।
4: वो रह रहे हैं तो हमने आके एक मेरे टीचर आए थे साथ में, सर इनसे भी बात करके आते हैं, हमने उनको तो बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, इनसे भी एक बार बात करते हैं। तो हमने जब बात करी तो पता लगा कि यहाँ भी बच्चे बहुत सारे हैं, कम से कम इन्होंने बोला 35 से 40 बच्चा हमारे पास है और कहीं नहीं जाता है। तो मुझे बढ़िया वो लगा कि ये भी स्थान बहुत बढ़िया, हम इनको बगल में पार्क है, पार्क में बैठ के आराम से इनको
3: पढ़ा सकते हैं।
0: कृष्ण कुमार ने खुद अपनी जिंदगी में गरीबी और कठिन हालात को बहुत करीब से देखा है। अब ये चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से दूर ना हो। इस तरह इस मुश्किल डगर पर चलते हुए कृष्ण कुमार ने पढ़ाई पूरी की और मुकाम हासिल कर लिया, जहां से ये तमाम गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ रहे हैं और शिक्षा की अलग जगा रही है। कृष्ण कुमार 2013 से दिल्ली के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पार्क में पाठशाला चलाते हुए इन बच्चों की जिंदगी रोशन करने का काम भी कर रहे हैं।
3: लगातार कृष्ण जी लगे हुए हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इनके पास आए, इनसे जुड़े और उन्हें आगे शिक्षा का जो उनका रास्ता है उनका मार्ग प्रशस्त हो। और सोचिए अगर ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे कृष्ण कुमार कई सारे पैदा होंगे जो सड़क पर किसी बच्चे को ना रहने देंगे और ना उसकी शिक्षा खराब होने देंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
5: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कुछ दिन पहले कई बातें कही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों ने उसे तुरंत में अमल करना भी शुरू कर दिया है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि सीधे देशवासियों को करनी है अमल, और वो है सोने

0: की खरीद, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं, स्टॉक करना पसंद करते हैं. उसके पीछे अपनी वजह भी है, सही भी है. लेकिन अब कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है कि भाई सोना ना खरीदे, स्टॉक ना करे. क्या करना चाहेंगे?
1: मुझे ऐसा लगता है जो जेन जी है ना, उनके पास कई सारे ऑप्शंस है जो हमें बताने चाहिए. देखिए, वैश्विक संकट तो है, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपील कर दी है कि खपत जो है उसे कम कीजिए, चाहे वो ईंधन की हो या फिर अगर सोना, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहरी देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, तो कम से कम खरीदे. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद सकते हैं अगर हम सोना चांदी नहीं खरीदे.
0: लेकिन ये बताइए नवजोत, हम जैसे ट्रेडिशनल यू नो माइंडसेट से भी है, हमारे घरों में शुरू से ही नानी दादी सब खरीदते आई है सोना, ऐसे में आपको लगता है कि जो ज्यादातर लोग है देशवासी मानेंगे इस बात को, कंट्रोल कर पाएंगे शादी ब्याह में खासकर?
2: अब आप देखिए कि कल एक दिन में 10,000 बढ़ गया, क्योंकि ड्यूटी बढ़ी तो वैल्यू सोने की बढ़ गई, सोने का दाम जो है वो ज्यादा बढ़ गए. अब लोगों में ना आज कहीं ना कहीं एक पैनिक था कि हम आज ही खरीद लें, ऐसा ना हो कि इसके बाद और ज्यादा बढ़ जाए. देखिए, आपने सही कहा, भारतीयों का माइंडसेट वही है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात तो हमेशा होती है, लेकिन सोना एक तरीके से सेविंग के तौर पर भी देखा जाता है. लेकिन प्रधानमंत्री की बात भी गलत नहीं, अगर देखा जाए तो उन्होंने तमाम चीजों पर ब्रेक लाई, जो मुझे लग रहा है कि पहले हो जाना चाहिए. जैसे उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो या गाड़ी पूल करके आओ, ये बहुत जरूरी है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए.
0: और अगर लॉकडाउन के दिनों में हम करते
2: एक साल तक नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे, थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो एक तरीके से सही भी होगा.
3: नहीं, वही बात है ना कि घर में अगर शादी ब्याह है तब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, वो सिचुएशन अलग हो जाएगी.
2: वैसे एक चीज हो सकती है, पुराना सोना सबके पास पड़ा है, आप वो गिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप एक साल तक वो पैसा बचा लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, वो नेक्स्ट ईयर खरीद के दे दीजिए, ये भी हो सकता है.
0: और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो और विकल्प है कई सारे, जैसा कि सरगम ने भी बताया. अब जो ऑप्शंस आपके पास है उसके लिए आपको हम बता दें, थेवा ज्वेलरी की हम बात कर रहे हैं. देखिए, थेवा आर्ट का इतिहास करीब 400 साल पुराना है, मगर ये लोगों के बजट में है. इसमें सोने की परत पर की गई नक्काशी को कांच पर जड़ा जाता है, इन गहनों को हाथ से बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जेन जी को भी ये गहने पसंद आ रहे हैं. देखिए,
4: मशीनी युग में उंगलियों की जादूगरी बरकरार है. इसी जज्बे और हुनर की वजह से सदियों पुरानी कला जिंदा है. थेवा आर्ट राजस्थान की सबसे नाजुक शाही और दुर्लभ हस्तकलाओं में से एक है. शानदार कारीगरी और शाही लुक वाली ये कला अब सोने के महंगे गहनों का सबसे खूबसूरत और किफायती विकल्प बनती जा रही है.
5: सीजन ऐसा है, घर में शादियां होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे ज्वेलरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ज्वेलरी ही ऑस्पिशियस मानी जाती है, और साथ ही साथ में महिलाओं का जो लुक होता है उसको इन्हांस करने में बहुत बड़ा योगदान ज्वेलरी का होता है. और ऐसे में अगर बोला जाए कि गहने ना खरीदो, तो एक बार के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है महिलाओं के लिए. तो जो लूप होल्स या जो अल्टरनेटिव्स हम ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट.
4: थेवा आर्ट लगभग 250 से 400 साल पुरानी कला मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई थी.
5: ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है, और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है, और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है. और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है, और साथ ही में अलग अलग डिज़ाइंस में मिलती है. आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कम्प्लीट हो पाए.
4: थेवा कला में 23 कैरेट सोने की बारीक नक्काशी को रंगीन शीशे पर जोड़ा जाता है. इसके लिए सबसे पहले सोने की पतली शीट को काटकर नक्काशी की जाती है. नक्काशी के जरिए मोर, हाथी, फूल और राजपूती डिजाइन उकेरे जाते हैं. फिर इसे पिघले हुए रंगीन शीशे पर चिपकाया जाता है.
6: इसको बोलते हैं रानी हार, है ना. और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है, दिस इज ऑल गोल्ड. जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है, एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है, ये है ना, ये सिल्वर में है, गोल्ड प्लेटेड में. बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं.
4: इसके तहत बने गहनों का पूरा काम हाथों से होता है, इसलिए एक अच्छा पीस बनाने में 15 दिन से महीना भर तक लग जाता है.
6: 23 कैरेट गोल्ड के पतरे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए।

0: सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं, फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
1: हाथ की मेहनत, कलाकार की सूझबूझ और सदियों पुरानी परंपरा से तैयार गहने एक अलग एहसास देते हैं।
0: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में, वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: राजस्थान की ये सदियों पुरानी कला अब सिर्फ विरासत नहीं है बल्कि ज्वेलरी में भारत की नई पहचान बनती जा रही है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे इंग्लैंड ने मेंस क्रिकेट टीम के लिए एक लेडी कोच को चुनकर इतिहास रच दिया है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
7: It's college football time. College basketball feels
6: Pardon
7: like
6: my take.
8: The Rams catching the Commanders.
6: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: Thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: रात 8 बजे, Good News Today पर
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए एक बहुत ही अच्छी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर की को न्यूजीलैंड के खिलाफ

0: आगामी सीरीज के लिए सीनियर मेंस टेस्ट टीम की फील्डिंग कोच उनको चुना गया है, बनाया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसे आप लोग कैसे लेते हैं?
1: नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल। अगर एक फीमेल ट्यूटर हो सकती है, पढ़ा सकती है, डॉक्टर हो सकती है, तो आई थिंक अब देखिए ना, महिला क्रिकेट टीम भी तो होती है, वर्ल्ड कप भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कोच भी बन सकती है।
2: इनका जो करियर रहा है, करियर हिस्ट्री मैप पे अगर नजर डाली जाए तो बहुत लॉन्ग करियर इन्होंने सर्व किया, उसके बाद कोचिंग की जिम्मेदारी देना, मतलब

0: दरअसल अमेरिका के ओहायो में नॉर्थ कैंटन मिडिल स्कूल है, जिसके सफाई कर्मी चार्ल्स माइल को लॉकर्स के पास लगी ट्रिम ठीक करते वक्त धूल से ढका हुआ एक पुराना लाल पर्स मिला। अब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पर्स दशकों पुराना खजाना हो सकता है। स्कूल प्रशासन ने जब सोशल मीडिया पर पर्स की तस्वीर शेयर की, उसके मालिक को खोजने की कोशिश शुरू की गई, तो जांच के बाद पता चला कि यह पर्स स्कूल की पूर्व छात्रा पैटी का है, जो इसे साल 1957 में खो बैठी थी।
1: जी हाँ, देखिए पैटी अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन स्कूल जब उनके बच्चों से मिला तो सभी पांच बच्चों ने अपनी माँ के उस पुराने पर्स को खोला, जो मानो समय का बंद डिब्बा बन चुका था। पर्स के अंदर मिली चीजों ने सबको इमोशनल कर दिया। उसमें कंघी, फेस पाउडर, पेस्टल पिंक शेड की लिपस्टिक और कई छोटी छोटी चीजें थी जो 50 के दशक की एक अमेरिकी किशोरी की जिंदगी की झलक दिखाती थी। जाहिर है खोया हुआ पर्स जब दशकों बाद मिला तो अपने साथ यादों, दोस्ती और बीते दौर की खुशबू दोबारा लेकर आया।
2: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: सारी चर्चा हमने कर ली, लेकिन एक चीज रह गई. हम बात कर रहे थे कि हर राज्य ने अपनी तरफ से मीटिंग करके ना 2 दिन एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम कर दिया.
1: आप उम्मीद करें यहाँ भी होगा.
0: मैं कह रही हूँ चाय कहाँ पी करेंगे,
2: वर्चुअली पियेंगे हम, वर्चुअली.
3: मैं दिखाऊंगी आपको चाय कैसे पीते हैं और अच्छी वाली चाय कैसे पीते हैं, वर्चुअल पीना.
0: देखिए हम चाय वर्क फ्रॉम होम हो चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस, लेकिन चाय यूं ही चलती रहेगी. कल फिर शाम 5 बजे मिलते हैं.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select team.

0: You want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते दो दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रिशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया नाम। छोटी सी उम्र में प्रिशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस में बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय ए क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उप कप्तान। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। उसके बाद से शहर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और हिंदुस्तान में सोना और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, यानी कमी की आशंका के चलते आनन फानन में सोना खरीद रहे हैं। ऐसे वक्त में आज जीएनटी पर हम आपको बताएंगे कि अगर सोना या उससे बनी हुई ज्वेलरी आपको खरीदनी है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा ही एक शानदार विकल्प है राजस्थान की थेवा आर्ट ज्वेलरी, जो हमारे साथ चलिए राजस्थान और जयपुर में आपको लिए चलते हैं, उस ज्वेलरी की चमक दिखाते हैं जिसके आगे कुछ देर तो आप सोने को बिल्कुल भूल ही जाएंगे।

0: ये ठीक है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर चमकती हुई चीज अगर इतनी शानदार हो तो कुछ पल के लिए सोने को भूल भी जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, हमारे देश में सोना खरीदने को लेकर ऑब्सेशन ऐसा है कि चाहे जेब इजाजत दे या फिर न दे, लेकिन सोना खरीदे बगैर हमारी शादियों, हमारे उत्सवों और त्योहारों की चमक कुछ फीकी सी लगने लगती है। तभी तो इस चकाचौंध के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए सोने के गहनों का एक शानदार विकल्प बन सकता है राजस्थान की थेवा कला से बने गहने। थेवा कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जहां कलाकार पिघले कांच, चांदी और बेहद थोड़े से सोने को मिलाकर ऐसे शानदार गहने तैयार करते हैं जिनके आगे सोने के आलीशान और जड़ाऊ गहने भी फीके पड़ जाए।
1: एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिजाइंस में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास बना देता है। थेवा कला का इस्तेमाल कर तैयार किए गए गहनों में बेहद कम मात्रा में सोने का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेवा कला के जरिए केवल 3 से 4 ग्राम सोने में बेहद राजसी और शानदार लुक वाले गहने तैयार किए जा सकते हैं।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
0: राजस्थान के प्रतापगढ़ की ये कला विश्व विख्यात है, लेकिन थेवा कला अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री में भी ये तेजी से अपनी जगह बना रही है। थेवा कला से बने गहनों की बढ़ती डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका किफायती होना। सोने के सीमित इस्तेमाल के चलते थेवा आर्ट से तैयार गहनों की कीमत गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहद कम होती है।
1: अगर कोई एक पूरा सेट लेना चाहे जिसमें नेकलेस भी हो, एयररिंग्स भी हो, जितनी भी राजस्थानी ज्वेलरी हो, क्योंकि राजस्थान की कला है, वो सब हो, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
2: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में, वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: कितना भी कर लो बट आपका बजट तो नहीं हिलने वाला है, क्योंकि जहाँ शादियों में प्रॉपर एक सोने का हार लेने में 10 से 20 लाख का खर्चा कम से कम हो जाता है, वहाँ 2 लाख में पूरी ज्वेलरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरी आप हमें दिखाते हुए उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसकी बनावट हुई है।
2: जो राजस्थानी इसको बोलते हैं रानी हार है ना, और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है दिस इज ऑल गोल्ड। जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है, एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है ये है ना, ये सिल्वर में है गोल्ड प्लेटेड में, बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं। एंड जो इसमें ये हैंगिंग्स हमने लगाए हैं ये भी सिल्वर के हैं, इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है नक्काशी का, एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग एंड जो हम जेम स्टोन यूज करते हैं वो भी सारे रियल यूज करते हैं ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा. गोल्ड ज्वेलरी कोई ये देख के नहीं कहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है.
1: अच्छा, ये जो हार है मैं इसमें देख रही हूँ कि ऊपर से सोने का काम किया हुआ है, तो ये इसमें कितने ग्राम सोना लगा होगा इस साइज के हार में, इस वेट के हार में कितना सोना?
2: इसमें अप्रोक्स, ये जैसे हम पीस से गिनते हैं तो इसमें कितने पीसेस हैं थेवा के, है ना. थेवा की कॉस्टिंग पर पीस और पर साइज से आती, कितना बड़ा ग्लास है और कितने पीसेस हैं ग्लास के, तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें इतने बड़े पीसेस में मैक्सिमम अपना कम से कम 3 to 4 ग्राम गोल्ड यूज.
1: 3 to 4 ग्राम, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉपर सोने का सेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर इसमें सिर्फ 3 to 4 ग्राम सोना इस्तेमाल हो रहा है.
0: परंपरागत रूप से थेवा आर्ट डिजाइन्स में मुख्य रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी, मयूर और दूसरी आंचलिक आकृतियों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. लेकिन अब थेवा कला सिर्फ पारंपरिक डिजाइन्स तक सीमित नहीं रही, अब मॉडर्न ब्राइड्स और युवतियां थेवा आर्ट पीसेस को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा रही है.
2: इसमें ये सेंटर अपना थेवा आर्ट वाला ग्लास हो गया पीकॉक, डांसिंग पीकॉक के साथ में, और जो बॉर्डर है ये कुंदन जड़ाई का काम किया हुआ है. बैक साइड कवर वही सिल्वर के अंदर है गोल्ड प्लेटेड, एंड जो इसमें हसली लगाई है स्पेशल पार्ट इसका, ये हसली का है जो अपने नानी दादी के टाइम ट्रेडिशनल हसली का काम करते थे, ये सॉलिड सिल्वर में है. इसमें अपन ने सारा जो नक्काशी का काम किया इसको छिलाई बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं. ये पिंक फ्लावर्स जो है ये इसको पेंटिंग मीना बोलते हैं, ये पेंटिंग मीनाकारी में. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज ये रिवर्सिबल है ना, इसको पीछे से भी आप पहन सकते हैं. एंड सेम इसमें साथ में सेम मीनाकारी के झूमर ऐड किए हुए हैं, सेम वर्क में इयररिंग्स हैं इसके. तो एक तरह से थेवा, कुंदन चढ़ाई, बीकानेरी मीनाकारी, छिलाई, पेंटिंग मीना, सब फ्यूज्ड है,
1: सब कुछ एक साथ एक ही हार में नजर आ रहा है. तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें एक साथ फ्यूज है, तो क्या थेवा आर्ट में भी या इस टाइप की ज्वेलरी में भी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. अगर आपको इसको पीस को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, सपोज आपको इसमें ये लेयर्स हटानी है, सपोज आपको हसली हटानी है, जस्ट माला लगानी है, वो सब कुछ हो जाएगा.
0: आजकल लड़कियों में पतली चेन वाले थेवा पेंडेंट्स काफी ट्रेंड में है, जबकि रॉयल लुक के चलते रानी हार और राजस्थानी आर जैसे बड़े नेक पीस ब्राइडल फैशन का हिस्सा बन रहे हैं.
2: गर्ल्स के अंदर तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टाइप का लुक होगा जिसमें वेस्टर्न वेयर पे भी वो पहन सके, जैसे चेन वाले हल्के फुल्के सेट्स हो जाएंगे. और वुमेन के अंदर जो है वो ज्यादातर हैवी, जो कि शादी पार्टी फंक्शन में वो लोग हैवी सेट्स पहन पाएंगे, दोनों उस टाइप का.
1: तो कुछ हमें आपके कलेक्शन से दिखाइए कि लड़कियों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और महिलाओं पे कौन सा अच्छा लगेगा.
2: ये वाला पीस मैंने एकदम लड़कियों के हिसाब से डिजाइन किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपना डेलिकेट सा सिल्वर चेन है, ये सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड चेन है और जेम स्टोन इसके साथ में अपन ने हैंग करे हैं. और ये थेवा का पार्ट सेंटर में आ गया, दिस इज थेवा पार्ट. बैक साइड वही कवर इसका सिल्वर गोल्ड प्लेटेड आ जाएगा. सो दिस इज,
1: ये जेम स्टोन प्रेशियस है या सेमी प्रेशियस?
2: सेमी प्रेशियस, हम लोग सेमी प्रेशियस यूज करते, किसी किसी पीस में कहीं कहीं हमको लगता है प्रेशियस, तो प्रेशियस भी यूज करते.
1: क्या कस्टमर्स की डिमांड ऐसी भी आती है कि हमें सिर्फ प्रेशियस स्टोन वाले ही पीसेस?
2: या डेफिनेटली, कस्टमर्स कई बार कहते हैं कि मेरे पास खुद के पास प्रेशियस स्टोन्स मेरे पास रखे हुए, रूबी के, एमरल्ड्स के, तो उसी को लेके आप थेवा लगा के डिजाइन करके नया पीस बना दीजिए, तो वो भी बनाते हैं.
1: अच्छा, ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हार मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे इस पे काम?
2: डेफिनेटली, ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आर्ट. ठीक है, ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की. और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है, जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है. ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है, ये पूरी सिल्वर है गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में. एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा. एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं.
0: अब सोचने वाली बात ये है कि पीएम की अपील मई के महीने में आई है, कुछ ही महीनों में त्योहारों और फिर शादियों का सीजन दस्तक देगा, यानी वो समय जो देश के लगभग हर राज्य में आम भारतीय परिवारों के लिए सोने की खरीद का सबसे बड़ा मौका होता है. इन महीनों में अपनी अपनी परंपराओं और सालाना आय के हिसाब से हर परिवार सोने चांदी की खरीद करता है. ऐसे में थेवा आर्ट से बने गहने ठोस सोने की ज्वेलरी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं।
1: यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी है, नॉन ब्राइडल ज्वेलरी भी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उम्र के लिए ऐसी ज्वेलरी जिसमें सोना बहुत कम है पर फिर भी जो लुक है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऊपर से पूरा काम सोने से किया जा रहा है, अंदर चांदी है, तो इससे ये पूरा एंटी एलर्जिक भी है। साथ साथ टार्निश के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है और उनका ध्यान रखें तो दावा ये है कि 10 साल तक ये ज्वेलरी खराब नहीं होगी। तो एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लगभग जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस प्राइस में आ रही है उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूरी ज्वेलरी आप सोने की लुकिंग के साथ में और रियल गोल्ड के साथ में ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बजट फ्रेंडली भी है और आपका जो लुक है वो बहुत ज्यादा यूनिक इससे नजर आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: उधर जयपुर को थेवा ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है तो वहीं दिल्ली वालों के दिल को बंधेल ज्वेलरी भा रही है। देखने में बिल्कुल सोने जैसी लेकिन दाम सोने का 10%। अब इसको यूं समझिए कि बंधेल ज्वेलरी में सोने जैसा दिखने वाला भारी भरकम ब्राइडल सेट केवल 3 से 4 लाख रुपए में आ जाता है, यानी लुक और फील में ये गोल्ड जैसी भारी है लेकिन आपकी जेब हल्की नहीं करेगी।
4: चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि अपनी आधुनिक ज्वेलरी के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील के बाद कि एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे, उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर निखिल सिंगल जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ही यही आपसे मैं करना चाहूंगी सर कि जिनके घर में शादी है उनके लिए सोना खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि एक प्रथा भी चलती आई है कि सोना जो है वो दान करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कितना फर्क आया है, लोग सोने की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं?
5: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10-15% रुपयों में काम हो जाता है तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग, और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ।
4: लेकिन बंधेल ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा मेटल होता है, कितना उस पर सोने का पानी जिसे हम कहते हैं वो चढ़ा होता है, वो एक बार पूरा समझाइए।
5: इसके नीचे ब्रॉन्ज मेटल होता है पीला और ऊपर 10-20% जैसा कस्टमर की डिमांड हो उसी हिसाब से सोना चढ़ जाता है।
4: रेट में कितना फर्क आ जाता है?
5: रेट ये समझिए 10-15% रेट रह जाते हैं सोने के मुकाबले में।
4: तो लोग जो है अब सबसे ज्यादा यही ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि जब से सोने ना खरीदने की अपील की गई है।
5: हाँ, इसकी तरफ रुख तो बड़ा है कस्टमर का कि बंधेल ले लें, बजट के अंदर आ जाती है ये,
4: बजट के अंदर आ जाती है। और मैं कुछ ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस है बंधेल ज्वेलरी जो ये बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेटल होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड पर आप जितना भी परसेंट उस पे सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं आप वो जो है चढ़वा सकते हैं और अपने कस्टमाइज किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी जो है वो आपको उसको बनवा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लाइट वेट रिंग्स की बात हो, ज्वेलरी सेट की बात हो, चेन्स की बात हो, हर एक चीज जो है अब आपको इस बंधेल ऑप्शन में जो है वो नजर आने वाली है। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही इन चेन से करूंगी कि कितनी ग्राम की ये चेन है, कितना इसमें जो है गोल्ड जो है वो चढ़ा हुआ है और क्या इसकी जो कीमत है वो लगभग आ रही है।
5: लगभग ये मानिए अगर कोई चीज 10 ग्राम की है तो उसमें आपको केवल 1.5 ग्राम के पैसे पे करने पड़ेंगे, इसमें लगभग 10% गोल्ड होता है।
4: अगर किसी ब्राइडल की बात की जाए तो उनको सोने के सेट जो है वो जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ये थोड़े हैवी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेट जो है ये कितने ग्राम का है?
5: ये लगभग 150 ग्राम का है जिसमें केवल 22 ग्राम गोल्ड है।
4: और इसकी कीमत?
5: कीमत लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपए के लगभग।
4: इसकी 4 लाख रुपए की कीमत है तो 22 ग्राम गोल्ड के साथ जो है 4 लाख रुपए की इस सेट की कीमत है। और अगर गोल्ड की सेट की मैं बात करती तो ये कितने का पड़ जाता लोगों?
5: ये पड़ता आपको 22.5 लाख रुपए का।
4: 22.5 लाख, तो 22.5 लाख से सीधा 4 लाख वाला ऑप्शन मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें आप गोल्ड की भी खरीदारी नहीं कर रहे अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम गोल्ड जो है ये उसमें आप भी सेट जो है वो ले सकते हैं। थोड़े लाइट वेट ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इस तरीके के आपको जो है सेट वो दिख जाएंगे। मांग टिक्की के साथ भी आपको मिल जाएगा, इयर रिंग्स के साथ भी जो है वो सेट मिल जाएंगे। लेकिन रिंग्स की बात की जाए तो रिंग्स में अच्छी खासी वेरायटी आपको मिलने वाली है, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है यहाँ पर जरूर मिलती है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी इस वक्त मौजूद है जो कि महासचिव है यहाँ के। सर कितना फर्क आया है, एक तो अपील में भी ये कि एक साल तक आप मत सोना खरीदी, जिनके घर में सोना है उनका तो चढ़ जाएगा लेकिन जिनके पास गोल्ड नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है और मार्केट कितनी बदलती हुई अब नजर आ रही है?
6: देखिए अभी मोदी जी ने जो बोला है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और पिछले सोमवार से हम इसको फॉलो करने में लग रहे हैं। अब 8 महीने 10 महीने से पहले ही ये ज्वेलरी बिकती थी, जैसे अभी बंदेल ज्वेलरी ये बिकती थी, बहुत कमी बिकती थी, लेकिन आज इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि धड़ाधड़ ये ज्वेलरी बिक रही है।
4: जिन्हें गोल्ड खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदनी है तो उनके लिए बंदेल जो है अभी का एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि सारे लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक यही है कि सोना नहीं खरीदना तो उसके अलावा क्या खरीदे। तो इस तरीके से हालांकि मेटल कोई और है लेकिन ऊपर जो है सोने की परत जरूर देखने को मिलेगी। 4 से 5 ग्राम सोना जो है वो चढ़ाया जा रहा है कस्टमर की डिमांड पर कि जिस तरीके से आप, तो ये मार्केट के ऑप्शंस हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप क्या कुछ ले सकते हैं।
3: तो एक एक करके गोल्ड ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में थेवा ज्वेलरी के अलावा इमिटेशन ज्वेलरी भी आजकल खूब चर्चा में है और खूब ट्रेंड कर रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग सोने जैसी दिखने वाली इस ज्वेलरी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। ये गहने बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही दिखते हैं लेकिन दाम सोने के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप खरीदने जाएं तो 20 से 30 हजार रुपए में एक बढ़िया सा सेट आपको जरूर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि कुछ साल पहनकर आप इन्हें खरीद की 40% कीमत पर वापस भी कर सकते हैं।
1: अगर सोना नहीं तो क्या, ये प्रॉब्लम सबके बीच में है जो मार्केट में नजर आ रही है, पर उसी मार्केट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है क्योंकि अगर सोना नहीं तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये ऑप्शंस हम आपको गुड न्यूज टुडे पे हर दिन दिखा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कई ऐसी ज्वेलरी ऑप्शंस जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है हालांकि सोना नहीं है, तो ये जैसी ये दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम आदमी को होने जा रहा है क्योंकि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं, कई सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पर सोना खरीदने का मेन पर्पस होता है दिखाना। तो वहाँ पर जब एक बार में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, वहीं ऐसी दुकानों से अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ होगा क्योंकि ये ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, कोई फर्क नहीं बता सकता है। चाहे मैं यहाँ के आपको चेन्स दिखाऊं, चाहे नेकलेसेस दिखाऊं, बिल्कुल फर्क बताना मुश्किल है कि ये सोना नहीं है।
7: ये कंसर्ट शुरू करने का हमारा मेन मतलब तो ये था कि वो छोटे परिवार हैं, निचले परिवार हैं, आज तो खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है। पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था, जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है उनके 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपया, उनका बजट नहीं होता था, समाज के आगे क्या करें। तो हम लोग रियल की 2 कॉपी बनाते हैं, उसको खाली तपा के या रेती लगा के ही चेक कर सकते हैं, पहना हुआ कोई नहीं बता सकता, रखा हुआ कोई नहीं बता सकता। उस समाज के आगे उन लोगों की शान भी रह जाए और उनका काम भी रह जाए और हमारी ये ज्वेलरी आराम से आने जाने के अंदर 30-40 बार पहनो, उसके बाद में आप इसको बाई बैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कोई 5,000 का सेट हुआ, 5,000 की ज्वेलरी हुई हमारे यहाँ की, तो करीबन 2,000 रुपये में रिटर्न वैल्यू है, उसको कभी 2 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो, टाइम पीरियड की कोई गारंटी नहीं है। पानी साबुन से वॉशेबल है, इसमें ना चोरी का डर ना खोने का गम, फिर भी नहीं है सोने से कम। आजकल बाहर शादी हो रही है, डेस्टिनेशन शादी हो रही है, तो कहाँ रियल लेके जाएं। तो आजकल अच्छे अच्छे छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा परिवार भी इसको काम में लेने लग गया।
1: अगर कोई राजपूती पोशाक के हिसाब से जितने सर से लेके पैर तक जितनी भी ज्वेलरी होती है वो खरीदे तो आपके यहाँ से वो कितने में पड़ी?
7: अगर वो बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेता है, रियल की कॉपी लेता है, रियल की फर्स्ट कॉपी लेता है, तो 20,000 से 30,000 रुपये में आराम से उसका वो सेट कम्प्लीट हो जाता है। अब वो आराम से 5-10 साल पहने बाद में बाई बैक भी कर सकता है वो।
1: अच्छा, ये बहुत फायदे की बात है कि बाय बैक भी की जा सकती है, तो वो फायदा भी। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे ये कंगन है, कंगन बिल्कुल सोने जैसे दिख रहे हैं, अब इनका काम हम अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से फिनिशिंग भी देख रहे हैं, पर ये सोने जैसा क्यों दिख रहा है? क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है? अंदर कौन सा मेटल?
7: अंदर इसमें चार पांच धातु मिक्स होते हैं, कॉपर ब्रास वगैरह होते हैं, जैसे अपना चांदी का वर्क होता है ना, वैसे सोने के वर्क टाइप के कोटिंग चढ़ाते हैं इन पे। ये सिंपल पॉलिश नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी है।
1: देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बोला जा रहा है, फर्स्ट कॉपीज बिल्कुल लग नहीं रही है, साधारण सी बात है, अगर कॉपी बोल रहे हैं तो सेम दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये आड़ है, इस आड़ को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा कि ये सोना है या नहीं है। और आपको जैसे जहाँ पे दिखाना होता है, बिना अपनी क्लास को जस्टिफाई करे या फिर अपने बजट को छेड़े, आप ये आराम से खरीद सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया कि 20 से 30 हजार में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, जिसमें सारी ज्वेलरी होगी। अगर आप आम कोई भी ज्वेलर के पास जाएंगे और सोना खरीदेंगे तो इससे ज्यादा मैं मानती हूँ आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। बहुत कम बजट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें डायमंड भी है, एमरल्ड जड़ा हुआ दिख रहा है, रूबीज भी है, पोलकी के सेट्स नजर आ रहे हैं, पर्ल्स भी हैं। तो ट्रेंड पूरा जो अभी चल रहा है मार्केट में वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको हर दिन गुड न्यूज टुडे पे दिखा रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह कौन से खास ऑप्शंस हैं जो इस समय पे आप कैरी कर सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारा पैसा भी बचा रहे हैं, और दूसरी चीज अभी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसको भी आप साथ ही साथ में समय पे फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: तो चलिए, इसी के साथ आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते दो दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया नाम, छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया भी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कप्तान, रियाग पराग होंगे उप कप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कर रहे जबरदस्त प्रदर्शन, अब तक 11 मैचों में बनाए हैं 440 रन। जून में श्रीलंका में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान, तिलक वर्मा के हाथों में टीम की कमान। रियान पराग होंगे उप कप्तान, टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मिली जगह। 9 जून से शुरू होगी ट्राई सीरीज, वैभव समेत तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए दौरा बेहद खास।

0: जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी सौगात, शोपियां में अत्याधुनिक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। अरहामा में बने आधुनिक इंडोर स्टेडियम से दक्षिण कश्मीर के खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी सुविधा, एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में खेल क्रांति की शुरुआत, युवाओं की प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान। उद्घाटन समारोह में वॉर म्यूजियम भी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, मां भारती के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। शोपियां में पहाड़ी कल्चर सेंटर में लोग कर रहे पहाड़ी जनजाति की समृद्ध विरासत का दीदार, कला संस्कृति का दिखा अद्भुत संगम। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 25 दिन में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला, बुधवार को 80,400 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 32,400 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 5,23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,250 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,24,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे भक्त। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई का उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान कर निकाली गई रथ यात्रा, भक्तों ने लगाए गोविंदा गोविंदा के जयकारे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पुरुषों ने खींचा रथ। 17 मई तक चलेगा चिथिराई का उत्सव, कई राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा में सादे लिबास में तैनात किए गए जवान। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। भांग ड्राई फ्रूट और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया श्रृंगार, राजा स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरि ओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद फलों के रस से बने पंचामृत से पूजा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। खेड़ा में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तरबूज उत्सव का आयोजन किया गया, भगवान को अर्पित किए गए तरबूज। भगवान को 2500 किलो तरबूज का लगाया गया भोग, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीएम बनने के बाद मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे हिमंता बिस्वा सरमा, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। चीन के दौरे पर बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुजफ्फरपुर के बाजार में पहुंची शाही लीची, 400 रुपए सैकड़ा बिक रहा शाही लीची। दिल्ली के चांदनी चौक में बदला ज्वेलरी ट्रेंड, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन रही लोगों की पसंद। चांदनी चौक मार्केट में हर फंक्शन आउटफिट्स के हिसाब से मिल रही अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी, कम कीमत में लोगों को मिल रहे रॉयल लुक। दुकानों में हैवी ब्राइडल सेट्स, कुंदन, टेंपल ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज डिजाइन, फ्यूजन कलेक्शन की काफी भरमार। बढ़ती सोने की कीमतों के बीच में ग्राहक भी ढूंढ रहे ऐसे ऑप्शंस, चांदनी चौक में बढ़ा बंधेल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार। महिलाओं की पहली पसंद बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्टाइलिश लुक और बजट फ्रेंडली कीमत के चलते बढ़ा क्रेज। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। सबूत के तौर पर प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग भेजना जरूरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, भारत मंडपम में जुटे कई देशों के प्रतिनिधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, चीनी राजदूत कर रहा प्रतिनिधित्व, ईरान के विदेश मंत्री अराघची भी मौजूद। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत की मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित, प्रधानमंत्री ने 2025 में दिया था जोर। कोची में मशहूर ज्वेलरी चेन ने किया है प्राइड 2026 का आयोजन, दो दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। जोए लुकास के प्राइड 2026 में दुनिया भर से 200 से ज्यादा सप्लायर्स पार्टनर्स शामिल, नए प्रोडक्ट्स डिजाइन क्रिएटिविटी इनोवेशन पर मंथन। जयपुर की प्रशा शर्मा ने रचा इतिहास, अद्भुत याददाश्त संस्कारों प्रतिभा के दम पर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। चौबीस महीने की उम्र में प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र श्लोक याद हैं। प्रशा को हाल ही में सुपर टैलेंटेड किट के खिताब से सम्मानित किया गया था। गिरिडीह के अवि गोयल ने सीबीएसई 12वीं में कॉमर्स में 99% अंक हासिल किए, स्टेट टॉपर बने, परिवार में खुशी। अब सीआईएसएफ के हवाले, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, शुरुआती चरण में 145 जवानों की तैनाती। इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब होने से पुख्ता होगी दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, क्यूआरटी बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी तैनात। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, अपने काफिले में 60% की कटौती की। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद अब दिल्ली सीएम का सिर्फ 4 गाड़ियों का होगा काफिला, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल। सोनीपत में जिला प्रशासन की मॉक ड्रिल, बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार के बड़े फैसले, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार की प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील, सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल डीजल में 20% की कटौती। राजधानी दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की अपील, अदालतों से भी ऑनलाइन मामलों की सुनवाई करने की अपील। प्रयागराज की संस्कृति सिंह ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में मारी बाजी, 99% अंक लाकर किया टॉप। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे, यहां पर स्टेट टॉपर भी बने हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टॉपर से बातचीत कर उनको शुभकामनाएं दी। सीबीएसई 12th के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का शानदार प्रदर्शन, ऋतिक ने हासिल किए 99.5% अंक। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया दे रहे ईंधन बचाने का संदेश, इलेक्ट्रिक स्कूटी से कर रहे सफर। जूनागढ़ में लोको पायलट की सूझबूझ से 6 शहरों को मिला जीवनदान, रेलवे ट्रैक पर शेड देखते ही सही समय पर लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली में होगी बिग कैट संरक्षण की सबसे बड़ी ग्लोबल समिट 1 जून को, समिट में शामिल होंगे दुनिया भर के वैज्ञानिक। गिर के शेर बने दुनिया के लिए मिसाल, 2025 लाइन सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक गिर और सौराष्ट्र के 5 जिलों में अब 821 एशियाटिक शेर मौजूद। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दिखा अनोखा असर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बैलगाड़ी से निकली बारात। बिहार के बगहा में पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल, आठवीं की छात्रा अमृता को बनाया कुछ समय के लिए एसपी। महाराष्ट्र के अमरावती में 46 डिग्री की गर्मी में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, करीब 500 जवानों को मिले एयर कूल जैकेट्स। अमरावती में लू और तेज धूप से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही एयर कूल जैकेट्स का इस्तेमाल, गर्मी में पंखों वाली जैकेट बनी पुलिस की ढाल। जैकेट में रिफ्लेक्टर और पीछे लगे हैं दो छोटे पंखे, 10,000 mAh पावर बैंक से चलने वाले ये पंखे जैकेट के अंदर करते हैं हवा सर्कुलेट। एलपीजी को लेकर देश भर के लिए गुड न्यूज, गैस लेकर भारत आ रहे एमवी सनशाइन टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट पार किया। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जवानों को किया गया सम्मानित। रायपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, स्वागत हुआ। जालौर में सीएम भजन लाल शर्मा ने पंसेरी गांव की सैर की, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते दिखे। कुपवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शौर्य गाथा परिसर का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। दूल्हे ने आईसीयू में भर्ती, दुल्हन की मांग भरी, गोरखपुर में बारात लेकर पहुंचा अस्पताल में दूल्हा। अस्पताल में पंडित ने पढ़े मंत्र, शादी के दिन बेहोश हो गई थी दुल्हन। पीएम मोदी की अपील के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने घटाया काफिला, लोगों से की वाहन प्रयोग करने की अपील। गुरुग्राम में आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया जागरूक। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही धुरंधर 2 की रफ्तार, 56 दिन के बाद भी बटोर रही नोट, 1800 करोड़ के क्लब में एंट्री से महज 4 करोड़ की दूरी पर। धुरंधर 2 की दुनिया भर में कमाई 1796 करोड़, 1800 करोड़ पार होते ही दंगल के बाद इस क्लब में शामिल होने वाली बन जाएगी दूसरी फिल्म। धुरंधर 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी स्ट्रीम, भारत दर्शकों को ओटीटी पर देखने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। रितेश देशमुख के राजा शिवाजी की बंपर कमाई, 13 दिन में 89 करोड़ का कारोबार किया। राजा शिवाजी से टूटेगी 10 साल पुरानी सबसे कमाऊ मराठी फिल्म सैराट का रिकॉर्ड, सैराट ने 110 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस पर भूत बंगला की दमदार पकड़ बरकरार, 27वें दिन में कमाई 267 करोड़ के पार हुई। थिएटर्स में धमाल मचा रही माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट, 7 दिन में फिल्म ने 14 करोड़ 31 लाख का बिजनेस किया। रणदीप हुड्डा की अविनाश पांडे सीजन 2 कल जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी, 1990 के दशक के यूपी के निडर सुपर कॉप के रूप में वापसी। सात साल के बाद कर्तव्य से पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे अभिनेता सैफ अली खान, कल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। कल ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज एग्जाम होगी स्ट्रीम प्रतियोगी, परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय की कहानी। फिल्म मैं वापस आऊंगा का 19 मई को ट्रेलर होगा रिलीज. फिल्म में दिलजीत दोसांझ का अहम रोल. 12 जून को सिनेमाघर में होगी रिलीज. तीसरी बार खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे करण माही. कहा शो ने कुत्तों का डर खत्म किया. सलमान खान के किनारा करने के बाद वरुण धवन भी नो एंट्री टू से किया उन्होंने किनारा. दिलजीत दोसांझ ने छोड़ी फिल्म. शाहरुख खान की किंग के सेट से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक रिलीज. अलग अंदाज में दिख रहे हैं एक्टर. सेलिब्रिटी चैट शो डबल डेट होस्ट करेंगे नेहा धूपिया अंगद. शो का ट्रेलर रिलीज. फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में पहली बार होगा हाफ टाइम शो. मैडोना होंगी मेगा शो की हेडलाइन स्टार. शकीरा भी रहेंगी वहां पर. के पॉप सुपर ग्रुप बीटीएस करेगा हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस. फुटबॉल और संगीत का होगा ग्लोबल संगम न्यूजर्सी में. 19 जुलाई को वर्ल्ड कप फाइनल म्यूजिकल धमाका. अमेरिका कनाडा मेक्सिको करेंगे संयुक्त मेजबानी. फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को मिलेगा सपोर्ट. मेटलाइफ स्टेडियम में तैयारियां तेज. घास बिछाने का काम जारी. खेल फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल का महाकुंभ होगा. 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में लेंगी हिस्सा. 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा यह टूर्नामेंट. इस बार खेले जाएंगे कुल 104 मुकाबले. चीन के चोंगकिंग के अस्पताल में ड्रोन से पहुंच रहे मेडिकल सैंपल्स. ड्रोन ने 13 मिनट में पूरा किया अस्पताल का सफर. अस्पताल में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां बन रही नई पहचान. रोबोट अब अस्पताल के अंदर ही पहुंचा रहे हैं सारा का सारा सामान. टेस्ट सैंपल्स दवाएं पहुंचा रहे स्मार्ट रोबोट. ड्रोन बने अस्पतालों की एयर एक्सप्रेस सर्विस. चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया एक रॉकेट का सफर. उत्तर पश्चिम चीन के लॉन्च जोन से भरी उड़ान. रॉकेट का दूसरा चरण तय कक्षा में. फिर से दिखाई चीन की स्पेस ताकत. दुनिया को डांगपिंग स्पेस जोन से हुआ मिशन रवाना. चीन ने अंतरिक्ष मिशन को बताया पूरी तरह से सफल.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की।

0: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कान फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो कान में आलिया का फ्रेंच रिवेरा पहुंचना और फिर ऐसी शानदार एंट्री जिसने एक यादगार मोमेंट रिक्रिएट कर दिया। फिलहाल तो देखिए, आलिया भट्ट के कान फेस्ट में शामिल होते ही तीन लुक्स सामने आए हैं और तीनों ही लुक्स में वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।

0: फ्रेंच रिवेरा की खूबसूरती इस बार और भी जादुई लगने लगी, क्योंकि जैसे ही आलिया भट्ट ने कैन 2026 में कदम रखा, उन्होंने सिर्फ एंट्री नहीं की बल्कि एक यादगार मोमेंट क्रिएट कर दिया। आलिया ने अपने अंदाज से साबित कर दिया कि सादगी और रॉयल एलिगेंस का मेल कितना असरदार हो सकता है। रेड कार्पेट पर उनका लुक बेहद रोमांटिक और ड्रीमी वाइब से भरा नजर आया। एक्ट्रेस ने डिजाइनर तमारा राल्फ के शानदार आउटफिट में रेड कार्पेट पर एंट्री ली, जिसमें स्कल्प्टेड कॉर्सेटेड सिलहूट, डीप प्लंजिंग नेकलाइन, लंबी फ्लोइंग ट्रेन और पीछे लहराता शिफॉन स्कार्फ उनके पूरे लुक को किसी परी कथा जैसा बना रहा था। दिलचस्प बात ये रही कि रेड कार्पेट शुरू होने से पहले ही आलिया कैन की पहली वायरल फैशन सेंसेशन बन चुकी थी। फ्रेंच रिवेरा की गलियों में उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन बॉल गाउन इंटरनेट पर फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पेस्टल पेंटिंग जीवंत होकर सड़कों पर उतर आई हो। एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर के तौर पर आलिया का ये लुक फैशन वर्ल्ड में तुरंत छा गया। इस खास लुक को फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की म्यूरल आर्टिस्ट बांसुरी चौकसी के साथ मिलकर तैयार किया था। ड्रेस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उसकी हैंड पेंटेड डिटेलिंग ने, जिसमें पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर और हल्के येलो रंग ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी इम्प्रेशनिस्ट गार्डन पेंटिंग को कपड़ों पर उतार दिया गया हो। ये कैन फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल 2025 में उन्होंने जब अपना डेब्यू किया तो इस दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। और इस बार भी कैन पहुंचने से पहले ही उनका एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आलिया को फ्रेंच रिवेरा पहुंचते समय स्प्रिंग 2026 कलेक्शन के शार्प टेलर्ड ब्लेजर और फिटेड क्रॉप ट्राउजर में देखा गया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे एयरपोर्ट फैशन हो या हाउते काउचर, आलिया भट्ट हर बार स्पॉटलाइट अपने नाम करना बखूबी जानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
3: It was to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
7: Thank God I get to wake
6: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
6: just
8: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop.

0: Pop on TuneIn to listen.
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। जयपुर में 2 साल के नन्ही प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तनुल तेलियानी की ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे कप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देवभूमि में विश्व शांति के लिए महायात्रा चल रही है। दरअसल यहाँ पर जगदीशिला डोली यात्रा चल रही है जिसका बागेश्वर में भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, देवभूमि में विश्व शांति के लिए महायात्रा। हर साल कई किलोमीटर की दूरी तय कर विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उत्तराखंड में एक यात्रा होती रही है जिसे लोग जगदीशिला रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ये यात्रा अब बागेश्वर के भ्रामरी मंदिर पहुंच चुकी है।

0: विश्व में शांति बनी रहे, देश में खुशहाली और समृद्धि का वास हो। और देव भूमि उत्तराखंड पर भगवान बद्री विशाल और माँ गंगा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना और लोक कल्याण की भावना के साथ देवभूमि उत्तराखंड में जगदीशिला रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। टिहरी गढ़वाल से होती हुई ये डोली यात्रा अब कुमायूं मंडल के ग्वालदम पहुंची, जहां भक्तों ने डोली और डोली लेकर आ रहे यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद यात्रा कोट ब्राह्मणी मंदिर पहुंची, जहां देवी के दरबार में पूजा अर्चना की गई और रात्रि विश्राम किया गया।
1: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष 27वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसकी पूरे 10,500 किलोमीटर की देव परिक्रमा यात्रा होती है। ये गंगा दशहरा से एक महीने पहले विशोन पर्वत से चलती है, टिहरी गढ़वाल के पट्टी 11 इंदौर से हरिद्वार से स्नान करके और उत्तराखंड के 13 जिलों का इसका भ्रमण होता है। कल रात्रि को डोली यहाँ पर पहुँची है कोट भ्रामरी में, ये तीसरी बार यहाँ पर आई है।
0: दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल की ननिहाल माने जाने वाले पांडुकेश्वर से पवित्र जगदीशिला रथ यात्रा निकाली जाती है। सदियों पुरानी इस धार्मिक परंपरा में भगवान जगन्नाथ की पवित्र शिला को भव्य रथ में विराजमान कर यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि जगदीशिला भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप है, वह शिला के दर्शन मात्र से पुण्य पुण्य की प्राप्ति होती है।
2: इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि भाई जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में वैभव संपन्नता सुख समृद्धि रहे और एक पर्यावरण जो आज हो रहा उसका भी एक बहुत अच्छा संदेश आज की इस यात्रा के माध्यम से हम जो इस यात्रा के संयोजक हैं आदरणीय श्री मंत्री प्रसाद नेथानी जी के द्वारा दिया जा रहा, हमको बहुत अच्छी खुशी होती है कि लगातार पिछले 14-15 सालों से ये यात्रा कुमाऊं मंडल के हर उन मंदिरों में जारी है जिन मंदिरों को आज हम सब लोग मानस खंड में देख रहे हैं।
0: जहाँ जहाँ ये यात्रा पहुँच रही है वहाँ ढोल दमायूं की गूंज वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों से वातावरण भक्तिमय होता है। मान्यता है कि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने से मनोकामनाएं ही पूरी नहीं होती बल्कि पूरे समाज और विश्व के कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। यही वजह है कि यात्रा के दौरान हर तरफ भक्ति सेवा मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

0: वैसे आस्था और भक्ति के ये रंग केवल देवभूमि में ही नहीं बल्कि देश भर में फैले हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम वड़ताल में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय के मुख्य केंद्र वड़ताल धाम में भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता देने के लिए एक भव्य तरबूज उत्सव का आयोजन हुआ। वड़ताल मंदिर में विराजमान देवों को 2500 किलो तरबूज का भोग लगा। पूरे मंदिर में तरबूज के रंग नजर आए। मंदिर परिसर को लाल और हरे रंग के तरबूजों से इतनी सुंदरता से सजाया गया कि हर कोई इस अद्भुत नजारे को कैमरा में कैप्चर करता नजर आया। भगवान के दरबार में फलों से की गई आकर्षक सजावट ने भक्तों को आध्यात्मिक आनंद के साथ प्रकृति की सुंदरता का एहसास भी करवाया। इस आयोजन का उद्देश्य केवल भक्ति और उत्सव तक सीमित नहीं बल्कि इसका मकसद प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी है। मंदिर समिति का मानना है कि फल और अन्न प्रकृति का आशीर्वाद हैं, इन्हें भगवान को अर्पित कर जीवन में समृद्धि और खुशहाली की कामना करनी चाहिए। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, टेरी गढ़वाल से पंकज भट्ट और वड़ताल से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे प्रदेश में सफलता का परचम लहरा दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम में मानसा की सुपनीत कौर ने 500 में से 500 अंक हासिल कर पंजाब में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है 500 में से 500 अंक सपना नहीं हकीकत। जी हाँ, उभा गांव स्थित गुरुकुल स्कूल की छात्रा सुपनीत कौर ने साबित कर दिया है कि मेहनत और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि सुपनीत केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती रही हैं।

0: 500 में से 500 अंक, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत को सच कर दिखाया है पंजाब के मानसा जिले की बेटी सुपनीत कौर ने, जिसने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पूरे 500 में से 500 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मानसा के उभा गांव के गुरुकुल स्कूल की छात्रा सुपनीत कौर की इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे मानसा जिले को गर्व से भर दिया है। और खास बात ये है कि सुपनीत कौर का पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी शानदार प्रदर्शन है।
1: मैं सवेरे पहला डेली रेगुलर स्कूल आना, इस तो बाद शाम नू ट्यूशन हुंदियां सी मेरियां, ते इस तो बाद करे जाके सेल्फ स्टडी करना, रात नू 12 ता बाजी जांदे सी, डेली कंसिस्टेंसी नाल पढ़ना।
0: 12वीं का परिणाम घोषित होते ही स्कूल में जश्न का माहौल बन गया। शिक्षकों परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और सुपनीत कौर को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। और इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ, शिक्षक और उनके माता पिता बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं।
2: बेटी ने बहुत मेहनत की थी, बेटी ने सुबह स्कूल लेके आना, दोपहर तो बाद स्कूल छुट्टी तो बाद घर लेके जाना जी, सुबह फिर बच्ची गेम कर दिए जी, गेम ले भी नाल लेके आंदे थे, उबे कर दी सर गेम, बहुत बहुत खुशी है जी।
0: बेटी के शानदार सफलता से माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है, उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही है। परिवार का कहना है कि सुपनीत बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बेहद मेहनती और अनुशासित रही है। सुपनीत की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, और अगर हौसले बुलंद हों तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, सुपनीत कौर के अलावा ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया है। उन्हीं में से एक है जालंधर के नकोदर गांव सरहाली की रहने वाली नरेंद्र कौर, जिन्होंने 61 वर्ष की उम्र में शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है।
3: 45 साल में कोई किताब नहीं चक्की सी, ते जदों मैं बुक्स देखियां, पर ये पता नहीं मैनूं एडमिशन कराउण तों पहला भी विश्वास सी, कॉन्फिडेंस कि मैं वधिया नंबर ले लेने।
0: नरेंद्र कौर बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी उस दौर में लड़कियों की उच्च शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और कई सामाजिक बंदिशें और जिम्मेदारियां उनके रास्ते में आई, लेकिन उन्होंने कभी सीखने और आगे बढ़ने का सपना नहीं छोड़ा, और इसी सपने को उनके परिवार ने साकार करने में 61 साल की उम्र में उनकी मदद की। नरेंद्र कौर ने 61 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा देकर न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया बल्कि शानदार सफलता भी हासिल की। नरेंद्र कौर ने 650 में से 500 अंक हासिल किए हैं, यानी करीब 77% अंकों के साथ परीक्षा पास की है, और ये अभी शुरुआत है। 61 साल की उम्र में 77% अंक हासिल करने वाली नरेंद्र कौर अब यहीं रुकना नहीं चाहती। नरेंद्र कौर का अगला पड़ाव अब 12वीं की पढ़ाई पूरी करना और उसके बाद बीए करना है। उनका मानना है कि शिक्षा इंसान को आत्मविश्वास और नई पहचान देती है, इसलिए सीखने का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। जालंधर से दविंदर कुमार और मानसा से अमरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबरों से नहीं मापती, जेन जी का फोकस अब ऑलराउंड एक्सलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है और नेतृत्व की क्षमता भी। ये बात साबित करती है इस साल सीबीएसई 12वीं के नतीजे। सीबीएसई 12वीं के इस साल के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर पेश की है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। वसंत वैली स्कूल के बच्चे 12वीं में फिर अव्वल। वसंत वैली स्कूल की एक छात्रा ऋतिका पवार ने परीक्षा में नियरली परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। ऋतिका का परीक्षा में 99.5% अंक आया है।
5: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया। 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
6: आई थिंक कि दिस इज समथिंग जो लाइक वसंत वाली स्कूल लाइक इनकल्केट करता है कि हम लोग लाइक हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लाइक स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए।
5: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
7: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज़ में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका पवार जो हमारी इस बार टॉपर है, स्कूल टॉपर है, शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
5: CBSE 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं दिए बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा, इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
8: तो ये जो टॉपर्स हैं वसंत वैली के, ये हमें बता रहे हैं कि जेंजी जिसकी बहुत चर्चा है, ये प्रतिभा से भरे हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं।
5: वसंत वैली स्कूल के नतीजे सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों की कहानी नहीं है बल्कि ये उस बदलती सोच का उदाहरण है जहाँ नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेल, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शिक्षक ऐसा भी है जो पार्क को ही बच्चों की पाठशाला बना रहा है। ना बड़ी बिल्डिंग, ना स्मार्ट क्लास, लेकिन शिक्षा का ऐसा जुनून कि गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रही है। कहानी दिल्ली के शिक्षक कृष्ण कुमार की है जो कि मुफ्त किताबें और कॉपियां बांटकर समाज में बदलाव की अलख जगा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है दिल्ली के पार्क में चल रही पाठशाला। आपको बता दें कि दिल्ली के एक पार्क में रोज सचती है एक अनोखी क्लास जहां पर कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और उनके सामने होते हैं शिक्षक कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं लेकिन स्कूल की ड्यूटी खत्म होते ही उनका असली मिशन शुरू हो जाता है।
9: गर्मी का मौसम है, आम लोग धूप से राहत पाने के लिए पार्कों में आराम करने आते हैं, लेकिन यहाँ नज़ारा अलग ही है।
10: 2, 3, 4, 5, 6
9: दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास इस पार्क में पाठशाला चल रही है। पार्क में पढ़ने वाले ये वो बच्चे हैं जिनका न कोई घर है न ठिकाना। फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ भीख मांगकर गुजारा करने वाले ये बच्चे अब पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। ABCD से होती हुई इनकी पढ़ाई की यात्रा 1, 2, 3, 4 से भी आगे बढ़ रही है। बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाली ये नन्ही बच्चियाँ अब कविता सुनाने में भी प्रांगत हो गयी है।
11: नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए,
10: बाकी जो पचाते वाले चले गए, खके पिखे मोटे होके चोर बैठे लेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में।
9: पार्क में इस पाठशाला की शुरुआत अनोखे तरीके से हुई, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
11: सड़क से गुजरते हुए एक सरकारी स्कूल के टीचर के पास एक बच्ची आती है और कहती है, अंकल पापा भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दिला दीजिए। और टीचर समझ जाता है कि यह बच्ची स्कूल नहीं जाती और इसी सिग्नल पर वो भीख मांगती है। उसने उस बच्ची को खाने के लिए दिलाया, लेकिन इस शर्त पर कि वो बच्ची को किताबें भी दिलाएगा और उस बच्ची को उन किताबों को पढ़ना होगा। उस बच्ची ने पढ़ने के लिए हामी भर दी और उस छोटी बच्ची की हामी ने उस टीचर के लिए एक नया मिशन खड़ा कर दिया। आज वो टीचर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है जो बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते हैं। इनमें से 12 बच्चों का एडमिशन उस सरकारी स्कूल में करवा चुका है। ये यात्रा अभी भी जारी है।
9: पेशे से टीचर कृष्ण कुमार ने करीब 8 महीने पहले पार्क में पाठशाला का आगाज तो कर दिया, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए आए, इसके लिए इनके परिवार को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये बच्चे भीख मांगकर अपना और अपने परिवारों का गुजारा जो करते थे।
12: आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें फिर आप राशन दो।
9: लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए आए, इसके लिए इनके परिवार को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये बच्चे भीख मांगकर अपना और अपने परिवारों का गुजारा जो करते थे।
12: आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें फिर आप राशन दो। ठीक है, मेरे को ये शर्त आपकी मंजूर है। वहाँ से मैंने उनको राशन देना शुरू किया और फिर वो खुद बच्चों को छोड़ने मेरे पास आते थे फुटपाथ।
11: कितनी फैमिली को राशन दिया आपने?
12: वहाँ पे 4 फैमिलियाँ थी, 4 फैमिली के 12 बच्चे थे वो, और उनको हमने मंथली है वो 2,500 से 3,000 रुपए का एक फैमिली को राशन दिया हमने।
9: कृष्ण कुमार 2013 से दिल्ली के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पार्क में पाठशाला चलाते हुए इन बच्चों की जिंदगी रोशन करने का काम भी कर रहे हैं।
11: लगातार कृष्ण जी लगे हुए हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इनके पास आए, इनसे जुड़े और उन्हें आगे शिक्षा का जो उनका रास्ता है उनका मार्ग प्रशस्त हो। और सोचिए, अगर ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे कृष्ण कुमार कई सारे पैदा होंगे जो सड़क पर किसी बच्चे को ना रहने देंगे और ना उसकी शिक्षा खराब होने देंगे। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: धनबाद के भूली की रहने वाली युवा फैशन डिजाइनर कंचन सिंह ने पेरिस फैशन वीक में धमाल मचा दिया। कंचन ने काली धरती थीम पर अनूठे डिजाइन से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पेरिस फैशन वीक में धनबाद की बेटी का कमाल। देखिए, पेरिस फैशन वीक में फैशन डिजाइनर कंचन ने झारखंड की कोयला खदानों को केंद्र में रखते हुए शो किया, जिसमें कोल माइंस में रहने वाले लोगों की पीड़ा, विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े जो संकट हैं, अपने परिधानों के जरिए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। खास बात यह है कि देशभर के 20 डिजाइनर्स में से झारखंड की कंचन अकेली डिजाइनर है जिनके परिधान ने पेरिस फैशन वीक में अपना जलवा बिखेरा। इस उपलब्धि से कंचन ने न केवल धनबाद बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। देशभर के 20 डिजाइनर्स में से कंचन झारखंड से अकेली डिजाइनर है जिसके परिधानों ने पेरिस फैशन वीक में अपना तहलका मचाया। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखने का सपना कंचन सिंह ने तब देखा जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, जब कंचन के घर में उनकी माँ सिलाई मशीन लेकर आई। उसी दौरान वहीं से उनके भीतर कुछ नया सीखने और बनाने की इच्छा जगी। कंचन ने माँ की पुरानी साड़ियों को काटकर छोटे छोटे ड्रेस बनाए। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदला और उन्होंने तय कर लिया कि भविष्य में उन्हें फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है। और कड़ी मेहनत और शानदार सोच के साथ आज उनका सपना पूरा हो गया।
13: फैशन डिजाइनिंग में आने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैं क्लास 9th में थी। मेरी मम्मी ने बस एक सुई मशीन घर पे ले आई, सिलाई की मशीन, और मैंने बस कुछ सोचा समझा नहीं और मुझे सीखना था, जानना था कि मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ उठाई, काटना चालू किया और ड्रेसेस बनाना चालू किया। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है और मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ, कर सकती हूँ।
14: उसका एक रुझान था अंदर से कि हम कोयलांचल का रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड का नाम हमको आगे रोशन बढ़ाना है, करना है, इसलिए अपना रुचि से बनाई होगी तो उनके अंदर की बात है जो बच्ची अपनी बनाई इच्छा से।
15: कैसी रही बचपन से उसका लगाव?
14: बच्चे का लगाव तो बहुत अच्छा रहा, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, गांव घर में भी बहुत अच्छी तरह से उन लोग का मेल मिलाप हर लड़का लड़की से भी उनका अच्छा, और कॉलेज लाइफ में भी अच्छा रहा।
4: श्रीनगर में आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक अंदाज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संगीत परंपरा की शानदार झलक देखने को मिली। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है, और वो है श्रीनगर में आकाशवाणी की 90 वर्षगांठ का जश्न। आपको बता दें कि श्रीनगर में आयोजित आकाशवाणी के 90 वर्षों के जश्न में प्रसिद्ध कलाकारों और संगीतकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें सूफी संगीत, लोक धुनों और कश्मीरी संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को सुरमई बना दिया। आकाशवाणी श्रीनगर ने इस दौरान देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा के विकास और क्षेत्रीय भाषा, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद किया। दरअसल दशकों से रेडियो ने न केवल सूचना पहुंचाने का काम किया, बल्कि समाज, संस्कृति और कला को जोड़ने का भी वो जरिया बनी। आकाशवाणी की शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी। इसी दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अब बाजारों में नजर आने लगी है। शहर के स्टेशन रोड और क्लब रोड समेत कई बाजारों में लाल रंग की आकर्षक लीचियां लोगों को खूब लुभा रही है। इसी से जुड़ी आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, बाजारों में आई मौसम की पहली लीची। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में सीजन की पहली लीची ने दस्तक दे दी है। बाजारों में लीची के आने से न केवल ग्राहकों में खुशी की लहर है, बल्कि दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि लीची स्वाद अपने साथ मिठास लेकर आया है। फिलहाल लीची की कीमत बाजार में 400 रुपए प्रति सैकड़ा है। हालांकि जैसे जैसे मार्केट में लीची का उत्पादन बढ़ेगा, इसकी कीमतें घटेगी। व्यापारियों का कहना है कि अभी लीची की तोड़ाई सीमित मात्रा में हो रही है, लेकिन अगले एक सप्ताह में बाजार में ये तेजी से आ जाएगी। वहीं मई के आखिरी सप्ताह और जून के पहले सप्ताह तक कीमतों में कुछ कमी आने के साथ लीची में पूरी मिठास भी आ जाएगी।
16: मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची अब बाजार में बिकने लगी है। हालांकि एक दुके दुकानदार ला रहे हैं, लेकिन अब इसकी कीमत भी अधिक है, 400 रुपए सैकड़ा इसकी कीमत बताई जा रही है, और लाली दिखने लगी है, मिठास भी आनी शुरू हो गई। हालांकि 20 मई के बाद बेहतर क्वालिटी की लीची बाजार में आएगी, लेकिन 400 रुपए कीमत की लीची बाजार में आनी शुरू है। स्टेशन रोड में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अब कहाँ से लाए हैं, अभी क्या कीमत है?
17: ये काटी का है लीची।
16: अच्छा,
17: 400 रुपया कीमत है, शाही लीची है, मीठा है।
16: मीठा है
17: जी।
16: ग्राहक आ रहे हैं?
17: जी, ग्राहक आ रहा है, जोर शोर से आ रहा है ग्राहक।
16: शाही लीची मुजफ्फरपुर के बाजारों में बिकने लगी और ट्रेन के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भी जानी शुरू हो गई है। हालांकि 20 मई के बाद इसमें स्पीड आएगी। मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में सबसे बेहतर क्वालिटी की लीची बाजार में आती है, लेकिन शाही लीची अब बाजार में बिकने लगी।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
19: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
20: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: बंगाल में बदलाव, फिर भी बवाल ही बवाल। संगीत से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश। कहां तेज हवा से घिरी बिल्डिंग। मासूम से सीखिए खुद की इज्जत करना। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।

0: This is a Monday.com ad. The same Monday.com helping people worldwide getting work done faster and better. The same Monday.com designed for every team and every industry. The same Monday.com with built-in AI, scaling your work from day one. The same Monday.com that your team will actually love using. The same Monday.com with an easy and intuitive setup. Go to Monday.com and try it for free. Yes, the same Monday.com.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
7: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम. सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% कटौती, 50% मीटिंग होंगी वर्चुअल. पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल. साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का संदेश दिया. जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां. जयपुर में 2 साल की नन्नी प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल. इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा नाम. छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र. कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का 5वां लुक. डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस में बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया. श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान. तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी मिली एंट्री.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली.
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल दे के पेश किया जाता है। लोग बिना सोचो समझे, बिना जाने, बिना परखे ने लगातार शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम वीडियोस और उन वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई जो आपको गलत तरीके से पेश की गई थी। फैक्ट चेक टीम फैक्ट चेक करके आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, जिनमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसी दावे के साथ। इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में अचानक से तेज हवाएं और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
7: पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
11: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि कोलकाता में चुनाव जीतने के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है और उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा गया है, कोलकाता में चुनाव जीतने का जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजाकर किया जा रहा है। गलतियां बढ़ती जा रही हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है, उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मस्जिद में संगीत बजाकर उनकी इबादत में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इसके हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। जैसे वीडियो में एक शख्स इबादत कर रहा है, उसके पीछे बैंड वाले म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसे रोका नहीं जा रहा है। वीडियो में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन इसे रोकने के बजाय वो अपनी धुन में मगन नजर आ रहे हैं। यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर वाकई पूजा वाली जगह पर किसी भी शख्स को पूजा करने के दौरान परेशान किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेगा, इसको लेकर शिकायत भी करेगा। लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इबादत करने के दौरान बैंड बजाने की परंपरा है। जब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के जरिए ये हो रहा है ऐसा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट कहीं नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर होती। जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी मुद्दे को हवा देती, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
11: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो गश्ती शाही दरबार शरीफ नाम के यूट्यूब अकाउंट से 20 जून 2025 को अपलोड किया गया मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो से ही जुड़े और वीडियो भी गश्ती शाही दरबार शरीफ के यूट्यूब अकाउंट से जून 2025 में अपलोड किए गए मिले। इतना ही नहीं, हमें इस यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किए गए दूसरे वीडियोस भी मिले, जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे स्थान पर ही लोगों को संगीत बजाते हुए देखा जा सकता है। जांच में हमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम में मौजूद यह एक सूफी दरगाह है जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हमें प्रकाशित रिपोर्ट में दरगाह की वह तस्वीर भी मिली जो YouTube प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर से मेल खाती है। पड़ताल के दौरान हमें यह स्थान गूगल मैप्स पर भी मिला। गूगल मैप्स के दौरान यह स्थान बांग्लादेश के चट्टोग्राम के राउजान के पास स्थित है। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किए जाने के दावे से वायरल यह वीडियो असल में बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक सूफी दरगाह का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मार्केट में अचानक से तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ है, ठेले वाले दिख रहे हैं, लोग सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। अचानक तेज हवा के झोंके के बीच एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। इसे सच मानकर लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध फॉरवर्ड कर रहे हैं।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो हाल फिलहाल का है। मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह बिल्कुल नीचे ढह गई। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जब हमने इस वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम का विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि पहली नजर में ये एकदम रियल नजर आने वाला वीडियो असली नहीं हो सकता, क्योंकि हवा का चलना, लोगों का बैठना, यहां तक कि ऑटो रिक्शा का बाउंस होना सब असल जिंदगी से बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहां पर सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब बिल्डिंग नीचे गिरती है तब लोग जिस तरह से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर वीडियो वाकई सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
11: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। यहाँ एक यूजर का वीडियो पर कमेंट दिखा, उसने इस वीडियो को AI निर्मित बताया था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। बिल्डिंग जैसे ही नीचे गिरती है उस दौरान एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गुजर रही है। वो वहाँ से ऐसे गुजर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुमंजिला इमारत इतनी तेजी से नीचे गिरी, धमाका भी हुआ होगा, लोगों के भागने की आवाजें भी आई होंगी, लेकिन इस महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ऐसे में हमने जांच को आगे बढ़ाया और वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.4% AI निर्मित बता रही है। इसके अलावा प्रमाणिक साइट पर ऐसी किसी हालिया घटना की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इस तरह हमारी पड़ताल में इमारत के ढहने का ये वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
12: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
15: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
14: You're listening to Fox News Radio.
16: Classic rock hits.
17: You're listening to MSNBC.
14: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा है।
2: आपने ये तो सुना होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए गए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची की इस प्यारी सी हरकत के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया हुआ है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बहुत ही प्यारा है और इसी कारण वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं।
3: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना?
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची के हाथ में 500 का नोट नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार ने बच्ची को पैसे दिए होंगे। अब एक लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा ये आपके पास एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, ये एक नोट मुझे दे दो।
3: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट।
2: अब बच्ची तो बच्ची ही है, उस मासूम ने सोचा तक नहीं कि उस लड़की को 500 का नोट दे दिया और बदले में उस बच्ची को 50 रुपए मिलते हैं।
3: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, आप मुझे एक दो। देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको।
2: और बच्ची 3 नोट देखकर खुश भी हो जाती है। अब ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकता है, मगर फनी तो है ही।
3: देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है।
2: हर दिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग खुद को अलग और खास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही कोशिश लोगों के लिए हंसी का कारण भी बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस रील को बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही कुछ सेकंड में फनी वीडियो बन गई। भारतीय शादियों में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि पल भर में वायरल हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट की याद लोगों को काफी ज्यादा हंसाती है या फिर उनको चकित कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थीं। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्याओं का समाधान किया।
4: भाइयों, मेरठ शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट तो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। और
2: एक शख्स ने कार के साथ ऐसी कलाकारी की है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक कार नजर आ रही है, कार का लुक देखकर लग रहा है कि वो डिजायर कार है, लेकिन शख्स ने उसे जो लुक दिया है वो एक महंगी कार का दिया है। उस शख्स ने उस कम बजट वाली कार को बुगाती शेरॉन हाइपर कार के रूप में बदल दिया है। उसने कार को सफेद और मरून कलर के साथ ये नया लुक दिया है। जिसने भी इस कार को देखा वो दंग रह गया।
4: इंसानी कारीगरी को ही पलट के रख दिया है। तो भैया इस फनकार के चमत्कार को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ।
2: वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है वह जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वह बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था।

0: देखकर टाइगर भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है और दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Achhi khabar, sachi khabar.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। नासिक में दिखेगी आध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर, नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो सामने आया। जयंती पर 400 साल पुरानी थेवा ज्वेलरी, 24 कैरेट सोने और कांच का अद्भुत संगम और 61 साल की दादी 10वीं में फर्स्ट डिविजन, 500 में से 500 अंक लाकर मानसा की सुपनीत ने भी कर दिखाया कमाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजनी ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। जयपुर में 2 साल की नन्ही प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय ए क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, वियान पराग होंगे उप कप्तान। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली एंट्री। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की, जिसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगो लॉन्च किया और इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। ये सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे।

0: में लगेगा आस्था का महामेला, फिर उमड़ेगा साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला। लेकिन इस बार संगम के तट पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी किनारे होगा ये भव्य और दिव्य आयोजन। बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले की है, जो 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। इस बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने से पहले इसका आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को लॉन्च किया। लोगों में देवादिदेव महादेव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। पहली बार जब ये लोगो सामने आया तो हर किसी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
1: सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, कई क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा।
0: बताया गया कि लोगों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सुमित कांटे के डिजाइन को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए मिले, जबकि मयंक नायक ने 2 लाख रुपए का दूसरा और पीयूष पिंपल नेरकर ने 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार जीता। बताया गया कि प्रसून जोशी समेत जाने माने डिजाइन विशेषज्ञों की समिति ने विजेता के डिजाइन का सिलेक्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि सभी अखाड़ों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
1: हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानीय उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा, ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी।
0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का लोगो जारी होने के बाद इसे राज्य की मशहूर इमारतों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सीएसटी स्टेशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए उकेरा गया। इसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रेल मंत्रालय ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई की प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बाहरी हिस्सा नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों से जगमगा उठा है। ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इनमें एक नासिक त्र्यंबकेश्वर है, जहां ये बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसपे देश और दुनिया भर से लाखों लोग शामिल होंगे।
2: रामकाल पथ करके एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, जो एक साल पहले केंद्र शासन ने हमको मंजूर करके दिया। उसमें भी हम जो सभी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, और पंचवटी जो एरिया है हमारा जहां जिसका बहुत महत्व है रामायण में भी, उसको पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का भी जो पूरा एरिया है वो डेवलप हो रहा है। साथ में ही कुछ 28 सड़कें जो हैं वो हम उनको वाइडन कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर हर प्रकार की यूटिलिटी हम एक ही बार डाल रहे हैं। पुल जो है पुल बना रहे हैं। साधुग्राम है, साधुग्राम के लिए हम जगह जो है भू संपादन भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत विविध विविध प्रकार के काम इसमें जो एक साल में होंगे, उसका कुंभ को भी फायदा होगा और पूरे शहर को भी बहुत फायदा रहेगा।
0: ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि सिंहस्थ कुंभ मेला आस्था, एकता और सनातन परंपरा का भी बड़ा प्रतीक है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बढ़ते हैं आगे। बात प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील की जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। इस अपील के बाद सराफा कारोबार से जुड़े लोग भले ही कारोबार को लेकर चिंतित हों, लेकिन ग्राहकों के सामने सोने के आभूषणों की जगह कई विकल्प मौजूद है जो किफायती भी हैं और स्टाइलिश भी। राजस्थान की करीब 400 साल पुरानी थेवा आर्ट ज्वेलरी ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

0: दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से सोने की बढ़ती कीमतों से हर कोई हैरान है, खासकर ग्राहक जिनके लिए सोने के आभूषण खरीदना अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस मुश्किल के बीच कई ऐसे अच्छे ऑप्शंस बाजार में मौजूद हैं, जिन्हें सोने के आभूषणों की जगह शादी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हीं में से एक है राजस्थान की करीब 400 साल पुरानी थेवा आर्ट ज्वेलरी, जो देखने में भी शानदार है और बजट फ्रेंडली भी है।
1: सीजन ऐसा है, घर में शादियां होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे ज्वेलरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज्वेलरी ही ऑस्पिशियस मानी जाती है और साथ ही साथ में महिलाओं का जो लुक होता है उसको इन्हांस करने में बहुत बड़ा योगदान ज्वेलरी का होता है। और ऐसे में अगर बोला जाए कि गहने ना खरीदो तो एक बार के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है महिलाओं के लिए। तो जो लूप होल्स या जो ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं उसमें से एक ऑल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है।
0: बताया जाता है कि इस थेवा आर्ट का जन्म राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुआ था, जिसमें 23 कैरेट सोने की बारीक नक्काशी को रंगीन शीशे पर जोड़ा जाता है। इसके लिए सबसे पहले सोने की पतली शीट को काटकर नक्काशी की जाती है। नक्काशी के जरिए मोर, हाथी, फूल, राजपूती डिजाइन उकेरे जाते हैं और फिर इसे पिघलते हुए रंगीन शीशे पर चिपकाया जाता है। इन गहनों को बनाने का पूरा काम हाथों से होता है, इसलिए एक अच्छा पीस बनाने में 15 दिन से महीने भर तक लग जाता है।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पर टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे। इसको बोलते हैं रानी हार, है ना। और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है, दिस इज ऑल गोल्ड। जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है, ये है ना, ये सिल्वर में है, गोल्ड प्लेटेड में। बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं एंड जो इसमें ये हैंगिंग्स हमने लगाए हैं ये भी सिल्वर के हैं। इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है नक्काशी का एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग एंड जो हम जेमस्टोन्स यूज़ करते हैं वो भी सारे रियल यूज़ करते हैं, ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा।
0: थेवा ज्वेलरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्किन फ्रेंडली भी मानी जाती है। ऊपर की परत में गोल्ड वर्क होने की वजह से ये एंटी एलर्जिक होती है और लंबे समय तक पहनने पर भी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि इसकी देखभाल बेहद जरूरी होती है।
2: ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आड़। ठीक है, ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की। और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है, जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है। ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है। ये पूरी सिल्वर है, गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में। एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा। एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं, जीरो एलर्जी है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर है, गोल्ड प्लेटेड है, आपकी स्किन को गोल्ड टच कर रहा है, तो एलर्जी कभी भी नहीं होगी। टार्निश होने का ये रहता है कि दिस इज अ पार्टी वेयर, तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी और वो सब सोप्स लगाएंगे नहीं। इसको आपको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, प्लास्टिक पाउचेस में रखना है एंड परफ्यूम से प्रोटेक्ट करना है, तो 10 ईयर्स तक भी कुछ टार्निश
3: 10 साल तक नहीं खराब हो रहा है।
0: जयपुर की तरह ही दिल्ली की चांदनी चौक की मशहूर ज्वेलरी मार्केट में भी सोने के आभूषणों की जगह कई विकल्प मिल जाएंगे, जैसे कि ये बंधेल ज्वेलरी जो देखने में बिल्कुल सोने जैसी लगती है लेकिन उसकी कीमत गोल्ड के मुकाबले काफी कम होती है। यही वजह है कि अब लोग लाखों रुपए खर्च करने की बजाय बंधेल के डिजाइनर सेट खरीदना पसंद कर रहे हैं। हैवी ब्राइडल सेट से लेकर लाइट वेट नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स और झुमकों तक की बड़ी वैरायटी बंधेल में मौजूद है।
3: एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे। उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है, अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं।
4: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10-15% रुपयों में काम हो जाता है, तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग। और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ।
3: अच्छी खासी वैरायटी आपको मिलने वाली, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर, इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है, यहाँ पर जरूर मिलती है।
0: वहीं बात अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की करें तो यहाँ ग्राहकों के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। टेम्पल ज्वेलरी, रजवाड़ा डिजाइन्स, कुंदन सेट, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और फ्यूजन कलेक्शन जैसी कई वैरायटी लोगों को आकर्षित कर रही है।
3: बंधेल ज्वेलरी का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा लोग अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी जो है ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है, जाकर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो वैसी ले जो दिखने में भी आपको रियल ज्वेलरी लगे। तो हम आपको इस शॉप में लेकर आए जहाँ पर आपको बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे ऑप्शन दिख जाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, लेकिन दिखने में आपको लगेगा जैसे रियल डायमंड है या रियल गोल्ड के उसमें बना हुआ है, लेकिन है आर्टिफिशियल।
5: कितने ग्राम का सेट है अगर कोई ब्राइडल के लिए इसको ऑप्शन दे?
6: ग्राम से नहीं मिलते हमारे पास, पीस रेट से मिलता है वो। अच्छा। सोने में तो ग्राम से होता है, हमारा पीस रेट से है। जैसे हमारे पास ये सेट आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए का, और ये सेट आप ले जाओ गोल्ड में आपको मिलेगा ये 15 लाख रुपए का। अब 15 लाख और 15,000 फर्क आ गया ना, तो इस चक्कर में कस्टमर यहाँ मूव हो रहा है।
3: अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है वो दिखने वाले, और ये सभी अगेन उन्होंने जो बात बोली कि नियर टू रियल, कि ऐसा लगेगा आपको ये वाकई में जो है असली सोना है। और आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगी आपको पैकेट से निकाल के कि किस तरीके से आपको ये अच्छे हैवी इयररिंग्स जो है वो दिखने वाले मिलने वाले हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल में हम आपको टेम्पल ज्वेलरी दिखा रहे हैं जो दिखने में आपको रियल गोल्ड लगेगी एकदम, और किसी तरीके से जो इसके ऊपर पॉलिश हो रखी है वो आई थिंक सालों साल हटने नहीं वाली।
6: हाँ मैडम, जिंदगी भर की गारंटी होती, खराब होगी नहीं आपकी टेम्पल ज्वेलरी पॉलिश। तो
3: आप देख सकते हैं आपको टेम्पल ज्वेलरी का पूरा सेट मिलेगा, इसमें आप मांग टीका लेना चाहे तो वो भी अटैच होगा, बैंगल्स आपको जो है इस तरीके की दिख जाएगी, इयररिंग्स तो इसमें आपको मिलेंगे, और जिस तरीके से आप कस्टमाइज करवाना चाहे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है उसमें मिलने वाले।
0: इनकी खास बात यह है कि हर फंक्शन और हर आउटफिट के हिसाब से अलग अलग डिजाइन उपलब्ध है। यही वजह है कि चांदनी चौक की मार्केट में अब गोल्ड के साथ बंधेल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए बात करते हैं उस हौसले और संकल्प की जिसके संगम से ही जीवन में सफलता और बदलाव का मूल मंत्र लिखा जाता है। जब संकल्प बड़ा हो तो उम्र नहीं हौसला इतिहास लिखता है। ये कहानी पंजाब के जालंधर की रहने वाली एक 61 साल की दादी की है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ने के 45 साल बाद 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी। 4 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोर्स की किताबें थामने के बाद भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास की है। 2 पोते वाली इस छात्रा को 77% अंक मिले हैं। 500 में से 500 अंक लाकर सपने को हकीकत में बदलने वाली पंजाब के मानसा की एक बेटी भी है और उनका नाम है सुपनीत कौर। चलिए उनसे भी मिलवाते हैं आपको।
8: पढ़ने लिखने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, ये आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। पंजाब के जालंधर में 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोतों वाली नरिंदर कौर में 61 साल की उम्र में भी साक्षर बनने की प्रबल इच्छा मौजूद है। अपनी इसी इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने 61 साल की उम्र में 10वीं पास की है। हाल ही में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जिसमें 60 पार नरिंदर कौर ने शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब बोर्ड के 10वीं एग्जाम में नरिंदर ने 650 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। अब सभी इनकी लगन और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि 45 साल बाद दोबारा पढ़ाई लिखाई और कोर्स की किताबों का रुख करना इतना आसान भी नहीं था, फिर भी अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने पढ़ाई शुरू करने से जुड़े अपने डर को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया।
9: 45 साल मैं कोई किताब नहीं चक्की सी, ते जदों मैं बुक्स देखियां, पर ये पता नहीं मैनू एडमिशन कराउण तो पहला भी विश्वास सी, कॉन्फिडेंस कि मैं वधिया नंबर ले लेने, ये मैनू पूरा भरोसा सी। जिस दिन मैं एडमिशन कराउण भी गई मैं सर नू, जद कि मैं हजे बुक्स भी नहीं सी देखियां, तो मैं सर नू कहा सर मैं वधिया नंबर लैके मैं पहले दर्जे च 10वीं पास करूँगी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
8: 77% ਨੰਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਬ 12ਵੀਂ ਕਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੇ ਦਮ ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ।
9: ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 2 ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗੀ।
8: ਨਰਿੰਦਰ ਕਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਵਕਤ ਉਨਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੜਕੀਓਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਕੇ ਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਤੀ ਥੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈ, ਜਿਨਮੇ ਏਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਅਮੇਰਿਕਾ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਜਬਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕਰ ਬਸ ਗਿਆ। 2 ਪੋਤੋ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਨਕੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਜਿਸਕਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਹਾ ਕਿ 61 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹੋਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲਕਿ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਸੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਮੇ ਉਮਰ ਕਭੀ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਨਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਸੇ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਔਰ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇ ਵੀ ਚੌਂਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਮੇ 500 ਮੇ ਸੇ 500 ਅੰਕ ਲਾ ਕਰ ਸਪਨੇ ਕੋ ਹਕੀਕਤ ਮੇ ਬਦਲ ਦਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਕੀ ਇਸ ਮੇਧਾਵੀ ਛਾਤਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਹੈ।
10: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
8: ਮਾਨਸਾ ਕੇ ਉਭਾ ਗਾਓ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਕੀ ਛਾਤਰਾ ਸੁਪਨੀਤ ਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਖੇਲੋ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ।
11: ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ।
8: 12ਵੀਂ ਕਾ ਪਰਿਣਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਤੇ ਹੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਜਸ਼ਨ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਕੋਂ ਔਰ ਸੁਪਨੀਤ ਕੇ ਪਰਿਜਨੋਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਬਾਂਟ ਕਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭੀ ਨੇ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ। ਸੁਪਨੀਤ ਕੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਹੱਦ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
12: ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ।
13: ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਭਾ ਤੋਂ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ।
8: ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੀਤ ਬਲਕਿ 61 ਸਾਲ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਲਕਸ਼ਯ ਕੋ ਭੇਦਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਸੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਟੁਡੇ।
7: ਚਲਿਏ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला का जलवा, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ऐसे में उनके कैरी किए गए सबसे महंगे आउटफिट की खूब चर्चा हो रही है। ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से इसे कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट माना जा रहा है, आइए आपको बताते हैं।
14: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की हुई। फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हेवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। अब जोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
16: सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को लाभ होगा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन का महत्व और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
17: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
18: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
17: Smartless.
19: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
17: Marketplace.
20: The big three on the program today, or, you know, the big three of
17: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
21: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन क्या असर दिखाने वाला है, अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:31 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 8:14 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल विद्यमान है मेष राशि में, बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनिदेव फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के प्रवेश के समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य देव बुध के साथ लग्न में विद्यमान होंगे और मीन राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होगी। सूर्य इस परिवर्तन के समय राहु और केतु से केंद्र में होंगे, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव का समय दिखा रहा है। राजनैतिक रूप से देश में, दुनिया में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग 1 तक बना रहेगा। 1 तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से दुनिया प्रभावित होगी और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का अलग प्रभाव दिखाई देगा।
सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, संतान की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों को प्रभावित करेगा। मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी है, कुछ मामलों में बेहतर है, ज्यादातर मामलों में निगेटिव है। इनको अपने करियर और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके करियर में, इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव होगा, ज्यादा प्रतिकूल होगा, इनके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, बेवजह के विवादों से और बेवजह के अपयश से बचाव करना होगा। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ रहेगा। इन लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन लाभदायक होगा। इनको स्वास्थ्य और करियर के मामले में लाभ होगा और इनके जो तमाम रुके हुए काम हैं, इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे।
तो 12 राशियों में कर्क, सिंह, धनु और मीन, इनके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकी राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन 12 में से केवल 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो अगले 1 महीने तक क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किसी तरह की समस्या ना हो। इस समय रोज प्रातः, नित्य प्रातः सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस समय सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे वस्त्र धारण करने में। और चूंकि सूर्य के वृषभ राशि के समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ग्रीष्म का प्रभाव होता है, इसलिए इस समय नियमित रूप से जल का, फल का और वस्त्रों का दान करेंगे। नियमित रूप से लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, पौधों में, वृक्षों में जल डालें। जल वाले जो फल हैं, खरबूजा, तरबूज, खीरा,
इनका दान करें, वस्त्रों का, जूते छातों का अगर दान करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है तो हर बृहस्पतिवार को शिव जी को जल और पीला फूल अर्पित करिए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। जयपुर में 2 साल के नन्हे प्रशा शर्मा का बड़ा कमाल, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। छोटी सी उम्र में प्रशा को याद है 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र। कान से सामने आया आलिया भट्ट का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तैलियानी के ड्रेस ने बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उप कप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा उत्तराखंड की जगदीशिला डोली यात्रा की भी है। देखिए,

ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित भ्रामरी मंदिर के हैं, जहां जगदीशिला डोली यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद यहां देवी के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की गई। बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला की डोली रथ पर सवार होकर जब यहां पहुंची तो श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ दर्शन पूजन करते दिखे। शक्तिपीठों और देवालयों की परिक्रमा करते हुए ये जगदीशिला डोली गढ़वाल मंडल से कुमायूं में प्रवेश कर यहां पहुंची। ये यात्रा टिहरी गढ़वाल के बिसौन पर्वत स्थित बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला मंदिर से शुरू होती है, जो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से गुजरती है। विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हर साल ये यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और गंगा दशहरा के दिन बिसौन पर्वत पर ही इस डोली का समापन होता है। इस साल 27वीं डोली यात्रा का आयोजन भव्य रूप से चल रहा है।

0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले का यह आधिकारिक लोगो है जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनावरण किया। भगवान शिव के त्रिशूल, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पावन स्वरूप और गोदावरी नदी के दिव्य संगम को साकार करता हुआ ये लोगो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्रदर्शित किया गया। दिव्य रूप से जगमगाते इस लोगो के डिजाइन का चयन एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा और 24 जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य स्नान कार्यक्रम 2027 में होंगे। हरियाणा में इस जोड़े की शादी की खूब चर्चा हो रही है। कैथल के चंदाना गांव के रहने वाले विक्रम जब शादी के बाद दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचे तो वहां शानदार स्वागत हुआ। दूल्हा दुल्हन को एक साथ देखकर विक्रम के परिवार वाले बेहद खुश नजर आए। दरअसल 26 साल के विक्रम की छोटी हाइट की वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा था। परिवार वाले दुल्हन की खोज में जुटे थे जो आखिरकार जीन के हाट गांव में जाकर खत्म हुई। इसके बाद करीब 3 फीट की हाइट वाले विक्रम की अपनी ही हाइट की दुल्हन के साथ धूमधाम के साथ शादी हो गई। और जब विक्रम अपनी पत्नी प्रियंका के साथ घर पहुंचे तो परिवार समेत आसपास के सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। सबने शादी की शुभकामनाएं देते हुए इस जोड़े का भव्य स्वागत किया। सायरन के बजते ही एनडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें एक्शन में आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। बोट के जरिए बाढ़ राहत में टीमें पानी में गश्त करती हुई नजर आने लगी। फिर लोगों का रेस्क्यू किया जाने लगा जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया जहां स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी भी नजर आई। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं, जहां मॉनसून की आहट और संभावित आपदाओं की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग विभागों की टीमें शामिल रहीं। गुरुग्राम समेत हरियाणा के बाढ़ संभावित 13 जिलों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और फिर सायरन के बजते ही एक साथ उन 13 जिलों में इसी तरह से बाढ़ के दौरान राहत बचाव के साथ तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश हुई। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जंगलवार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की हैं। एक साथ नजर आ रहे इन 7 भालुओं में 5 बड़े और 2 भालू के छोटे बच्चे हैं। भालू के दोनों बच्चे यहाँ एक मादा भालू की पीठ पर चढ़कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2 भालू कुछ दूरी पर घूमते तो 2 भालू पेड़ के साथ मस्ती के मूड में हैं। कांकेर में भालुओं का दिखना कोई नई बात नहीं, यहाँ आबादी वाले इलाकों में भालू अक्सर नजर आ जाते हैं। इस जंगलवार कॉलेज में भी पहले भालू दिख चुके हैं, लेकिन यहाँ एक साथ 7 भालू देखे जाने का नजारा एकदम अलग रहा जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है।
1: और अब बात करते हैं गुजरात के वड़ताल स्वामी नारायण मंदिर की। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम वड़ताल से भक्ति और श्रद्धा की एक बेहद शीतल तस्वीर सामने आई है। स्वामी नारायण संप्रदाय के मुख्य केंद्र वड़ताल धाम में भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भव्य तरबूज उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें भगवान को 2500 किलो तरबूज का भोग लगाया गया। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
2: गर्मी के मौसम में खुद को कूल रखने के लिए लोग तरह तरह के ड्रिंक्स बनाकर पीते हैं। कोई ड्राई फ्रूट जूस पीता है, कोई ठंडा पानी पीता है, तो कुछ लोग फलों से बनने वाले शेक पीना पसंद करते हैं। इन दिनों गर्मी में कई तरह के सीजनल फ्रूट्स भी मिलते हैं जिसमें तरबूज सस्ता होने के साथ ही गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या से भी बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में खेड़ा के एक मंदिर में गर्मी के दिनों में भगवान को तरबूज का भोग लगाया जाता है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम वड़ताल से भक्ति और श्रद्धा की ये बेहद शीतल तस्वीरें सामने आई हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के मुख्य केंद्र वड़ताल धाम में भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए एक भव्य तरबूज उत्सव का आयोजन किया गया।
3: बाहर सूरज आग उगल रहा है, पारा 40 के पार है, लेकिन गुजरात के खेड़ा जिले के वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर के भीतर का नजारा बेहद शीतल है। वैशाख वध एकादशी के मौके पर यहां तरबूज उत्सव मनाया गया। 100 या 200 किलो नहीं बल्कि पूरे 2500 किलो तरबूज का भगवान को भोग लगाया गया। मंदिर के स्वयंसेवकों ने तरबूज उत्सव में भिन्न भिन्न प्रकार के आकार देकर तरबूज को सजाया था। वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में हर मौसम के मुताबिक उत्सव मनाया जाता है। आम के सीजन में आम उत्सव, जामुन के सीजन में जामुन का भोग लगाया जाता है, चीकू के सीजन में चीकू का भोग लगाया जाता है, अंगूर के सीजन में अंगूर का भोग लगाया जाता है। हर प्रकार के फल फलादि भगवान को अर्पित किए जाते हैं और जिसकी तैयारी मंदिर के स्वयं सेवक ही करते हैं और उसका नजारा भी बेहद ही अद्भुत रहता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और दर्शन कर भाव विभोर होते हैं।
2: एकादशी के पावन अवसर पर वड़ताल मंदिर में विराजमान देवों को 2500 किलो तरबूज का भोग लगाया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर को लाल और हरे तरबूज के साथ कुछ इस तरीके से सजाया गया है कि इन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। भगवान के इस मंदिर में भक्तों ने इन तरबूजों पर वड़ताल धाम लिखकर उन्हें भोग लगाया। और देखिए इन तरबूजों को मंदिर तक पहुँचाने के लिए कैसे कार सेवक एक दूसरे को तरबूज पकड़ा रहे हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हाथ में होते हुए तरबूज एक जगह पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस कार सेवा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं और आखिरकार ये तरबूज गर्भगृह तक पहुंचते हैं जहां मौजूद पुजारी इन्हें करीने से सजा रहे हैं।
4: आज यहां पे तरबूज महोत्सव है, भगवान को तरबूज अर्पित किया गया है और ये देख के हमको बहुत आनंद, हमको दर्शन हुए हैं भगवान के अच्छे से। और यहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं, आम होते तो आम चढ़ाया जाते हैं भगवान को सारे सेलिब्रेशन होते हैं त्योहार, ये दर्शन करके हमको बहुत आनंद में फील होता है अंदर से।
2: मंदिर परिसर में मौजूद महिलाएं तरबूजों को काट कर डालियों में सजा रही है। यही नहीं, ये महिलाएं तरबूजों पर तरह तरह की नकाशी भी उकेर कर एक कला प्रदर्शनी भी लगा रही हैं। और ये देखिए एक साथ कई डालियां और प्लेट्स में सजे ये तरबूज कैसे श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य भक्ति के साथ साथ प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। वड़ताल धाम के इस मंदिर में 3 मुख्य गर्भगृह है। मध्य गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण और रणछोड़ राय जी की प्रतिमा है। दाई ओर हरि कृष्ण रूप में स्वामी नारायण के साथ राधा कृष्ण की प्रतिमा है, जबकि बाई ओर वासुदेव, धर्म और भक्ति की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के लकड़ी के स्तंभों पर रंगारंग नकाशी की गई है। मंदिर परिसर में एक धर्मशाला भी है। मंदिर के द्वार के उत्तर पश्चिम में ज्ञान बाग उद्यान है, जिसमें स्वामी नारायण को समर्पित 4 स्मारक है। वड़ताल कस्बे को वड़ताल स्वामी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मंदिर कमल के आकार का है, जिसके भीतरी भाग में 9 गुंबद हैं। वड़ताल धाम में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण देव का पूजन होता है और यहाँ दिवाली, स्वामी नारायण जयंती और दूसरे प्रमुख हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये संप्रदाय के आचार्य गद्दी का केंद्र भी है, जो इसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। खेड़ा के वड़ताल धाम से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बीजेपी नेता को भारी पड़ी प्रधानमंत्री मोदी की अपील की अनदेखी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाने की अपील की अनदेखी मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता को भारी पड़ गई। भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को पार्टी ने पद से हटा दिया है। ये कार्रवाई उनके स्वागत में निकाले गए सैकड़ों वाहनों के काफिले को लेकर की गई। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से नियुक्ति निरस्त कर दी। आरोप है कि भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव बुधवार को समर्थकों के साथ करीब 120 गाड़ियों के काफिले में भिंड पहुँचे थे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के तंगधार में शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद बैटलफील्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही विरासत को संजोना और बॉर्डर एरिया में विकास को रफ्तार देना है। कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए LG ने सैनिकों, इंजीनियर्स और लोकल लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अनोखी शादी की चर्चा है। दूल्हा परिवार के साथ 13 मई की रात बारात लेकर गोरखपुर के दाऊदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल पहुंचा और रात 1 बजे पूजा की मांग में सिंदूर भर दिया। मौके पर मौजूद पंडित जी ने मंत्र पढ़े और 7 वचन दिलाए। इसके बाद दूल्हा गाँव लौटा और वहाँ शादी की बाकी रस्में पूरी की। दरअसल शादी के दिन दुल्हन LLB लास्ट सेमेस्टर का पेपर देकर बाइक से भाई के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान चक्कर आने पर वो बाइक से गिरकर घायल हो गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद घर वालों ने अस्पताल में ही शादी की रस्में तय मुहूर्त के मुताबिक पूरी करने का फैसला किया।
1: और अब बात राजधानी दिल्ली के पार्क पाठशाला और बिहार के गया जी की 3 फीट हाइट वाली टीचर। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक टीचर ऐसा भी है जिसने पार्क को ही बच्चों की पाठशाला बना डाली। ना बड़ी बिल्डिंग, ना स्मार्ट क्लास, लेकिन शिक्षा का ऐसा जुनून जिससे गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रही। वहीं बिहार के गया जी जिले में देखने को मिली है हौसले और हिम्मत की अनोखी मिसाल, जिसने अपने दृढ़ विश्वास के चलते समाज के सामने एक मिसाल कायम कर दी। कद महज 3 फीट, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, जो समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आएगी।

0: राजधानी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शिक्षक ऐसा भी है जो पार्क को ही बच्चों की पाठशाला बना रहा है। ना बड़ी बिल्डिंग, ना स्मार्ट क्लास, लेकिन शिक्षा का ऐसा जुनून कि गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रही है। बिहार के गया जी में 3 फीट हाइट होने के कारण लोग जिनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सरकारी स्कूल की टीचर बनकर मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद कर दी। अमूमन गर्मी के चिलचिलाती धूप में आम लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पार्क में आराम करने आते हैं, लेकिन दिल्ली में नेहरू प्लेस के इस पार्क में बच्चों की पाठशाला चल रही है। एक तरफ एक बुजुर्ग बेंच पर बैठकर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर बैठे युवा टीचर बच्चों से घिरे हुए हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं। तीसरी तरफ एक और युवा बच्चों को भविष्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। पार्क में पढ़ने वाले ये वो बच्चे हैं जिनका ना कोई घर है ना ठिकाना। फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ भीख मांग कर गुजारा करने वाले ये बच्चे अब पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी बेहतर बनाने की राह पर चल पड़े हैं। ABCD से होती हुई इनकी पढ़ाई की यात्रा 1, 2, 3, 4 से भी आगे बढ़ रही है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाली ये नन्ही बच्चियाँ अब कविता सुनाने में माहिर हो गई हैं।
1: नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो पचाते वाले चोर ले गए, खके पिखे मोटे के चोर बैठे लेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पोचा सीधा जेल में। निचली जिनकी रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
0: पार्क में इस पाठशाला की शुरुआत भी अनोखे तरीके से हुई, जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है।
2: सड़क से गुजरते हुए एक सरकारी स्कूल के टीचर के पास एक बच्ची आती है और कहती है, अंकल पापा भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दिला दीजिए। और टीचर समझ जाता है कि यह बच्ची स्कूल नहीं जाती और इसी सिग्नल पर वो भीख मांगती है। उसने उस बच्ची को खाने के लिए दिलाया, लेकिन इस शर्त पर कि वो बच्ची को किताबें भी दिलाएगा और उस बच्ची को उन किताबों को पढ़ना होगा। उस बच्ची ने पढ़ने के लिए हामी भर दी और उस छोटी बच्ची की हामी ने उस टीचर के लिए एक नया मिशन खड़ा कर दिया। आज वो टीचर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है जो बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते हैं। इनमें से 12 बच्चों का एडमिशन उस सरकारी स्कूल में करवा चुका है। ये यात्रा अभी भी जारी है।
0: पेशे से टीचर कृष्ण कुमार ने करीब 8 महीने पहले पार्क में पाठशाला की शुरुआत की, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए आए, इसके लिए इनके परिवारों को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये बच्चे भीख मांग कर अपना और अपने परिवार वालों का गुजारा करते थे।
3: आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें फिर आप राशन दो। ठीक है, मेरे को ये शर्त आपकी मंजूर है, राशन दे सकता हूँ, मैं दारू पीने के लिए पैसे नहीं दे सकता आपको। तो वहाँ से मैंने उनको राशन देना शुरू किया और फिर वो खुद बच्चों को छोड़ने मेरे पास आते थे। 4 फैमिलियाँ थी, 4 फैमिली के 12 बच्चे थे वो, और उनको हमने मंथली है वो 2.5 से 3 हज़ार रुपये का एक फैमिली को राशन दिया।
0: इन्हें अपना पैसा लगाकर बच्चों के परिवारों को न केवल राशन मुहैया करवाया, बल्कि बच्चों के लिए कॉपी किताब का इंतजाम भी करते हैं। हालांकि धीरे धीरे और भी लोग इनके साथ जुड़ने लगे हैं। पार्क की इस पाठशाला की शुरुआत शेख सराय से शुरू होकर नेहरू प्लेस तक पहुंच चुकी है।
3: अभी वही फुटपाथ वाले ही बच्चे हैं यहाँ पे भी। जब मेरा स्कूल यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है, तो मैंने देखा जब एक दिन हम यहाँ से रेंडमली निकले, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी फुटपाथ पे बहुत सारे बच्चे गार्जियन वो रह रहे हैं। तो हमने आके मेरे टीचर आए थे साथ में, सर इनसे भी बात करके आते हैं, हमने उनको तो बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, इनसे भी एक बार बात करते हैं। तो हमने जब बात करी तो पता लगा कि यहाँ भी बच्चे बहुत सारे हैं, कम से कम इन्होंने बोला 35 से 40 बच्चा हमारे पास है और कहीं नहीं जाता है। तो मुझे बढ़िया वो लगा कि ये भी स्थान बहुत बढ़िया, हम इनको बगल में पार्क है, पार्क में बैठ के आराम से इनको पढ़ा।
0: कृष्ण कुमार ने खुद अपनी जिंदगी में गरीब और कठिन हालात को बहुत करीब से देखा। 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा इन्होंने 65 रुपए दिहाड़ी पर काम करना शुरू किया। लगातार 4 साल कड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और फिर BA का फॉर्म भरा, फिर MA और BEd की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, CTET और NET जैसी परीक्षा भी पास की। अब ये चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से दूर ना हो।
3: मुझे काम की तलाश में मैं सूरत के फुटपाथ पे रहा था और काफ़ी मैंने वहाँ महसूस किया कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ जा रही है मेरी। तो मेरा पढ़ने का जो सपना था, पढ़ने का मेरा हमेशा से मेरा जुनून था, लेकिन मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं बीच में छूट गई। और वो तीन साल का जो मेरा सफ़र था 2004 से 2007 तक, मैं वहाँ कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी मैं नासिक, कभी देवलाली, यहाँ मैंने धक्के खाए और कुछ पैसा भी कमाया, ऐसा नहीं, वहाँ मैंने जॉब करी, कुछ पैसे कमाए।
0: कृष्ण कुमार 2013 से दिल्ली के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ पाक में पाठशाला चलाते हुए इन बच्चों की जिंदगी रोशन करने का काम भी करते हैं।
2: लगातार कृष्ण जी लगे हुए हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इनके पास आए, इनसे जुड़े और उन्हें आगे शिक्षा का जो उनका रास्ता है, उनका मार्ग प्रशस्त हो। और सोचिए अगर ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे कृष्ण कुमार कई सारे पैदा होंगे जो सड़क पर किसी बच्चे को ना रहने देंगे और ना उसकी शिक्षा खराब होने देंगे।
0: किसी के शरीर की ऊंचाई से उसके व्यक्तित्व का कद नहीं मापा जा सकता। एक ऐसा ही अनूठा उदाहरण बिहार के गया जी की स्कूल टीचर रीता रानी प्रसाद हैं। गीता का कद भले ही 3 फीट है, लेकिन एक टीचर के रूप में उनका बड़ा नाम है। घर में ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत करके अब रीता 2010 से एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। हालांकि यहां तक उनका सफर बेहद कठिन था, क्योंकि अपने छोटे कद के कारण उन्हें समाज के ताने सहने पड़ते थे।
4: हमारा हाइट देख के कि कुछ नहीं कर पाए, ये लोग कहते भी थे कि हम लोग तो कुछ किए भी नहीं है तो ये क्या कर पाएगी। तो उसी चीज का मुझे आन लगता था, आन हमें आज भी लगता है, आन हमें आज भी लगता है। कोई कुछ बोल देता है तो मैं चुप, कुछ बोलती नहीं, पीछे मुड़ के चली जाती हूँ। उसी आन में मैं आज करके दिखा दिए। खुद मोहल्ला का लोग कहता था क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्या पढ़ाएगी, क्या लिखाएगी, क्या टीचर बनेगी, क्या नौकरी करेगी, लेकिन मैं आज सरकारी नौकरी लेके दिखा दिए।
0: दिल में जज्बा और मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कामयाबी कदम चूम ही लेती है, जिसे रीता ने अपने जज्बे और जुनून से कर दिखाया। उन्हें बिहार सरकार से बिहार गौरव और योद्धा का अवार्ड मिल चुका है। आज वो क्लासरूम में बेंच पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड पर सबक लिखकर बच्चों को पढ़ाती हैं।
4: कि बोर्ड हमारा ऊंचा पे है, 3 फीट पे, 4 फीट पे, तो हम उस बोर्ड के नीचे बेंच लगा लेते हैं, बेंच लगा लेते हैं और हम किसी को नहीं देखते, अपने पढ़ाई के धुन में पढ़ाते रहते हैं बच्चे लोग को। अब बच्चे भी हमारे मगन होके पढ़ते हैं।
0: ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की टीचर ट्रेनिंग लेकर रीता ने 15 साल तक एक NGO से जुड़कर दिव्यांग स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। अब न सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं, बल्कि खुद पर भरोसा करने, आत्मविश्वास की सीख भी दे रही हैं। बिहार के गया जी से पंकज कुमार के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। गुरुवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 779 अंकों की बढ़त के साथ 75,398 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 277 अंकों की बढ़त के बाद 23,689 पर बंद हुआ। गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ा उछाल देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 650 रुपए बढ़कर 1,66,000 पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 900 रुपए की गिरावट के साथ 2,96,600 रुपए पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण रुपए की कीमत आज फिर गिरी। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ 95.73 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ। इस साल अब तक एशिया में भारतीय रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है।
5: और अब आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी से जो है एकदम सामान्य, लेकिन काम इतना शानदार कि पेरिस फैशन वीक जैसे इंटरनेशनल इवेंट में उनके काम को काफी सराहना मिली। झारखंड की इस बेटी ने एक फैशन डिजाइनर के तौर पर कोल माइंस की थीम पर ड्रेसेस को पेरिस फैशन वीक में शोकेस किया।
7: कुछ समय पहले हुए पेरिस फैशन वीक की ये तस्वीर बेहद खास है। वो इसलिए कि इस ग्लोबल इवेंट में इस खास थीम ने दुनिया की फैशन इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। पेरिस फैशन वीक में इस खास थीम को इंट्रोड्यूस किया झारखंड के भूली की रहने वाली युवा फैशन डिजाइनर कंचन सिंह ने। इनकी ड्रेसेस की थीम थी काली धरती, जिसके मायने झारखंड की कोयला खदानों से जुड़े लोगों की हालत को बयान करती है। दरअसल कंचन का फैशन को लेकर पैशन का सफर स्कूल टाइम से ही शौकिया शुरू हुआ, जो अब जुनून में बदल गया है।
8: जब मैं क्लास 9th में थी, मेरी मम्मी ने बस एक सिलाई मशीन घर पे ले आई, सिलाई की मशीन, और मैंने बस कुछ सोचा समझा नहीं, और मुझे सीखना था, जानना था कि मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ उठाई, काटना चालू किया और ड्रेसेस बनाना चालू किया। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है और मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे जाके फैशन डिजाइनिंग ही करनी है।
7: कंचन देश भर के 20 डिजाइनर्स में अकेली डिजाइनर रही जिनको झारखंड से अपने परिधानों के साथ पेरिस फैशन वीक में जलवा बिखेरने का अवसर मिला।
8: जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी मास्टर्स के, तो उसमें हमारे कॉलेज में ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी विदेश से, पेरिस से, कि आप अगर चाहें तो पेरिस फैशन वीक में जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने काम किया है या फिर जो भी आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उधर भेज सकते हैं। तो फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, मैं और मेरी बहुत सारे क्लास के दोस्त थे, सबने बनाया, सबने डॉक्यूमेंट भेजा पेरिस, और वहाँ से पेरिस से ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए। उन 20 बच्चों में से एक मैं थी।
7: मुंबई की एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही कंचन समेत कई और स्टूडेंट्स को जब पेरिस फैशन वीक जैसे बड़े मंच पर अपने कौशल और हुनर को दिखाने का ऑफर आया, तो उसमें जाने के लिए वो प्रभावशाली थीम भी मांगी गई जो समाज को शिक्षित कर पाए, उन्हें जागरूक बनाए। गोलमाइन जैसी थीम पर पेरिस फैशन वीक में हौसलों और उम्मीदों से भरी कंचन की बनाई ड्रेसेस की प्रभावशाली छाप उनके माता पिता को गर्व से भर दे रही है।
9: उसका एक रुझान था अंदर से कि हम कोयलांचल का रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड का नाम हमको आगे रोशन बढ़ाना है, करना है, इसलिए अपना रुचि से बनाई होगी।
7: जाहिर है गंभीर और संवेदनशील थीम को ग्लैमर और चमक दमक के साथ शोकेस करना कोई इजी टास्क नहीं था। यही वजह भी रही कि समाज को एक गहरा संदेश देने के लिए कंचन ने इस थीम बेस्ड ड्रेस को बनाने में करीबन 2 महीने का समय लिया।
8: इस डिज़ाइन को तैयार करने में मुझे तकरीबन 2 महीने लगे, और इस डिज़ाइन में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो PUC लेदर वायर स्ट्रिप्स है, और उसके अलावा एल्युमिनियम वायर भी है, और मैंने पूरे जो ड्रेस है वो वीविंग करके एक तकनीक होती है उससे बनाई है, अलग अलग तरीके की वीविंग किया हुआ है उसमें।
7: कंचन को ये पूर्ण विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र का विकास जरूरी है, बशर्ते वहाँ के लोगों को अपने घर आंगन को छोड़ने और दर दर भटकने को मजबूर ना होना पड़े। शायद यही वजह रही कि पेरिस फैशन वीक के लिए उन्होंने अपनी ड्रेसेस की थीम काली धरती रखी। फिलहाल तो अपने हुनर, हौसले और क्रिएटिव आइडिया के बूते कंचन नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इस सपने के साथ कि झारखंड के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की समृद्ध कला और संस्कृति को भी वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भागीदारी दें, इसके लिए वो इन राज्यों के युवा कलाकारों और डिजाइनर्स को साथ लेकर अपने आगे के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं।
8: मैं इस सफलता को अभी कुछ इस प्रकार देखती हूँ कि ये सफलता मेरे लिए एक पहली सीढ़ी है, अभी मैंने शुरुआत ही किया है, अभी आगे जाके मुझे धनबाद झारखंड के नाम को बहुत आगे पहुँचाना है और बहुत सारे और भी काम करने हैं।
7: झारखंड के धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: न्यूज़ वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियो
11: कर्नाटक के एक बच्चे ओम एन ने अपने हुनर से बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया। ओम ने दीवार के सहारे सिर के बल खड़े होकर यानी शीर्षासन मुद्रा में बेहद कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया। सिर्फ 8 साल की उम्र में ओम ने पूरे स्त्रोत्र को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर लिया। सिर के बल खड़े होकर संस्कृत में मंत्रों का इतना तेज और शुद्ध उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए सांसों पर जबरदस्त काबू और शरीर का संतुलन चाहिए होता है। ओम की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ भी यही हुआ, वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से ही देख रहा था, लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। उन्होंने बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शॉक में था और खुश भी था।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हैदराबाद में शुरू हुई एक अनोखी पहल की। दिलचस्प बात यह है कि ये पहल जेल को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए शुरू की गई। हैदराबाद की ऐतिहासिक चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल अब एक अनोखे पर्यटन केंद्र के रूप में चर्चा में आ रही है। इस जेल में फील द जेल नाम की विशेष पहल के तहत पर्यटकों को जेल के अंदर कैदियों जैसी जिंदगी जीने का अनुभव दिया जा रहा है। फील द जेल पहल के तहत पर्यटक जेल की बैरकों में समय बिताएंगे, कैदियों जैसा खाना खाएंगे और जेल की दिनचर्या को करीब से महसूस कर सकेंगे। इस पहल का मकसद लोगों को जेल में जिंदगी की कठिनाइयों और अनुशासन को समझना है, साथ ही पर्यटन को नया आयाम देना भी है। तेलंगाना पर्यटन और जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है और इसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जेल प्रशासन ने पर्यटकों के लिए 2 तरह के फील द जेल पैकेज बनाए हैं। जो लोग कम समय के लिए जेल का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए 12 घंटे का पैकेज ₹1,000 में तय किया गया है। वहीं जो लोग जेल की पूरी रात और सुबह की दिनचर्या को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए 24 घंटे का पैकेज ₹2,000 में रखा गया है। चंचलगुड़ा जेल में केवल वर्तमान का अनुभव ही नहीं, बल्कि अतीत की झलक भी मौजूद है। यहाँ भारत का 5वां जेल संग्रहालय बनाया गया है। जेल की इस पहल और संग्रहालय से होने वाली पूरी आय का इस्तेमाल लोक कल्याणकारी कार्यों में किया जाएगा। आमतौर पर जेल को समाज से अलग और रहस्यमयी जगह मानी जाती है, ऐसे में चंचलगुड़ा जेल प्रशासन ने इस धारणा को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया। जाहिर है ये पहल जेल में सजा काटने के बजाय अनुभव और शिक्षा पर आधारित है, जो भारत में अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग है। हैदराबाद में हमारे सहयोगी अब्दुल बशीर ने जेल के इस पहल का जायजा लिया।
12: लोहे की सलाखें, जेल के कमरे, ये अभी तेलंगाना के एक नए फील द जेल कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, जो चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल तेलंगाना प्रिजन डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। यह कॉन्सेप्ट पहली बार आम लोगों के लिए एक ऐसे माहौल में ले जाया जा रहा है जहां पर ये लोग महसूस कर सकते हैं कि जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। अभी हम एक बैरक के आगे मौजूद है जहां पर इस बैरक के अंदर चार लोग जो आम जनता यहां पर जेल का अनुभव करना चाहती है उनको यहां पर रखा जाएगा, जिसके अंदर ये बेड है, एक टॉयलेट है जो इसी बैरक के अंदर मौजूद है, उनकी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे बेडशीट, प्लेट, ग्लास जो आम कैदियों को दिया जाता है उसी तरीके से यहां आम जनता को इस अनुभव के तौर पर यहां पर दिखा दिया जाएगा। ये एक प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है फील्ड जेल कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पर लोगों को इसका अनुभव हो सकता है। सिर्फ 12 घंटे के लिए 1000 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे और 24 घंटे के लिए 2000 रुपये यहाँ पर चार्ज करते हुए तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट आम लोगों को उनका प्रिजन का एक ड्रेस, बेडशीट, उनकी सारी वस्तुएं, एक बकेट जो आम कैदियों को दी जाती है, उन कैदियों की तरह यहाँ पर सिमिलर एक जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर आम लोगों को दिए जाने के कॉन्सेप्ट में तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये जेलर का रूम है जहाँ पर जेलर यहाँ पर बैठता है और उसके ठीक बगल में हाई सिक्योरिटी बैरक भी यहाँ पर बनाया गया है। वजह इसकी एक ही है कि अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य जेल जीवन को ग्लैमरस करना नहीं बल्कि अपराध सजा अनुशासन और सुधार की प्रक्रिया को प्रति जागरूकता बढ़ाने का यह उद्देश्य माना जा रहा है।
13: जो जेल बोल के जो खुले, मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि ये गलत है। गलत इसलिए है कि अगर कोई गया जाके उसको देखा, देखने के बाद उन्हें ये समझता, अरे जेल बोले तो इतना ही ठीक है बोलता, उन्हें बाहर आता आए बाद में क्या करता, उन्हें रेप करता, मर्डर करता, चोरी करता, गांजा चुप वो तो उसको जेल बोले तो उसको एक डर न रहता, उसको उन्हें जो चाहे करना, चलो भाई जेल बोले तो इतना, जेल बोले तो इंसान डरना उसको जेल बोलते। अभी ऐसा गवर्नमेंट ये स्कीम लगा के जो जेल बोल के जो लगाई वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है।
14: मेरे हिसाब से तो जो ये जेल का लगा है 1000 रुपीज डाल के जो है ना जाके वहाँ पर सर्वाइव करो बोल के, मेरे हिसाब से तो गलत है ये। क्योंकि गलत इस वास्ते, गलत भी है अच्छा भी है। गलत इस वास्ते जितना भी जो क्राइम चल रहा है अभी, क्राइम के हिसाब से अंदर जाके जो है ना 1000 रुपये डाल के अंदर टिकट ले लेके जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लेके बस इतना ही चाहिए क्या बोल के बता देते। और गलत इस वास्ते, गलत जो अच्छा इसलिए बता रहा हूँ कि जो है ना जो अभी तक जेल का मुआयना जो नहीं करे उन लोगों के लिए जो है ना जाके देखने के बाद में जो है ना पता चलेगा कि जो है ना अंदर के जेल की ज़िंदगी क्या है। लेकिन क्राइम के हिसाब से तो मेरे लिए मेरे हिसाब से तो जो ना जो क्रिमिनल्स है वो लोग के लिए तो जो ना और भी छूट है। जैसा कि जो ना एक दो केसेस हो गए, केसेस होने के बाद में जाके अंदर विजिट कर लिए, विजिट करके देख लिए बस इतना ही छे, तो मेरे हिसाब से तो गलत है।
15: जेल में आम इंसान जाके क्या है, जेल का एक्सपीरियंस पा लेके फिर आगे क्राइम करना, क्या इंसान आगे जेल में कुछ करना है जाके, ये लगाना बेकार है ना। जेल में जाके इंसान जाके देखना, देख के हाँ यही जेल में क्या है, इतना ही छे, मैं कुछ भी क्राइम करूँगा यहाँ के मस्त मज़े में रहूँगा, क्या फ़ायदे का है वो, गलत है ना साहब, निकाल गई है, वेस्ट है ये, आई अच्छे इंसान को बुरा करने का तरीका ही है।
16: जेल एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो जेल एक्सपीरियंस एक आम आदमी अंदर जाके फिर वहाँ का एक्सपीरियंस लेना, तो मेरे हिसाब से तो अंदर वाले जो प्रेजेंट प्रिजनर्स है उन लोगों का एक्सपीरियंस अगर रिवील करे बाहर तो बेहतर रहेगा। आने लोगों को जो है क्राइम रेट कम होने के चांसेस रहते। अब पब्लिक, आम पब्लिक अंदर जाके वहाँ एक दिन स्टे करके फिर उसका अपन फीडबैक बाहर देना होता, खास नहीं रह के अंदर के प्रिजनर से अपन अगर वही उन लोगों के ऊपर क्या उन लोगों का कैसा सफ़र हो रहे अंदर, उन लोगों को जेल लाइफ कैसी है वो लोगों को अच्छा बेटर मालूम है। और रहिए एक दिन में कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे हिसाब से तो अंदर जाके क्या रहता अंदर का थोड़ा बहुत ये वो काम कराते होंगे, बहरहाल सुना था मैं ऐसा। लेकिन जो कैदियाँ अंदर जो कई सालों से है, कई दिनों से है, उन लोगों को अगर अपन डायरेक्टली अगर वो मीडिया हो या गवर्नमेंट उन लोगों का अगर अंदर जाके रिवील करे उन लोगों की लाइफ कैसा चल रही है अंदर, उन लोगों को पछतावा हो रहा या नहीं, उन लोगों से अगर बात, उन लोगों का ओपिनियन अगर बाहर बात रखे तो पब्लिक में ये क्राइम रेट कम होने के चांसेस रहेंगे।
5: सोना बहुत महंगा हो गया है और देश हित में इसकी अभी खरीदारी नहीं करने की सरकार ने अपील भी की है। लिहाजा उस पर अमल करके भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और अगर आप गोल्ड की जगह दूसरे गहनों के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ठेवा आपकी ज्वेलरी बेहद बेहतर विकल्प हो सकती है जो रॉयल लुक देती है। ठेवा गहनों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
17: कहीं शादी हो, कोई पर्व त्योहार हो या किसी तरह की पार्टी हो, महिलाएं उसमें सजी सवरी नजर आती हैं। उनके श्रृंगार में गहनों की अहम भूमिका होती है जो कि उन्हें आत्मविश्वास और सुंदरता का एहसास कराते हैं। खासकर शादियों में भारतीय दुल्हन के परिधान और गहनों पर हर किसी का ध्यान रहता है, क्योंकि परिधान जहां दुल्हन की खूबसूरती को निखारते हैं, वहीं गहने पूरे रूप में चार चांद लगाते हैं। भारत में सदियों से सोने चांदी को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता रहा है। शादी ब्याह में गहने देना सिर्फ रस्म नहीं बल्कि बेटी के भविष्य की सुरक्षा और सम्मान से भी जोड़ा जाता है। लेकिन सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों ने इस समय लोगों की नींद उड़ा रखी है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश हित में लोगों से अभी सोने की खरीद से बचने की अपील की है और सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी होने से ये और ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में अब गहनों को लेकर लोग ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो दिखने में रॉयल हो लेकिन बजट पर भारी भी ना पड़े। और इसको लेकर राजस्थान की पुरानी ठेवा कला एक बार फिर सुर्खियों में है।
18: ठेवा आर्ट ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिज़ाइंस में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कम्प्लीट हो पाए। हम इस ठेवा आर्ट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
17: अब जरा ये भी जान लीजिए कि ठेवा आर्ट के तहत कैसे गहने बनाए जाते हैं।
19: ठेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पर टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
17: राजस्थान के प्रतापगढ़ की मशहूर ठेवा आर्ट अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री ने भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। पहले इस कला में ज्यादातर स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें आधुनिक और डिजाइनर पैटर्न का बड़ा बदलाव आया है। आज ठेवा ज्वेलरी में अलग अलग शेप्स, कट्स और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सेंटर होल वाले नेक पीस, डिजाइनर लेयर्स, स्टोन स्टडिंग और फ्यूजन आर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेवा कला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सोने की मात्रा बेहद कम होती है। रंगीन कांच पर 23 कैरेट सोने की पतली शीट से हाथों से महीन जालीदार डिजाइन तैयार किए जाते हैं और बेस में चांदी का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसका लुक पूरी तरह रॉयल और गोल्डन होने के बावजूद इसकी कीमत भारी गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में काफी कम होती है।
18: कला को 400 साल पुराना बताया जाता है, तो कहां से ये शुरू हुई थी, क्या है इसके पीछे की कहानी?
19: ये शुरू हुई थी राजा सावन सिंह जी थे 18th और 19th सेंचुरी के अंदर, तो उसके टाइम में उनके कोर्ट के अंदर जो सुनार थे नाथूलाल जी सोनी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गोल्ड और ग्लास के साथ में कार्विंग करके कि इसको कैसे फ्यूज़ किया जा सकता है। तो वो करते करते उनको कोई टेक्निक समझ आ गई कि ये कैसे फ्यूज़ होता है गोल्ड एंड ग्लास, तो तभी से फिर उसका उसकी जो बैक साइड फ्रेमिंग है वो चाहे आप गोल्ड में कीजिए चाहे सिल्वर में कीजिए, बट अभी आपको पता है गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा होने से तब से काफ़ी टाइम से पीछे फ्रेमिंग सिल्वर में ही होती है, आगे ग्लास पे गोल्ड रहता है।
18: कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
19: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट ईयरिंग्स के साथ में वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2,00,000 रुपए तक जाएगा।
18: मतलब कितना? ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
22: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
23: The Tailgate Top 20.
24: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
22: Try to keep up.
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
25: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
29: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
29: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
29: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
26: टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, श्रीलंका दौरे के लिए घोषित इंडिया ए की टीम में मिली जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
1: पंद्रह साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हुई टीम इंडिया में एंट्री। जून में श्रीलंका से होने वाली ट्राई नेशन वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई की घोषित की गई इंडिया ए टीम में वैभव को भी मौका मिला है। सिलेक्शन कमेटी ने युवा खिलाड़ियों से भरी 15 सदस्यीय टीम चुनी है। इस टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जबकि रियान पराग को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। 9 जून से 21 जून तक चलने वाली इस ट्राई सीरीज में इंडिया ए के अलावा श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के नहीं होने की वजह से जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। आईपीएल के इस सीजन में अब 8 टीमें ही टॉप 4 की रेस में बनी हुई हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। बुधवार को केकेआर को हराकर आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई और प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, जबकि केकेआर की राह मुश्किल हो गई। बुधवार के मैच में विराट कोहली के नाबाद 105 रन की बदौलत आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शतक के साथ ही कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए।
26: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
2: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
21: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
29: देश देख रहा है अच्छी खबर।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
2: You're listening to CNBC.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
4: Keep it on smooth jazz.
5: This is Roots Reggae.
6: Exclusively on TuneIn.
7: This is classic hip-hop.
8: Exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
15: गुड न्यूज टुडे
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम

0: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज आपको हम मिलवाएंगे देश के उन होनहारों से जो कि देश की नई उम्मीद बन चुके हैं। सीबीएसई 12वीं के ये टॉपर्स सिर्फ ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र नहीं है, ये मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की वो मिसाल है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। नतीजों की खास बात यह है कि लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पछाड़ दिया। 88% से ज्यादा लड़कियों ने परीक्षा पास की है, वहीं 82% से ज्यादा लड़के पास हुए हैं, यानी कि 12वीं की परीक्षा में लड़कों के मुकाबले करीब 6% ज्यादा लड़कियों ने परीक्षा पास की। सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद अब इन छात्रों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। रिजल्ट की खुशी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी अब आगे के सफर की है। अब ये छात्र अपने सपनों को नए पंख दे रहे हैं। छात्रों को पता है कि 12वीं का रिजल्ट मंजिल नहीं बल्कि उस सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है जहां से सपनों की नई उड़ान शुरू होती है।
5: पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और इन बेटे बेटियों ने वो काम कर दिया है, अपने माता पिता के सपनों को नई ऊंचाई दे दी है, अपने अरमानों के साथ माँ बाप की आंखों में तैरने वाले सपनों को भी पंख लगा दिए। चमकते चेहरों को गौर से देखिए, ये 12वीं सीबीएसई बोर्ड के सिर्फ टॉपर्स ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की नई उम्मीद है। ये वो नन्हे सितारे हैं जो आने वाले कल का आसमान रोशन करेंगे। किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है, कोई इंजीनियर बनकर देश की तरक्की की नई इबारत लिखना चाहता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनकर व्यवस्था बदलने का जज्बा रखता है, तो कोई वर्दी पहनकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर जाने का ख्वाब देख रहा है। इनमें से कोई विज्ञान की नई खोज करेगा, कोई अंतरिक्ष की अनजान दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई अगले मून मिशन टीम का हिस्सा बनकर इसरो के लिए काम करे, तो कोई चांद पर जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों में इन बच्चों ने जो इतिहास रचा है, उसने सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरे इलाके, पूरे समाज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इनमें से कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कठिन हालात से जूझते हुए पढ़ाई में शानदार रिजल्ट लाकर लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। रांची की छात्रा भव्य रंजन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.8% अंक हासिल किए हैं। भव्या ने इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे शहर में खुशी का माहौल है।
6: इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, उसके बाद सारे टीचर्स, स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को भी। सबने काफी मोटिवेट किया है, काफी सपोर्ट किया है। इस जर्नी में सब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे। मैं पढ़ाई को कभी घंटे से नहीं गिनी, मेरे लिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ऐसे तो 4 से 5 घंटे तो रेगुलर होना ही चाहिए, बट प्रोडक्टिव ज्यादा होना चाहिए। मेरा 99.8% आया है, इंग्लिश में 100, हिस्ट्री में 100, पॉलिटिकल साइंस में 100, पेंटिंग में 100 एंड इकोनॉमिक्स में 99।
5: सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह के अवि गोयल कॉमर्स में 99.4% अंक हासिल कर झारखंड स्टेट के टॉपर बने हैं। अवि गोयल के शानदार प्रदर्शन से उनके परिजनों समेत पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
7: आज बड़े गर्व का दिन है सीसीएल डीएवी के लिए, पूरे डीएवी गिरिडीह के लिए, कि गिरिडीह का बच्चा शायद हमारा स्टेट में टॉप कर रहा है।
5: नोएडा रीजन की बात करें तो इस बार कुल परीक्षा परिणाम 79.43% दर्ज किया गया। सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी लड़कों से बेहतर रहा।
8: रिजल्ट सिर्फ बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुश होने का मौका नहीं देते, बल्कि ये मौका खुशी का होता है टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए भी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ कितनी मेहनत पूरे साल की होती है। फिलहाल पहले हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
9: अनुष्का श्रीवास्तव।
8: कितने मार्क्स है आपके, कौन से स्ट्रीम थी?
9: पीसीबी ली थी, 97.2 आया।
8: कितना रोल आपकी इस जर्नी में, आपके इन मार्क्स में टीचर्स का रहा?
9: टीचर्स का काफ़ी बिग रोल था, बिकॉज काफ़ी टाइम पढ़ते पढ़ते आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो। सो उस समय अगर आपके पास प्रॉपर सोशल सपोर्ट हो, प्रॉपर टीचर्स जो आपको गाइड कर सके, सो उस समय बहुत हेल्पफुल होता है।
8: कितने मार्क्स आए?
9: 98.8% आए, साइंस स्ट्रीम था।
8: इतने मार्क्स बताना एक बार सब्जेक्ट वाइज।
9: फिजिक्स में 88 थे, 98 इन केमिस्ट्री, 98 इन इंग्लिश, 99 इन साइकोलॉजी एंड स्कल्पचर में 100।
8: इस मार्क्स में, इस जर्नी में कैसा रोल रहा टीचर्स का? क्या कभी टीचर्स से परेशान हुए, कितना पूछते हो तुम, कितना पूछते हो, कितने डाउट्स थे तुम्हारे?
9: टीचर्स का तो काफ़ी ज़्यादा ही रोल रहता है। हम घर पे बैठ बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो फिर दे हेल्प अस विद द रिसोर्सेज, फिर कैसे गाइड करते, कैसे पढ़ना है, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं।
5: नोएडा रीजन में लड़कियों का रिजल्ट 85.93% दर्ज किया गया, जबकि लड़कों का रिजल्ट 73.91% रहा। नोएडा में 57 परीक्षा केंद्रों पर करीब 19,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। छात्रों की सफलता में पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी काफी योगदान रहा।
10: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मेहनत करी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी, उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और टीचर्स तो मेरी इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, दुनिया की, तो इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये उसका ही रिजल्ट है।
8: हर एक बच्चे के साथ इतना डीपली आप लोग जाते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? और फिर जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ भी जाता है तो लगता है कि सिर्फ बच्चा नहीं, हम भी जीत रहे हैं आज।
10: बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हमारे एमिटी का यही कल्चर है कि बच्चा हैप्पी चाइल्ड होना चाहिए, वही हैप्पी सोसाइटी बनाता है, वही हैप्पी नेशन बनाता है। तो वो हैप्पीनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा क्राइटेरिया है, और उसके अराउंड, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, उसके अराउंड हम लोग काम करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का ये पल है।
5: यूपी के बाराबंकी के छात्र छात्राओं ने भी कमाल किया है। परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराने वाले छात्रों का माला पहनाकर सम्मान किया गया और उन्हें मिठाई भी खिलाई गई। अहमदाबाद में छात्र, अभिभावक और टीचर्स शानदार रिजल्ट से खुश दिखे। स्कूलों में मिठाई बांटकर सफलता का जश्न मनाया गया। अहमदाबाद रीजन का कुल पास प्रतिशत 90.60 रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.20% से बेहतर है। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है।
9: मेरा नाम दीपश्री पुष्किन शुक्ला है। 12th कॉमर्स CBSE में मेरे 94% आए हैं। मेरे अकाउंट्स इको और BST मेन सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंट्स में मेरे 100/100 आए हैं, BST में 94 और इकोनॉमिक्स में 93। श्रेय पेरेंट्स को, टीचर्स को ऑफकोर्स और खुद को भी दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी।
11: मैं 12th CBSE कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ और मैंने 92.4% स्कोर किया है।
12: कितनी मेहनत करनी पड़ी, दिन में कितने घंटों की पढ़ाई आप करते थे, अब आगे क्या सोच रहे हैं?
11: मेहनत तो बहुत लगी, बहुत दिन रात एक कर दिया है। अभी आगे मैं अब्रॉड जाने का सोच रहा हूँ। मेरे को टेनिस खेलना है, मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ, तो मेरे को टेनिस खेलने का बहुत शौक है, तो मैं उसमें अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हूँ।
5: बिहार में मुजफ्फरपुर के छात्र आयुष्मान चौधरी ने शानदार सफलता हासिल कर परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। कॉमर्स में 97.2% अंक हासिल कर आयुष्मान अपने स्कूल के टॉपर बने हैं।
13: मेरा आगे बनने का सपना है CA, जो कि हर एक कॉमर्स लेने वाले बच्चे का रहता ही है। पहले तो ग्रेजुएट होना है सही जगह से एंड उसके बाद CA करना है।
5: CBSE 12वीं में इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20 है। रिजल्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन शानदार है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के मुताबिक त्रिवेंद्रम क्षेत्र 95.62% पास परिणाम के साथ देश में पहले स्थान पर है। चेन्नई दूसरे, बेंगलुरु तीसरे और विजयवाड़ा चौथे स्थान पर। दिल्ली वेस्ट 92.34% के साथ पांचवे और दिल्ली ईस्ट 91.73% के साथ छठे स्थान पर रहा। 12वीं के नतीजों के बाद अब छात्रों के लिए जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इनके चेहरे पर रिजल्ट की खुशी जरूर है, लेकिन आंखों में उससे भी बड़े लक्ष्य चमक रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि 12वीं का रिजल्ट मंजिल नहीं बल्कि उस सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है, जहां से सपनों की नई उड़ान शुरू होती है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पंजाब से सामने आई दो प्रेरणादायक कहानियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। जालंधर की नरेंद्र कौर ने उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए 10वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ये साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वहीं मानसा की सुपनीत कौर ने 12वीं में पूरे 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। एक तरफ अधूरे सपनों को पूरा करने का जज्बा, तो दूसरी तरफ ऊंची उड़ान भरने का सपना। दोनों बेटियां आज पूरे पंजाब का गौरव बन गई हैं।

0: पंजाब की धरती से आज ऐसी दो प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और हौसले के सामने उम्र, हालात और सीमाएं कभी दीवार नहीं बन सके एक तरफ दो पोतों की दादी ने दसवीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास कर समाज को नई सोच दी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी ने बारहवीं में पूरे 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। दोनों कहानियां अलग जरूर हैं, लेकिन इनके भीतर छिपा संघर्ष, समर्पण और सपनों की उड़ान हर किसी को प्रेरित करने वाली है। जालंधर जिले के गांव सरहाली की रहने वाली नरेंद्र कौर ने उस सोच को बदल कर रख दिया, जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई की एक तय उम्र होती है। शहीद भाई तारा सिंह खालसा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा नरेंद्र कौर ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं परीक्षा में 650 में से 500 अंक लाकर कामयाबी की मिसाल पेश की। नरेंद्र कौर के लिए ये सफलता अधूरे सपनों की एक नई शुरुआत है। नरेंद्र कौर का पूरा जीवन परिवार, बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों में ही बीता है। जिस दौर में उनका विवाह हुआ, उस समय गांव में बेटियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। परिस्थितियों ने उन्हें किताबों से दूर जरूर रख दिया, लेकिन सीखने की चाह कभी खत्म नहीं हुई। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारियां कम हुई, तब दिल में दबा सपना फिर से जाग उठा। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया।
1: कुछ हालात करके मतलब आगे नहीं पढ़ सकी, पर मन इच्छा सी हमेशा रही बहुत कि मैं पढ़ना। ते 88 च मेरी शादी हो गई। फिर मैं शादी तो बाद अपने पति नु कहा कि मैं पढ़ना चाहनी हूँ। खैर फिर बच्चा गृहस्थ विच पै गए, ते ये कहिंदे कोई गल नहीं तू कर ली, जो भी तेनू समा मिलिया कर ली। चलदे चलदे 45 साल गुजर गए, ते 81 च पढ़ाई छड़ी सी और अज 2026 45 साल हो गए।
0: परिवार ने भी नरेंद्र कौर को पूरा सपोर्ट किया। उनके दो बेटे विदेश में रहते हैं, एक अमेरिका में है और दूसरा कनाडा में अपने परिवार के साथ बस चुका है। इसके बावजूद नरेंद्र कौर ने अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। उन्होंने नियमित पढ़ाई की, मेहनत की और आखिरकार ऐसा परिणाम हासिल किया जिसने पूरे इलाके को गर्व से भर दिया।
1: कहूंगी कि जेड़ियां भैणां पढ़ना चाहुंदियां आ जां भरा कोई भी पढ़ना चाहुंदा आ, ते देखो उम्र नूं विच बाधा नहीं बननी चाहीदी। अगर तुहाडा मन च इच्छा है ना, ते मतलब कि सीखण दी कोई उम्र नहीं हुंदी, है ना। ते मैं ते कहूंगी कि घबराओ ना, मतलब कि इदां कोई भी काम शुरू करन तों पहलों लगदा शायद बहुत मुश्किल आ, पर मैं कहूंगी कि एड्डी कोई ऐसा कोई काम ही नहीं जो जेड़ा हो ही नहीं सकदा, नामुमकिन कुछ भी नहीं अगर मेहनत।
0: वहीं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में मानसा जिले की बेटी सुपनीत कौर ने ऐसा कारनामा किया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। मानसा में उभा के गुरुकुल स्कूल की छात्रा सुपनीत कौर ने 500 में से 500 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया। पूरे 100% अंक लाकर सुपनीत ने शिक्षा जगत में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
2: पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड 12वीं दे अज नतीजों का ऐलान होया गा, जिस दे विच धीआं ने बाजी मारी आ। मानसा की रहने वाली धी सुपनीत कौर दे वल्लों अपने माँ बाप का सुपना पूरा किया गया गा, 500 दे विचों 500 अंक लैके पंजाब दे विचों पहला स्थान हासिल किया।
0: सुपनीत केवल पढ़ाई में ही अव्वल नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में भी उनकी पहचान एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में होती है। पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि अनुशासन और मेहनत के दम पर हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। शिक्षकों के मुताबिक सुपनीत हमेशा एकाग्रता, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रही।
3: मैं सवेरे पहला डेली रेगुलर स्कूल आना, इस तो बाद शाम नू ट्यूशन हुंदियां सी मेरियां, ते इस तो बाद करे जाके सेल्फ स्टडी करना, रात नू 12 तां बाजी जांदे सी। डेली कंसिस्टेंसी नाल पढ़ना, फिर सुबह जल्दी उठ के मैं गेम कर दियां फेंसिंग, ते प्रैक्टिस जाना सवेरे 4 to 6 मेरी प्रैक्टिस हुंदी सी, मेरा नैशनल मैडल है गेम च वी, फिर डेली बस स्कूल जाना। एवें डेली पढ़ना कदे भी नहीं सी आया दिन जिदे मैं नई बुक्स चक्की हुण, चाहे मैनू किन्ना भी होर जरूरी काम होवे, बट पढ़ाई नू मैं टाइम दिंदी हुई सी डेली।
0: अपनी उपलब्धि से बेहद खुश सुपनीत कौर ने भविष्य को लेकर एक बड़ा सपना भी शेयर किया। उनका लक्ष्य पायलट बनना है, वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँच कर देश की सेवा करना चाहती है। उनकी सफलता पर माता पिता भावुक दिखाई दिए, परिवार को विश्वास है कि उनकी बेटी आने वाले समय में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। इन दोनों कहानियों ने पंजाब को गर्व करने का मौका दिया है। एक तरफ जिंदगी के लंबे सफर के बाद किताबों की ओर लौटती दादी और दूसरी तरफ ऊंचे सपनों के साथ उड़ान भरने को तैयार एक बेटी। दोनों ने अपने साहस से ये साबित कर दिया कि सफलता केवल उम्र, साधन और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, बल्कि मजबूत इरादों और लगातार प्रयासों से हासिल होती है। मानसा से अमरजीत सिंह, जलंधर से दविंदर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबरों से नहीं मापती। जेन जी का फोकस अब ऑलराउंड एक्सलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है और नेतृत्व की क्षमता भी। सीबीएसई 12वीं के इस बार के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर पेश की है।
5: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया, 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
6: आई थिंक कि दिस इज समथिंग जो लाइक वसंत वैली स्कूल लाइक इनकल्केट करता है कि हम लोग लाइक हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लाइक स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए, उसको बेटर करने के लिए।
5: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेलकूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
7: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है, 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज़ में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो, स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका पवार जो हमारी इस बार टॉपर है, स्कूल टॉपर है, शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
5: सीबीएसई 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं दिए बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा, इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
8: तो ये जो टॉपर्स हैं वसंत वैली के, ये हमें बता रहे हैं कि जेंजी, जिसकी बहुत चर्चा है, ये प्रतिभा से भरे हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं।
5: वसंत वैली स्कूल के नतीजे सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलती सोच का उदाहरण है जहां नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेल, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
9: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें कौन होने वाला है मालामाल सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में

0: The all-new Tropical Butterfly Refresher is now at Starbucks. Dive into juicy guava and passion fruit flavors with mango pineapple popping pearls bursting in every sip. Ice cold, instantly refreshing, and impossible to put down. Made for summer, only at Starbucks.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove Station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उप कप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: कल 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 6 दिनों में करेंगे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा। कई मायनों में प्रधानमंत्री का दौरा माना जा रहा अहम, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर हो सकते हैं बड़े समझौते। यूएई होगा प्रधानमंत्री के दौरे का पहला पड़ाव, दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा नीदरलैंड, रक्षा और सेमीकंडक्टर पर होगी चर्चा। 18 से 19 मई तक नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, 19 से 20 मई तक इटली की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर की मार्केट में मिल रहा बजट फ्रेंडली रॉयल लुक, तेजी से बढ़ रही गोल्ड फिनिश ज्वेलरी की डिमांड। राजपूती हार, कुंदन, पोलकी और जड़ाव सेट जैसे गहनों की खास मांग, ज्वेलरी की चमक बिल्कुल गोल्ड जैसे। कॉपर और ब्रास पर गोल्ड प्लेटिंग से तैयार होती है यह ज्वेलरी, अब लाखों रुपए नहीं बल्कि बजट फ्रेंडली होगा राजस्थानी ब्राइडल लुक। जयपुर की ज्वेलरी मार्केट में चल रहा है अनोखा ऑफर। ग्राहक ज्वेलरी इस्तेमाल करने के बाद वापस लौट आते हैं तो वापस मिलेगी करीब 40% रकम। सोने की महंगाई ने बदला लोगों का फैशन ट्रेंड। अब धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी बढ़ी आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी की मांग। दिल्ली के चांदनी चौक में बदला ज्वेलरी ट्रेंड। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन रही लोगों की पसंद। चांदनी चौक मार्केट में हर फंक्शन और आउटफिट के हिसाब से मिल रही है अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी। कम कीमत में लोगों को मिल रहा रॉयल लुक। दुकानों में हेवी ब्राइडल सेट, कुंदन टेम्पल ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज डिजाइन और फ्यूजन कलेक्शन की भरमार। लड़की और महिलाओं में खासा क्रेज। बढ़ते सोने की कीमतों के बीच ग्राहक भी ढूंढ रहे हैं ऐसे विकल्प। चांदनी चौक में बढ़ा बंधेल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार। महिलाओं की पहली पसंद बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। स्टाइलिश लुक और बजट फ्रेंडली कीमत के चलते बड़ा क्रेज। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार के बड़े फैसले। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार की प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल डीजल में 20% की कटौती। राजधानी दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की अपील। अदालतों से भी ऑनलाइन मामलों की सुनवाई करने की अपील। प्रयागराज की संस्कृति सिंह ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में मारी बाजी। 99% अंक लाकर किया टॉप। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे। अद्रुतो पॉल बने स्टेट टॉपर। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टॉपर से बातचीत कर दी शुभकामनाएं। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का शानदार प्रदर्शन। ऋतिका पवार ने हासिल किए 99.5% अंक। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया दे रहे ईंधन बचाने का संदेश। इलेक्ट्रिक स्कूटी से कर रहे सफर। जूनागढ़ में लोको पायलट की सूझबूझ से 6 शेरों को मिला जीवन दान। रेलवे ट्रैक पर शेर देखते ही सही समय पर लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली में होगी बिग कैट संरक्षण की सबसे बड़ी ग्लोबल समिट 1 जून को। समिट में शामिल होंगे दुनिया भर के वैज्ञानिक। गिर के शेर बने दुनिया के लिए मिसाल। 2025 लायन सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक गिर और सौराष्ट्र के 5 जिलों में अब 821 एशियाटिक शेर मौजूद। हेमा मालिनी ने मथुरा में 516 स्ट्रीट लाइट और मेरो मथुरा ऐप का किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेगी कई सुविधाएं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में रोशनी व्यवस्था की गई मजबूत। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक ऑटो योजना पर भी चर्चा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने वीआईपी काफिले की जगह रोडवेज बस से किया सफर। लोगों से संवाद कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। ग्रेटर नोएडा के 4 साल के रुद्र राणा ने बढ़ाया देश का मान। रंग और आकार से ग्रहों की पहचान करता है रुद्र। छोटी उम्र में ग्रहों के नाम और विशेषताएं याद। यूट्यूब किड्स से शुरू हुई अंतरिक्ष में रुचि। सोलर सिस्टम की अद्भुत जानकारी। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मिली पहचान। जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी सौगात। शोपिया में अत्याधुनिक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। नरहमा में बने आधुनिक इंडोर स्टेडियम से दक्षिण कश्मीर के खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। एलजे मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में खेल क्रांति की शुरुआत। युवाओं की प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान। उद्घाटन समारोह में वॉर म्यूजियम भी पहुंचे एलजे मनोज सिन्हा। मां भारती के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। शोपिया में पहाड़ी कल्चर सेंटर में लोग कर रहे पहाड़ी जनजाति की समृद्ध विरासत का दीदार। कला और संस्कृति का दिखा संगम। अब सीआईएसएफ के हवाले। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा शुरुआती चरण में 145 जवानों की तैनाती। इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब होने से पुख्ता होगी दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा। क्यूआरटी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। अपने काफिले में 60% की कटौती की। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद अब दिल्ली के सीएम का सिर्फ 4 गाड़ियों का होगा काफिला, जिसमें से 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल। सोनीपत में जिला प्रशासन की मॉक ड्रिल। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दिखा अनोखा असर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बैलगाड़ी से निकली बारात। बिहार के बगहा में पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल। आठवीं की छात्रा अमृता को बनाया कुछ समय के लिए एसपी। महाराष्ट्र के अमरावती में 46 डिग्री की गर्मी में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत। करीब 500 जवानों को मिले एयर कूल जैकेट। अमरावती में लू और तेज धूप से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही एयर कूल जैकेट का इस्तेमाल। गर्मी में पंखों वाली जैकेट बनी पुलिस की ढाल। जैकेट में रिफ्लेक्टर और पीछे लगे हैं दो छोटे पंखे। 10,000 mAh पावर बैंक से चलने वाले ये पंखे जैकेट के अंदर करते हैं हवा सर्कुलेट। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कर रहे जबरदस्त प्रदर्शन। अब तक 11 मैचों में बनाए 440 रन। जून में श्रीलंका में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान। तिलक वर्मा के हाथों में टीम की कमान। रियान पराग होंगे उपकप्तान। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मिली जगह। 9 जून से शुरू होगी ट्राई सीरीज। वैभव समेत तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए दौरा बेहद अहम। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 25 दिन में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। बुधवार को 80,400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 32,400 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,250 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 3,24,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे भक्त। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चितरई कार उत्सव में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भगवान नाम पेरुमल को रथ पर विराजमान कर निकाली गई रथ यात्रा। भक्तों ने लगाए गोविंदा गोविंदा के नारे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में पुरुषों ने खींचा रथ। सत्रह मई तक चलेगा चितराई कार उत्सव। कई राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रा में सादे लिबास में तैनात किए गए जवान। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। भांग ड्राई फ्रूट और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया श्रृंगार। राजस्व रूप में भक्तों को दिए दर्शन। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक। दूध दही घी शक्कर शहद और फलों से रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। कान के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का रॉयल लुक। ऑफ शोल्डर गाउन में बिखरा ग्लैमर। मशहूर डिजाइनर सभ्यसाची के मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंटेड गाउन में आई नजर। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस तारा सुतारिया का डेब्यू। ब्लैक ऑफ शोल्डर कॉसेट टॉप और गॉगल्स से लगाया बोल्डनेस का तड़का। हाथ में गीता गले में तुलसी माला। कान में ग्रामी नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेतरपाल का सनातनी लुक। ग्लैमर से ज्यादा भारतीय संस्कृति और सनातन की दिखी झलक। फिल्म बंदर का पहला गाना क्यों मजा आ रहा है रिलीज। बॉबी के इंटेंस और इमोशनल अंदाज ने जीता दिल। फिल्म 5 जून को होगी रिलीज।
8: से तरीके क्यों
7: दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी हॉलीवुड मूवी अवतार फायर एंड एश। 24 जून को जियो हॉटस्टार पर अंग्रेजी हिंदी तेलुगु तमिल में होगी स्ट्रीम। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहे धुरंधर 2 की रफ्तार, 56 दिन बाद भी बटोर रही नोट, 1800 करोड़ के क्लब में एंट्री से महज 4 करोड़ दूर। धुरंधर 2 की दुनिया भर में कमाई 1796 करोड़, 1800 करोड़ पार होती है। दंगल के बाद इस क्लब में शामिल होने वाली बन जाएगी दूसरी फिल्म। धुरंधर 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी स्ट्रीम, भारतीय दर्शकों को ओटीटी पर देखने के लिए करना होगा इंतजार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बम्पर कमाई, 13 दिन में 89 करोड़ का कारोबार, जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर रचेगी इतिहास। राजा शिवाजी से टूटेगी 10 साल पुरानी सबसे कमाऊ मराठी फिल्म सैराट का रिकॉर्ड, सैराट ने 110 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस पर भूत बंगला की दमदार पकड़ बरकरार, 27वें दिन में कमाई 267 करोड़ के पार, तारे जमीन पर के लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ा। थिएटर्स में धमाल मचा रही माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट, 7 दिन में फिल्म ने 14 करोड़ 31 लाख का किया बिजनेस। रणदीप हुड्डा की अविनाश पांडे सीजन 2 कल जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज, 1990 के दशक के यूपी के निडर सुपर कॉप के रूप में वापसी। 7 साल बाद कर्तव्य से पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे अभिनेता सैफ अली खान, कल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। कल ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज एग्जाम होगी स्ट्रीम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय की कहानी। चीन का युवू शहर बना दुनिया के छोटे सामानों का बड़ा बाजार, क्रिसमस डेकोरेशन से लेकर वर्ल्ड कप सामान तक सब उपलब्ध। युवू में चलता है दुनिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट, छोटे कारोबार ने शहर को दी वैश्विक पहचान, छोटे सामानों का कारोबार बना बड़ी अर्थव्यवस्था। निर्यात कारोबार में युवा की मजबूत पकड़, कामयाब युवा मॉडल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा, ग्लोबल ट्रेड का बना बड़ा हब। गाजा के कलाकारों ने फुटबॉल स्टार लामिन यामल की मलबे पर बनाई शानदार पेंटिंग, चित्र में यामल के हाथ में लहराता दिखा फिलिस्तीन झंडा। एफसी बार्सिलोना की जर्सी में बच्चों ने देखी यामल की भव्य पेंटिंग, लाली का जीत के जश्न से गाजा तक छाए यामल, तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान। गाजा में फिलिस्तीनियों ने मनाई नकबा की 78वीं बरसी, जवायदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, पेश किया पारंपरिक दबके नृत्य। फिलिस्तीनी पारंपरिक कपड़ों में दिखे प्रतिभागी, बच्चों और युवाओं ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा, नकबा को याद कर भावुक हुए लोग। गाजा में पारंपरिक कला और संस्कृति की दिखी झलक, युवाओं ने सांस्कृतिक विरासत बचाने का दिया संदेश। ब्रिटेन के वेल्स की राजकुमारी केट ने इटली यात्रा के दौरान रेगियो एमिलिया में प्री स्कूल का किया दौरा, बच्चों की प्रकृति आधारित शिक्षा पर रहा खास फोकस। राजकुमारी केट ने शिक्षकों और बच्चों से की बातचीत, बच्चों ने आउटडोर लर्निंग गतिविधियों में लिया हिस्सा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में पहली बार होगा हाफ टाइम शो, मडोना होंगी मेगा शो की हेडलाइन स्टार। के पॉप सुपर ग्रुप बीटीएस करेगा हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस, फुटबॉल और संगीत का होगा ग्लोबल संगम न्यूजर्सी में 19 जुलाई को वर्ल्ड कप फाइनल और म्यूजिक धमाका। अमेरिका कनाडा मेक्सिको करेंगे संयुक्त मेजबानी, फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को मिलेगा सपोर्ट, बच्चों की शिक्षा और फुटबॉल पहुंच बढ़ाने पर रहेगा फोकस। मेटलॉक स्टेडियम में तैयारियां तेज, घास बिछाने का काम जारी, खेल फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ होगा, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे दर्शक। 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में लेंगे हिस्सा। 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा टूर्नामेंट। इस बार खेले जाएंगे कुल 104 मुकाबले, अतिरिक्त नॉकआउट राउंड भी होंगे। चीन के चोंगकिंग के अस्पताल में ड्रोन से पहुंच रहे मेडिकल सैंपल। ड्रोन ने 13 मिनट में पूरा किया अस्पताल का सफर, एम्बुलेंस के मुकाबले आधे समय में हुई डिलीवरी। अस्पताल में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां बनी नई पहचान, रोबोट अब अस्पताल के अंदर पहुंचा रहे सामान। चीन ने शुरू किया पहला इन हॉस्पिटल ड्राइवरलेस मेडिकल रूट। टेस्ट सैंपल और दवाएं पहुंचा रहे स्मार्ट रोबोट। ड्रोन बने अस्पतालों की एयर एक्सप्रेस सर्विस। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी से संक्रमण का खतरा हुआ कम। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया ज़ूक 2E वाईफाई रॉकेट। उत्तर पश्चिम चीन के लॉन्च जोन से भरी उड़ान। रॉकेट का दूसरा चरण तय कक्षा में पहुंचा। ज़ूक 2E वाईफाई ने फिर दिखाई चीन की स्पेस ताकत। डोंगफेंस स्पेस जोन से हुआ मिशन रवाना।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
10: Thank God I get to wake
9: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20

पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इससे अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा और इसका देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जैसे 15 मई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करिए। ऐसा करने से सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:31 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 8:14 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि ये सूर्य के राशि परिवर्तन का आखिर मामला क्या है।
1: देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। ये स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जिस समय सूर्य देव वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं उस समय वृष लग्न का उदय हो रहा है।

0: है राशि परिवर्तन के समय सूर्य बुध के साथ लग्न में विद्यमान हैं और उस समय मीन राशि में चूंकि शनि बैठे हुए हैं इसीलिए शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने लगेगी। सूर्य वृषभ में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में, यानी राहु केतु सूर्य से केंद्र में रहेंगे। तो अब सूर्य बुध राहु केतु और शनि का जो प्रभाव है ये राजनैतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। अगले एक महीने में देश और दुनिया में राजनैतिक रूप से बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन उनका क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा।
0: देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने के लिए पूरी दुनिया का भविष्य, राशियों का भविष्य बता देता है। तो ये जो राशि परिवर्तन सूर्य देव का होने जा रहा है इसका सामान्य प्रभाव क्या होगा। बाजार में, शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव घट सकता है। एकदम से भयंकर उतार चढ़ाव आने की संभावना बन सकती है। लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, इन्फेक्शन की बीमारियां और ज्यादातर लोगों को डाइजेशन की बीमारियां, पेट की बीमारियां इस समय परेशान करेंगी। रोगों के मामले में, बीमारी के मामले में दुनिया भर में वृद्धि हो सकती है, लोगों की बीमारियां बढ़ सकती हैं, ये संभावना बन रही है। राजनैतिक रूप से, जैसा आपको पहले भी बताया कि देश में और दुनिया में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और उतार चढ़ाव आ सकता है, उतार चढ़ाव की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। एक सामान्य आदमी को ये सलाह दी जाएगी कि इस समय गाड़ी सावधानी से चलाएं, वाहन चलाने में और आग के काम में, फायर से संबंधित काम में विशेष सावधानी रखनी होगी। जिनकी कुंडलियों में सूर्य या मंगल की स्थिति फेवरेबल नहीं है, उन्हें ज्यादा सावधानी इस समय बनाए रखना होगा।
1: और आइए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने के जवाबों का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न बबीता सिंह ने हमें लिखा है और बबीता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1984। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। बबीता कह रही हैं कि बहुत दिन से ये और इनके पति मिल करके एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अपने मकान का लाभ कब तक होगा? बबीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप फ्लैट खरीदने की कोशिश करते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए। इस साल के जून से लेके और अक्टूबर के बीच में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद लेंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। मंगल के कमजोर होने की वजह से थोड़ी अड़चन आ रही है, तो आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए, आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
0: जी, अगला प्रश्न अमोघ जी ने हमें लिखा है और अमोघ जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर सन 2002, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है रांची। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अमोघ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करिए, प्रशासनिक सेवा में आपको सफलता मिलेगी और उसका बहुत अच्छा समय आपकी कुंडली में साल 2027-28 में दिखाई दे रहा है। थोड़ी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रयास ज्यादा करिए, आप सफल होंगे। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सफलता के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो आइए जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य परिवर्तन का क्या असर होगा।
0: अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव अगले एक महीने तक पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। पैसों रुपयों के मामले में, आर्थिक मामलों में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृषभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको सरदर्द की और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा, पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, धन के मामले, कर्ज के मामले आपको परेशान करेंगे, धन का खर्चा बढ़ेगा। इस समय लंबी यात्रा में सावधानी रखिएगा, सोच समझकर मिथुन वालों को इस समय यात्रा करनी चाहिए। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में आपके पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव इस समय हो सकता है, अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा, आपको करियर में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा, मन की चिंताएं आपकी लगातार दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, तो इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें। संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य परिवर्तन का क्या असर होगा।
0: तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर होगा। तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके करियर के मामले में और आपके स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहिए। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके कारोबार पर और आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। बेवजह के झगड़े ना हो, विवाद ना हो, उसका थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। धनु राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद है। करियर के मामले में और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन और करियर का मामला आपके लिए बेहतर होगा और मन चाहा स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का खास तौर से डाइजेशन का ध्यान दीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। करियर में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। करियर में जोखिम लेने से बचाव करिएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका क्रोध बढ़ा सकता है, आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए कुंभ राशि के लोग फिलहाल अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही फिलहाल नहीं करेंगे। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अनुकूल है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और बड़ी सफलता भी आपको मिल सकती है। यानी मीन राशि के लोगों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफलों को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न हमें अजीत जी ने लिखा है और अजीत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1978। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है पंचकुला। अजीत जी कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो हमारा व्यापार कब तक बेहतर होगा और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। अजीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके व्यापार की जो स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी रहेगी, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगस्त 2027 तक आते आते आपका काम दोबारा से बहुत बेहतर हो जाएगा और तब तक आपको कर्जों से मुक्ति भी मिल जाएगी। एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: और गुडलक में अब वक्त हो गया है आज के अंतिम प्रश्न को लेने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न विकास जैन ने हमें लिखा है और विकास हमें मेल लिखते हैं जोधपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1975। जन्म का समय दोपहर के 2:22। जन्म स्थान है जोधपुर। विकास कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार कर लेना चाहिए। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यापार में मत जाइए। नौकरी बदलना अगर चाहें, बदल करके बेहतर नौकरी में जाना चाहें, तो वैसा आप जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर व्यापार करना चाहेंगे तो 2029 के पहले आपको व्यापार की सलाह नहीं देंगे, तब तक आप नौकरी करिए, नौकरी बदलेंगे तो स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़ें और एक ओपल बनवा करके पहन लें, 8 से 10 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन 15 मई 2026 को आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: ज जिन लोगों का जन्मदिन 15 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अभी विवाह के और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सोते समय लेटते समय पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने या लेटने से शरीर की ऊर्जा बाहर निकल जाती है, इसीलिए मृत्यु के बाद पैर दक्षिण की तरफ कर दिए जाते हैं ताकि शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाए। जीवन काल में जीवित रहते हुए आप सोते समय लेटते समय अपना पैर उत्तर या पश्चिम की तरफ रखें तो अच्छा होगा। दक्षिण की तरफ पैर करके लेटना या सोना उचित नहीं है।
1: और गुड लक में हम जानेंगे 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: अब जान लेते हैं दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये समय स्वास्थ्य के मामले में कैसा आजकल चल रहा है। आज की गुडलक राशि है कन्या। इस समय हड्डियों और आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए महा उपाय में बताते हैं कि अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि में सूर्य देव का जाना अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करिएगा रोज सुबह 108 बार, ओम आदित्याय नमः। और नियमित रूप से जल का और फल का दान करें, लोगों को पानी शरबत पिलाएं, वृक्षों में पौधों में जल डालें, और जो जल वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, इसका नियमित रूप से दान करेंगे तो बेहतर होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: Good news today.
3: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: इसीलिए खबर के किन
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।

रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और हिंदुस्तान में सोना और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, यानी कमी की आशंका के चलते आनन फानन में सोना खरीद रहे हैं। ऐसे वक्त में आज GNT पर हम आपको बताएंगे कि अगर सोना या उससे बनी हुई ज्वेलरी आपको खरीदनी है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा ही एक शानदार विकल्प है राजस्थान की थेवा आर्ट ज्वेलरी, जो हमारे साथ चलिए राजस्थान और जयपुर में आपको लिए चलते हैं, उस ज्वेलरी की चमक दिखाते हैं जिसके आगे कुछ देर तो आप सोने को बिल्कुल भूल ही जाएंगे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जे एंटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। उसके बाद से शहर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद

0: ये ठीक है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर चमकती हुई चीज अगर इतनी शानदार हो तो कुछ पल के लिए सोने को भूल भी जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, हमारे देश में सोना खरीदने को लेकर ऑब्सेशन ऐसा है कि चाहे जेब इजाजत दे या फिर न दे, लेकिन सोना खरीदे बगैर हमारी शादियों, हमारे उत्सवों और त्योहारों की चमक कुछ फीकी सी लगने लगती है। तभी तो इस चकाचौंध के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए सोने के गहनों का एक शानदार विकल्प बन सकता है राजस्थान की थेवा कला से बने गहने। थेवा कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जहां कलाकार पिघले कांच, चांदी और बेहद थोड़े से सोने को मिलाकर ऐसे शानदार गहने तैयार करते हैं जिनके आगे सोने के आलीशान और जड़ाऊ गहने भी फीके पड़ जाएं।
1: एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिजाइन में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास बना देता है। थेवा कला का इस्तेमाल कर तैयार किए गए गहनों में बेहद कम मात्रा में सोने का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेवा कला के जरिए केवल 3 से 4 ग्राम सोने में बेहद राजसी और शानदार लुक वाले गहने तैयार किए जा सकते हैं।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
0: राजस्थान के प्रतापगढ़ की ये कला विश्व विख्यात है, लेकिन थेवा कला अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री में भी ये तेजी से अपनी जगह बना रही है। थेवा कला से बने गहनों की बढ़ती डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका किफायती होना। सोने के सीमित इस्तेमाल के चलते थेवा आर्ट से तैयार गहनों की कीमत गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहद कम होती है।
1: अगर कोई एक पूरा सेट लेना चाहे जिसमें नेकलेस भी हो, एयररिंग्स भी हो, जितने भी राजस्थानी ज्वेलरी हो, क्योंकि राजस्थान की कला है, वो सब हो, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
2: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में, वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: कितना भी कर लो बट आपका बजट तो नहीं हिलने वाला है, क्योंकि जहाँ शादियों में प्रॉपर एक सोने का हार लेने में 10 से 20 लाख का खर्चा कम से कम हो जाता है, वहाँ 2 लाख में पूरी ज्वेलरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरी आप हमें दिखाते हुए उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसकी बनावट हुई है।
2: जो राजस्थानी इसको बोलते हैं रानी हार है ना, और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है दिस इज ऑल गोल्ड। एंड जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है। एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है ये है ना, ये सिल्वर में है, गोल्ड प्लेटेड में बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं। एंड जो इसमें ये हैंगिंग्स हमने लगाए हैं ये भी सिल्वर के हैं, इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है नक्काशी का, एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग एंड जो हम जेमस्टोन्स यूज करते हैं वो भी सारे रियल यूज करते हैं ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा. गोल्ड ज्वेलरी कोई ये देख के नहीं कहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है.
1: अच्छा, ये जो हार है मैं इसमें देख रही हूँ कि ऊपर से सोने का काम किया हुआ है, तो ये इसमें कितने ग्राम सोना लगा होगा इस साइज के हार में, इस वेट के हार में कितना सोना?
2: इसमें अप्रोक्स, जैसे हम पीस से गिनते हैं तो इसमें कितने पीसेस हैं थेवा के, है ना. थेवा की कॉस्टिंग पर पीस और पर साइज से आती है, कितना बड़ा ग्लास है और कितने पीसेस हैं ग्लास के, तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें इतने बड़े पीसेस में मैक्सिमम अपना कम से कम 3-4 ग्राम गोल्ड यूज्ड.
1: 3-4 ग्राम, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉपर सोने का सेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर इसमें सिर्फ 3-4 ग्राम सोना इस्तेमाल हो रहा है.
0: परंपरागत रूप से थेवा आर्ट डिजाइन्स में मुख्य रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी, मयूर और दूसरी आंचलिक आकृतियों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. लेकिन अब थेवा कला सिर्फ पारंपरिक डिजाइन्स तक सीमित नहीं रही, अब मॉडर्न ब्राइड्स और युवतियां थेवा आर्ट पीसेस को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा रही.
2: इसमें ये सेंटर अपना थेवा आर्ट वाला ग्लास हो गया पीकॉक डांसिंग पीकॉक के साथ में, और जो बॉर्डर है ये कुंदन जड़ाई का काम किया हुआ है. बैक साइड कवर वही सिल्वर के अंदर है गोल्ड प्लेटेड, एंड जो इसमें हसली लगाई है स्पेशल पार्ट इसका, ये हसली का है जो अपने नानी दादी के टाइम ट्रेडिशनल हसली का काम करते थे. ये सॉलिड सिल्वर में है. इसमें अपन ने सारा जो नक्काशी का काम किया, इसको छिलाई बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं. ये पिंक फ्लावर्स जो है ये इसको पेंटिंग मीना बोलते हैं, ये पेंटिंग मीनाकारी में. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज ये रिवर्सिबल है ना, इसको पीछे से भी आप पहन सकते हैं. एंड सेम इसमें साथ में सेम मीनाकारी के झूमर ऐड किए हुए हैं, सेम वर्क में इयररिंग्स हैं इसके. तो एक तरह से थेवा, कुंदन जड़ाई, बीकानेरी मीनाकारी, छिलाई, पेंटिंग मीना, सब फ्यूज्ड है,
1: सब कुछ एक साथ एक ही हार में नजर आ रहा है. तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो क्या थेवा आर्ट में भी है इस टाइप की ज्वेलरी में भी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. अगर आपको इसको पीस को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, सपोज आपको इसमें ये लेयर्स हटानी है, सपोज आपको हसली हटानी है, जस्ट माला लगानी है, वो सब कुछ हो जाएगा.
0: आजकल लड़कियों में पतली चेन वाले थेवा पेंडेंट्स काफी ट्रेंड में है, जबकि रॉयल लुक के चलते रानी हार और राजस्थानी आर जैसे बड़े नेक पीस ब्राइडल फैशन का हिस्सा बन रहे हैं.
2: गर्ल्स के अंदर तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टाइप का लुक होगा, जिसमें वेस्टर्न वेयर पे भी वो पहन सके, जैसे चेन वाले हल्के फुल्के सेट्स हो जाएंगे. और वुमेन के अंदर जो है वो ज़्यादातर हैवी, जो कि शादी पार्टी फंक्शन में वो लोग हैवी सेट्स पहन पाएंगे, दोनों टाइप का.
1: तो कुछ हमें आपके कलेक्शन से दिखाइए कि लड़कियों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और महिलाओं पर कौन सा अच्छा लगेगा.
2: ये वाला पीस मैंने एकदम लड़कियों के हिसाब से डिज़ाइन किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपना डेलिकेट सा सिल्वर चेन है, ये सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड चेन है और जेम स्टोन्स इसके साथ में अपन ने हैंग करे हैं. और ये थेवा का पार्ट सेंटर में आ गया, दिस इज थेवा पार्ट. बैक साइड वही कवर इसका सिल्वर गोल्ड प्लेटेड आ जाएगा. सो दिस
1: इज जेम स्टोन्स प्रेशियस है या सेमी प्रेशियस?
2: सेमी प्रेशियस, हम लोग सेमी प्रेशियस यूज करते हैं. किसी किसी पीस में कहीं कहीं हमको लगता है प्रेशियस, तो प्रेशियस भी यूज करते हैं.
1: क्या कस्टमर्स की डिमांड ऐसी भी आती है कि हमें सिर्फ प्रेशियस स्टोन वाले ही पीसेस?
2: या डेफिनेटली, कस्टमर्स कई बार कहते हैं कि मेरे पास खुद के पास प्रेशियस स्टोन्स मेरे पास रखे हुए रूबी के, एमरल्ड्स के, तो उसी को लेके आप थेवा लगा के डिजाइन करके नया पीस बना दीजिए, तो वो भी बनाते हैं.
1: अच्छा, ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हार मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे इस पे काम?
2: डेफिनेटली, ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आर्ट. ठीक है, ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की, और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है. जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है. ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है. ये पूरी सिल्वर है गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में, एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा. एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं.
0: अब सोचने वाली बात ये है कि पीएम की अपील मई के महीने में आई है, कुछ ही महीनों में त्योहारों और फिर शादियों का सीजन दस्तक देगा, यानी वो समय जो देश के लगभग हर राज्य में आम भारतीय परिवारों के लिए सोने की खरीद का सबसे बड़ा मौका होता है. इन महीनों में अपनी अपनी परंपराओं और सालाना आय के हिसाब से हर परिवार सोने चांदी की खरीद करता है. ऐसे में थेवा आर्ट से बने गहने ठोस सोने की ज्वेलरी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं।
1: यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी है, नॉन ब्राइडल ज्वेलरी भी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उम्र के लिए ऐसी ज्वेलरी जिसमें सोना बहुत कम है पर फिर भी जो लुक है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऊपर से पूरा काम सोने से किया जा रहा है, अंदर चांदी है, तो इससे ये पूरा एंटी एलर्जिक भी है। साथ साथ टार्निश के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उनका ध्यान रखें तो दावा ये है कि 10 साल तक ये ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। तो एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लगभग जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस प्राइस में आ रही है उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूरी ज्वेलरी आप सोने की लुकिंग के साथ में और रियल गोल्ड के साथ में ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बजट फ्रेंडली भी है और आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक इससे नज़र आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: उधर जयपुर को थेवा ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है तो वहीं दिल्ली वालों के दिल को बंधेल ज्वेलरी भा रही है। देखने में बिल्कुल सोने जैसी लेकिन दाम सोने का 10%। अब इसको यूं समझिए कि बंधेल ज्वेलरी में सोने जैसा दिखने वाला भारी भरकम ब्राइडल सेट केवल 3-4 लाख रुपए में आ जाता है, यानी लुक और फील में ये गोल्ड जैसी भारी है लेकिन आपकी जेब हल्की नहीं करेगी।
4: चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि अपनी आधुनिक ज्वेलरी के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील के बाद कि एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे, उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर निखिल सिंगल जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ही आपसे मैं करना चाहूंगी सर कि जिनके घर में शादी है उनके लिए सोना खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है, कि एक प्रथा भी चलती आई है कि सोना जो है वो दान करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कितना फर्क आया है, लोग सोने की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं?
5: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10-15% रुपयों में काम हो जाता है, तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग, और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ।
4: लेकिन बंधेल ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा मेटल होता है, कितना उस पे सोने का पानी जिसे हम कहते हैं वो चढ़ा होता है, वो एक बार पूरा समझाइए।
5: इसके नीचे ब्रॉन्ज मेटल होता है पीला, और ऊपर 10-20% जैसा कस्टमर की डिमांड हो उस हिसाब से सोना चढ़ जाता है।
4: रेट में कितना फर्क आ जाता है?
5: रेट ये समझिए 10-15% रेट रह जाते हैं सोने के मुकाबले में।
4: तो लोग जो है अब सबसे ज्यादा यही ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि जब से सोने ना खरीदने की अपील की गई है।
5: हाँ, इसकी तरफ रुख तो बढ़ा है कस्टमर का कि बंधेल ले लें, बजट के अंदर आ जाती है ये।
4: बजट के अंदर आ जाती है। और मैं कुछ ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस है बंधेल ज्वेलरी जो ये बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेटल होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड पर आप जितना भी परसेंट उस पे सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं आप वो जो है चढ़वा सकते हैं, और अपने कस्टमाइज किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी जो है वो आपको उसको बनवा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लाइट वेट रिंग्स की बात हो, ज्वेलरी सेट की बात हो, चेन्स की बात हो, हर एक चीज जो है अब आपको इस बंधेल ऑप्शन में जो है वो नजर आने वाली है। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही इन चेन से करूंगी कि कितनी ग्राम की ये चेन है, कितना इसमें जो है गोल्ड जो है वो चढ़ा हुआ है, और क्या इसकी जो कीमत है वो लगभग आ रही है?
5: लगभग ये मानिए अगर कोई चीज 10 ग्राम की है तो उसमें आपको केवल 1.5 ग्राम के पैसे पे करने पड़ेंगे, इसमें लगभग 10% गोल्ड होता है।
4: अगर किसी ब्राइडल की बात की जाए तो उनको सोने के सेट जो है वो जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ये थोड़े हैवी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेट जो है ये कितने ग्राम का है?
5: ये लगभग 150 ग्राम का है जिसमें केवल 22 ग्राम गोल्ड है।
4: और इसकी कीमत?
5: कीमत लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपए के लगभग।
4: इसकी 4 लाख रुपए की कीमत है, तो 22 ग्राम गोल्ड के साथ जो है 4 लाख रुपए की इस सेट की कीमत है। और अगर गोल्ड की सेट की मैं बात करती तो ये कितने का पड़ जाता लोगों को?
5: ये पड़ता आपको 22.5 लाख रुपए का।
4: 22.5 लाख, तो 22.5 लाख से सीधा 4 लाख वाला ऑप्शन मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें आप गोल्ड की भी खरीदारी नहीं कर रहे अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम गोल्ड जो है ये उसमें आप भी सेट जो है वो ले सकते हैं। थोड़े लाइट वेट ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इस तरीके के आपको जो है सेट वो दिख जाएंगे। मांग टिक्की के साथ भी आपको मिल जाएगा, इयररिंग्स के साथ भी जो है वो सेट मिल जाएंगे। लेकिन रिंग्स की बात की जाए तो रिंग्स में अच्छी खासी वेरायटी आपको मिलने वाली है, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है यहाँ पर जरूर मिलती है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी इस वक्त मौजूद है जो कि महासचिव है यहाँ के। सर कितना फर्क आया है, एक तो अपील में भी ये कि एक साल तक आप मत सोना खरीदी, जिनके घर में सोना है उनका तो चढ़ जाएगा लेकिन जिनके पास गोल्ड नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है और मार्केट कितनी बदलती हुई अब नजर आ रही है?
6: देखिए अभी मोदी जी ने जो बोला है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और पिछले सोमवार से हम इसको फॉलो करने में लग रहे हैं। अब 8 महीने 10 महीने से पहले ही ये ज्वेलरी बिकती थी, जैसे अभी बंदेल ज्वेलरी ये बिकती थी, बहुत कमी बिकती थी, लेकिन आज इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि धड़ाधड़ ये ज्वेलरी बिक रही है।
4: जिन्हें गोल्ड खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदनी है तो उनके लिए बंदेल जो है अभी का एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि सारे लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक यही है कि सोना नहीं खरीदना तो उसके अलावा क्या खरीदे। तो इस तरीके से हालांकि मेटल कोई और है लेकिन ऊपर जो है सोने की परत जरूर देखने को मिलेगी। 4 से 5 ग्राम सोना जो है वो चढ़ाया जा रहा है कस्टमर की डिमांड पर कि जिस तरीके से आप, तो ये मार्केट के ऑप्शंस हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप क्या कुछ ले सकते हैं।
3: तो एक एक करके गोल्ड ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में थेवा ज्वेलरी के अलावा इमिटेशन ज्वेलरी भी आजकल खूब चर्चा में है और खूब ट्रेंड कर रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग सोने जैसी दिखने वाली इस ज्वेलरी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। ये गहने बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही दिखते हैं लेकिन दाम सोने के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप खरीदने जाएं तो 20 से 30 हजार रुपए में एक बढ़िया सा सेट आपको जरूर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि कुछ साल पहनकर आप इन्हें खरीद की 40% कीमत पर वापस भी कर सकते हैं।
1: अगर सोना नहीं तो क्या, ये प्रॉब्लम सबके बीच में है जो मार्केट में नजर आ रही है। पर उसी मार्केट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है क्योंकि अगर सोना नहीं तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये ऑप्शंस हम आपको गुड न्यूज टुडे पे हर दिन दिखा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कई ऐसी ज्वेलरी ऑप्शंस जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है हालांकि सोना नहीं है। तो ये जैसी ये दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम आदमी को होने जा रहा है क्योंकि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं, कई सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पर सोना खरीदने का मेन पर्पस होता है दिखाना। तो वहाँ पर जब एक बार में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, वहीं ऐसी दुकानों से अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ होगा क्योंकि ये ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, कोई फर्क नहीं बता सकता है। चाहे मैं यहाँ के आपको चेन्स दिखाऊं, चाहे नेकलेसेस दिखाऊं, बिल्कुल फर्क बताना मुश्किल है कि ये सोना नहीं है।
7: ये कंसेप्ट शुरू करने का हमारा मेन मतलब तो ये था कि वो छोटे परिवार हैं, निचले परिवार हैं, आज तो खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है। पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था। जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है उनके 50,000, 60,000, 80,000 लाख रुपया, उनका बजट नहीं होता था। समाज के आगे क्या करें, तो हम लोग रियल की टू कॉपी बनाते हैं, उसको खाली तपा के या रेती लगा के ही चेक कर सकते हैं। पहना हुआ कोई नहीं बता सकता, रखा हुआ कोई नहीं बता सकता। वो समाज के आगे उन लोगों की शान भी रह जाए और उनका काम भी रह जाए। और हमारी ये ज्वेलरी आराम से आने जाने के अंदर 30-40 बार पहनो, उसके बाद में आप इसको बाई बैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कोई 5,000 का सेट हुआ, 5,000 की ज्वेलरी हुई हमारे यहाँ की, तो करीबन 2,000 रुपये में रिटेल वैल्यू है। उसको कभी 2 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो, टाइम पीरियड की कोई गारंटी नहीं है। पानी साबुन से वॉशेबल है, इसमें ना चोरी का डर ना खोने का गम, फिर भी नहीं है सोने से कम। आजकल बाहर शादी हो रही है, डेस्टिनेशन शादी हो रही है, तो कहाँ रियल लेके जाएं। तो आजकल अच्छे अच्छे छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा परिवार भी इसको काम में लेने लग गया।
1: अगर कोई राजपूती पोशाक के हिसाब से जितने सर से लेके पैर तक जितनी भी ज्वेलरी होती है वो खरीदे तो आपके यहाँ से वो कितने में पड़े?
7: अगर वो बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेता है, रियल की कॉपी लेता है, रियल की फर्स्ट कॉपी लेता है, तो 20,000 से 30,000 रुपए में आराम से उसका वो सेट कम्प्लीट हो जाता है। अब वो आराम से 5-10 साल पहने बाद में बाई बैक भी कर सकता है वो।
1: अच्छा, ये बहुत फायदे की बात है कि बायबैक भी की जा सकती है, तो वो फायदा भी। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे ये कंगन है, कंगन बिल्कुल सोने जैसे दिख रहे हैं, अब इनका काम हम अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से फिनिशिंग भी देख रहे हैं, पर ये सोने जैसा क्यों दिख रहा है? क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है? अंदर कौन सा मेटल?
7: अंदर इसमें चापा धातु मिक्स होते हैं, कॉपर ब्रास वगैरह होते हैं। जैसे अपना चांदी का वर्क होता है ना, वैसे सोने के वर्क टाइप के कोटिंग चढ़ाते हैं इन पे। ये सिंपल पॉलिश नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये प्रीमियम क्वालिटी ज्वेलरी है।
1: देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बोला जा रहा है, फर्स्ट कॉपीज बिल्कुल लग नहीं रही है। साधारण सी बात है, अगर कॉपी बोल रहे हैं तो सेम दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये आड़ है, इस आड़ को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा कि ये सोना है या नहीं है। और आपको जैसे जहाँ पे दिखाना होता है, बिना अपनी क्लास को जस्टिफाई करे या फिर अपने बजट को छेड़े, आप ये आराम से खरीद सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया कि 20 से 30 हजार में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, जिसमें सारी ज्वेलरी होगी। अगर आप आम कोई भी ज्वेलर के पास जाएंगे और सोना खरीदेंगे तो इससे ज्यादा मैं मानती हूँ आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। बहुत कम बजट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें डायमंड भी है, एमरल्ड जड़ा हुआ दिख रहा है, रूबीज भी है, पोलकी के सेट्स नजर आ रहे हैं, पर्ल्स भी हैं। तो ट्रेंड पूरा जो अभी चल रहा है मार्केट में वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको हर दिन गुड न्यूज टुडे पे दिखा रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह कौन से खास ऑप्शंस हैं जो इस समय पे आप कैरी कर सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारा पैसा भी बचा रहे हैं, और दूसरी चीज अभी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसको भी आप साथ ही साथ में समय पे फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज जयपुर।
3: तो चलिए, इसी के साथ आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। उर्वशी रौतेला भी चुकी वहां पर पहुंची थी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में उनके कैरी किए सबसे महंगे आउटफिट की खासियत क्या है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से इसे कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट माना जा रहा है।
3: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की हुई। फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल दे के पेश किया जाता है। लोग बिना सोचो समझे, बिना जाने, बिना परखे ने लगातार शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम वीडियोस और उन वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई जो आपको गलत तरीके से पेश की गई थी। फैक्ट चेक टीम फैक्ट चेक करके आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, जिनमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसी दावे के साथ, इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में अचानक से तेज हवाएं और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: में बीजेपी की सरकार है, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि कोलकाता में चुनाव जीतने के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है और उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा गया है, कोलकाता में चुनाव जीतने का जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजाकर किया जा रहा है, गलतियां बढ़ती जा रही हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है, उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मस्जिद में संगीत बजाकर उनकी इबादत में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इसके हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। जैसे वीडियो में एक शख्स इबादत कर रहा है, उसके पीछे बैंड वाले म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसे रोका नहीं जा रहा है। वीडियो में और भी बहुत से लोग मौजूद है, लेकिन इसे रोकने के बजाय वो अपनी धुन में मगन नजर आ रहे हैं। यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर वाकई पूजा वाली जगह पर किसी भी शख्स को पूजा करने के दौरान परेशान किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेगा, इसको लेकर शिकायत भी करेगा, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इबादत करने के दौरान बैंड बजाने की परंपरा है। जब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के जरिए ये हो रहा है ऐसा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट कहीं नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर होती। जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी मुद्दे को हवा देती, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
3: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो गश्ती शाही दरबार शरीफ नाम के यूट्यूब अकाउंट से 20 जून 2025 को अपलोड किया गया मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो से ही जुड़े और वीडियो भी गश्ती शाही दरबार शरीफ के यूट्यूब अकाउंट से जून 2025 में अपलोड किए गए मिले। इतना ही नहीं, हमें इस यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किए गए दूसरे वीडियोस भी मिले जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे स्थान पर ही लोगों को संगीत बजाते हुए देखा जा सकता है। जांच में हमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम में मौजूद यह एक सूफी दरगाह है जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हमें प्रकाशित रिपोर्ट में दरगाह की वह तस्वीर भी मिली जो यूट्यूब प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर से मेल खाती है। पड़ताल के दौरान हमें यह स्थान गूगल मैप्स पर भी मिला। गूगल मैप्स के दौरान यह स्थान बांग्लादेश के चट्टोग्राम के राउजान के पास स्थित है। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किए जाने के दावे से वायरल यह वीडियो असल में बांग्लादेश के चट्टोग्राम की एक सूफी दरगाह का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मार्केट में अचानक से तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ है, ठेले वाले दिख रहे हैं, लोग सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। अचानक तेज हवा के झोंके के बीच एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। इसे सच मानकर लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध फॉरवर्ड कर रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो हाल फिलहाल का है। मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह बिल्कुल नीचे ढह गई। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जब हमने इस वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम का विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि पहली नजर में ये एकदम रियल नजर आने वाला वीडियो असली नहीं हो सकता, क्योंकि हवा का चलना, लोगों का बैठना, यहां तक कि ऑटो रिक्शा का बाउंस होना सब असल जिंदगी से बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहां पर सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब बिल्डिंग नीचे गिरती है तब लोग जिस तरह से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर वीडियो वाकई सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी, क्योंकि अब तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। यहाँ एक यूजर का वीडियो पर कमेंट दिखा, उसने इस वीडियो को AI निर्मित बताया था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। बिल्डिंग जैसे ही नीचे गिरती है उस दौरान एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गुजर रही है। वो वहां से ऐसे गुजर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुमंजिला इमारत इतनी तेजी से नीचे गिरी, धमाका भी हुआ होगा, लोगों के भागने की आवाजें भी आई होंगी, लेकिन इस महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ऐसे में हमने जांच को आगे बढ़ाया और वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.4% AI निर्मित बता रही है। इसके अलावा प्रमाणिक साइट पर ऐसी किसी हालिया घटना की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इस तरह हमारी पड़ताल में इमारत के ढहने का ये वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: Good news today is really good. It's good in this case. It's good in this case.
2: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा है।
5: आपने ये तो सुना होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए गए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची की इस प्यारी सी हरकत के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया हुआ है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बहुत ही प्यारा है और इसी कारण वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं।
6: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना?
5: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची के हाथ में 500 का नोट नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार ने बच्ची को पैसे दिए होंगे। अब एक लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा ये आपके पास एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, ये एक नोट मुझे दे दो।
6: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट।
5: अब बच्ची तो बच्ची ही है, उस मासूम ने सोचा तक नहीं कि उस लड़की को 500 का नोट दे दिया और बदले में उस बच्ची को 50 रुपए मिलते हैं।
6: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, आप मुझे एक दो। देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको ना?
5: और बच्ची 3 नोट देखकर खुश भी हो जाती है। अब ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकता है, मगर फनी तो है ही।
6: देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको ना? फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है।
5: हर दिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग खुद को अलग और खास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही कोशिश लोगों के लिए हंसी का कारण भी बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थीं। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने देखने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस रील को बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही कुछ सेकंड में फनी वीडियो बन गई। भारतीय शादियों में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि पल भर में वायरल हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट की याद लोगों को काफी ज्यादा हंसाती है या फिर उनको चकित कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थीं। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्याओं का समाधान किया।
7: भाइयों, मेरठ शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है और ओवर।
5: एक शख्स ने कार के साथ ऐसी कलाकारी की है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक कार नजर आ रही है। कार का लुक देखकर लग रहा है कि वो डिजायर कार है, लेकिन शख्स ने उसे जो लुक दिया है वो एक महंगी कार का दिया है। उस शख्स ने उस कम बजट वाली कार को बुगाती शेरॉन हाइपर कार के रूप में बदल दिया है। उसने कार को सफेद और मरून कलर के साथ ये नया लुक दिया है। जिसने भी इस कार को देखा वो दंग रह गया।
7: इंसानी कारीगरी को ही पलट के रख दिया है। तो भैया, इस फनकार के चमत्कार को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ।
5: वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वह जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वह बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक महंगी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ यही हुआ। वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से देख रहा था। लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। नन्हे बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर ही बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शौक में था और खुश भी। ये वीडियो सामने आया है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां एक भालू ने बाघ के नाक में दम कर दिया। सुनकर भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफी मजे भी ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला जोन नंबर 5 का है, जहां पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक टाइगर और भालू आमने सामने आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही टाइगर भालू के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही भालू बेहद आक्रामक अंदाज में उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। भालू का गुस्सा और आक्रामक रवैया देखकर टाइगर भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है और दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: और अब खबर नासिक त्र्यंबकेश्वर से हस्त कुंभ मेले की, जिसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगो लॉन्च किया। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। इससे हस्त कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे।

0: फिर लगेगा आस्था का महामेला, फिर उमड़ेगा साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला। लेकिन इस बार संगम के तट पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी किनारे होगा ये भव्य और दिव्य आयोजन। बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले की है, जो 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। इस बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने से पहले इसका आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को लॉन्च किया। लोगों में देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। पहली बार जब ये लोगो सामने आया तो हर किसी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
1: सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, कई क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा।
0: बताया गया कि लोगों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सुमित कांटे के डिजाइन को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए मिले, जबकि मयंक नायक ने 2 लाख रुपए का दूसरा और पीयूष पिंपल नेरकर ने 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार जीता। बताया गया कि प्रसून जोशी समेत जाने माने डिजाइन विशेषज्ञों की समिति ने विजेता के डिजाइन का सिलेक्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि सभी अखाड़ों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
1: हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानीय उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी।
0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का लोगो जारी होने के बाद इसे राज्य की मशहूर इमारतों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सीएसटी स्टेशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए उकेरा गया। इसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रेल मंत्रालय ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई की प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बाहरी हिस्सा नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों से जगमगा उठा है। ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इनमें एक नासिक त्र्यंबकेश्वर है, जहां ये बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसपे देश और दुनिया भर से लाखों लोग शामिल होंगे।
2: रामकालपथ करके एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, जो एक साल पहले केंद्र शासन ने हमको मंजूर करके दिया। उसमें भी हम जो सभी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, और पंचवटी जो एरिया है हमारा जहां जिसका बहुत महत्व है रामायण में भी, उसको पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का भी जो पूरा एरिया है वो डेवलप हो रहा है। साथ में ही कुछ 28 सड़कें जो हैं वो हम उनको वाइडन कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर हर प्रकार की यूटिलिटी हम एक ही बार डाल रहे हैं। पुल जो है पुल बना रहे हैं। साधुग्राम है, साधुग्राम के लिए हम जगह जो है भू संपादन भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत विविध प्रकार के काम इसमें जो एक साल में होंगे, उसका कुंभ को भी फायदा होगा और पूरे शहर को भी बहुत फायदा रहेगा।
0: ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि सिंहस्थ कुंभ मेला आस्था, एकता और सनातन परंपरा का भी बड़ा प्रतीक है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबरों से नहीं मापती। जनजी का फोकस अब ऑलराउंड एक्सलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है तो नेतृत्व की क्षमता भी। ये बात साबित करती है इस साल सीबीएसई 12वीं के नतीजे। सीबीएसई 12वीं के इस बार के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर पेश की है।
4: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की CBSE परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया, 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
5: आई थिंक कि दिस इज समथिंग जो लाइक वसंत वैली स्कूल लाइक इनकल्केट करता है कि हम लोग लाइक हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लाइक स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए।
4: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
6: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज़ में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका

0: बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा। इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
1: तो ये जो टॉपर्स हैं वसंत वैली के, ये हमें बता रहे हैं कि जेंजी, जिसकी बहुत चर्चा है, ये प्रतिभा से भरे हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं।
0: वसंत वैली स्कूल के नतीजे सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलती सोच का उदाहरण है जहां नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेल, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। साहिलदेव जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। उसके बाद से शहर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और हिंदुस्तान में सोना और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, यानी कमी की आशंका के चलते आनन फानन में सोना खरीद रहे हैं। ऐसे वक्त में आज जीएनटी पर हम आपको बताएंगे कि अगर सोना या उससे बनी हुई ज्वेलरी आपको खरीदनी है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा ही एक शानदार विकल्प है राजस्थान की थेवा आर्ट ज्वेलरी, जो हमारे साथ चलिए राजस्थान और जयपुर में आपको लिए चलते हैं। उस ज्वेलरी की चमक दिखाते हैं जिसके आगे कुछ देर तो आप सोने को बिल्कुल भूल ही जाएंगे।

0: ये ठीक है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर चमकती हुई चीज अगर इतनी शानदार हो तो कुछ पल के लिए सोने को भूल भी जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, हमारे देश में सोना खरीदने को लेकर ऑब्सेशन ऐसा है कि चाहे जेब इजाजत दे या फिर न दे, लेकिन सोना खरीदे बगैर हमारी शादियों, हमारे उत्सवों और त्योहारों की चमक कुछ फीकी सी लगने लगती है। तभी तो इस चकाचौंध के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए सोने के गहनों का एक शानदार विकल्प बन सकता है राजस्थान की थेवा कला से बने गहने। थेवा कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जहां कलाकार पिघले कांच, चांदी और बेहद थोड़े से सोने को मिलाकर ऐसे शानदार गहने तैयार करते हैं जिनके आगे सोने के आलीशान और जड़ाऊ गहने भी फीके पड़ जाएं।
1: एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिजाइन्स में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास बना देता है। थेवा कला का इस्तेमाल कर तैयार किए गए गहनों में बेहद कम मात्रा में सोने का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेवा कला के जरिए केवल 3 से 4 ग्राम सोने में बेहद राजसी और शानदार लुक वाले गहने तैयार किए जा सकते हैं।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
0: राजस्थान के प्रतापगढ़ की ये कला विश्व विख्यात है, लेकिन थेवा कला अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री में भी ये तेजी से अपनी जगह बना रही है। थेवा कला से बने गहनों की बढ़ती डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका किफायती होना। सोने के सीमित इस्तेमाल के चलते थेवा आर्ट से तैयार गहनों की कीमत गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहद कम होती है।
1: अगर कोई एक पूरा सेट लेना चाहे जिसमें नेकलेस भी हो, एयररिंग्स भी हो, जितनी भी राजस्थानी ज्वेलरी हो, क्योंकि राजस्थान की कला है, वो सब हो, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
2: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में, वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: कितना भी कर लो बट आपका बजट तो नहीं हिलने वाला है, क्योंकि जहाँ शादियों में प्रॉपर एक सोने का हार लेने में 10 से 20 लाख का खर्चा कम से कम हो जाता है, वहां 2 लाख में पूरी ज्वेलरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरी आप हमें दिखाते हुए उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसकी बनावट हुई है।
2: जो राजस्थानी इसको बोलते हैं रानी हार है ना, और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है दिस इज ऑल गोल्ड। जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है, एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है ये है ना, ये सिल्वर में है गोल्ड प्लेटेड में, बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं। एंड जो इसमें ये हैंगिंग्स हमने लगाए हैं ये भी सिल्वर के हैं, इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है नक्काशी का, एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग एंड जो हम जेम स्टोन यूज करते हैं वो भी सारे रियल यूज करते हैं ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा. गोल्ड ज्वेलरी कोई ये देख के नहीं कहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है.
1: अच्छा, ये जो हार है मैं इसमें देख रही हूँ कि ऊपर से सोने का काम किया हुआ है, तो ये इसमें कितने ग्राम सोना लगा होगा इस साइज के हार में, इस वेट के हार में कितना सोना?
2: इसमें अप्रोक्स, ये जैसे हम पीस से गिनते हैं तो इसमें कितने पीसेस हैं थेवा के, है ना. थेवा की कॉस्टिंग पर पीस और पर साइज से आती, कितना बड़ा ग्लास है और कितने पीसेस हैं ग्लास के, तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें इतने बड़े पीसेस में मैक्सिमम अपना कम से कम 3 to 4 ग्राम गोल्ड यूज.
1: 3 to 4 ग्राम, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉपर सोने का सेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर इसमें सिर्फ 3 to 4 ग्राम सोना इस्तेमाल हो रहा है.
0: परंपरागत रूप से थेवा आर्ट डिजाइन्स में मुख्य रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी, मयूर और दूसरी आंचलिक आकृतियों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. लेकिन अब थेवा कला सिर्फ पारंपरिक डिजाइन्स तक सीमित नहीं रही, अब मॉडर्न ब्राइड्स और युवतियाँ थेवा आर्ट पीसेस को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा रही.
2: इसमें ये सेंटर अपना थेवा आर्ट वाला ग्लास हो गया पीकॉक, डांसिंग पीकॉक के साथ में, और जो बॉर्डर है ये कुंदन जड़ाई का काम किया हुआ है. बैक साइड कवर वही सिल्वर के अंदर है गोल्ड प्लेटेड, एंड जो इसमें हसली लगाई है स्पेशल पार्ट इसका, ये हसली का है जो अपने नानी दादी के टाइम ट्रेडिशनल हसली का काम करते थे. ये सॉलिड सिल्वर में है. इसमें अपन ने सारा जो नक्काशी का काम किया, इसको छिलाई बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं. ये पिंक फ्लावर्स जो है ये इसको पेंटिंग मीना बोलते हैं, ये पेंटिंग मीनाकारी में. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज ये रिवर्सिबल है ना, इसको पीछे से भी आप पहन सकते हैं. एंड सेम इसमें साथ में सेम मीनाकारी के झूमर ऐड किए हुए हैं, सेम वर्क में इयररिंग्स हैं इसके. तो एक तरह से थेवा, कुंदन जड़ाई, बीकानेरी मीनाकारी, छिलाई, पेंटिंग मीना, सब फ्यूज्ड है,
1: सब कुछ एक साथ एक ही हार में नजर आ रहा है. तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो क्या थेवा आर्ट में भी या इस टाइप की ज्वेलरी में भी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. अगर आपको इसको पीस को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, सपोज आपको इसमें ये लेयर्स हटानी है, सपोज आपको हसली हटानी है, जस्ट माला लगानी है, वो सब कुछ हो जाएगा.
0: आजकल लड़कियों में पतली चेन वाले थेवा पेंडेंट्स काफी ट्रेंड में है, जबकि रॉयल लुक के चलते रानी हार और राजस्थानी आर जैसे बड़े नेक पीस ब्राइडल फैशन का हिस्सा बन रहे हैं.
2: गर्ल्स के अंदर तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टाइप का लुक होगा जिसमें वेस्टर्न वेयर पे भी वो पहन सके, जैसे चेन वाले हल्के फुल्के सेट्स हो जाएंगे. और वुमेन के अंदर जो है वो ज्यादातर हैवी, जो कि शादी पार्टी फंक्शन में वो लोग हैवी सेट्स पहन पाएंगे, दोनों टाइप का.
1: तो कुछ हमें आपके कलेक्शन से दिखाइए कि लड़कियों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और महिलाओं पे कौन सा अच्छा लगेगा.
2: ये वाला पीस मैंने एकदम लड़कियों के हिसाब से डिजाइन किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपना डेलिकेट सा सिल्वर चेन है, ये सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड चेन है और जेम स्टोन्स इसके साथ में अपन ने हैंग करे हैं. और ये थेवा का पार्ट सेंटर में आ गया, दिस इज थेवा पार्ट. बैक साइड वही कवर इसका सिल्वर गोल्ड प्लेटेड आ जाएगा. सो इसे
1: ये जेम स्टोन्स प्रेशियस हैं या सेमी प्रेशियस?
2: सेमी प्रेशियस, हम लोग सेमी प्रेशियस यूज करते हैं किसी किसी पीस में, कहीं कहीं हमको लगता है प्रेशियस तो प्रेशियस भी यूज करते हैं.
1: क्या कस्टमर्स की डिमांड ऐसी भी आती है कि हमें सिर्फ प्रेशियस स्टोन वाले ही पीसेस?
2: या डेफिनेटली, कस्टमर्स कई बार कहते हैं कि मेरे पास खुद के पास प्रेशियस स्टोन्स मेरे पास रखे हुए, रूबी के, एमरल्ड्स के, तो उसी को लेके आप थेवा लगा के डिजाइन करके नया पीस बना दीजिए, तो वो भी बनाते हैं.
1: अच्छा, ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हार मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे इस पे काम?
2: डेफिनेटली, ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आर्ट. ठीक है, ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की, और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है. जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है. ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है. ये पूरी सिल्वर है गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में, एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा. एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं.
0: अब सोचने वाली बात ये है कि पीएम की अपील मई के महीने में आई है, कुछ ही महीनों में त्योहारों और फिर शादियों का सीजन दस्तक देगा, यानी वो समय जो देश के लगभग हर राज्य में आम भारतीय परिवारों के लिए सोने की खरीद का सबसे बड़ा मौका होता है. इन महीनों में अपनी अपनी परंपराओं और सालाना आय के हिसाब से हर परिवार सोने चांदी की खरीद करता है. ऐसे में थेवा आर्ट से बने गहने ठोस सोने की ज्वेलरी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं।
1: यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी है, नॉन ब्राइडल ज्वेलरी भी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उम्र के लिए ऐसी ज्वेलरी जिसमें सोना बहुत कम है पर फिर भी जो लुक है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऊपर से पूरा काम सोने से किया जा रहा है, अंदर चांदी है, तो इससे ये पूरा एंटी एलर्जिक भी है। साथ साथ टार्निश के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है और उनका ध्यान रखें तो दावा ये है कि 10 साल तक ये ज्वेलरी खराब नहीं होगी। तो एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लगभग जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस प्राइस में आ रही है उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूरी ज्वेलरी आप सोने की लुकिंग के साथ में और रियल गोल्ड के साथ में ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बजट फ्रेंडली भी है और आपका जो लुक है वो बहुत ज्यादा यूनिक इससे नजर आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: उधर जयपुर को थेवा ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है तो वहीं दिल्ली वालों के दिल को बंधेल ज्वेलरी भा रही है। देखने में बिल्कुल सोने जैसी लेकिन दाम सोने का 10%। अब इसको यूं समझिए कि बंधेल ज्वेलरी में सोने जैसा दिखने वाला भारी भरकम ब्राइडल सेट केवल 3-4 लाख रुपए में आ जाता है, यानी लुक और फील में ये गोल्ड जैसी भारी है लेकिन आपकी जेब हल्की नहीं करेगी।
4: चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि अपनी आधुनिक ज्वेलरी के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील के बाद कि एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे, उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर निखिल सिंगल जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ही यही आपसे मैं करना चाहूंगी सर कि जिनके घर में शादी है उनके लिए सोना खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि एक प्रथा भी चलती आई है कि सोना जो है वो दान करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कितना फर्क आया है, लोग सोने की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं?
5: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10-15% रुपयों में काम हो जाता है तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग, और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ यहाँ।
4: लेकिन बंधेल ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा मेटल होता है, कितना उस पर सोने का पानी जिसे हम कहते हैं वो चढ़ा होता है, वो एक बार पूरा समझाइए।
5: इसके नीचे ब्रॉन्ज मेटल होता है पीला और ऊपर 10-20% जैसा कस्टमर की डिमांड हो उसी हिसाब से सोना चढ़ जाता है।
4: रेट में कितना फर्क आ जाता है?
5: रेट ये समझिए 10-15% रेट रह जाते हैं सोने के मुकाबले में।
4: तो लोग जो है अब सबसे ज्यादा यही ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि जब से सोने ना खरीदने की अपील की गई है।
5: हाँ, इसकी तरफ रुख तो बढ़ा है कस्टमर का कि बंधेल ले लें, बजट के अंदर आ जाती है ये।
4: बजट के अंदर आ जाती है। और मैं कुछ ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस है बंधेल ज्वेलरी जो ये बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेटल होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड पर आप जितना भी परसेंट उस पे सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं आप वो जो है चढ़वा सकते हैं और अपने कस्टमाइज किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी जो है वो आपको उसको बनवा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लाइट वेट रिंग्स की बात हो, ज्वेलरी सेट की बात हो, चेन्स की बात हो, हर एक चीज जो है अब आपको इस बंधेल ऑप्शन में जो है वो नजर आने वाली है। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही इन चेन से करूंगी कि कितनी ग्राम की ये चेन है, कितना इसमें जो है गोल्ड जो है वो चढ़ा हुआ है और क्या इसकी जो कीमत है वो लगभग आ रही है।
5: लगभग ये मानिए अगर कोई चीज 10 ग्राम की है तो उसमें आपको केवल 1.5 ग्राम के पैसे पे करने पड़ेंगे, इसमें लगभग 10% गोल्ड होता है।
4: अगर किसी ब्राइडल की बात की जाए तो उनको सोने के सेट जो है वो जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ये थोड़े हैवी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेट जो है ये कितने ग्राम का है?
5: ये लगभग 150 ग्राम का है जिसमें केवल 22 ग्राम गोल्ड है।
4: और इसकी कीमत?
5: कीमत लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपए
4: की
5: लगभग।
4: इसकी 4 लाख रुपए की कीमत है तो 22 ग्राम गोल्ड के साथ जो है 4 लाख रुपए की इस सेट की कीमत है। और अगर गोल्ड की सेट की मैं बात करती तो ये कितने का पड़ जाता लोगों को?
5: ये पड़ता आपको 22.5 लाख रुपए का।
4: 22.5 लाख, तो 22.5 लाख से सीधा 4 लाख वाला ऑप्शन मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें आप गोल्ड की भी खरीदारी नहीं कर रहे अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम गोल्ड जो है ये उसमें आप भी सेट जो है वो ले सकते हैं। थोड़े लाइट वेट ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इस तरीके के आपको जो है सेट वो दिख जाएंगे। मांग टिक्की के साथ भी आपको मिल जाएगा, इयररिंग्स के साथ भी जो है वो सेट मिल जाएंगे। लेकिन रिंग्स की बात की जाए तो रिंग्स में अच्छी खासी वेरायटी आपको मिलने वाली है, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है यहाँ पर जरूर मिलती है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी इस वक्त मौजूद है जो कि महासचिव है यहाँ के। सर कितना फर्क आया है, एक तो अपील में भी ये कि एक साल तक आप मत सोना खरीदी, जिनके घर में सोना है उनका तो चढ़ जाएगा लेकिन जिनके पास गोल्ड नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है और मार्केट कितनी बदलती हुई अब नजर आ रही है।
6: देखिए अभी मोदी जी ने जो बोला है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और पिछले सोमवार से हम इसको फॉलो करने में लग रहे हैं। अब 8 महीने 10 महीने से पहले ही ये ज्वेलरी बिकती थी, जैसे अभी बंदेल ज्वेलरी ये बिकती थी, बहुत कमी बिकती थी, लेकिन आज इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि धड़ाधड़ यही ज्वेलरी बिक रही है।
4: जिन्हें गोल्ड खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदनी है तो उनके लिए बंदेल जो है अभी का एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि सारे लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक यही है कि सोना नहीं खरीदना तो उसके अलावा क्या खरीदे। तो इस तरीके से हालांकि मेटल कोई और है लेकिन ऊपर जो है सोने की परत जरूर देखने को मिलेगी, 4 से 5 ग्राम सोना जो है वो चढ़ाया जा रहा है कस्टमर की डिमांड पर कि जिस तरीके से आप। तो ये मार्केट के ऑप्शंस हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप क्या कुछ ले सकते हैं।
3: तो एक एक करके गोल्ड ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में थेवा ज्वेलरी के अलावा इमिटेशन ज्वेलरी भी आजकल खूब चर्चा में है और खूब ट्रेंड कर रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग सोने जैसी दिखने वाली इस ज्वेलरी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। ये गहने बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही दिखते हैं लेकिन दाम सोने के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप खरीदने जाएं तो 20 से 30 हजार रुपए में एक बढ़िया सा सेट आपको जरूर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि कुछ साल पहनकर आप इन्हें खरीद की 40% कीमत पर वापस भी कर सकते हैं।
1: अगर सोना नहीं तो क्या, ये प्रॉब्लम सबके बीच में है जो मार्केट में नजर आ रही है, पर उसी मार्केट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है क्योंकि अगर सोना नहीं तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये ऑप्शंस हम आपको गुड न्यूज टुडे पे हर दिन दिखा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कई ऐसी ज्वेलरी ऑप्शंस जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है हालांकि सोना नहीं है, तो ये जैसी ये दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम आदमी को होने जा रहा है क्योंकि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं, कई सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पर सोना खरीदने का मेन पर्पस होता है दिखाना। तो वहाँ पर जब एक बार में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, वहीं ऐसी दुकानों से अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ होगा क्योंकि ये ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, कोई फर्क नहीं बता सकता है। चाहे मैं यहाँ के आपको चेन्स दिखाऊं, चाहे नेकलेसेस दिखाऊं, बिल्कुल फर्क बताना मुश्किल है कि ये सोना नहीं है।
7: ये कंसेप्ट शुरू करने का हमारा मेन मतलब तो ये था कि वो छोटे परिवार हैं, निचले परिवार हैं, आज तो खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है। पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था, जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है, उनके खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है। पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था, जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है, उनके 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपया उनका बजट नहीं होता था, समाज के आगे क्या करें। तो हम लोग रियल की टू कॉपी बनाते हैं, उसको खाली तपाके या रेती लगा के ही चेक कर सकते हैं, पहना हुआ कोई नहीं बता सकता, रखा हुआ कोई नहीं बता सकता। उस समाज के आगे उन लोगों की शान भी रह जाए और उनका काम भी रह जाए। और हमारी ये ज्वेलरी आराम से आने जाने के अंदर 30-40 बार पहनो, उसके बाद में आप इसको बाई बैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कोई 5,000 का सेट हुआ, 5,000 की ज्वेलरी हुई हमारे यहाँ की, तो करीबन 2,000 रुपये में रिटर्न वैल्यू है, उसको कभी 2 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो, टाइम पीरियड की कोई गारंटी नहीं है। पानी साबुन से वॉशेबल है, इसमें ना चोरी का डर ना खोने का गम, फिर भी नहीं है सोने से कम। आजकल बाहर शादी हो रही है, डेस्टिनेशन शादी हो रही है, तो कहाँ रियल लेके जाएं। तो आजकल अच्छे अच्छे छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा परिवार भी इस पर काम में लेने लग गया।
1: अगर कोई राजपूती पोशाक के हिसाब से जितनी सर से लेके पैर तक जितनी भी ज्वेलरी होती है वो खरीदे तो आपके यहाँ से वो कितने में पड़ी?
7: अगर वो बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेता है, रियल की कॉपी लेता है, रियल की फर्स्ट कॉपी लेता है, तो 20,000 से 30,000 रुपए में आराम से उसका वो सेट कम्प्लीट हो जाता है। अब वो आराम से 5-10 साल पहने बाद में बाई बैक भी कर सकता है वो।
1: अच्छा, ये बहुत फायदे की बात है कि बाई बैक भी की जा सकती है, तो वो फायदा भी। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे ये कंगन है, कंगन बिल्कुल सोने जैसे दिख रहे हैं, अब इनका काम हम अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से फिनिशिंग भी देख रहे हैं, पर ये सोने जैसा क्यों दिख रहा है? क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है? अंदर कौन सा मेटल?
7: अंदर इसमें 4-5 धातु मिक्स होते हैं, कॉपर ब्रास वगैरह होते हैं। जैसे अपना चांदी का वर्क होता है ना, वैसे सोने के वर्क टाइप के कोटिंग चढ़ाते हैं इन पे। ये सिंपल पॉलिश नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी है।
1: देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बोला जा रहा है, फर्स्ट कॉपीज बिल्कुल लग नहीं रही है। साधारण सी बात है, अगर कॉपी बोल रहे हैं तो सेम दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये आड़ है, इस आड़ को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा कि ये सोना है या नहीं है। और आपको जैसे जहाँ पे दिखाना होता है, बिना अपनी क्लास को जस्टिफाई करे या फिर अपने बजट को छेड़े, आप ये आराम से खरीद सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया कि 20 से 30 हजार में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, जिसमें सारी ज्वेलरी होगी। अगर आप आम कोई भी ज्वेलर के पास जाएंगे और सोना खरीदेंगे तो इससे ज्यादा मैं मानती हूँ आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। बहुत कम बजट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें डायमंड भी है, एमरल्ड जड़ा हुआ दिख रहा है, रूबीज भी है, पोलकी के सेट्स नजर आ रहे हैं, पर्ल्स भी हैं। तो ट्रेंड पूरा जो अभी चल रहा है मार्केट में वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको हर दिन गुड न्यूज टुडे पे दिखा रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह कौन से खास ऑप्शंस हैं जो इस समय पे आप कैरी कर सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारा पैसा भी बचा रहे हैं, और दूसरी चीज अभी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसको भी आप साथ ही साथ में समय पे फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: तो चलिए, इसी के साथ आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। उर्वशी रौतेला भी चुकी वहां पर पहुंची थी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में उनके कैरी किए सबसे महंगे आउटफिट की खासियत क्या है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से इसे कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट माना जा रहा है।
4: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट।

0: फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल दे के पेश किया जाता है। लोग बिना सोचो समझे, बिना जाने, बिना परखे ने लगातार शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम वीडियोस और उन वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई जो आपको गलत तरीके से पेश की गई थी। फैक्ट चेक टीम फैक्ट चेक करके आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं जिनमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसी दावे के साथ, इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में अचानक से तेज हवाएं और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि कोलकाता में चुनाव जीतने के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है और उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा गया है, कोलकाता में चुनाव जीतने का जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजाकर किया जा रहा है, गलतियां बढ़ती जा रही हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है, उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मस्जिद में संगीत बजाकर उनकी इबादत में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इसके हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। जैसे वीडियो में एक शख्स इबादत कर रहा है, उसके पीछे बैंड वाले म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसे रोका नहीं जा रहा है। वीडियो में और भी बहुत से लोग मौजूद है, लेकिन इसे रोकने के बजाय वो अपनी धुन में मगन नजर आ रहे हैं। यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर वाकई पूजा वाली जगह पर किसी भी शख्स को पूजा करने के दौरान परेशान किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेगा, इसको लेकर शिकायत भी करेगा, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इबादत करने के दौरान बैंड बजाने की परंपरा है। जब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के जरिए ये हो रहा है ऐसा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट कहीं नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर होती। जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी मुद्दे को हवा देती, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
4: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो गश्ती शाही दरबार शरीफ नाम के YouTube अकाउंट से 20 जून 2025 को अपलोड किया गया मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो से ही जुड़े और वीडियो भी गश्ती शाही दरबार शरीफ के YouTube अकाउंट से जून 2025 में अपलोड किए गए मिले। इतना ही नहीं, हमें इस YouTube अकाउंट पर अपलोड किए गए दूसरे वीडियोस भी मिले जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे स्थान पर ही लोगों को संगीत बजाते हुए देखा जा सकता है। जांच में हमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम में मौजूद यह एक सूफी दरगाह है जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हमें प्रकाशित रिपोर्ट में दरगाह की वह तस्वीर भी मिली जो YouTube प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर से मेल खाती है। पड़ताल के दौरान हमें यह स्थान गूगल मैप्स पर भी मिला। गूगल मैप्स के दौरान यह स्थान बांग्लादेश के चट्टोग्राम के राउजान के पास स्थित है। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किए जाने के दावे से वायरल यह वीडियो असल में बांग्लादेश के चट्टोग्राम की एक सूफी दरगाह का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मार्केट में अचानक से तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ है, ठेले वाले दिख रहे हैं, लोग सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। अचानक तेज हवा के झोंके के बीच एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। इसे सच मानकर लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध फॉरवर्ड कर रहे हैं।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो हाल फिलहाल का है। मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह बिल्कुल नीचे ढह गई। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जब हमने इस वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम का विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि पहली नजर में ये एकदम रियल नजर आने वाला वीडियो असली नहीं हो सकता, क्योंकि हवा का चलना, लोगों का बैठना, यहां तक कि ऑटो रिक्शा का बाउंस होना सब असल जिंदगी से बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहां पर सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब बिल्डिंग नीचे गिरती है तब लोग जिस तरह से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर वीडियो वाकई सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। आप देखिए सच और झूठ क्या है।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी, क्योंकि अब तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। यहाँ एक यूजर का वीडियो पर कमेंट दिखा, उसने इस वीडियो को AI निर्मित बताया था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। बिल्डिंग जैसे ही नीचे गिरती है उस दौरान एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गुजर रही है। वो वहां से ऐसे गुजर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुमंजिला इमारत इतनी तेजी से नीचे गिरी, धमाका भी हुआ होगा, लोगों के भागने की आवाजें भी आई होंगी, लेकिन इस महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ऐसे में हमने जांच को आगे बढ़ाया और वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.4% AI निर्मित बता रही है। इसके अलावा प्रमाणिक साइट पर ऐसी किसी हालिया घटना की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इस तरह हमारी पड़ताल में इमारत के ढहने का ये वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
6: How they looked after Game One.
7: I mean, they were frustrated.
5: The Daily.
8: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा है।
9: आपने ये तो सुना होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए गए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची की इस प्यारी सी हरकत के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया हुआ है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बहुत ही प्यारा है और इसी कारण वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं।
10: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना?
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची के हाथ में 500 का नोट नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार ने बच्ची को पैसे दिए होंगे। अब एक लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा ये आपके पास एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, ये एक नोट मुझे दे दो।
10: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट।
9: अब बच्ची तो बच्ची ही है, उस मासूम ने सोचा तक नहीं कि उस लड़की को 500 का नोट दे दिया और बदले में उस बच्ची को 50 रुपए मिलते हैं।
10: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, आप मुझे एक दो। देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको।
9: और बच्ची 3 नोट देखकर खुश भी हो जाती है। अब ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकता है, मगर फनी तो है ही।
10: देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है।
9: हर दिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग खुद को अलग और खास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही कोशिश लोगों के लिए हंसी का कारण भी बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस रील को बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही कुछ सेकंड में फनी वीडियो बन गई। भारतीय शादियों में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि पल भर में वायरल हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट की याद लोगों को काफी ज्यादा हंसाती है या फिर उनको चकित कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थीं। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्याओं का समाधान किया।
7: भाइयों, मेरठ शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। और
9: एक शख्स ने कार के साथ ऐसी कलाकारी की है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक कार नजर आ रही है। कार का लुक देखकर लग रहा है कि वो डिजायर कार है, लेकिन शख्स ने उसे जो लुक दिया है वो एक महंगी कार का दिया है। उस शख्स ने उस कम बजट वाली कार को बुगाती शेरॉन हाइपर कार के रूप में बदल दिया है। उसने कार को सफेद और मरून कलर के साथ ये नया लुक दिया है। जिसने भी इस कार को देखा वो दंग रह गया।
7: इंसानी कारीगरी को ही पलट के रख दिया है। तो भैया, इस फनकार के चमत्कार को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ।
9: वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वह जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वह बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक महंगी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ यही हुआ। वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से देख रहा था। लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। नन्हे बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर ही बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शौक में था और खुश भी। ये वीडियो सामने आया है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां एक भालू ने बाघ के नाक में दम कर दिया। सुनकर भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफी मजे भी ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला जोन नंबर 5 का है, जहां पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक टाइगर और भालू आमने सामने आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही टाइगर भालू के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही भालू बेहद आक्रामक अंदाज में उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। भालू का गुस्सा और आक्रामक रवैया देखकर टाइगर भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है और दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब खबर नासिक त्र्यंबकेश्वर से हस्त कुंभ मेले की, जिसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगो लॉन्च किया। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। इससे हस्त कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे।

0: फिर लगेगा आस्था का महामेला, फिर उमड़ेगा साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला। लेकिन इस बार संगम के तट पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी किनारे होगा ये भव्य और दिव्य आयोजन। बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले की है, जो 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। इस बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने से पहले इसका आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को लॉन्च किया। लोगों में देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। पहली बार जब ये लोगो सामने आया तो हर किसी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
1: सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, कई क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल, क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा।
0: बताया गया कि लोगों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सुमित कांटे के डिजाइन को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए मिले, जबकि मयंक नायक ने 2 लाख रुपए का दूसरा और पीयूष पिंपल नेरकर ने 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार जीता। बताया गया कि प्रसून जोशी समेत जाने माने डिजाइन विशेषज्ञों की समिति ने विजेता के डिजाइन का सिलेक्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि सभी अखाड़ों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
1: हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानीय उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा, ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी।
0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का लोगो जारी होने के बाद इसे राज्य की मशहूर इमारतों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सीएसटी स्टेशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए उकेरा गया। इसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रेल मंत्रालय ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई की प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बाहरी हिस्सा नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों से जगमगा उठा है। ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इनमें एक नासिक त्र्यंबकेश्वर है, जहां ये बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया भर से लाखों लोग शामिल होंगे।
2: रामकाल पथ करके एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, जो एक साल पहले केंद्र शासन ने हमको मंजूर करके दिया। उसमें भी हम जो सभी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, और पंचवटी जो एरिया है हमारा जहाँ जिसका बहुत महत्व है रामायण में भी, उसको पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का भी जो पूरा एरिया है वो डेवलप हो रहा है। साथ में ही कुछ 28 सड़कें जो हैं वो हम उनको वाइडन कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर हर प्रकार की यूटिलिटी हम एक ही बार डाल रहे हैं। पुल जो है पुल बना रहे हैं। साधुग्राम है, साधुग्राम के लिए हम जगह जो है भू संपादन भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत विविध विविध प्रकार के काम इसमें जो एक साल में होंगे, उसका कुंभ को भी फायदा होगा और पूरे शहर को भी बहुत फायदा रहेगा।
0: ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि सिंहस्त कुंभ मेला आस्था, एकता और सनातन परंपरा का भी बड़ा प्रतीक है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबरों से नहीं मापती, जनजी का फोकस अब ऑलराउंड एक्सलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है तो नेतृत्व की क्षमता भी। ये बात साबित करती है इस साल सीबीएसई 12वीं के नतीजे। सीबीएसई 12वीं के इस बार के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर पेश की है।
4: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया, 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
5: आई थिंक दिस इज समथिंग जो लाइक वसंत वैली स्कूल लाइक इनकल्केट करता है कि हम लोग लाइक हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लाइक स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए, उसको बेटर करने के लिए।
4: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
6: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है, 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो, स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका पवार जो हमारी इस बार टॉपर है, स्कूल टॉपर है, शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
4: सीबीएसई 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं दिए बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा, इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
7: तो ये जो टॉपर्स है वसंत वैली

0: सकती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जे एंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। उसके बाद से शहर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और हिंदुस्तान में सोना और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, यानी कमी की आशंका के चलते आनंद फानन में सोना खरीद रहे हैं। ऐसे वक्त में आज जीएनटी पर हम आपको बताएंगे कि अगर सोना या उससे बनी हुई ज्वेलरी आपको खरीदनी है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा ही एक शानदार विकल्प है राजस्थान की थेवा आर्ट ज्वेलरी, जो हमारे साथ चलिए राजस्थान और जयपुर में आपको लिए चलते हैं, उस ज्वेलरी की चमक दिखाते हैं जिसके आगे कुछ देर तो आप सोने को बिल्कुल भूल ही जाएंगे।

ये ठीक है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर चमकती हुई चीज अगर इतनी शानदार हो तो कुछ पल के लिए सोने को भूल भी जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, हमारे देश में सोना खरीदने को लेकर ऑब्सेशन ऐसा है कि चाहे जेब इजाजत दे या फिर न दे, लेकिन सोना खरीदे बगैर हमारी शादियों, हमारे उत्सवों और त्योहारों की चमक कुछ फीकी सी लगने लगती है। तभी तो इस चकाचौंध के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब देश

0: के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए सोने के गहनों का एक शानदार विकल्प बन सकता है राजस्थान की थेवा कला से बने गहने। थेवा कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जहां कलाकार पिघले कांच, चांदी और बेहद थोड़े से सोने को मिलाकर ऐसे शानदार गहने तैयार करते हैं जिनके आगे सोने के आलीशान और जड़ाऊ गहने भी फीके पड़ जाएं।
1: एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिजाइंस में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है। पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास,
1: जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास बना देता है। थेवा कला का इस्तेमाल कर तैयार किए गए गहनों में बेहद कम मात्रा में सोने का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेवा कला के जरिए केवल 3 से 4 ग्राम सोने में बेहद राजसी और शानदार लुक वाले गहने तैयार किए जा सकते हैं।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
0: राजस्थान के प्रतापगढ़ की ये कला विश्व विख्यात है, लेकिन थेवा कला अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री में भी ये तेजी से अपनी जगह बना रही है। थेवा कला से बने गहनों की बढ़ती डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका किफायती होना। सोने के सीमित इस्तेमाल के चलते थेवा आर्ट से तैयार गहनों की कीमत गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहद कम होती है।
1: अगर कोई एक पूरा सेट लेना चाहे जिसमें नेकलेस भी हो, एयररिंग्स भी हो, जितनी भी राजस्थानी ज्वेलरी हो, क्योंकि राजस्थान की कला है, वो सब हो, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
2: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में, वो 28,000 से 28,000 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: कितना भी कर लो बट आपका बजट तो नहीं हिलने वाला है, क्योंकि जहाँ शादियों में प्रॉपर एक सोने का हार लेने में 10 से 20 लाख का खर्चा कम से कम हो जाता है, वहाँ 2 लाख में पूरी ज्वेलरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरी आप हमें दिखाते हुए उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसकी बनावट हुई है।
2: जो राजस्थानी इसको बोलते हैं रानी हार है ना, और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है, दिस इज ऑल गोल्ड। एंड जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है, एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है, ये है ना, ये सिल्वर में है, गोल्ड प्लेटेड में बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं। एंड जो इसमें ये हैंगिंग्स हमने लगाए हैं, ये भी सिल्वर के हैं, इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है नक्काशी का, एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग एंड जो हम जेमस्टोन्स यूज करते हैं वो भी सारे रियल यूज करते हैं, ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा। गोल्ड ज्वेलरी कोई ये देख के नहीं कहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है।
1: अच्छा, ये जो हार है मैं इसमें देख रही हूँ कि ऊपर से सोने का काम किया हुआ है, तो ये इसमें कितने ग्राम सोना लगा होगा इस साइज के हार में, इस वेट के हार में कितना सोना?
2: इसमें अप्रोक्स, ये जैसे हम पीस से गिनते हैं तो इसमें कितने पीसेस हैं थेवा के, है ना? थेवा की कॉस्टिंग पर पीस और पर साइज से आती है, कितना बड़ा ग्लास है और कितने पीसेस हैं ग्लास के, तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इतने बड़े पीसेस में मैक्सिमम अपना कम से कम 3 to 4 ग्राम गोल्ड यूज,
3: 3 to 4 ग्राम।
1: तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉपर सोने का सेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर इसमें सिर्फ 3 से 4 ग्राम सोना इस्तेमाल हो रहा है।
0: परंपरागत रूप से थेवा आर्ट डिजाइन्स में मुख्य रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी, मयूर और दूसरी आंचलिक आकृतियों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है, लेकिन अब थेवा कला सिर्फ पारंपरिक डिजाइन तक सीमित नहीं रही। अब मॉडर्न ब्राइड्स और युवतियाँ थेवा आर्ट पीसेस को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा रही हैं।
2: इसमें ये सेंटर अपना थेवा आर्ट वाला ग्लास हो गया पीकॉक, डांसिंग पीकॉक के साथ में, और जो बॉर्डर है ये कुंदन जड़ाई का काम किया हुआ है, बैक साइड कवर वही सिल्वर के अंदर है गोल्ड प्लेटेड, एंड जो इसमें हसली लगाई है स्पेशल पार्ट इसका, ये हसली का है जो अपने नानी दादी के टाइम ट्रेडिशनल हसली का काम करते थे, ये सॉलिड सिल्वर में है। इसमें अपन ने ये सारा जो नक्काशी का काम किया इसको छिलाई बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं, ये पिंक फ्लावर्स जो है ये इसको पेंटिंग मीना बोलते हैं, ये पेंटिंग मीनाकारी में, एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज ये रिवर्सिबल है ना, इसको पीछे से भी आप पहन सकते हैं, एंड सेम इसमें साथ में सेम मीनाकारी के झूमर ऐड किए हुए हैं, सेम वर्क में इयररिंग्स हैं इसके। तो एक तरह से थेवा, कुंदन चढ़ाई, बीकानेरी मीनाकारी, छिलाई, पेंटिंग मीना, सब फ्यूज्ड है,
1: सब कुछ एक साथ एक ही हार में नजर आ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो क्या थेवा आर्ट में भी है इस टाइप की ज्वेलरी में भी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। अगर आपको इसको पीस को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, सपोज आपको इसमें ये लेयर्स हटानी है, सपोज आपको हसली हटानी है, जस्ट माला लगानी है, वो सब कुछ हो जाएगा।
0: आजकल लड़कियों में पतली चेन वाले थेवा पेंडेंट्स काफी ट्रेंड में है, जबकि रॉयल लुक के चलते रानी हार और राजस्थानी आर जैसे बड़े नेक पीस ब्राइडल फैशन का हिस्सा बन रहे हैं।
2: गर्ल्स के अंदर तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टाइप का लुक होगा जिसमें वेस्टर्न वेयर पे भी वो पहन सके, जैसे चेन वाले हल्के फुल्के सेट्स हो जाएंगे, और वुमेन के अंदर जो है वो ज्यादातर हैवी, जो कि शादी पार्टी फंक्शन में वो लोग हैवी सेट्स पहन पाएंगे, दोनों उस टाइप का।
1: तो कुछ हमें आपके कलेक्शन से दिखाइए कि लड़कियों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और महिलाओं पे कौन सा अच्छा लगेगा।
2: ये वाला पीस मैंने एकदम लड़कियों के हिसाब से डिजाइन किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपना डेलिकेट सा सिल्वर चेन है, ये सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड चेन है और जेम स्टोन्स इसके साथ में अपन ने हैंग करे हैं, और ये थेवा का पार्ट सेंटर में आ गया, दिस इज थेवा पार्ट, बैक साइड वही कवर इसका सिल्वर गोल्ड प्लेटेड आ जाएगा। सो
1: ये जेम स्टोन्स प्रेशियस हैं या सेमी प्रेशियस?
2: सेमी प्रेशियस, हम लोग सेमी प्रेशियस यूज करते हैं, किसी किसी पीस में कहीं कहीं हमको लगता है प्रेशियस, तो प्रेशियस भी यूज करते हैं।
1: क्या कस्टमर्स की डिमांड ऐसी भी आती है कि हमें सिर्फ प्रेशियस स्टोन वाले ही पीसेस?
2: या डेफिनेटली, कस्टमर्स कई बार कहते हैं कि मेरे पास खुद के पास प्रेशियस स्टोन्स मेरे पास रखे हुए रूबी के, एमरल्ड्स के, तो उसी को लेके आप थेवा लगा के डिजाइन करके नया पीस बना लीजिए, तो वो भी बनाते हैं।
1: अच्छा, ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हार मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे इस पे काम?
2: डेफिनेटली, ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आर्ट, ठीक है? ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की, और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है, जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है। ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है, ये पूरी सिल्वर है गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में, एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा, एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं।
0: अब सोचने वाली बात ये है कि पीएम की अपील मई के महीने में आई है, कुछ ही महीनों में त्योहारों और फिर शादियों का सीजन दस्तक देगा, यानी वो समय जो देश के लगभग हर राज्य में आम भारतीय परिवारों के लिए सोने की खरीद का सबसे बड़ा मौका होता है। इन महीनों में अपनी अपनी परंपराओं और सालाना आय के हिसाब से हर परिवार सोने चांदी की खरीद करता है, ऐसे में थेवा आर्ट से बने गहने ठोस सोने की ज्वेलरी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं।
1: यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी है, नॉन ब्राइडल ज्वेलरी भी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उम्र के लिए ऐसी ज्वेलरी जिसमें सोना बहुत कम है पर फिर भी जो लुक है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऊपर से पूरा काम सोने से किया जा रहा है, अंदर चांदी है, तो इससे ये पूरा एंटी एलर्जिक भी है। साथ साथ टार्निश के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और उनका ध्यान रखें तो दावा ये है कि 10 साल तक ये ज्वेलरी खराब नहीं होगी। तो एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लगभग जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस प्राइस में आ रही है उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूरी ज्वेलरी आप सोने की लुकिंग के साथ में और रियल गोल्ड के साथ में ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बजट फ्रेंडली भी है और आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक इससे नज़र आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: उधर जयपुर को थेवा ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है, तो वहीं दिल्ली वालों के दिल को बंधेल ज्वेलरी भा रही है। देखने में बिल्कुल सोने जैसी, लेकिन दाम सोने का 10%। अब इसको यू समझिए कि बंधेल ज्वेलरी में सोने जैसा दिखने वाला भारी भरकम ब्राइडल सेट केवल 3 से 4 लाख रुपए में आ जाता है, यानी लुक और फील में ये गोल्ड जैसी भारी है, लेकिन आपकी जेब हल्की नहीं करेगी।
4: चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि अपनी आधुनिक ज्वेलरी के लिए जानी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील के बाद कि एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे, उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है, अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर निखिल सिंगल जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ही यही आपसे मैं करना चाहूंगी सर, कि जिनके घर में शादी है उनके लिए सोना खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि एक प्रथा भी चलती आई है कि सोना जो है वो दान करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कितना फर्क आया है, लोग सोने की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं?
5: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10% 15% रुपयों में काम हो जाता है, तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग, और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ।
4: लेकिन बंधेल ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा मेटल होता है, कितना उस पर सोने का पानी जिसे हम कहते हैं वो चढ़ा होता है, वो एक बार पूरा समझाइए।
5: इसके नीचे ब्रॉन्ज मेटल होता है पीला, और ऊपर 10% 20% जैसा कस्टमर की डिमांड हो उसी हिसाब से सोना चढ़ जाता है।
4: रेट में कितना फर्क आ जाता है?
5: रेट ये समझिए 10-15% रेट रह जाते हैं सोने के मुकाबले में।
4: तो लोग जो है अब सबसे ज्यादा यही ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब से सोने ना खरीदने की अपील की गई है।
5: हाँ, इसकी तरफ रुख तो बढ़ा है कस्टमर का कि बंधेल ले लें, बजट के अंदर आ जाती है ये।
4: बजट के अंदर आ जाती है। और मैं कुछ ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस है बंधेल ज्वेलरी जो ये बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेटल होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड पर आप जितना भी परसेंट उस पे सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं आप वो जो है चढ़वा सकते हैं, और अपने कस्टमाइज किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी जो है वो आपको उसको बनवा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लाइट वेट रिंग्स की बात हो, ज्वेलरी सेट की बात हो, चेन्स की बात हो, हर एक चीज जो है अब आपको इस बंधेल ऑप्शन में जो है वो नजर आने वाली है। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही इन चेन से करूंगी कि कितनी ग्राम की ये चेन है, कितना इसमें जो है गोल्ड जो है वो चढ़ा हुआ है, और क्या इसकी जो कीमत है वो लगभग आ रही है?
5: लगभग ये मानिए अगर कोई चीज 10 ग्राम की है तो उसमें आपको केवल 1.5 ग्राम के पैसे पे करने पड़ेंगे। इसमें लगभग 10% गोल्ड होता है।
4: अगर किसी ब्राइडल की बात की जाए तो उनको सोने के सेट जो है वो जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ये थोड़े हैवी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेट जो है ये कितने ग्राम का है?
5: ये लगभग 150 ग्राम का है जिसमें केवल 22 ग्राम गोल्ड है।
4: और इसकी कीमत?
5: कीमत लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपए के लगभग।
4: इसकी 4 लाख रुपए की कीमत है, तो 22 ग्राम गोल्ड के साथ जो है 4 लाख रुपए की इस सेट की कीमत है। और अगर गोल्ड की सेट की मैं बात करती तो ये कितने का पड़ जाता लोगों?
5: ये पड़ता आपको 22.5 लाख रुपए का।
4: 22.5 लाख, तो 22.5 लाख से सीधा 4 लाख वाला ऑप्शन मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें आप गोल्ड की भी खरीदारी नहीं कर रहे अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम गोल्ड जो है ये उसमें आप भी सेट जो है वो ले सकते हैं। थोड़े लाइट वेट ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इस तरीके के आपको जो है सेट वो दिख जाएंगे, मांग टिक्की के साथ भी आपको मिल जाएगा, इयररिंग्स के साथ भी जो है वो सेट मिल जाएंगे। लेकिन रिंग्स की बात की जाए तो रिंग्स में अच्छी खासी वेरायटी आपको मिलने वाली है, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है यहाँ पर जरूर मिलती है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी इस वक्त मौजूद है जो कि महासचिव है यहाँ के। सर, कितना फर्क आया है. एक तो अपील, अपील में भी ये कि एक साल तक आप मत सोना खरीदिए. जिनके घर में सोना है उनका तो चढ़ जाएगा, लेकिन जिनके पास गोल्ड नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है और मार्केट कितनी बदलती हुई अब नजर आ रही है?
6: देखिए, अभी मोदी जी ने जो बोला है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और पिछले सोमवार से हम इसको फॉलो करने में लग रहे हैं. अब 8 महीने 10 महीने से पहले ही ये ज्वेलरी बिकती थी, जैसे अभी बंदेल ज्वेलरी ये बिकती थी, बहुत कमी बिकती थी, लेकिन आज इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि धड़ाधड़ ये ज्वेलरी बिक रही है.
4: जिन्हें गोल्ड खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदनी है, तो उनके लिए बंदेल जो है अभी का एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि सारे लोग ऑफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक यही है कि सोना नहीं खरीदना तो उसके अलावा क्या खरीदे. तो इस तरीके से हालांकि मेटल कोई और है, लेकिन ऊपर जो है सोने की परत जरूर देखने को मिलेगी. 4 से 5 ग्राम सोना जो है वो चढ़ाया जा रहा है कस्टमर की डिमांड पर, कि जिस तरीके से आप, तो ये मार्केट के ऑप्शंस हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप क्या कुछ ले सकते हैं.
3: तो एक एक करके गोल्ड ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं. जयपुर में थेवा ज्वेलरी के अलावा इमिटेशन ज्वेलरी भी आजकल खूब चर्चा में है और खूब ट्रेंड कर रही है. खास तौर पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग सोने जैसी दिखने वाली इस ज्वेलरी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं. ये गहने बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दाम सोने के मुकाबले बहुत कम है. अगर आप खरीदने जाएं तो 20 से 30 हजार रुपए में एक बढ़िया सा सेट आपको जरूर मिल जाएगा. और सबसे अच्छी बात कि कुछ साल पहनकर आप इन्हें खरीद की 40% कीमत पर वापस भी कर सकते हैं.
1: अगर सोना नहीं तो क्या? ये प्रॉब्लम सबके बीच में है जो मार्केट में नजर आ रही है, पर उसी मार्केट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है. क्योंकि अगर सोना नहीं तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये ऑप्शंस हम आपको गुड न्यूज टुडे पे हर दिन दिखा रहे हैं. और आज हम आपको बताएंगे कई ऐसी ज्वेलरी ऑप्शंस जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, हालांकि सोना नहीं है. तो ये जैसी ये दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम आदमी को होने जा रहा है, क्योंकि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं, कई सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पर सोना खरीदने का मेन पर्पस होता है दिखाना. तो वहाँ पर जब एक बार में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, वहीं ऐसी दुकानों से अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ होगा, क्योंकि ये ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, कोई फर्क नहीं बता सकता है. चाहे मैं यहाँ के आपको चेन्स दिखाऊं, चाहे नेकलेसेस दिखाऊं, बिल्कुल फर्क बताना मुश्किल है कि ये सोना नहीं है.
7: ये कंसेप्ट शुरू करने का हमारा मेन मतलब तो ये था कि वो छोटे परिवार हैं, निचले परिवार हैं, आज तो खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है. पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था. जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है उनके 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपया, उनका बजट नहीं होता था. समाज के आगे क्या करें, तो हम लोग रियल की टू कॉपी बनाते हैं, उसको खाली तपा के या रेती लगा के ही चेक कर सकते हैं. पहना हुआ कोई नहीं बता सकता, रखा हुआ कोई नहीं बता सकता. उस समाज के आगे उन लोगों की शान भी रह जाए और उनका काम भी रह जाए. और हमारी ये ज्वेलरी आराम से आने जाने के अंदर 30-40 बार पहनो, उसके बाद में आप इसको बाई बैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं. जैसे कोई 5,000 का सेट हुआ, 5,000 की ज्वेलरी हुई हमारे यहाँ की, तो करीबन 2,000 रुपये में रिटेल वैल्यू है. उसको कभी 2 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो. टाइम पीरियड की कोई गारंटी नहीं है. पानी साबुन से वॉशेबल है, इसमें ना चोरी का डर ना खोने का कम, फिर भी नहीं है सोने से कम. आजकल बाहर शादी हो रही है, डेस्टिनेशन शादी हो रही है, तो कहाँ रियल लेके जाएं. तो आजकल अच्छे अच्छे छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा परिवार भी इसको काम में लेने लग गया.
1: अगर कोई राजपूती पोशाक के हिसाब से जितने सर से लेके पैर तक जितनी भी ज्वेलरी होती है वो खरीदे, तो आपके यहाँ से वो कितने में पड़े?
7: अगर वो बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेता है, रियल की कॉपी लेता है, रियल की फर्स्ट कॉपी लेता है, तो 20,000 से 30,000 रुपए में आराम से उसका वो सेट कम्प्लीट हो जाता है. अब वो आराम से 5-10 साल पहने बाद में बाई बैक भी कर सकता है वो.
1: अच्छा, ये बहुत फायदे की बात है कि बाई बैक भी की जा सकती है, तो वो फायदा भी. अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे ये कंगन है, कंगन बिल्कुल सोने जैसे दिख रहे हैं, अब इनका काम हम अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से फिनिशिंग भी देख रहे हैं, पर ये सोने जैसा क्यों दिख रहा है? क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है? अंदर कौन सा मेटल?
7: अंदर इसमें 4-5 धातु मिक्स होते हैं, कॉपर ब्रास वगैरह होते हैं. जैसे अपना चांदी का वर्क होता है ना, वैसे सोने के वर्क टाइप के कोटिंग चढ़ाते हैं इन पे. ये सिंपल पॉलिश नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी है.
1: देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बोला जा रहा है और फर्स्ट कॉपीज बिल्कुल लग नहीं रही है। साधारण सी बात है, अगर कॉपी बोल रहे हैं तो सेम दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये आड़ है, इस आड़ को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा कि ये सोना है या नहीं है। और आपको जैसे जहाँ पे दिखाना होता है, बिना अपनी क्लास को जस्टिफाई करे या फिर अपने बजट को छेड़े, आप ये आराम से खरीद सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया कि 20 से 30 हजार में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा जिसमें सारी ज्वेलरी होगी। अगर आप आम कोई भी ज्वेलर के पास जाएंगे और सोना खरीदेंगे तो इससे ज़्यादा मैं मानती हूँ आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। बहुत कम बजट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें डायमंड भी है, एमरल्ड जड़ा हुआ दिख रहा है, रूबीज भी है, पोलकी के सेट्स नज़र आ रहे हैं, पर्ल्स भी हैं। तो ट्रेंड पूरा जो अभी चल रहा है मार्केट में वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको हर दिन गुड न्यूज़ टुडे पे दिखा रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह कौन से खास ऑप्शंस हैं जो इस समय पे आप कैरी कर सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारा पैसा भी बचा रहे हैं, और दूसरी चीज अभी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसको भी आप साथ ही साथ में समय पे फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: तो चलिए इसी के साथ आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। उर्वशी रौतेला भी चुकी वहां पर पहुंची थी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में उनके कैरी किए सबसे महंगे आउटफिट की खासियत क्या है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से इसे कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट माना जा रहा है।
3: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की हुई। फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल दे के पेश किया जाता है। लोग बिना सोचो समझे, बिना जाने, बिना परखे ने लगातार शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम वीडियोस और उन वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई जो आपको गलत तरीके से पेश की गई थी। फैक्ट चेक टीम फैक्ट चेक करके आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, जिनमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसी दावे के साथ, इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में अचानक से तेज हवाएं और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: फिलहाल में अब बीजेपी की सरकार है, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि कोलकाता में चुनाव जीतने के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है और उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा गया है, कोलकाता में चुनाव जीतने का जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजाकर किया जा रहा है, गलतियां बढ़ती जा रही हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है, उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मस्जिद में संगीत बजाकर उनकी इबादत में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इसके हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। जैसे वीडियो में एक शख्स इबादत कर रहा है, उसके पीछे बैंड वाले म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसे रोका नहीं जा रहा है। वीडियो में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन इसे रोकने के बजाय वो अपनी धुन में मगन नजर आ रहे हैं। यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर वाकई पूजा वाली जगह पर किसी भी शख्स को पूजा करने के दौरान परेशान किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेगा, इसको लेकर शिकायत भी करेगा, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इबादत करने के दौरान बैंड बजाने की परंपरा है। जब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के जरिए ये हो रहा है ऐसा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट कहीं नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर होती। जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी मुद्दे को हवा देती, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
7: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो गश्ती शाही दरबार शरीफ नाम के यूट्यूब अकाउंट से 20 जून 2025 को अपलोड किया गया मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो से ही जुड़े और वीडियो भी गश्ती शाही दरबार शरीफ के यूट्यूब अकाउंट से जून 2025 में अपलोड किए गए मिले। इतना ही नहीं, हमें इस यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किए गए दूसरे वीडियोस भी मिले जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे स्थान पर ही लोगों को संगीत बजाते हुए देखा जा सकता है। जांच में हमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम में मौजूद यह एक सूफी दरगाह है जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हमें प्रकाशित रिपोर्ट में दरगाह की वह तस्वीर भी मिली जो यूट्यूब प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर से मेल खाती है। पड़ताल के दौरान हमें यह स्थान गूगल मैप्स पर भी मिला। गूगल मैप्स के दौरान यह स्थान बांग्लादेश के चट्टोग्राम के राउजान के पास स्थित है। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किए जाने के दावे से वायरल यह वीडियो असल में बांग्लादेश के चट्टोग्राम की एक सूफी दरगाह का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मार्केट में अचानक से तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ है, ठेले वाले दिख रहे हैं, लोग सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। अचानक तेज हवा के झोंके के बीच एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। इसे सच मानकर लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध फॉरवर्ड कर रहे हैं।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो हाल फिलहाल का है। मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह बिल्कुल नीचे ढह गई। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जब हमने इस वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम का विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि पहली नजर में ये एकदम रियल नजर आने वाला वीडियो असली नहीं हो सकता, क्योंकि हवा का चलना, लोगों का बैठना, यहां तक कि ऑटो रिक्शा का बाउंस होना सब असल जिंदगी से बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहां पर सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब बिल्डिंग नीचे गिरती है तब लोग जिस तरह से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर वीडियो वाकई सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
8: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी, क्योंकि अब तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। यहाँ एक यूजर का वीडियो पर कमेंट दिखा, उसने इस वीडियो को AI निर्मित बताया था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। बिल्डिंग जैसे ही नीचे गिरती है उस दौरान एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गुजर रही है। वो वहां से ऐसे गुजर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुमंजिला इमारत इतनी तेजी से नीचे गिरी, धमाका भी हुआ होगा, लोगों के भागने की आवाजें भी आई होंगी, लेकिन इस महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ऐसे में हमने जांच को आगे बढ़ाया और वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.4% AI निर्मित बता रही है। इसके अलावा प्रमाणिक साइट पर ऐसी किसी हालिया घटना की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इस तरह हमारी पड़ताल में इमारत के ढहने का ये वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
6: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा है।
10: आपने ये तो सुना होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए गए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची की इस प्यारी सी हरकत के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया हुआ है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बहुत ही प्यारा है और इसी कारण वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं।
11: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना?
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची के हाथ में 500 का नोट नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार ने बच्ची को पैसे दिए होंगे। अब एक लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा ये आपके पास एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, ये एक नोट मुझे दे दो।
11: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना, मैं आपको 3 नोट।
10: अब बच्ची तो बच्ची ही है, उस मासूम ने सोचा तक नहीं कि उस लड़की को 500 का नोट दे दिया और बदले में उस बच्ची को 50 रुपए मिलते हैं।
11: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना, मैं आपको 3 नोट दूंगी, आप मुझे एक दो। देखो मैं कितनी अच्छी ना, तीन नोट दिए आपको।
10: और बच्ची तीन नोट देखकर खुश भी हो जाती है। अब ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकता है, मगर फनी तो है ही।
11: देखो मैं कितनी अच्छी ना, तीन नोट दिए आपको। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है।
10: हर दिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग खुद को अलग और खास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही कोशिश लोगों के लिए हंसी का कारण भी बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थीं। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस रील को बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही कुछ सेकंड में फनी वीडियो बन गई। भारतीय शादियों में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि पल भर में वायरल हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट की याद लोगों को काफी ज्यादा हंसाती है या फिर उनको चकित कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थीं। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्याओं का समाधान किया।
12: भाइयों, मेरठ शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। और
10: एक शख्स ने कार के साथ ऐसी कलाकारी की है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक कार नजर आ रही है। कार का लुक देखकर लग रहा है कि वो डिजायर कार है, लेकिन शख्स ने उसे जो लुक दिया है वो एक महंगी कार का दिया है। उस शख्स ने उस कम बजट वाली कार को बुगाती शेरॉन हाइपर कार के रूप में बदल दिया है। उसने कार को सफेद और मरून कलर के साथ ये नया लुक दिया है। जिसने भी इस कार को देखा वो दंग रह गया।
12: इंसानी कारीगरी को ही पलट के रख दिया है। तो भैया, इस फनकार के चमत्कार को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ।
10: वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वह जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वह बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक महंगी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ यही हुआ। वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से देख रहा था। लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। नन्हे बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर ही बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शौक में था और खुश भी। ये वीडियो सामने आया है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां एक भालू ने बाघ के नाक में दम कर दिया। सुनकर भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफी मजे भी ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला जोन नंबर 5 का है, जहां पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक टाइगर और भालू आमने सामने आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही टाइगर भालू के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही भालू बेहद आक्रामक अंदाज में उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। भालू का गुस्सा और आक्रामक रवैया देखकर टाइगर भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है और दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब खबर नासिक त्र्यंबकेश्वर से हस्त कुंभ मेले की, जिसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगो लॉन्च किया। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। इससे हस्त कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे।

0: फिर लगेगा आस्था का महामेला, फिर उमड़ेगा साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला। लेकिन इस बार संगम के तट पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी किनारे होगा ये भव्य और दिव्य आयोजन। बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले की है, जो 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। इस बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने से पहले इसका आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को लॉन्च किया। लोगों में देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। पहली बार जब ये लोगो सामने आया तो हर किसी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
1: सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, कई क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा।
0: बताया गया कि लोगों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सुमित कांटे के डिजाइन को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए मिले, जबकि मयंक नायक ने 2 लाख रुपए का दूसरा और पीयूष पिंपल नेरकर ने 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार जीता। बताया गया कि प्रसून जोशी समेत जाने माने डिजाइन विशेषज्ञों की समिति ने विजेता के डिजाइन का सिलेक्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि सभी अखाड़ों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
1: हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानीय उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा, ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी।
0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का लोगो जारी होने के बाद इसे राज्य की मशहूर इमारतों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सीएसटी स्टेशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए उकेरा गया। इसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रेल मंत्रालय ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई की प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बाहरी हिस्सा नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों से जगमगा उठा है। ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इनमें एक नासिक त्र्यंबकेश्वर है, जहां ये बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया भर से लाखों लोग शामिल होंगे।
2: रामकाल पथ करके एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, जो एक साल पहले केंद्र शासन ने हमको मंजूर करके दिया। उसमें भी हम जो सभी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, और पंचवटी जो एरिया है हमारा जहां जिसका बहुत महत्व है रामायण में भी, उसको पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का भी जो पूरा एरिया है वो डेवलप हो रहा है। साथ में ही कुछ 28 सड़कें जो हैं वो हम उनको वाइडन कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर हर प्रकार की यूटिलिटी हम एक ही बार डाल रहे हैं। पुल जो है पुल बना रहे हैं। साधुग्राम है, साधुग्राम के लिए हम जगह जो है भू संपादन भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत विविध विविध प्रकार के काम इसमें जो एक साल में होंगे, उसका कुंभ को भी फायदा होगा और पूरे शहर को भी बहुत फायदा रहेगा।
0: ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि सिंहस्त कुंभ मेला आस्था, एकता और सनातन परंपरा का भी बड़ा प्रतीक है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तान। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उपकप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। उसके बाद से शहर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और हिंदुस्तान में सोना और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी मानी जाती हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद कई लोग पैनिक भी कर रहे हैं, यानी कमी की आशंका के चलते आनन फानन

0: ठीक है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर चमकती हुई चीज अगर इतनी शानदार हो तो कुछ पल के लिए सोने को भूल भी जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, हमारे देश में सोना खरीदने को लेकर ऑब्सेशन ऐसा है कि चाहे जेब इजाजत दे या फिर न दे, लेकिन सोना खरीदे बगैर हमारी शादियों, हमारे उत्सवों और त्योहारों की चमक कुछ फीकी सी लगने लगती है। तभी तो इस चकाचौंध के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो विकल्प ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए सोने के गहनों का एक शानदार विकल्प बन सकता है राजस्थान की थेवा कला से बने गहने। थेवा कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जहां कलाकार पिघले कांच, चांदी और बेहद थोड़े से सोने को मिलाकर ऐसे शानदार गहने तैयार करते हैं जिनके आगे सोने के आलीशान और जड़ाऊ गहने भी फीके पड़ जाएं।
1: एक अल्टरनेटिव है थेवा आर्ट। ये ऐसी कला है जो 400 साल पुरानी है और इसमें सोने का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बजाय पीछे चांदी का बेस लगाया जाता है और साथ ही में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कला कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही में अलग अलग डिजाइन में मिलती है। आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। हम इस थेवा आर्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइनर सेट्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये आर्ट जो है ये नजर आ रही है कि किस तरीके से सोने का काम बारीकी से इसमें किया गया है, पर ये सोना सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है जिसको बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है और कोई बता नहीं सकता है कि इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है कांच और चांदी।
0: मीनाकारी, पारंपरिक राजस्थानी मोटिव्स और रंगीन कांच का मेल थेवा कला को खास बना देता है। थेवा कला का इस्तेमाल कर तैयार किए गए गहनों में बेहद कम मात्रा में सोने का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थेवा कला के जरिए केवल 3 से 4 ग्राम सोने में बेहद राजसी और शानदार लुक वाले गहने तैयार किए जा सकते हैं।
2: थेवा आर्ट जो है वो 23 कैरेट गोल्ड के पत्रे को बिल्कुल बारीक करके और फिर उस पे टूल से हाथों से नक्काशी करते हैं। पूरी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, फिलगिरी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, हाथी हो गया, फूल पत्ती हो गए, सारे वो पैटर्न्स बनाते हैं। फिर उसको हीट एंड प्रेशर करके मोल्टन ग्लास के साथ कांच को गर्म करके फ्यूज करते हैं कांच पे।
0: राजस्थान के प्रतापगढ़ की ये कला विश्व विख्यात है, लेकिन थेवा कला अब सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री में भी ये तेजी से अपनी जगह बना रही है। थेवा कला से बने गहनों की बढ़ती डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका किफायती होना। सोने के सीमित इस्तेमाल के चलते थेवा आर्ट से तैयार गहनों की कीमत गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहद कम होती है।
1: अगर कोई एक पूरा सेट लेना चाहे जिसमें नेकलेस भी हो, एयररिंग्स भी हो, जितने भी राजस्थानी ज्वेलरी हो, क्योंकि राजस्थान की कला है, वो सब हो, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी को ये कितने का पड़ सकता?
2: कम से कम जो हमारा छोटा सेट स्टार्ट होता है पेंडेंट इयररिंग्स के साथ में वो 28,000 से 28,000 से और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैवी ब्राइडल लुक जो है वो 2 लाख रुपए तक जाएगा।
1: कितना भी कर लो बट आपका बजट तो नहीं हिलने वाला है, क्योंकि जहां शादियों में प्रॉपर एक सोने का हार लेने में 10 से 20 लाख का खर्चा कम से कम हो जाता है, वहां 2 लाख में पूरी ज्वेलरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरी आप हमें दिखाते हुए उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसकी बनावट हुई है।
2: जो राजस्थानी इसको बोलते हैं रानी हार है ना, और इसमें ये ग्लास के ऊपर तो जितना भी आपको फूल पत्ती का काम दिख रहा है दिस इज ऑल गोल्ड। एंड जो ग्रीन कलर है वो ग्लास का है। एंड जो इसमें बैक जो हमने कवर लगाया है, बैक्स का जो बैक इसकी कवरिंग रहती है ये है ना, ये सिल्वर में है, गोल्ड प्लेटेड में बैक केसिंग आप पीछे देख सकते हैं। एंड जो इसमें ये

0: हैंगिंग्स हमने लगाए हैं, ये भी सिल्वर के हैं, इसमें जड़ाव का काम किया हुआ है, नक्काशी का, एंड गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है. तो फिनिशिंग एंड जो हम जेम स्टोन्स यूज करते हैं वो भी सारे रियल यूज करते हैं, ताकि जो आपकी फिनिशिंग और जो भी इसका प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल ज्वेलरी से कम नहीं आएगा. गोल्ड ज्वेलरी कोई ये देख के नहीं कहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है.
1: अच्छा, ये जो हार है मैं इसमें देख रही हूँ कि ऊपर से सोने का काम किया हुआ है, तो ये इसमें कितने ग्राम सोना लगा होगा इस साइज के हार में, इस वेट के हार में कितना सोना?
0: इसमें अप्रोक्स ये जैसे हम पीस से गिनते हैं, तो इसमें कितने पीसेस हैं थेवा के, है ना. थेवा की कॉस्टिंग पर पीस और पर साइज से आती है, कितना बड़ा ग्लास है और कितने पीसेस हैं ग्लास के, तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें इतने बड़े पीसेस में मैक्सिमम अपना कम से कम 3 to 4 ग्राम गोल्ड यूज.
1: 3 to 4 ग्राम. तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉपर सोने का सेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर इसमें सिर्फ 3 से 4 ग्राम सोना इस्तेमाल हो रहा है.
2: परंपरागत रूप से थेवा आर्ट डिजाइन्स में मुख्य रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी, मयूर और दूसरी आंचलिक आकृतियों का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. लेकिन अब थेवा कला सिर्फ पारंपरिक डिजाइन तक सीमित नहीं रही, अब मॉडर्न ब्राइड्स और युवतियाँ थेवा आर्ट पीसेस को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा रही
0: है. इसमें ये सेंटर अपना थेवा आर्ट वाला ग्लास हो गया, पीकॉक डांसिंग पीकॉक के साथ में, और जो बॉर्डर है ये कुंदन जड़ाई का काम किया हुआ है, बैक साइड कवर वही सिल्वर के अंदर है गोल्ड प्लेटेड, एंड जो इसमें हसली लगाई है स्पेशल पार्ट इसका, ये हसली का है जो अपने नानी दादी के टाइम ट्रेडिशनल हसली का काम करते थे, ये सॉलिड सिल्वर में है. इसमें अपन ने सारा जो नक्काशी का काम किया, इसको छिलाई बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं. ये पिंक फ्लावर्स जो है ये इसको पेंटिंग मीना बोलते हैं, ये पेंटिंग मीनाकारी में. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज ये रिवर्सिबल है ना, इसको पीछे से भी आप पहन सकते हैं. एंड सेम इसमें साथ में सेम मीनाकारी के झूमर ऐड किए हुए हैं, सेम वर्क में इयररिंग्स हैं इसके. तो एक तरह से थेवा, कुंदन चढ़ाई, बीकानेरी मीनाकारी, छिलाई, पेंटिंग मीना, सब फ्यूज्ड है,
1: सब कुछ एक साथ एक ही हार में नजर आ रहा है. तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो क्या थेवा आर्ट में भी या इस टाइप की ज्वेलरी में भी कस्टमाइज ऑप्शंस होते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. अगर आपको इसको पीस को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, सपोज आपको इसमें ये लेयर्स हटानी है, सपोज आपको हसली हटानी है, जस्ट माला लगानी है, वो सब कुछ हो जाएगा.
2: आजकल लड़कियों में पतली चेन वाले थेवा पेंडेंट्स काफी ट्रेंड में है, जबकि रॉयल लुक के चलते रानी हार और राजस्थानी आर जैसे बड़े नेक पीस ब्राइडल फैशन का हिस्सा बन रहे हैं.
0: गर्ल्स के अंदर तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टाइप का लुक होगा, जिसमें वेस्टर्न वेयर पे भी वो पहन सके, जैसे चेन वाले हल्के फुल्के सेट्स हो जाएंगे. और वुमेन के अंदर जो है वो ज़्यादातर हैवी, जो कि शादी पार्टी फंक्शन में वो लोग हैवी सेट्स पहन पाएंगे, दोनों उस टाइप का.
1: तो कुछ हमें आपके कलेक्शन से दिखाइए कि लड़कियों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और महिलाओं पर कौन सा अच्छा लगेगा.
0: ये वाला पीस मैंने एकदम लड़कियों के हिसाब से डिज़ाइन किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपना डेलिकेट सा सिल्वर चेन है, ये सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड चेन है, और जेम स्टोन्स इसके साथ में अपन ने हैंग करे हैं, और ये थेवा का पार्ट सेंटर में आ गया, दिस इज थेवा पार्ट, बैक साइड वही कवर इसका सिल्वर गोल्ड प्लेटेड आ जाएगा. सो दिस इज,
1: ये जेम स्टोन्स प्रेशियस हैं या सेमी प्रेशियस?
0: सेमी प्रेशियस, हम लोग सेमी प्रेशियस यूज करते, किसी किसी पीस में कहीं कहीं हमको लगता है प्रेशियस, तो प्रेशियस भी यूज करते.
1: क्या कस्टमर्स की डिमांड ऐसी भी आती है कि हमें सिर्फ प्रेशियस स्टोन वाले ही पीसेस?
0: या डेफिनेटली, कस्टमर्स कई बार कहते हैं कि मेरे पास खुद के पास प्रेशियस स्टोन्स मेरे पास रखे हुए, रूबी के, एमरल्ड्स के, तो उसी को लेके आप थेवा लगा के डिजाइन करके नया पीस बना दीजिए, तो वो भी बनाते हैं.
1: अच्छा, ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हार मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे इस पे काम?
0: डेफिनेटली, ये आप लोगों ने सबने राजस्थानी आर्ट में, राजस्थानी सॉन्ग्स में सब में देखा ही होगा, इसको बोलते आर्ट, ठीक है. ये जो मोटा गुच्छा होता है ये इसकी पहचान है आड़ की, और इसमें हमने फ्यूजन किया है, पूरे आड़ को कॉपी किया है, जो गोल्ड की बड़ी बड़ी आड़ पहनते हैं राजस्थान में, उसको हमने थेवा के अंदर कन्वर्ट किया है. ये ग्लास जो है ये वही गोल्ड का वर्क आ गया इसके ऊपर पूरा, और बेस जो है पूरा इसका हमने सिल्वर में बनाया है, ये पूरी सिल्वर है गोल्ड प्लेटेड बैक साइड में. एंड ये जो जड़ाई का काम है ये सारा सिल्वर का कुंदन बना के और फिर उसकी जड़ाई करी है, तो ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होगा, एंड प्लेटिंग की हम लोग गारंटी वारंटी सब कुछ देते हैं.
2: अब सोचने वाली बात ये है कि पीएम की अपील मई के महीने में आई है, कुछ ही महीनों में त्योहारों और फिर शादियों का सीजन दस्तक देगा, यानी वो समय जो देश के लगभग हर राज्य में आम भारतीय परिवारों के लिए सोने की खरीद का सबसे बड़ा मौका होता है। इन महीनों में अपनी अपनी परंपराओं और सालाना आय के हिसाब से हर परिवार सोने चांदी की खरीद करता है। ऐसे में थेवा आर्ट से बने गहने ठोस सोने की ज्वेलरी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं।
1: यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी है, नॉन ब्राइडल ज्वेलरी भी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उम्र के लिए ऐसी ज्वेलरी जिसमें सोना बहुत कम है पर फिर भी जो लुक है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऊपर से पूरा काम सोने से किया जा रहा है, अंदर चांदी है, तो इससे ये पूरा एंटी एलर्जिक भी है। साथ साथ टार्निश के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है और उनका ध्यान रखें तो दावा ये है कि 10 साल तक ये ज्वेलरी खराब नहीं होगी। तो एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लगभग जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस प्राइस में आ रही है उसी प्राइस में या उससे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूरी ज्वेलरी आप सोने की लुकिंग के साथ में और रियल गोल्ड के साथ में ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बजट फ्रेंडली भी है और आपका जो लुक है वो बहुत ज्यादा यूनिक इससे नजर आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: उधर जयपुर को थेवा ज्वेलरी काफी पसंद आ रही है तो वहीं दिल्ली वालों के दिल को बंधेल ज्वेलरी भा रही है। देखने में बिल्कुल सोने जैसी लेकिन दाम सोने का 10%। अब इसको यूं समझिए कि बंधेल ज्वेलरी में सोने जैसा दिखने वाला भारी भरकम ब्राइडल सेट केवल 3-4 लाख रुपए में आ जाता है, यानी लुक और फील में ये गोल्ड जैसी भारी है लेकिन आपकी जेब हल्की नहीं करेगी।
4: चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि अपनी आधुनिक ज्वेलरी के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील के बाद कि एक साल तक लोगों से अपील की गई कि सोना आप ना खरीदे, उसके बाद मार्केट का भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जिनके घरों में शादी है या जिनको सोना खरीदना है अब वो दूसरी ज्वेलरी आइटम का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर निखिल सिंगल जी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ही यही आपसे मैं करना चाहूंगी सर कि जिनके घर में शादी है उनके लिए सोना खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि एक प्रथा भी चलती आई है कि सोना जो है वो दान करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कितना फर्क आया है, लोग सोने की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं?
5: लोग बाग सोने की जगह एक बंधेल ज्वेलरी चलती है जो केवल 10-15% रुपयों में काम हो जाता है तो उसकी तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग, और किसी का बजट भी नहीं है तो वो ये ज्वेलरी ले सकता है। इसका मैं खुद ही होलसेल काम करता हूँ।
4: लेकिन बंधेल ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा मेटल होता है, कितना उस पर सोने का पानी जिसे हम कहते हैं वो चढ़ा होता है, वो एक बार पूरा समझाइए।
5: इसके नीचे ब्रॉन्ज मेटल होता है पीला और ऊपर 10-20% जैसा कस्टमर की डिमांड हो उसी हिसाब से सोना चढ़ जाता है।
4: रेट में कितना फर्क आ जाता है?
5: रेट ये समझिए 10-15% रेट रह जाते हैं सोने के मुकाबले में।
4: तो लोग जो है अब सबसे ज्यादा यही ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि जब से सोने ना खरीदने की अपील की गई है।
5: हाँ, इसकी तरफ रुख तो बड़ा है कस्टमर का कि बंधेल ले लें, बजट के अंदर आ जाती है,
4: बजट के अंदर आ जाती है। और मैं कुछ ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस है बंधेल ज्वेलरी जो ये बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेटल होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिमांड पर आप जितना भी परसेंट उस पे सोने का पानी चढ़वाना चाहते हैं आप वो जो है चढ़वा सकते हैं और अपने कस्टमाइज किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी जो है वो आपको उसको बनवा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको लाइट वेट रिंग्स की बात हो, ज्वेलरी सेट की बात हो, चेन्स की बात हो, हर एक चीज जो है अब आपको इस बंधेल ऑप्शन में जो है वो नजर आने वाली है। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही इन चेन से करूंगी कि कितनी ग्राम की ये चेन है, कितना इसमें जो है गोल्ड जो है वो चढ़ा हुआ है और क्या इसकी जो कीमत है वो लगभग आ रही है।
5: लगभग ये मानिए अगर कोई चीज 10 ग्राम की है तो उसमें आपको केवल 1.5 ग्राम के पैसे पे करने पड़ेंगे, इसमें लगभग 10% गोल्ड होता है।
4: अगर किसी ब्राइडल की बात की जाए तो उनको सोने के सेट जो है वो जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ये थोड़े हैवी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सेट जो है ये कितने ग्राम का है?
5: ये लगभग 150 ग्राम का है जिसमें केवल 22 ग्राम गोल्ड है।
4: और इसकी कीमत?
5: कीमत लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपए
4: की,
5: लगभग
4: इसकी 4 लाख रुपए की कीमत है। तो 22 ग्राम गोल्ड के साथ जो है 4 लाख रुपए की इस सेट की कीमत है। और अगर गोल्ड की सेट की मैं बात करती तो ये कितने का पड़ जाता लोगों?
5: ये पड़ता आपको 22.5 लाख रुपए का।
4: 22.5 लाख, तो 22.5 लाख से सीधा 4 लाख वाला ऑप्शन मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें आप गोल्ड की भी खरीदारी नहीं कर रहे अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम गोल्ड जो है ये उसमें आप भी सेट जो है वो ले सकते हैं। थोड़े लाइट वेट ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इस तरीके के आपको जो है सेट वो दिख जाएंगे, मांग टिक्की के साथ भी आपको मिल जाएगा, इयररिंग्स के साथ भी जो है वो सेट मिल जाएंगे। लेकिन रिंग्स की बात की जाए तो रिंग्स में अच्छी खासी वैरायटी आपको मिलने वाली है, चाहे फिर वो आप ब्राइडल रिंग लेना चाहे, कपल रिंग लेना चाहे, आपको हर तरीके के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगे। और ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पर इस तरीके की जो भरमार है, जिस तरीके से हम बोलते हैं पारंपरिक ज्वेलरी जो है, आधुनिक ज्वेलरी जो है यहाँ पर जरूर मिलती है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी इस वक्त मौजूद है जो कि महासचिव है यहाँ के। सर कितना फर्क आया है, एक तो अपील में भी ये कि एक साल तक आप मत सोना खरीदी, जिनके घर में सोना है उनका तो चढ़ जाएगा लेकिन जिनके पास गोल्ड नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है और मार्केट कितनी बदलती हुई अब नजर आ रही है।
6: देखिए अभी मोदी जी ने जो बोला है उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और पिछले सोमवार से हम इसको फॉलो करने में लग रहे हैं। अब 8 महीने 10 महीने से पहले ही ये ज्वेलरी बिकती थी, जैसे अभी बंदेल ज्वेलरी ये बिकती थी, बहुत कमी बिकती थी, लेकिन आज इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि धड़ाधड़ ये ज्वेलरी बिक रही है।
4: जिन्हें गोल्ड खरीदना है, नई ज्वेलरी खरीदनी है तो उनके लिए बंदेल जो है अभी का एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि सारे लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन एक यही है कि सोना नहीं खरीदना तो उसके अलावा क्या खरीदे। तो इस तरीके से हालांकि मेटल कोई और है लेकिन ऊपर जो है सोने की परत जरूर देखने को मिलेगी, 4 से 5 ग्राम सोना जो है वो चढ़ाया जा रहा है कस्टमर की डिमांड पर कि जिस तरीके से आप। तो ये मार्केट के ऑप्शंस हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप क्या कुछ ले सकते हैं।
3: तो एक एक करके गोल्ड ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में थेवा ज्वेलरी के अलावा इमिटेशन ज्वेलरी भी आजकल खूब चर्चा में है और खूब ट्रेंड कर रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग सोने जैसी दिखने वाली इस ज्वेलरी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। ये गहने बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही दिखते हैं लेकिन दाम सोने के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप खरीदने जाएं तो 20 से 30 हजार रुपए में एक बढ़िया सा सेट आपको जरूर मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात कि कुछ साल पहनकर आप इन्हें खरीद की 40% कीमत पर वापस भी कर सकते हैं।
1: अगर सोना नहीं तो क्या, ये प्रॉब्लम सबके बीच में है जो मार्केट में नजर आ रही है, पर उसी मार्केट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है क्योंकि अगर सोना नहीं तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये ऑप्शंस हम आपको गुड न्यूज टुडे पे हर दिन दिखा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कई ऐसी ज्वेलरी ऑप्शंस जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है हालांकि सोना नहीं है, तो ये जैसी ये दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा फायदा आम आदमी को होने जा रहा है क्योंकि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं, कई सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पर सोना खरीदने का मेन पर्पस होता है दिखाना। तो वहाँ पर जब एक बार में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, वहीं ऐसी दुकानों से अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ होगा क्योंकि ये ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल सोने जैसी है, कोई फर्क नहीं बता सकता है। चाहे मैं यहाँ के आपको चेन्स दिखाऊं, चाहे नेकलेसेस दिखाऊं, बिल्कुल फर्क बताना मुश्किल है कि ये सोना नहीं है।
7: ये कंसेप्ट शुरू करने का हमारा मेन मतलब तो ये था कि वो छोटे परिवार हैं, निचले परिवार हैं, आज तो खाली अपर क्लास की ज्वेलरी रह गई है। पहले क्या था, आज के 30-40 साल पहले कि हर एक के बजट में नहीं था, जो जॉब वर्क करते हैं उनको रात को शादियों में सेट दिखाना है, सेट की वजह रेंज जा रही है उनके 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपया, उनका बजट नहीं होता था, समाज के आगे क्या करें। तो हम लोग रियल की 2 कॉपी बढ़ाते हैं, उसको खाली तपा के या रेती लगा के ही चेक कर सकते हैं, पहना हुआ कोई नहीं बता सकता, रखा हुआ कोई नहीं बता सकता। उस समाज के आगे उन लोगों की शान भी रह जाए और उनका काम भी रह जाए और हमारी ये ज्वेलरी आराम से आने जाने के अंदर 30-40 बार पहनो, उसके बाद में आप इसको बाई बैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कोई 5,000 का सेट हुआ, 5,000 की ज्वेलरी हुई हमारे यहाँ की, तो करीबन 2,000 रुपये में रिटर्न वैल्यू है, उसको कभी 2 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो, टाइम पीरियड की कोई गारंटी नहीं है। पानी साबुन से वॉशेबल है, इसमें ना चोरी का डर ना खोने का गम, फिर भी नहीं है सोने से कम। आजकल बाहर शादी हो रही है, डेस्टिनेशन शादी हो रही है, तो कहाँ रियल लेके जाएं। तो आजकल अच्छे अच्छे छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा परिवार भी इसको काम में लेने लग गया।
1: अगर कोई राजपूती पोशाक के हिसाब से जितने सर से लेके पैर तक जितनी भी ज्वेलरी होती है वो खरीदे तो आपके यहाँ से वो कितने में पड़े?
7: अगर वो बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेता है, रियल की कॉपी लेता है, रियल की फर्स्ट कॉपी लेता है, तो 20,000 से 30,000 रुपये में आराम से उसका वो सेट कम्प्लीट हो जाता है। अब वो आराम से 5-10 साल पहने बाद में बाई बैक भी कर सकता है वो।
1: अच्छा, ये बहुत फायदे की बात है कि बाई बैक भी की जा सकती है तो वो फायदा भी। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे ये कंगन है, कंगन बिल्कुल सोने जैसे दिख रहे हैं, अब इनका काम हम अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से फिनिशिंग भी देख रहे हैं, पर ये सोने जैसा क्यों दिख रहा है, क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है, अंदर कौन सा मेटल?
7: अंदर इसमें चार पांच धातु मिक्स होते हैं, कॉपर ब्रास वगैरह होते हैं, जैसे अपना चांदी का वर्क होता है ना वैसे सोने के वर्क टाइप के कोटिंग चढ़ाते हैं इन पे। ये सिंपल पॉलिश नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी है।
1: देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बोला जा रहा है, फर्स्ट कॉपीज बिल्कुल लग नहीं रही है, साधारण सी बात है, अगर कॉपी बोल रहे हैं तो सेम दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये आड़ है, इस आड़ को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा कि ये सोना है या नहीं है। और आपको जैसे जहाँ पे दिखाना होता है बिना अपनी क्लास को जस्टिफाई करे या फिर अपने बजट को छेड़े, आप ये आराम से खरीद सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया कि 20 से 30 हजार में आपका पूरा का पूरा सेट आ जाएगा जिसमें सारी ज्वेलरी होगी। अगर आप आम कोई भी ज्वेलर के पास जाएंगे और सोना खरीदेंगे तो इससे ज्यादा मैं मानती हूँ आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे। बहुत कम बजट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें डायमंड भी है, एमरल्ड जड़ा हुआ दिख रहा है, रूबीज भी है, पोलकी के सेट्स नजर आ रहे हैं, पर्ल्स भी हैं। तो ट्रेंड पूरा जो अभी चल रहा है मार्केट में वो दिखेगा। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको हर दिन गुड न्यूज टुडे पे दिखा रहे हैं कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह कौन से खास ऑप्शंस हैं जो इस समय पे आप कैरी कर सकते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारा पैसा भी बचा रहे हैं, और दूसरी चीज अभी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसको भी आप साथ ही साथ में समय पे फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: तो चलिए इसी के साथ आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। उर्वशी रौतेला भी चुकी वहां पर पहुंची थी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में उनके कैरी किए सबसे महंगे आउटफिट की खासियत क्या है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में जिसकी वजह से इसे कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट माना जा रहा है।
3: माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी रौतेला जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती को लेकर हुई उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट

0: फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत 155.87 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए की है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मरमेड स्टाइल गाउन है। इसका बेस लेवेंडर टोन के शिया फैब्रिक से बना है। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोली पॉली काउचर ने तैयार किया है। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी के क्रिस्टल, मोती और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका पहना है, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया है। इसके साथ ही उर्वशी ने अपने हाथ में मशहूर ब्रांड जूडिथ लिबर का करीब 6 लाख रुपए की कीमत वाला कैरोसिल यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग कैरी किया था। कर इस आउटफिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था, उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। 2022 में फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर उर्वशी ने अपना पहला कदम रखा था। और तब से वो हर साल इस समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल में की 20% की कटौती, 50% मीटिंग होगी वर्चुअल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा भवन, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत का दिया संदेश। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप, श्रद्धालुओं को मिल सकेगी नगर निगम की सुविधा और मंदिरों की जानकारी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 500 स्ट्रीट लाइट्स का भी लोकार्पण। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला निकली भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जोशीले नारों की गूंज, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी झांकिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एक क्रिकेट टीम का ऐलान, तिलक वर्मा संभालेंगे टीम की कमान, रियान पराग होंगे उप कप्तान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में एंट्री।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल दे के पेश किया जाता है। लोग बिना सोचो समझे, बिना जाने, बिना परखे ने लगातार शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम वीडियोस और उन वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई जो आपको गलत तरीके से पेश की गई थी। फैक्ट चेक टीम फैक्ट चेक करके आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, जिनमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इसी दावे के साथ, इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में अचानक से तेज हवाएं और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह नीचे ढह गई। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: काल में अब बीजेपी की सरकार है, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता की एक मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि कोलकाता में चुनाव जीतने के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है और उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए लिखा गया है, कोलकाता में चुनाव जीतने का जश्न मस्जिद में म्यूजिक बजाकर किया जा रहा है, गलतियां बढ़ती जा रही हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो में इस्लामी टोपी पहना एक शख्स इबादत करता नजर आ रहा है, उसके पीछे मौजूद कुछ लोग बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मस्जिद में संगीत बजाकर उनकी इबादत में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इसके हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। जैसे वीडियो में एक शख्स इबादत कर रहा है, उसके पीछे बैंड वाले म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसे रोका नहीं जा रहा है। वीडियो में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन इसे रोकने के बजाय वो अपनी धुन में मगन नजर आ रहे हैं। यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर वाकई पूजा वाली जगह पर किसी भी शख्स को पूजा करने के दौरान परेशान किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेगा, इसको लेकर शिकायत भी करेगा, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इबादत करने के दौरान बैंड बजाने की परंपरा है। जब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के जरिए ये हो रहा है ऐसा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट कहीं नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर होती। जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी मुद्दे को हवा देती, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
4: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो गश्ती शाही दरबार शरीफ नाम के यूट्यूब अकाउंट से 20 जून 2025 को अपलोड किया गया मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो से ही जुड़े और वीडियो भी गश्ती शाही दरबार शरीफ के यूट्यूब अकाउंट से जून 2025 में अपलोड किए गए मिले। इतना ही नहीं, हमें इस यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किए गए दूसरे वीडियोज भी मिले, जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे स्थान पर ही लोगों को संगीत बजाते हुए देखा जा सकता है। जांच में हमें बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम में मौजूद यह एक सूफी दरगाह है जहां हर साल उर्स भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हमें प्रकाशित रिपोर्ट में दरगाह की वह तस्वीर भी मिली जो यूट्यूब प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर से मेल खाती है। पड़ताल के दौरान हमें यह स्थान गूगल मैप्स पर भी मिला। गूगल मैप्स के दौरान यह स्थान बांग्लादेश के चट्टोग्राम के राउजान के पास स्थित है। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मस्जिद में संगीत बजाकर मुसलमानों को परेशान किए जाने के दावे से वायरल यह वीडियो असल में बांग्लादेश के चट्टोग्राम की एक सूफी दरगाह का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मार्केट में अचानक से तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ है, ठेले वाले दिख रहे हैं, लोग सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। अचानक तेज हवा के झोंके के बीच एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज की तरह नीचे गिर गई। इसे सच मानकर लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंधाधुंध फॉरवर्ड कर रहे हैं।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो हाल फिलहाल का है। मार्केट में अचानक तेज हवा आई और पूरी बिल्डिंग कागज के पत्तों की तरह बिल्कुल नीचे ढह गई। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जब हमने इस वीडियो के फ्रेम दर फ्रेम का विश्लेषण किया तो साफ हो गया कि पहली नजर में ये एकदम रियल नजर आने वाला वीडियो असली नहीं हो सकता, क्योंकि हवा का चलना, लोगों का बैठना, यहां तक कि ऑटो रिक्शा का बाउंस होना सब असल जिंदगी से बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। यहां पर सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब बिल्डिंग नीचे गिरती है तब लोग जिस तरह से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर वीडियो वाकई सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी, क्योंकि अब तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन को खंगाला। यहाँ एक यूजर का वीडियो पर कमेंट दिखा, उसने इस वीडियो को AI निर्मित बताया था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। बिल्डिंग जैसे ही नीचे गिरती है उस दौरान एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गुजर रही है। वो वहाँ से ऐसे गुजर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुमंजिला इमारत इतनी तेजी से नीचे गिरी, धमाका भी हुआ होगा, लोगों के भागने की आवाजें भी आई होंगी, लेकिन इस महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ऐसे में हमने जांच को आगे बढ़ाया और वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.4% AI निर्मित बता रही है। इसके अलावा प्रमाणिक साइट पर ऐसी किसी हालिया घटना की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इस तरह हमारी पड़ताल में इमारत के ढहने का ये वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा है।
6: आपने ये तो सुना होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए गए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची की इस प्यारी सी हरकत के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया हुआ है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बहुत ही प्यारा है और इसी कारण वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं।
7: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना?
6: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची के हाथ में 500 का नोट नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार ने बच्ची को पैसे दिए होंगे। अब एक लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा ये आपके पास एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, ये एक नोट मुझे दे दो।
7: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट।
6: अब बच्ची तो बच्ची ही है, उस मासूम ने सोचा तक नहीं कि उस लड़की को 500 का नोट दे दिया और बदले में उस बच्ची को 50 रुपए मिलते हैं।
7: बेटा आपके पास ये एक नोट है ना? मैं आपको 3 नोट दूंगी, आप मुझे एक दो। देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको।
6: और बच्ची 3 नोट देखकर खुश भी हो जाती है। अब ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकता है, मगर फनी तो है ही।
7: देखो मैं कितनी अच्छी ना, 3 नोट दिए आपको। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है।
6: हर दिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग खुद को अलग और खास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही कोशिश लोगों के लिए हंसी का कारण भी बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थीं। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस रील को बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही कुछ सेकंड में फनी वीडियो बन गई। भारतीय शादियों में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि पल भर में वायरल हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट की याद लोगों को काफी ज्यादा हंसाती है या फिर उनको चकित कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में पूजा सामग्री रखी हुई है, मगर अचानक पता चलता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां गायब थीं। पुजारियों, मेहमानों और अनुष्ठानों के पहले से ही चल रहे होने के कारण घबराहट समारोह को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय किसी ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने वाली सेवा पर तत्काल ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत ही सबकी समस्याओं का समाधान किया।
8: भाइयों, मेरठ शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है और ओवर।
6: एक शख्स ने कार के साथ ऐसी कलाकारी की है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक कार नजर आ रही है। कार का लुक देखकर लग रहा है कि वो डिजायर कार है, लेकिन शख्स ने उसे जो लुक दिया है वो एक महंगी कार का दिया है। उस शख्स ने उस कम बजट वाली कार को बुगाती शेरॉन हाइपर कार के रूप में बदल दिया है। उसने कार को सफेद और मरून कलर के साथ ये नया लुक दिया है। जिसने भी इस कार को देखा वो दंग रह गया।
8: इंसानी कारीगरी को ही पलट के रख दिया है। तो भैया, इस फनकार के चमत्कार को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ।
6: वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात आ चुकी है, स्टेज सज चुका है और बस दुल्हन की एंट्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में जैसे ही दुल्हन एंट्री लेती है, वह जमकर थिरकना शुरू कर देती है। दुल्हन का कॉन्फिडेंस और उसके कमाल के मूव्स देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे के रिएक्शन की हो रही है। अपनी होने वाली पत्नी को इस अंदाज में नाचते देखकर बंदा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वह बिना पलक झपकाए और मुंह खोले बस एक टुक उसे निहारे जा रहा था। फरारी एक ऐसी गाड़ी है जो हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक महंगी गाड़ी है जो चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, इसलिए सड़क पर दिखते ही नजर एक बार तो पड़ ही जाती है। एक बच्चे के साथ यही हुआ। वो इस कार के साथ फोटो खिंचा रहा था, मगर फरारी का ओनर ये सब दूर से देख रहा था। लेकिन डांटने या हटाने के बजाय उन्होंने बच्चे का दिल खुश करने की सोची। नन्हे बच्चे को सीधे ड्राइविंग सीट पर ही बैठा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई। बच्चा शौक में था और खुश भी। ये वीडियो सामने आया है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां एक भालू ने बाघ के नाक में दम कर दिया। सुनकर भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफी मजे भी ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला जोन नंबर 5 का है, जहां पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक टाइगर और भालू आमने सामने आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही टाइगर भालू के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही भालू बेहद आक्रामक अंदाज में उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। भालू का गुस्सा और आक्रामक रवैया देखकर टाइगर भी कुछ पल के लिए घबरा जाता है और दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: और अब खबर नासिक त्र्यंबकेश्वर से हस्त कुंभ मेले की, जिसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगो लॉन्च किया। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। इससे हस्त कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे।

0: फिर लगेगा आस्था का महामेला, फिर उमड़ेगा साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला। लेकिन इस बार संगम के तट पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी किनारे होगा ये भव्य और दिव्य आयोजन। बात नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह हस्त कुंभ मेले की है, जो 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। इस बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने से पहले इसका आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को लॉन्च किया। लोगों में देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतीकों को शामिल किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। पहली बार जब ये लोगो सामने आया तो हर किसी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
1: सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, कई क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा।
0: बताया गया कि लोगों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सुमित कांटे के डिजाइन को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए मिले, जबकि मयंक नायक ने 2 लाख रुपए का दूसरा और पीयूष पिंपल नेरकर ने 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार जीता। बताया गया कि प्रसून जोशी समेत जाने माने डिजाइन विशेषज्ञों की समिति ने विजेता के डिजाइन का सिलेक्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि सभी अखाड़ों को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
1: हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानीय उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी।
0: नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेले का लोगो जारी होने के बाद इसे राज्य की मशहूर इमारतों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सीएसटी स्टेशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए उकेरा गया। इसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। रेल मंत्रालय ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई की प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बाहरी हिस्सा नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्त कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों से जगमगा उठा है। ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इनमें एक नासिक त्र्यंबकेश्वर है, जहां ये बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसपे देश और दुनिया भर से लाखों लोग शामिल होंगे।
2: रामकाल पथ करके एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, जो एक साल पहले केंद्र शासन ने हमको मंजूर करके दिया। उसमें भी हम जो सभी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, और पंचवटी जो एरिया है हमारा जहाँ जिसका बहुत महत्व है रामायण में भी, उसको पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का भी जो पूरा एरिया है वो डेवलप हो रहा है। साथ में ही कुछ 28 सड़कें जो हैं वो हम उनको वाइडन कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर हर प्रकार की यूटिलिटी हम एक ही बार डाल रहे हैं। पुल जो है पुल बना रहे हैं। साधुग्राम है, साधुग्राम के लिए हम जगह जो है भू संपादन भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत विविध विविध प्रकार के काम इसमें जो एक साल में होंगे, उसका कुंभ को भी फायदा होगा और पूरे शहर को भी बहुत फायदा रहेगा।
0: ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि सिंहस्त कुंभ मेला आस्था, एकता और सनातन परंपरा का भी बड़ा प्रतीक है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नई पीढ़ी अब सफलता को सिर्फ नंबरों से नहीं मापती। जेंजी का फोकस अब ऑलराउंड एक्सलेंस पर है, जहां किताबें भी हैं और खेलकूद भी, कला भी है तो नेतृत्व की क्षमता भी। ये बात साबित करती है इस साल सीबीएसई 12वीं के नतीजे। सीबीएसई 12वीं के इस बार के नतीजों में एक बार फिर से दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने सफलता की एक नई तस्वीर पेश की है।
4: खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि नतीजे शानदार रहे हैं। वसंत वैली स्कूल के इन छात्रों ने 12वीं की CBSE परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा अंक रीतिका पवार ने हासिल किया, 99.5% नंबर पाकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संतुलन बनाया जाए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं।
5: आई थिंक कि दिस इज समथिंग जो लाइक वसंत वैली स्कूल लाइक इनकल्केट करता है कि हम लोग लाइक हम सिर्फ एक स्कूल में इंडिविजुअल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लाइक स्कूल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जब हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम जैसे MCD स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर स्कूल टीचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट्स समथिंग कि हम कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर वन साइड, दैट्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो तुम अपने लिए कर रहे होते हो, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स आपकी जो कम्युनिटी है उसके तरफ भी आपको काम करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए।
4: रितिका हेड गर्ल रहते हुए स्कूल की लगभग सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रही। इन्होंने उस पारंपरिक सोच को बदला है जिसमें माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करने के लिए खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी।
6: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस साल हमारी टॉपर है 99.5% उसने लिया है, वो हमारी हेड गर्ल भी थी, हमारी स्कूल कैप्टन थी, और वो हर चीज़ में जहाँ भी स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी हो स्कूल कैप्टन के तरफ उसने पूरा पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है या जो सिर्फ जो पढ़ता है वो ही करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ भी आदमी कर सकता है। एंड मुझे लगता है रितिका पवार जो हमारी इस बार टॉपर है, स्कूल टॉपर है, शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
4: CBSE 12वीं के नतीजों में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं दिए बल्कि सफलता की एक नई तस्वीर भी पेश की है। स्कूल का औसत परिणाम 87% रहा, इनमें से करीब आधे छात्रों को 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वसंत वैली स्कूल में हर वर्ग के बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है।
7: तो ये जो टॉपर्स हैं वसंत वैली के, ये हमें बता रहे हैं कि जेंजी जिसकी बहुत चर्चा है, ये प्रतिभा से भरे हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं।
4: वसंत वैली स्कूल के नतीजे सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों की कहानी नहीं है बल्कि ये उस बदलती सोच का उदाहरण है जहाँ नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेल, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे
1: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल। सूर्य देव की चाल से किसको मिलेगा वरदान और किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।